आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर वक्त हो चुका है हमारे स्टूडियो की घड़ी के मुताबिक ठीक 5:35 और 48 सेकेंड। और एक छोटे से वक्फे के बाद एक बार फिर आप तमाम सुनने वालों का मैं फिरोज शानदार इस्तकबाल करता हूं, स्वागत करता हूं आपकी अपनी पसंदीदा महफिल भोर सुहानी में। और भोर सुहानी में हम जिंदगी से जुड़ी हुई बातें करते हैं, जिंदगी में आने वाली तमाम मुश्किलात, तमाम परेशानियों से किस तरीके से हम आगे निकले, उससे कैसे बाहर निकले, हम उस पे बातें करते हैं। और ये भोर सुहानी में हम इसी उम्मीद के साथ आगे बढ़ते हैं कि आज का यह दिन हमारे लिए बेहद खूबसूरत, बहुत ही प्यारा होगा। कहते हैं दुनिया की सबसे बड़ी ताकत न दौलत है न शोहरत, बल्कि वो है मोहब्बत। एक सच्चा दिल, एक मीठी मुस्कान और अपनेपन से भरा एक लफ्ज किसी की पूरी दुनिया बदल सकता है। जिंदगी का असली सफर तभी खूबसूरत बनता है जब हम अपने दिल में प्यार, अपनापन और इंसानियत के लिए जगह बनाए रखते हैं। मोहब्बत सिर्फ किसी एक रिश्ते का नाम नहीं, बल्कि हर उस भावना का नाम है जो दिलों को जोड़ती है जब हम सम्मान, अपनापन और मुस्कान बांटते हैं, तो जिंदगी अपने आप खूबसूरत होती चली जाती है। एक छोटी सी मुस्कान, एक सच्ची दुआ और किसी का हाथ थाम लेने का जज्बा, शायद यही इंसान होने की सबसे बड़ी खूबसूरती है। और ऐसा ही प्यार से भरा एक बहुत ही प्यारा नगमा है फिल्म संगम से। आवाजें हैं लता जी और मुकेश की, दोनों की दिलकश गायकी इस गीत को आज भी हर चाहने वाले के दिल में बसी हुई है। तो आइए इसी खूबसूरत नगमे के साथ हम आगे बढ़ते हैं। आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर भोर सुहानी की इस महफिल में।

हम आकाशवाणी के शिवपुरी केंद्र से बोल रहे हैं FM एंड 100.2 MHz पर। आज गुरुवार है, सख सम्मत 1948 के ज्येष्ठ मास के 18वीं तिथि। तदनुसार दिनांक 9 जुलाई सन 2026। इस समय हमारी स्टूडियो की घड़ी में प्रातः के 5:56 हुए हैं। आरंभ होती है हमारी आज की प्रसारण सभा।

0: हम आकाशवाणी के शिवपुरी केंद्र से बोल रहे हैं FM 100.2 MHz पर। इस समय प्रातः के 6 बजने को हैं। हिंदी में समाचार कुछ ही पलों में आप आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से सुनेंगे, कृपया प्रतीक्षा कीजिए।
1: मुकेश कुमार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मेलबर्न में ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज के साथ बातचीत करेंगे। दोनों नेताओं के बीच व्यापार, रक्षा, प्रौद्योगिकी, शिक्षा और जनसंपर्क मजबूत करने पर चर्चा होने की संभावना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भारत ऑस्ट्रेलिया मुख्य कार्यकारी अधिकारी मंच को भी संबोधित करने का कार्यक्रम है। श्री मोदी मेलबर्न में प्रवासी भारतीयों से भी बातचीत करेंगे। श्री मोदी ऑस्ट्रेलिया की 3 दिन की यात्रा पर कल शाम मेलबर्न पहुंचे थे। प्रधानमंत्री ने मेलबर्न में भारतीय समुदाय का गर्मजोशी से स्वागत के लिए आभार व्यक्त करते हुए इसे अविस्मरणीय बताया। हमारे संवाददाता ने बताया है कि स्वागत समारोह में स्थानीय कलाकारों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए।
2: सांस्कृतिक प्रस्तुति की शुरुआत ऑस्ट्रेलिया के पारंपरिक वाद्य यंत्र डिडजेरिडू और भारतीय तबले की अनूठी जुगलबंदी से हुई। कार्यक्रम का समापन ऑस्ट्रेलिया इंडिया ऑर्केस्ट्रा की प्रस्तुति से हुआ। कलाकारों ने AR रहमान की प्रसिद्ध गीत माँ तुझे सलाम की सिम्फनी प्रस्तुति देकर दर्शकों का मन मोह लिया।

0: मेलबर्न से सुहास राम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से आनंद पाठक।
1: ऑस्ट्रेलिया में भारत के उच्चायुक्त नागेश सिंह ने बताया कि एक दशक में श्री मोदी की ऑस्ट्रेलिया की तीसरी यात्रा द्विपक्षीय संबंधों में महत्वपूर्ण प्रगति दर्शाती है। उच्चायुक्त ने कहा कि दोनों देशों के बीच कई क्षेत्रों में सहयोग में वृद्धि भारत ऑस्ट्रेलिया संबंधों की मजबूती और विविधता दर्शाता है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस देश में कृषि अर्थव्यवस्था को नई गति दे सकता है। उन्होंने कहा कि एआई के उपयोग से प्रत्येक किसान सालाना लगभग 5,000 रुपए की बचत कर सकता है। नई दिल्ली में

0: कल 17वें कृषि नेतृत्व सम्मेलन में डॉक्टर सिंह ने कहा कि कृषि स्टार्टअप भारत के कृषि क्षेत्र का भविष्य है। केंद्र सरकार ने किसानों के हितों के लिए तमिलनाडु के किसानों से खोपरा और तोतापुरी आमों की खरीद को मंजूरी दे दी है। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने कहा कि इससे उत्पादकों को बेहतर मूल्य मिलेगा और उन्हें बाजार में उतार चढ़ाव की कीमतों से राहत मिलेगी। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने किसानों के हितों की रक्षा और उनका विश्वास बहाल करने के लिए तंबाकू कंपनियों को न्यूनतम समर्थन मूल्य पर तंबाकू की खरीद प्रक्रिया तत्काल शुरू करने का निर्देश दिया है। अमरावती में अधिकारियों और व्यापारियों के साथ तंबाकू खरीद की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि तंबाकू की कीमत 200 रुपए प्रति किलोग्राम से कम नहीं होनी चाहिए। उन्होंने कंपनियों से नीलामी प्रक्रिया में तेजी लाने का भी निर्देश दिया। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन आज ओडिशा के दौरे पर रहेंगे। इस दौरान उपराष्ट्रपति भुवनेश्वर स्थित ओडिशा कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में खुले समुद्र में मत्स्य पालन के लिए प्राधिकरण पत्र जारी करेंगे। श्री राधाकृष्णन ओडिशा डीप सी फिशिंग मिशन दस्तावेज का भी विमोचन करेंगे। इसके बाद उपराष्ट्रपति भुवनेश्वर स्थित राष्ट्रीय विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्थान खुर्दा के 15वें दीक्षांत समारोह में भाग लेंगे। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF के चालू वर्ष में 7% की वृद्धि दर के अनुमान के साथ भारत विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था के रूप में अपना स्थान बरकरार रखे हुए है। IMF द्वारा कल जारी की गई प्रमुख अर्धवार्षिक रिपोर्ट वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक अपडेट के अनुसार अगले वर्ष भारत के सकल घरेलू उत्पाद GDP में 6.4% की मामूली वृद्धि का अनुमान है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने CSIR UGC NET जून 2026 परीक्षा के लिए प्रवेश पत्र जारी कर दिए हैं। ये परीक्षा 17 और 18 जुलाई को आयोजित की जाएगी। परीक्षार्थी अपना प्रवेश पत्र आधिकारिक वेबसाइट www.csirnet.nta.in पर डाउनलोड कर सकते हैं। अमरीकी सेना ने कहा है कि वो ईरान पर फिर से हवाई हमले कर रही है। ये हमले एक दिन पहले होर्मुज जलडमरू मध्य में ईरान द्वारा जहाजों पर किए गए हमलों के बाद शुरू हुए। मौसम विभाग ने कहा है कि अगले 2-3 दिन में दक्षिण पश्चिम मानसून के उत्तरी अरब सागर के शेष हिस्सों राजस्थान, हरियाणा और पंजाब में पहुंचने की संभावना है। वहीं राजधानी दिल्ली में रात से वर्षा जारी है। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: हम आकाशवाणी के शिवपुरी केंद्र से बोल रहे हैं। FM 100.2 MHz पर इस समय प्रातः के 6:05 हुए हैं। लीजिए सुनिए भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना आरंभ कर रहे हैं इस मात्र वंदना के साथ।

अभी आपने सुनी समूह स्वर में ये खूबसूरत मातृवंदना। कार्यक्रम वंदना इस समय आप आकाशवाणी के शिवपुरी केंद्र से सुन रहे हैं। लीजिए अब सुनिए कार्यक्रम में अगला भजन। स्वर हैं जगजीत सिंह के।

जगजीत सिंह के गाए इस भजन के साथ ही कार्यक्रम वंदना अब यहीं संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के शिवपुरी केंद्र से बोल रहे हैं FM 100.2 मेगा हर्ट्स पर। इस समय प्रातः के 6:30 हुए हैं। लीजिए सुनिए कार्यक्रम चिंतन। चिंतन में आज का विषय है काल करे सो आज कर। आलेख है श्री सुशील कश्यप का और वाचन स्वर हैं आशा गुप्ता के।

हमारी बुद्धि, हमारा मन और हमारी चेतना अपने पूरे संस्कारों के साथ अपना खेल खेलना शुरू कर देते हैं। काल करे सो आज कर, अगर हम इन पांच शब्दों को भी समझ सकें तो शायद जीवन मृत्यु के रहस्य को भी समझने में कठिनाई न हो। इससे आगे के शब्द भी तभी समझ में आएंगे जब हम उन्हें यथार्थ में उतार लेंगे। प्रलय तो पल पल में हो ही रही है, बल्कि लयबद्ध।

0: वक्त गुजरता रहता है। आप सोचें कि ये वक्त अब मेरे जीवन में कभी नहीं आएगा जो गुजर रहा है। ये कल्पना नहीं, सत्य है। सत्य का दर्शन करना और उसकी कल्पना करना भी ईश्वरीय प्रसाद है। हमें पता है कि कल कभी न आया है न आएगा। कल तो स्वयं काल में निहित है। भूत, वर्तमान और भविष्य, बस इतनी सी ही तो कहानी है। जीवन चला, दौड़ा, थका, हारा और फिर सो गया, फिर कहीं कभी किसी और रूप में बना और फिर चला। ये सिलसिला खत्म नहीं होगा। रुकता नहीं है तो केवल समय, और शायद इसीलिए उसे काल कहा जाता है। हमें भविष्य की बात करना अपने को धोखा देने जैसा है। यह जानकर भी कि अगले पल का हमें जरा सा भी ज्ञान नहीं है, हम कैसे भविष्य की योजना बना सकते हैं? फिर विचार आता है कि यदि सभी संसार के लोग ऐसा सोचेंगे तो सृष्टि स्थिर हो जाएगी, दुनिया रुक जाएगी। खुदा की बात कुछ और है गालिब, जन्नत की बात अफवाह सी नजर आती है। अरे जनाब, जब हम वर्तमान को ही नहीं पकड़ सके तो भविष्य की नींव कैसे रखेंगे? ये शुद्ध दार्शनिक चिंतन नहीं है, ये नकारात्मक सोच भी नहीं है, ये बिल्कुल सत्य, सात्विक और परम कल्याणकारी सोच है। अगर पल में प्रलय होगी तो आज जो हम करना चाहते हैं उसको न करने का अफसोस जीवन भर हमारा पीछा करता रहेगा। इंसान आशावादी होता है। जिस नश्वरता को इंसान अपना मान बैठा है वह उसकी भूल है। वह मैं और मैं करता हुआ एक दिन इस मैं से ही दूर हो जाता है। हम आज, अभी और इसी वक्त अपने शरीर, मन, बुद्धि और चेतना से कर सकते हैं। वही शाश्वत है, वही सुख है और वही संतुष्टि है। हम भविष्य के लिए कल्पनाओं के महल बनाएं अवश्य, लेकिन यथार्थ धरातल पर, क्योंकि नींव जितनी सशक्त होगी इमारत उतनी ही मजबूत होगी। सामान 100 बरस का पल की खबर नहीं। ये शब्द हर पल हमारे चारों तरफ चरितार्थ हो रहे हैं, और एक हम है जो क्षणिक वैराग्य में डूबकर फिर अपने गोरख धंधे में लग जाते हैं। अगर कबीर ने भविष्य की सत्ता को नकारा तो उसका कारण बिल्कुल स्पष्ट दिखता है कि वह वर्तमान में जीवन की उस दौलत को लुटाने में लग गए थे जो उनके पास अनमोल थी, और शायद इसी कारण उनकी वह बात हम आज भी याद रख रहे हैं। शरीर के सितार में काल के स्वर को उन्होंने समझ लिया था। जीवन के साज को मृत्यु के गीत को बजाने के लिए तैयार कर लिया था। तब उन्होंने कहा था कि जो करना है अभी इसी वक्त करो, नहीं तो प्रलय तो निश्चित है, क्योंकि पल पल वह सिर्फ और सिर्फ हमारा इंतजार कर रही है। जीवन प्रारंभ होते ही पूरी गति से दौड़ने लगता है मृत्यु को गले लगाने को। क्या ऐसा सच्चा प्रेम कहीं और है? फिर हम क्यों इस प्रेम में बाधा बने? हम क्यों भूत और भविष्य की बात करें? अगर हम बात ही करें तो उस क्षण की करें जब हम सृष्टि और प्रलय के झंझटों से ही दूर हो जाएं, हम अपने मूल अस्तित्व में समा जाएं, हम जीवन मृत्यु के चक्र से परे चले जाएं। अगर हम बात करें तो अपने मूल स्वरूप में लौटने की बात करें।
1: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम चिंतन। चिंतन में आज का विषय था काल करे सो आज कर। आलेख था श्री सुशील कश्यप का। वाचन स्वर थे आभा गुप्ता के। हम आकाशवाणी के शिवपुरी केंद्र से बोल रहे हैं FM 100.2 MHz पर। इस समय प्रातः के 6:35 हुए हैं। लीजिए सुनिए श्री रामचरितमानस का संगीतमय प्रसारण। आज की कड़ी में गायक स्वर हैं वाणी जयराम के।

श्री रामचरित मानस की रचना प्रक्रिया में गोस्वामी तुलसीदास ने मानस रूपी एक अद्भुत रूपक की कल्पना की है। कहते हैं, जिनके पास श्रद्धा का पाथेय नहीं है और ना ही जिन्हें संत जनों का साथ प्राप्त है, जिनके हृदय में भगवत प्रीति नहीं है, ऐसे व्यक्तियों के लिए ये मानस सर्वथा अगम्य अप्राप्य है। यदि कोई कष्ट उठाकर इस सरोवर तक पहुंच भी जाए तो उसे अज्ञान का ज्वर धर दबाता है, जिसके कारण वो इस पवित्र सरोवर में स्नान से वंचित रह जाता है। जो इससे वंचित रहा, जिसने कभी इसके पवित्र जल का पान नहीं किया, वो सरोवर की निंदा के अतिरिक्त और क्या कर सकता है। लेकिन जिन पर प्रभु की अनुकंपा है, उन्हें यह व्याधि नहीं छू पाती। वे दैहिक, दैविक तथा भौतिक तापों में भी नहीं जलते। इस पवित्र सरोवर से राम कथा रूपी कविता निकली है। इस कविता रूपी नदी में प्रभु का यश रूपी जल प्रवाहित होता है। इस कीर्ति नदी का नाम है सरयू, जो सबके लिए सर्वदा मंगलकारिणी है। वेदमत और लोकमत इसके दो किनारे हैं।

अभी आपने सुना श्री रामचरितमानस का संगीतमय प्रसारण। आज की कड़ी में गायक स्वर थे वाणी जयराम के। हम आकाशवाणी के शिवपुरी केंद्र से बोल रहे हैं FM 100.2 MHz पर। इस समय प्रातः के 6:45 हुए हैं। लीजिए सुनिए कृषि सामायिकी। कृषि सामायिकी में सुनिएगा चर्चा आधुनिक तकनीक से मत्स्य पालन। इस विषय पर हमें जानकारी दे रहे हैं पूजा श्रीवास्तव।

0: नमस्कार। क्योंकि क्या है, हमारे मध्य प्रदेश में और शिवपुरी जिले में मछली पालन एक उत्तरोत्तर विकास की ओर अग्रसर है।
1: जी,
0: ग्रामीण क्षेत्रों में मत्स्य पालन जो है वो बेरोजगारी दूर करने का एक बहुत ही सशक्त माध्यम है, जिसे हम कम लागत और कम समय में अच्छी आय देने वाले व्यवसाय के रूप में अपनाया जा रहा है। मछली पालन किसानों के लिए एक आर्थिक लाभ का साधन बना हुआ है। इससे नतीजा ये है कि आज ग्रामीणों में किसानों में मछली पालन में रुचि बढ़ती जा रही है। इसका सबसे प्रमुख कारण ये है कि यहाँ किसानों को एक हेक्टर भूमि में यहाँ वो गेहूँ चना धान उसका उत्पादन करते हैं और उनको 1.25 लाख तक रुपए तक की आमदनी होती है। वहीं वो उतनी ही भूमि में मछली पालन कर 2.5 लाख से लेकर 10 लाख तक आमदनी प्राप्त कर सकते हैं। जैसा कि मैं आपको बताऊँ कि पुराने समय में व्यावसायिक रूप से मत्स्य पालन किया जाता था, जिसमें हम जो कोई खास मछलियां हैं जैसे कि रोहू कतला मृगल उनका पालन किया जाता है। और इसके अलावा इसमें मिश्रित मछली पालन भी किया जाता है, इसमें रोहू कतला मृगल इन सबको एक साथ कल्चर इनका किया जाता है। पुराने समय में चूंकि क्या होता था कि जैसे कि आपको रोहू है कतला है मृगल है उसका आप अलग अलग तरीके से पालन करते थे, और वर्तमान समय में इन सभी प्रजातियां जो है मछली की उनका साथ में आप पालन कर सकते हैं, जिससे कि आपको एक ही जगह पर एक ही पानी का उपयोग करके आप बहुत सारी वैरायटी प्राप्त कर सकते हैं। एक तो क्या है, सबसे बड़ी बात हमारे सामने कि बढ़ती जनसंख्या वृद्धि का जो कारण हो गया है उसको देखते हुए कि मछली पालन एक अच्छे व्यवसाय के रूप में उभर कर हमारे सामने आया है। क्योंकि मछली जो है एक पोषण आहार के रूप में भी इसका उपयोग किया जाता है, और जो किसान है वो उससे अपनी आय को भी दुगना कर सकते हैं। अब हम देखें तो वर्तमान समय में कई नवीनतम और आधुनिक वैज्ञानिक पद्धति है, इनका उपयोग किसान भाई कर अच्छी लागत में मछली का अच्छा उत्पादन कर सकते हैं। इन आधुनिक और नवीन तकनीकी जो है इनका उपयोग किया जाना बहुत आवश्यक है, क्योंकि जब तक आपको किस तरीके से मछली पालन करना है, कैसे करना है, किस समय पे करना है, वो बहुत जरूरी होता है। हमारी जो मछली होती है उसको भी क्या होता है, छोटे से लेकर बड़े तक उसका बहुत ही केयर से उसका पालन पोषण किया जाता है। और इन सब बातों का ध्यान रखकर ही जो किसान भाई है वो अच्छा उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं। आप ऐसा नहीं कर सकते हैं कि हमने ओनली केवल बीज हमारा जो तालाब है हमने उसमें बीज को डाल दिया है और हम बहुत अच्छे उत्पादन की कामना करें उम्मीद करें तो वो नहीं हो पाएगा। हमें उसको एक प्रॉपर तरीके से उसका मेंटेन करना पड़ेगा, उसको हमें क्या डालना है, उसमें खाद कितना देना है, किस अमाउंट में देना है, ये सारी चीजें बहुत ज्यादा मायने रखती है। और मैं आपको कुछ आधुनिक तकनीकी बताना चाहूंगी जो आज के समय में बहुत ज्यादा प्रचलित है और जो किसान भाई है उसको बहुत लगन के साथ कर कम से कम 15 से 20 लाख तक वार्षिक आय प्राप्त कर सकते। एक है हमारे पास में फिश फार्म।
1: जी,
0: फिश फार्म टेक्निक जो रहती है इसमें क्या होता है कि एक ही जगह में एक माने कि आपके पास में 1 हेक्टेयर की जमीन है उसमें ही पूरी इकाई स्थापित कर दी जाती है। पूरी जो मछली की स्टेज होती है उसकी सारी स्टेज को एक ही जगह पर लाकर खड़ा कर दिया जाता है, वहीं पर उनका पूरा पालन पोषण किया जाता है। तो जो फिश फार्म है इसका सही तरीके से प्रबंधन और सही तरीका अपना कर अच्छी लागत किसान भाई प्राप्त कर सकते। और इसके अलावा है हमारे सामने केज कल्चर। केज कल्चर क्या है कि ये केज माने जैसे होता है पिंजरा, तो ये एक आधुनिक तकनीकी है जो मतलब पिंजरे में मछली को पाला जाना। तो केज पालन जो है पूरे प्रदेश में हमारे में फैल गया है। इसमें हम मत्स्य उत्पादन का ये बहुत अच्छा कह सकते हैं संसाधन है। हमारे देश में क्या है कि चूंकि जलाशय जो होते हैं वहाँ पर स्वतः बीज संचयन की मतलब टेक्निक बहुत कम है हमारे यहाँ, तो हम केज कल्चर के माध्यम से हम बहुत अच्छा बीज उत्पादन कर सकते हैं, मछली का उत्पादन कर सकते हैं। सभी ओर से बंद पिंजरे में जैसी एक संरचना होती है, जिस प्रकार से पिंजरा होता है उसको चारों ओर से बांध दिया जाता है, वैसे ही इसको जाल के द्वारा बांध दिया जाता है। ये इसके लिए क्या होता है कि ये वो किसान भाई इसका उपयोग कर सकते हैं जिनके पास में थोड़ा सा बड़ा जलाशय हो। हाँ, जिसमें कम से कम आपके पास में कम से कम 6 फीट मतलब मीटर तक पानी रहता हो वहाँ पर इसका उपयोग कर सकते हैं। तो ये वो तालाबों के बीच में लगाया जाता है कीच। इसको लगाकर वहाँ पर नेट से इसको फिट कर दिया जाता है। जो मत्स्य पालन है इससे हमें बहुत लाभ है। एक तो इससे अधिक घनत्व से मत्स्य जो होती हैं उनका पालन किया जा सकता है।

अभी आप सुन रहे थे कृषि सामयिकी। कृषि सामयिकी में आपने सुना आधुनिक तकनीक से मत्स्य पालन, इस विषय पर चर्चा। जानकारी दे रही थी पूजा श्रीवास्तव। हम आकाशवाणी के शिवपुरी केंद्र से बोल रही हैं, FM एंड 100.2 मेगा हर्ट्स पर। इस समय प्रातः के 6:50 हुए हैं। लीजिए सुनिए कार्यक्रम विवरण। अब से कुछ ही देर बाद प्रातः 7:05 पर सुनेगा राष्ट्रीय एकता विषय पर लघु वार्ता हिंदोस्ता हमारा। प्रातः 7:45 पर सुनेगा दैनिक सूचना पर कार्यक्रम नमस्कार शिवपुरी। 8:30 पर सुनेगा भोपाल केंद्र से अनुप्रसारित प्रायोजित कार्यक्रम वतन का राग। प्रातः 9:00 सुनेगा लोक संगीत का कार्यक्रम लोकरंग। लोकरंग कार्यक्रम में आज के हमारे कलाकार होंगे आभा खरे और दामोदर शर्मा। कार्यक्रम आपकी फरमाइश सुनिएगा प्रातः 9:30 पर। भोपाल केंद्र से अनुप्रसारित कार्यक्रम जिले की चिट्ठी सुनिएगा प्रातः 10:00। 10:05 पर सुनिएगा सुगम संगीत। सुगम संगीत के कार्यक्रम में आज की हमारी कलाकार होंगी साधना गोरे। एक बार फिर प्रातः 10:30 पर सुनिएगा कार्यक्रम आपकी फरमाइश। प्रातः 11:00 सुनिएगा आकाशवाणी मध्य प्रदेश के कार्यक्रम।

संध्या 7:21 पर सुनिएगा ग्रामीण भाइयों का कार्यक्रम चौपाल। चौपाल कार्यक्रम में सुनिएगा चर्चा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन और बरसात के मौसम में मच्छरों से करें बचाव, इन दोनों विषयों पर चर्चा। साथ ही संध्या 7:30 पर सुनिएगा कार्यक्रम किसान वाणी। किसान वाणी कार्यक्रम में सुनिएगा चर्चा किसान क्रेडिट कार्ड और प्राकृतिक खेती खुशहाल किसान, इन दोनों विषयों पर चर्चा। साथ ही सुनिएगा भेंटवार्ता। भेंटवार्ता में आज का विषय रहेगा पशुओं में कृत्रिम गर्भाधान क्यों और कैसे। वार्ताकार होंगे श्री बालकृष्ण शर्मा और इनसे बातचीत करेंगे डॉक्टर समर्थ अग्रवाल। साथ ही सुनेगा लोकगीत और होगी मौसम की जानकारी। श्रोता, इसके साथ ही कार्यक्रम विवरण अब यहीं संपन्न होता है। हमारे अगले कार्यक्रम की प्रतीक्षा।

इयम् आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचिका ऋचा झा। अथ वार्ताः। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी त्रिराष्ट्र यात्रायाः द्वितीये चरणे ऑस्ट्रेलिया देशस्य मेलबोर्न नगरं सम्प्राप्तवान्। ह्यः तस्य आगमन समये ऑस्ट्रेलिया देशस्य नगरावासन मंत्री क्लेयर ओ नील इत्येषा प्रधानमन्त्रिणः मोदिनः स्नेहपूर्वकं स्वागतम् अकरोत्। प्रधानमन्त्री अवदत् यत् इयं यात्रा भारत ऑस्ट्रेलिया समग्र सामरिक सहभागितायाः ऊर्जां

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुनीश शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी ऑस्ट्रेलिया यात्रा के दौरान मेलबर्न में भारत ऑस्ट्रेलिया मुख्य कार्यकारी आधिकारिक मंच को संबोधित किया। अपने संबोधन में प्रधानमंत्री ने कहा कि व्यापारिक साझेदारियों को हमें ऊंचाइयों पर ले जाना है।
1: भारत आपके फंड्स को सेफ, स्टेबल और सस्टेनेबल ग्रोथ का अवसर देता है। हमारा प्रयास रहेगा कि आपका ट्रस्ट भी बढ़े और आपका कैपिटल भी बढ़े। एजुकेशन

0: एजुकेशन और स्किल्स में दोनों देशों के बीच नेचुरल सिनर्जी है। डिकिन यूनिवर्सिटी और वुलोंगोंग यूनिवर्सिटी ने किप सिटी में कैंपस खोलकर एक नया अध्याय शुरू किया। यह भारत के प्रति उनके कॉन्फिडेंस का प्रतिबिंब है। हमारा साझा लक्ष्य होना चाहिए कि हम स्टूडेंट मोबिलिटी को टैलेंट पार्टनरशिप में बदले।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज से बातचीत करेंगे। दोनों नेताओं के बीच व्यापार, रक्षा, महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकी, शिक्षा और जनसंपर्क को मजबूत करने पर चर्चा होने की संभावना है। प्रधानमंत्री ने मेलबर्न में भारतीय समुदाय को गर्मजोशी से स्वागत के लिए उनका आभार व्यक्त करते हुए इसे अविस्मरणीय बताया। ऑस्ट्रेलिया में भारत के उच्चायुक्त नागेश सिंह ने कहा कि एक दशक में श्री मोदी की ऑस्ट्रेलिया की तीसरी यात्रा द्विपक्षीय संबंधों में हुई महत्वपूर्ण प्रगति को दर्शाती है। भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ने वाली प्रमुख अर्थव्यवस्था बना हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF ने वर्ष 2026 के दौरान इसकी 7% की वृद्धि दर का अनुमान लगाया है। IMF ने यह भी अनुमान जताया है कि अगले वर्ष में भारत की GDP वृद्धि दर कुछ घटकर 6.4% रह सकती है। केंद्र सरकार ने किसानों के हितों की रक्षा के लिए तमिलनाडु के किसानों से खोपरा और तोतापुरी आमों की खरीद को मंजूरी दे दी है। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने कहा है कि इससे उत्पादकों को बेहतर मूल्य मिलेगा और उन्हें बाजार में उतार चढ़ाव की कीमतों से राहत भी मिलेगी। उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य में शिक्षकों और गैर शिक्षण कर्मचारियों के लिए नकदी रहित स्वास्थ्य योजना शुरू की है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वाराणसी से मुख्यमंत्री शिक्षक नकदी रहित चिकित्सा योजना का शुभारंभ किया, जिसके तहत 15 लाख से अधिक शिक्षण कर्मचारियों को 5 लाख रुपए तक का चिकित्सा उपचार मिलेगा। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस देश में कृषि अर्थव्यवस्था को नई गति दे सकता है। नई दिल्ली में 17वें कृषि नेतृत्व सम्मेलन में डॉक्टर सिंह ने कहा कि कृषि स्टार्टअप भारत के कृषि क्षेत्र का भविष्य हैं। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन आज ओडिशा के दौरे पर रहेंगे। इस दौरान उपराष्ट्रपति भुवनेश्वर स्थित ओडिशा कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में खुले समुद्र में मत्स्य पालन के लिए प्राधिकरण पत्र जारी करेंगे। श्री राधाकृष्णन ओडिशा डीप सी फिशिंग मिशन दस्तावेज का भी विमोचन करेंगे और इसके बाद उपराष्ट्रपति भुवनेश्वर स्थित राष्ट्रीय विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्थान खुर्दा के 15वें दीक्षांत समारोह में शामिल होंगे। अमरीका ने ईरान पर फिर हवाई हमले किए हैं। ये हमले राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा ईरान के फिर से किए गए हमलों को दोनों देशों के बीच युद्ध विराम की समाप्ति के बाद किए गए हैं। केरलम के 5 उत्तरी जिलों में कहीं कहीं तेज बारिश की संभावना का येलो अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने उत्तराखंड के देहरादून, हरिद्वार, उधम सिंह नगर, नैनीताल और चंपावत जिलों में अगले 36 घंटों के दौरान तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। वहीं राजधानी दिल्ली में रात से ही लगातार बारिश हो रही है। भारत और इंग्लैंड के बीच 5 मैचों की T20 श्रृंखला का 4th मुकाबला आज ब्रिस्टल के काउंटी ग्राउंड में खेला जाएगा। इससे पहले 3rd मैच में भारत को इंग्लैंड से 125 रन से हार का सामना करना पड़ा था। और इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: हम आकाशवाणी के शिवपुरी केंद्र से बोल रहे हैं, FM 100.2 मेगा हर्ट्ज पर। इस समय प्रातः के 7:05 हुए हैं। लीजिए सुनिए राष्ट्रीय एकता विषय पर लघु वार्ता, हिंदोस्ता हमारा। अपनी एकता का हम आओ गौरव गान करें, अपनी एकता का हम आओ गुणगान करें। एकता की शस्त्र से दुश्मनों का नाश करें, अपनी एकता का हम आओ गौरव गान करें।

0: श्रोताओं, हमारा प्यारा भारत देश जो कई रंगों को अपने में समाहित किए हुए है, हम अपनी नज़र जिधर भी डालेंगे हमें भारत देश अलग अलग रंग बिखेरता हुआ और भी सुंदर लगता है, क्योंकि अनेक धर्म जाति संप्रदाय के होते हुए भी यहाँ अनेकता में एकता के दर्शन होते हैं और अनेकता में एकता हमारे देश की सर्व प्रमुख विशेषता रही है। प्राचीन काल से ही भारतीय धर्म और संस्कृति ने समग्र राष्ट्र को एक सूत्र में बांधने का अनुपम प्रयास किया है। समस्त धार्मिक संप्रदायों का बाह्य रूप अलग अलग होते हुए भी उनकी आत्मा भारतीयता से परिपूर्ण है और यही कारण है देश में राष्ट्रीय एकता का स्वरूप आज भी कायम है। भाषाई एकता की बात हम करें तो श्रोताओं, यूं तो पूरे भारत देश में विभिन्न भाषाएं बोली जाती हैं, लेकिन भाषाई भेदभाव होते हुए भी प्रत्येक भाषा में बहने वाली चिंतन धारा एक होने से भारत की राष्ट्रीय एकता कायम है। भारत देश एक लोकतांत्रिक देश है। यहाँ प्रत्येक धर्म संप्रदाय क्षेत्र एवं प्रदेश के व्यक्ति को समान रूप से अधिकार है अपने स्वयं के निर्णय लेने का तथा संसद में भी अपनी सदस्यता प्राप्त करने का, जिससे प्रत्येक व्यक्ति शासन व्यवस्था से भी जुड़ सकता है और इससे भी राष्ट्रीय एकता की भावना विकसित होती है और राष्ट्र की एकता बनी रहती है। श्रोताओं, राष्ट्र के प्रति हमारे देश के प्रति हमारा प्रेम ही हमें देश से और आपस में जोड़े रखता है और यही वो देश प्रेम है जो हमारे वीर सपूतों में कूट कूट कर भरा हुआ था। उन्होंने ना सिर्फ हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई बनकर देश की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दी, बल्कि एक भारतीय एक हिंदुस्तानी बनकर एकजुट होकर अपने देश की आन बान शान को बनाए रखा और उसे दुश्मनों के आगे झुकने नहीं दिया। ये सबसे सटीक उदाहरण है हमारे देश की एकता का और ये हमारे देश की एकता का ही प्रतीक है। भले ही कई बुराइयों ने, अनैतिक शक्तियों ने हमारे देश को और हमारे देश की एकता को खंडित करने का दुस्साहस किया हो, परंतु हमारा देश निरंतर ऊंचाइयों और बुलंदियों को छूता गया है और आज विकासशील देशों की गिनती में हमारा देश गिना जाता है। श्रोताओं, किसी देश की उन्नति उसका विकास निर्भर करता है उस देश की एकता पर। यदि देश में एकता और भाईचारे का वातावरण बना रहता है तो देश प्रगति करता है और खुशहाल बनता है। श्रोताओं, देश के प्रति हमारा कर्तव्य है कि एकता को मजबूती दें, हम अपने देश को और भी खुशहाल और भी सुंदर और सशक्त बना सकते हैं और यही सपना देखा था प्यारे हिंदुस्तान के लिए हमारे देश के वीर शहीदों ने। श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे राष्ट्रीय एकता विषय पर लघु वार्ता हिंदुस्तान हमारा। हम आकाशवाणी के शिवपुरी केंद्र से बोल रहे हैं। इस समय प्रातः के 7:10 होने को हैं। प्रादेशिक समाचार कुछ ही पलों में आप आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से सुनेंगे, कृपया प्रतीक्षा कीजिए।
1: ये आकाशवाणी का भोपाल केंद्र है। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार।
2: आकाशवाणी का साकार हुआ सपना, जन जन सब गाएं मिल मधुर

0: समाचारों के साथ मैं अभिषेक कटियार। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मेलबर्न में ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज से करेंगे बातचीत। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा, 3 दशक से जारी सरदार सरोवर विवाद का सर्वसम्मति से हुआ समाधान। आज भिंड में अत्यधिक भारी बारिश का रेड अलर्ट, प्रदेश के 9 जिलों में अति भारी और 11 जिलों में भारी बारिश की संभावना। और भारत और इंग्लैंड के बीच 5 T20 क्रिकेट मैचों की श्रृंखला का 4वां मुकाबला आज ब्रिस्टल में होगा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मेलबर्न में ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज से बातचीत करेंगे। दोनों नेताओं के बीच व्यापार, रक्षा, महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकी, शिक्षा और जनसंपर्क में सहयोग मजबूत करने पर चर्चा होने की उम्मीद है। इस बातचीत से दोनों देशों के बीच व्यापक रणनीतिक साझेदारी को नई गति मिलने की संभावना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भारत ऑस्ट्रेलिया सीईओ फोरम में भाग लेने और दोनों देशों के उद्योग जगत के प्रमुखों को संबोधित करने का भी कार्यक्रम है। वे मेलबर्न में प्रवासी भारतीयों से बातचीत भी करेंगे। श्री मोदी ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री के निमंत्रण पर 3 दिन की यात्रा पर कल शाम मेलबर्न पहुंचे। प्रधानमंत्री ने मेलबर्न में भारतीय समुदाय के गर्मजोशी से स्वागत के लिए उनके प्रति आभार व्यक्त किया और इसे अविस्मरणीय बताया। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF के चालू वित्त वर्ष में 7% की वृद्धि दर के अनुमान के साथ भारत विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था के रूप में अपना स्थान बरकरार रखे हुए है। रिपोर्ट के अनुसार भारत के वृद्धि अनुमान वैश्विक अनुमानों से 2 गुने से भी अधिक हैं। रिपोर्ट में इस वर्ष वैश्विक अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर 3% बताई गई है। इसमें अगले वर्ष 3.4% की वृद्धि की उम्मीद है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा है कि पीथमपुर औद्योगिक क्षेत्र मध्य प्रदेश की औद्योगिक शक्ति का महत्वपूर्ण केंद्र है। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव कल धार जिले के पीथमपुर औद्योगिक क्षेत्र में किसान इरीगेशन एवं इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड की 4थी नवीन विनिर्माण इकाई का लोकार्पण कर रहे थे। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने कहा कि किसान इरिगेशन एवं इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड जैसी कंपनियां प्रदेश में निवेश, रोजगार और तकनीकी प्रगति को नई दिशा दे रही हैं। मुख्यमंत्री ने कंपनी प्रबंधन को शुभकामनाएं देते हुए संबोधित किया।
1: 10,000 करोड़ से ज्यादा अलग किसान कल्याण वर्ष में किसान की इंडस्ट्री हो या रेलवे, अब बहुत तेज गति से माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में अलग प्रकार की दुनिया में पहुंच रही है। ऐसे में हमारे उद्यमी तागोदी ब्रदर्स ने अपनी रेल के विभिन्न प्रकार की एक्सेसरीज बनाने का और रेलवे कोच बनाने तक का भी जो संकल्प लिया, हमारी मल्टीनेशनल कंपनियों के माध्यम से 272 करोड़ के अलग अलग प्रकार के इंडस्ट्री डिपार्टमेंट में कंस्ट्रक्शन में काम आने वाली सभी प्रकार के वाहन साधनों की एक बड़ी इंडस्ट्री का भी हमने लोकार्पण किया। बीते 10 दिन के अंदर लगभग 10,000 करोड़ से ज्यादा अलग अलग कार के कामों का भूमिपूजन लोकार्पण किया है।
0: मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा है कि जल सुरक्षा को सुदृढ़ करने और सहकारी संघवाद को बढ़ावा देने की दिशा में महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल हुई है। उन्होंने कल कहा कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता और केंद्रीय जल शक्ति मंत्री CR पाटिल की उपस्थिति में हुई बैठक में गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान और मध्य प्रदेश के बीच सरदार सरोवर परियोजना से जुड़े लगभग 3 दशक से जारी पुनर्वास एवं पुनर्बसाहट व्यय विवाद का सर्वसम्मति से समाधान हुआ है। इस निर्णय से मध्य प्रदेश पर पड़ने वाले वित्तीय भार में उल्लेखनीय कमी आएगी। अब समाचारों में वक्त है एक ब्रेक का।
2: ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और Facebook के साथ ही X प्लेटफॉर्म पर AIR News भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर या newsonair ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं।
0: समाचारों में पुनः आपका स्वागत है। मध्य प्रदेश पुलिस द्वारा 24 जून से संचालित 15 दिवसीय प्रदेशव्यापी सेफ क्लिक साइबर सुरक्षा 2.0 जन जागरूकता अभियान का कल समापन हुआ। भोपाल में आयोजित समापन समारोह में मुख्य अतिथि पुलिस महानिदेशक कैलाश मकवाना ने कहा कि 3 पूर्व प्रमुख चुनौतियों, साइबर अपराध, नशे के विरुद्ध जन जागरूकता और सड़क सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता के संकल्प के अनुरूप मध्य प्रदेश पुलिस द्वारा सेफ क्लिक तथा नशे से दूरी है जरूरी व्यापक जन जागरूकता अभियान सफलतापूर्वक संचालित किए गए हैं।
3: वर्ष 2025 में हमने सेफ क्लिक अभियान साइबर जागरूकता का चलाया था और उसके काफ़ी अच्छे परिणाम देखे गए थे। उसके पश्चात प्रदेश में डिजिटल अरेस्ट में बहुत हद तक रोक लग गई थी, तो चूंकि साइबर फ्रॉडस्टर्स लगातार अपनी मॉडस ऑपरेंडी, अपनी कार्यप्रणाली चेंज करते हैं, तो उनसे बचाव के लिए पब्लिक को

0: जागरूक करना महसूस किया जा रहा था। चेपक्लिक 2.0 का 24 जून को माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसका शुभारंभ किया था और 15 दिवसीय ये अभियान सारे जिलों में बहुत ही लगन से मेहनत से चलाया गया। इसमें कई विभाग, कई संगठन, कई एनजीओस को हमने जोड़ा और करोड़ों की रीच इसकी रही।
1: 15 दिवसीय इस अभियान का समापन समारोह खंडवा के पुलिस कंट्रोल रूम में भी आयोजित किया गया। वहीं मंडला, आगरमालवा, झाबुआ समेत अन्य जिलों में भी अभियान का समापन समारोह आयोजित किया गया। प्रदेश मंत्रिपरिषद ने मध्य प्रदेश स्टेट डाटा सेंटर के विस्तार और अद्यतन डाटा सेंटर 3.0 परियोजना के लिए 800 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में कल हुई कैबिनेट बैठक में फैसला लिया गया। कैबिनेट की मंजूरी के अनुसार मध्य प्रदेश स्टेट डाटा का आधुनिकीकरण, आईटी एवं डिजास्टर रिकवरी क्षमता विस्तार तथा संबंधित नॉन आईटी अवसंरचना विकास किया जाएगा। प्रदेश में राष्ट्रीय ई गवर्नेंस परियोजना के अंतर्गत भारत सरकार, सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय एवं मध्य प्रदेश शासन की संयुक्त भागीदारी से भोपाल में स्टेट डाटा सेंटर की स्थापना की गई है। प्रदेश स्टेट डाटा सेंटर 12 दिसंबर 2012 से सफलतापूर्वक संचालित किया जा रहा है। मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल द्वारा उप निरीक्षक एवं सूबेदार भर्ती परीक्षा 2025 का अंतिम परिणाम घोषित कर दिया गया है। मध्य प्रदेश पुलिस को 8 वर्षों के लंबे अंतराल के बाद सूबेदार एवं उप निरीक्षक संवर्ग के 436 पुलिस अधिकारी मिलने जा रहे हैं। मंडल द्वारा 7 जुलाई को अंतिम परीक्षा परिणाम अपनी वेबसाइट पर घोषित किया गया, जिसमें 87% पदों का परिणाम जारी किया गया है, जिसमें कुल 436 अभ्यर्थियों का चयन हुआ है। इनमें 313 पुरुष एवं 123 महिला अभ्यर्थी शामिल हैं। प्रदेश के उच्च शिक्षा विभाग द्वारा सभी शासकीय, अशासकीय एवं निजी महाविद्यालयों में रिक्त सीटों पर अधिक से अधिक विद्यार्थियों को प्रवेश उपलब्ध कराने के लिए 8 से 15 जुलाई तक प्रवेश मेले का आयोजन किया जा रहा है। इस दौरान महाविद्यालयों में विद्यार्थियों को एक ही स्थान पर पंजीयन, च्वाइस फिलिंग, संशोधन, दस्तावेज सत्यापन, सीट आवंटन संबंधी मार्गदर्शन तथा शुल्क भुगतान की सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। अब रुख करते हैं क्रिकेट का। भारत और इंग्लैंड के बीच 5 टी20 क्रिकेट मैचों की श्रृंखला का चौथा मुकाबला आज ब्रिस्टल में खेला जाएगा। भारतीय समय के अनुसार ये मैच रात 10 बजे शुरू होगा। इंग्लैंड श्रृंखला में फिलहाल 2-0 से आगे है और श्रृंखला में बने रहने के लिए भारत को ये मैच जीतना ही होगा। अब रुख करते हैं मौसम का। प्रदेश के कई हिस्सों में लगातार बारिश से जनजीवन प्रभावित है। मौसम विभाग के अनुसार कल पन्ना, छतरपुर और खंडवा सहित कई जिलों में कुछ स्थानों पर बाढ़ जैसे हालात बन गए। मौसम केंद्र के अनुसार प्रदेश में अगले 3 दिनों तक बारिश का दौर जारी रह सकता है। विभाग ने आज भिंड जिले में अत्यधिक भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। वहीं राजगढ़, रतलाम, आगरमालवा, शिवपुरी, ग्वालियर, दतिया, मुरैना, टीकमगढ़ और निवाड़ी में अति भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट है। इसी के साथ विदिशा, उज्जैन, शाजापुर और मंदसौर सहित 11 जिलों में भारी बारिश का येलो अलर्ट है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और सहायिकाओं के रिक्त पदों की पूर्ति के लिए जिला स्तरीय समिति की बैठकें जिला पंचायत सभागार में 13 से 15 जुलाई और 21 से 24 जुलाई तक होंगी। गुना की तहसील कुमराज के ग्राम बिरियाई में जिला प्रशासन द्वारा ग्राम चौपाल और सामाजिक संवाद सह रोजगार उन्मुख सम्मेलन का आयोजन किया गया। मानसून की सक्रियता के चलते जबलपुर के रानी अवंतीबाई सागर परियोजना बरगी जलाशय में बीते 5 दिनों में बांध का जलस्तर 3 मीटर बढ़ गया है। 31 जुलाई से पहले बांध के गेट खोले जा सकते हैं। शहडोल संभाग कमिश्नर ने ग्राम पंचायत मोहतरा के पोषक ग्राम चुनपथरी स्थित एकीकृत शासकीय माध्यमिक विद्यालय का औचक निरीक्षण किया। मध्य प्रदेश मानवाधिकार आयोग अध्यक्ष डॉ. अवधेश प्रताप सिंह ने इंदौर रेजिडेंसी कोठी पर आयोग मित्रों के साथ मानवाधिकार संरक्षण सहित महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा की। मंडला जिले में 9 जुलाई को प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान का आयोजन किया जा रहा है। प्रदेश के ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने सांची जनपद के ग्राम सनखेड़ी में 2.90 करोड़ रुपए की लागत से बने क्षमता के नए उपकेंद्र का लोकार्पण किया। सांची विधायक डॉ. प्रभुराम चौधरी भी मौजूद रहे और बैतूल कलेक्टर डॉ. सौरभ संजय सोनवड़े ने प्रभात पट्टन तहसील के ऐतिहासिक शेरगढ़ किले और वर्धा डैम पहुंचकर सुरक्षा एवं पर्यटन व्यवस्थाओं का जायजा लिया। इस बुलेटिन में इतना ही। अगला बुलेटिन सुनिए दोपहर 2:10 पर।

अभी आपने सुना फिल्म बसंत बहार का गाना लता मंगेशकर के स्वर में, गीत लिखा था शैलेंद्र ने और संगीतबद्ध किया था शंकर जयकिशन ने। कार्यक्रम फिल्म संगीत इस समय आप आकाशवाणी के शिवपुरी केंद्र से सुन रहे हैं। लीजिए अब सुनिए लता मंगेशकर के ही स्वर में आम्रपाली फिल्म का ये गीत। गीत एक बार फिर शैलेंद्र का है और संगीतबद्ध भी शंकर जयकिशन ने किया है।

0: कार्यक्रम फिल्म संगीत इस समय आप आकाशवाणी के शिवपुरी केंद्र से सुन रहे हैं। कार्यक्रम में अगला गीत हम आपको सुनवाएंगे, लेकिन पहले सुनिए कुछ जरूरी संदेश।
1: कम समय में ज्यादा मुनाफा, बस एक क्लिक में, कमाल है।
2: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए, RBI कहता है
3: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

अभी आपने सुना मर्यादा फिल्म का ये खूबसूरत गीत मोहम्मद रफ़ी के स्वर में। गीतकार थे आनंद बख्शी और संगीतकार कल्याण जी आनंद जी। कार्यक्रम फिल्म संगीत इस समय आप आकाशवाणी के शिवपुरी केंद्र से सुन रही हैं। लीजिए अब सुनिए फिल्म नया दौर का ये गीत। स्वर है मोहम्मद रफ़ी और आसफ़ भोसले के। गीत है साहिर लुधियानवी का और इसे संगीतबद्ध किया है ओपी नैयर साहब ने।

अभी आपने सुना मोहम्मद रफ़ी और आशा भोसले के स्वर में फिल्म नया दौर का ये गीत। गीत लिखा था साहिर लुधियानवी ने और संगीतबद्ध किया था ओपी नैयर ने। कार्यक्रम फिल्म संगीत इस समय आप आकाशवाणी के शुभपुरी केंद्र से सुन रहे हैं। इसमें हम आपको सुनवा रहे हैं पुरानी चुनिंदा फिल्मों के कुछ खूबसूरत गीत। लीजिए अब सुनिए जानवर फिल्म का ये गीत मोहम्मद रफ़ी के स्वर में। गीतकार हैं हसरत जयपुरी और संगीतकार शंकर जयकिशन।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम फिल्म संगीत। हम आकाशवाणी के शिवपुरी केंद्र से बोल रहे हैं FM एंड 100.2 MHz पर। इस समय प्रातः के 7:45 हुए हैं। लीजिए सुनिए कार्यक्रम नमस्कार शिव।

कार्यक्रम नमस्कार शिवपुरी सुनने वाले सभी श्रोताओं का हम अपने कार्यक्रम में स्वागत करते हैं। श्रोताओं नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आपकी रेडियो मित्र मंजू। श्रोताओं, कार्यक्रम नमस्कार शिवपुरी में हम आपको जानकारी

देते हैं शिवपुरी शहर की और साथ ही देश की कुछ नई खबरों की। तो आइए शुरुआत करते हैं कुछ खबरों से। अनुसूचित जाति विभाग ने सत्र 2026-27 के लिए उत्कृष्ट व महाविद्यालयीन छात्रावासों में विशेष कोचिंग हेतु विशेषज्ञों, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान और जीव विज्ञान से संबंधित आवेदन मांगे हैं। इच्छुक शिक्षक, प्राध्यापक व कोचिंग संचालक 5 से 20 जुलाई तक निकटतम छात्रावास व जनजातीय कार्य विभाग में आवेदन कर सकते हैं। श्रोताओं, अब बढ़ते हैं एक और खबर की ओर। बाल विकास परियोजनाओं में आंगनवाड़ी कार्यकर्ता व सहायिका के अस्थायी मानदेय आधारित रिक्त पदों पर ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। महिलाएं एमपी ऑनलाइन चयन पोर्टल के माध्यम से 13 जुलाई तक आवेदन कर सकती हैं।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत प्रदेश को वर्ष 2027 तक पूर्ण साक्षर बनाने के लक्ष्य के साथ चल रहे भारत साक्षरता कार्यक्रम को गति देने के लिए बदरवास विकास खंड में तैयारियां तेज कर दी गई हैं। राज्य शिक्षा केंद्र के निर्देश पर जिला शिक्षा केंद्र के DPC दफेदार सिंह सिकरवार, जिला प्रभारी हरी शर्मा के मार्गदर्शन में शहरी ग्रामीण क्षेत्रों में 15 वर्ष से अधिक उम्र के ऐसे लोगों की पहचान की जाएगी जो अब तक औपचारिक शिक्षा से वंचित हैं। कार्यक्रम का उद्देश्य केवल पढ़ना लिखना सिखाना नहीं है, इसका लक्ष्य वित्तीय साक्षरता, डिजिटल साक्षरता, कानून जागरूकता, आपदा प्रबंधन, दैनिक जीवन से जुड़े आवश्यक कौशल विकसित करना है। इसके माध्यम से वयस्कों को आत्मनिर्भर जागरूक नागरिक बनाने का प्रयास किया जाएगा। निर्देशों के अनुसार प्रत्येक ग्राम और वार्ड के शासकीय विद्यालय में एक कक्ष को सामाजिक चेतना केंद्र बनाया जाएगा। संबंधित विद्यालय के प्राध्यापक व प्राचार्य इसके नोडल अधिकारी होंगे। केंद्रों पर उल्लास अक्षर पोथियां उपलब्ध कराई गई हैं। इन्हीं के माध्यम से शिक्षण कार्य संचालित होगा।

श्रोताओं, अब बढ़ते हैं एक और खबर की ओर। कक्षा पाँचवीं और आठवीं की बोर्ड परीक्षा के पूरक परिणाम में भी शिवपुरी जिले के विद्यार्थियों ने बेहतर प्रदर्शन किया है। मुख्य परीक्षा की तुलना में पूरक परीक्षा के बाद कक्षा पाँच का परिणाम 2.22% तथा कक्षा आठ का परिणाम 3.54% बढ़ गया। इसके साथ ही कक्षा पाँच का कुल परिणाम 99.20% तथा कक्षा आठ का 97.35% हो गया है। शिक्षा विभाग का मानना है कि प्राथमिक और माध्यमिक स्तर पर बेहतर शैक्षणिक आधार बनने से आने वाले वर्षों में कक्षा 10 और 12 के बोर्ड परीक्षा परिणाम में बेहतर होने की उम्मीद है। दरअसल कक्षा 5 व 8वीं की परीक्षाएं कोई पैटर्न पर ना होने के बाद इनका महत्व लगातार बढ़ा है। मुख्य परीक्षा के साथ साथ पूरक परीक्षा के परिणाम का भी विद्यार्थियों और अभिभावकों को इंतजार रहता है। इस वर्ष घोषित परिणाम में शिवपुरी ने प्रदेश स्तर पर भी अच्छा प्रदर्शन किया है। मार्च 2026 में आयोजित मुख्य परीक्षा में जिले के 32,006 विद्यार्थियों में से 30,287 परीक्षा में शामिल हुए। इनमें से 28,411 विद्यार्थी सफल रहे। कुल परीक्षा परिणाम 93.80% रहा। परीक्षा में 9,272 विद्यार्थियों को ए एवं ए प्लस ग्रेड प्राप्त हुई है।

श्रोताओ बढ़ते हैं एक और खबर की ओर। ऑपरेशन सेफ क्लिक 20 के तहत शिवपुरी जिले में बुधवार को व्यापक साइबर जागरूकता अभियान चलाया गया। जिले के अलग अलग थाना क्षेत्रों में स्कूलों, सार्वजनिक स्थलों, बाजारों, गांवों में कार्यक्रम हुए। लोगों को ऑनलाइन ठगी के नए तरीकों के प्रति सतर्क रहने की जानकारी दी गई। पुलिस अधिकारियों ने साइबर अपराध से बचाव के उपाय बताए। संदिग्ध कॉल, लिंक, ऑनलाइन लेनदेन से सतर्क रहने की अपील की गई। पुलिस अधीक्षक यांगचैन डोलकर भूटिया के निर्देश पर सभी थाना प्रभारियों को अपने अपने क्षेत्र में साइबर सुरक्षा कार्यक्रम कराने के निर्देश दिए गए। कार्यक्रमों में डिजिटल अरेस्ट, फ्रॉड, OTP और UPI धोखाधड़ी, QR कोड स्कैम, फेक लोन ऐप, फर्जी नौकरी के झांसे, सोशल मीडिया फ्रॉड, फर्जी बैंक कस्टमर केयर के नाम पर ठगी की जानकारी दी गई। पैम्पलेट बांटे गए, नुक्कड़ संवाद हुआ, जनसंपर्क किया गया, सोशल मीडिया से भी संदेश दिए गए। लोगों से कहा गया कि अनजान व्यक्ति के साथ बैंक की जानकारी, OTP, पासवर्ड साझा न करें। साइबर ठगी की घटना पर तुरंत साइबर हेल्पलाइन 1930 या नज़दीकी थाने में सूचना देने की अपील भी की गई, जिससे कि समय रहते हुए कार्रवाई की जा सके।

श्रोताओं, वर्षा ऋतु अपने साथ हरियाली और प्राकृतिक सौंदर्य लेकर आती है, लेकिन इसी के साथ ही बीमारियों, दुर्घटनाओं एवं प्राकृतिक आपदाओं का खतरा भी बढ़ जाता है। ऐसे में स्वयं और बच्चों के प्रति विशेष सतर्कता बरतना जरूरी है। यह बात बाल संरक्षण अधिकारी राघवेंद्र शर्मा ने अभिभावकों एवं किशोरों से अपील करते हुए कही। उन्होंने कहा, बरसात के दौरान नदी, तालाब, कुएं, नाले एवं अन्य जल स्रोतों का जल स्तर तेजी से बढ़ जाता है। ऐसे में फिसलने, बहने अथवा डूबने जैसी दुर्घटनाओं की आशंका बढ़ जाती है। इसीलिए अभिभावक बच्चों पर विशेष निगरानी रखें तथा उन्हें जल स्रोतों के आसपास जाने से रोकें। वर्षा काल में जल स्रोतों के आसपास होने वाली दुर्घटनाओं को देखते हुए मध्य प्रदेश बाल अधिकार संरक्षण आयोग द्वारा भी जन जागरूकता के लिए एडवाइजरी जारी की है। शिवपुरी जिले में हर साल बारिश के दिनों में बड़े बड़े हादसे घटित होते हैं। ऐसे में इन नसीहतों को यदि अभिभावक और बच्चों द्वारा मान लिया जाए तो इससे एक बड़ा लाभ यह होगा कि ऐसी दुर्घटनाएँ हमेशा के लिए रुक जाएंगी, और इसका दूसरा सबसे बड़ा फायदा यह होगा कि बारिश के दिनों में जिन पर्यटक स्थलों पर प्रशासन आने जाने की रोक लगा देते हैं वो सभी पर्यटन स्थल खुल जाएंगे।

श्रोताओं, आप बढ़ते हैं एक और खबर की ओर। शासकीय महाविद्यालय करेरा में नवप्रवेशित छात्र छात्राओं के लिए मेंटल हेल्थ एवं वेलनेस प्रोग्राम हुआ। मुख्य अतिथि डॉक्टर दयाशंकर साहू WHO प्रोजेक्ट एरिया कंसल्टेंट रहे। उन्होंने विद्यार्थियों को मानसिक स्वास्थ्य का महत्व बताया, तनाव प्रबंधन की जानकारी भी दी, सकारात्मक जीवन शैली पर बात की। विद्यार्थियों को उमंग टेलीमानस सेवाओं की उपयोगिता बताई। मौके पर डॉक्टर देवेंद्र कोहली, डॉक्टर देवेंद्र कदम और रोहित यादव रहे।

श्रोताओ बढ़ते हैं एक और खबर की ओर। MPPSC असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा 2024 में वंदना यादव ने बड़ी सफलता हासिल की है। 4 जुलाई को आई परीक्षा परिणाम में उन्होंने हिंदी विषय में पूरे मध्य प्रदेश में 34वीं रैंक पाई। इससे उन्होंने अपने जिले का नाम रोशन किया है।

वंदना कमलापुरी गांव की रहने वाली हैं। वे एक साधारण किसान परिवार से आती हैं। उनके पिता श्रोमण यादव एक किसान हैं। घर में संसाधन सीमित रहते हुए भी वंदना ने हिम्मत नहीं हारी और अपनी कड़ी मेहनत और पक्के इरादे से यह मुकाम हासिल किया है। वंदना की इस कामयाबी के लिए उनके पूरे परिवार और पूरे गांव में खुशी का माहौल है। लोक निर्माण विभाग ने नागरिकों से सड़क संबंधी समस्याओं के निवारण के लिए लोकपथ मोबाइल ऐप का उपयोग करने की अपील की है। इस ऐप पर गड्ढे, क्षतिग्रस्त सड़क, पुल पुलिया की फोटो, जीपीएस लोकेशन अपलोड कर शिकायत दर्ज की जा सकती है। शिकायत सीधे संबंधित अधिकारी तक पहुंचेगी। लोक प्रशिक्षण शाला में नियमित लिपिकीय वर्गीय कर्मचारियों के लिए 1 अगस्त से 31 अक्टूबर तक लेखा प्रशिक्षण आयोजित किया जाएगा। इच्छुक कर्मचारी 15 जुलाई तक आवेदन कर सकते हैं। पहले आओ पहले पाओ के आधार पर प्रवेश दिया जाएगा। शासकीय कर्मचारियों के लिए प्रशिक्षण निःशुल्क रहेगा।

0: कम समय में ज्यादा मुनाफा, बस एक क्लिक में, कमाल है।
1: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए, RBI कहता है
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: श्रोता, उसके साथ ही कार्यक्रम नमस्कार शिवपुरी से हमें दीजिए इजाजत।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे दैनिक सूचना पर कार्यक्रम नमस्कार शिवपुरी। हम आकाशवाणी के शिवपुरी केंद्र से बोल रहे हैं FM एंड 100.2 मेगा हर्ट्स पर। इस समय प्रातः के 8 बजने को हैं। समाचार प्रभात कुछ पलों में आप आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से सुनेंगे, कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: की एक एक बूंद को हमें बचाना है, तो मेरा खास आग्रह है वर्षा का बूंद बूंद पानी हम मिलकर के बचाएं।
1: जल है तो हम है, आइए घरों ऑफिसों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग तकनीक अपनाएं, रिचार्ज पिट और शाफ्ट बनवाएं, अनुपयोगी बोरवेलों को ठीक करें, जलाशयों से गाद निकालें, अधिक से अधिक पेड़ लगाएं। इस बारिश आइए जुड़े कैच द रेन अभियान से।
2: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुनीश शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मेलबर्न में भारत ऑस्ट्रेलिया सीईओ फोरम को संबोधित किया। प्रधानमंत्री ने कहा, अनिश्चितता, सप्लाई चेन में रुकावट और ऊर्जा संकट वाले दौर में भारत और ऑस्ट्रेलिया का भरोसेमंद साझेदार के तौर पर आगे बढ़ना स्वाभाविक और जरूरी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मेलबर्न में ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज के साथ वार्ता करेंगे। केंद्र सरकार ने तमिलनाडु के किसानों के हित में खोपरा और तोतापुरी आमों की खरीद को मंजूरी दी। उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य में शिक्षकों और गैर शिक्षण कर्मचारियों के लिए नकदी रहित स्वास्थ्य

0: अर्थ योजना शुरू की। भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था बना रहेगा। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने 2026 में 7% की विकास दर रहने का अनुमान जताया। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा युद्ध विराम खत्म होने की घोषणा के बाद अमेरिका ने ईरान पर नए हमले किए और भारत के अर्णव पापरकर ने विंबलडन जूनियर्स 2026 में सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में पहुंचकर इतिहास रचा। पिछले 36 वर्षों में सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में पहुंचने वाले भारत के पहले खिलाड़ी बने। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज ने आज सुबह मेलबर्न में भारत ऑस्ट्रेलिया सीईओ फोरम में भाग लिया। दोनों नेताओं ने भारत और ऑस्ट्रेलिया के उद्योग जगत के प्रमुखों से भी मुलाकात की। इस अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि विश्व इस समय अनिश्चितता, आपूर्ति श्रृंखला में व्यवधान और ऊर्जा संकट के दौर से गुजर रहा है। ऐसे समय में भारत और ऑस्ट्रेलिया के लिए स्वाभाविक और विश्वसनीय साझेदार के रूप में आगे बढ़ना स्वाभाविक है और आवश्यक भी। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि पिछले कुछ वर्षों में दोनों देशों ने अपनी शक्तियों का लाभ उठाते हुए भविष्य की साझेदारी के लिए एक मजबूत ढांचा तैयार किया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि 2022 में रिकॉर्ड समय में संपन्न हुए आर्थिक सहयोग और व्यापार समझौते से दोनों देशों के आर्थिक संबंधों में मजबूती आई है।
1: साल 2022 में रिकॉर्ड समय में किए गए एक्टा समझौते से हमारी आर्थिक साझेदारी और सशक्त हुई है। इसके लागू होने के बाद भारत से ऑस्ट्रेलिया को एक्सपोर्ट डबल हुआ है और दोनों देशों के बिजनेसेस को नए मार्केट एक्सेस इसका लाभ मिला है। अब हम व्यापक सीका समझौता करने की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। इन प्रयासों से दोनों देशों की सरकारों ने एक नया रनवे तैयार किया है। अब इस पर इन्वेस्टमेंट और इनोवेशन का विमान उड़ान भरने के लिए तैयार है।
0: प्रधानमंत्री मोदी ने विनिर्माण, स्वच्छ ऊर्जा, महत्वपूर्ण खनिज, खनन, अवसंरचना, शहरी विकास, विमानन, रसद, उन्नत प्रौद्योगिकी, एआई, खाद्य प्रसंस्करण और डिजिटल अर्थव्यवस्था क्षेत्रों में भारत में उपलब्ध विशाल अवसरों का उल्लेख किया। श्री मोदी ने ऑस्ट्रेलिया के निवेशकों को भारत में दीर्घकालिक निवेश के अवसरों का लाभ उठाने के लिए आमंत्रित किया।
1: भारत आपके फंड्स को सेफ, स्टेबल और सस्टेनेबल ग्रोथ का अवसर देता है। हमारा प्रयास रहेगा कि आपका ट्रस्ट भी बढ़े और आपका कैपिटल भी बढ़े। एजुकेशन और स्किल्स दोनों देशों के बीच नेचुरल सिनर्जी है। डिकिन यूनिवर्सिटी और वुलोंगोंग यूनिवर्सिटी ने किप सिटी में कैंपस खोलकर एक नया अध्याय शुरू किया। यह भारत के प्रति उनके कॉन्फिडेंस का प्रतिबिंब है। हमारा साझा लक्ष्य होना चाहिए कि हम स्टूडेंट मोबिलिटी को टैलेंट पार्टनरशिप में बदले।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मेलबर्न में ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज से बातचीत करेंगे। दोनों नेताओं के बीच व्यापार, रक्षा, महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकी, शिक्षा और जनसंपर्क मजबूत करने पर चर्चा होने की संभावना है। श्री मोदी मेलबर्न में प्रवासी भारतीयों से भी बातचीत करेंगे। श्री मोदी ऑस्ट्रेलिया की 3 दिन की यात्रा पर कल शाम मेलबर्न पहुंचे थे। ऑस्ट्रेलिया में भारत के उच्चायुक्त नागेश सिंह ने कहा है कि एक दशक में श्री मोदी की ऑस्ट्रेलिया की तीसरी यात्रा द्विपक्षीय संबंधों में हुई महत्वपूर्ण प्रगति को दर्शाती है।
2: तीसरा एनुअल लीडर्स समिट भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में इस वर्ष और पिछले सालों में जो आपने देखा कि जो एक पूरे विश्व में एक हल्का सा तनाव है, चाहे युद्ध का है, जो डिस्प्यूट्स हैं, जियोपॉलिटिकल चैलेंजेस हैं, उस संदर्भ में इंडिया ऑस्ट्रेलिया रिलेशनशिप एक स्टेबिलिटी प्रोवाइड करती है हमारी रिलेशनशिप को उस क्षेत्र में जिसको हम लोग इंडो पैसिफिक बोलते हैं।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।
3: एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। केंद्र सरकार ने किसानों के हितों की रक्षा के लिए तमिलनाडु के किसानों से खोपरा और तोतापुरी आमों की खरीद को मंजूरी दे दी है। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने कहा है कि इससे उत्पादकों को बेहतर मूल्य मिलेगा और उन्हें बाजार में उतार चढ़ाव की कीमतों से राहत मिलेगी। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने कहा है कि स्वीकृत खरीद का कुल MSP मूल्य 1000 करोड़ रुपए से अधिक है। इसके अलावा बाजार हस्तक्षेप योजना MIS के तहत इस वर्ष तमिलनाडु में 96,000 मीट्रिक टन से अधिक तोतापुरी आमों की खरीद को भी मंजूरी मिल गई है। यह खरीद MIS के तहत की जाएगी, जिसमें बाजार हस्तक्षेप मूल्य 1000 रुपए प्रति क्विंटल से अधिक निर्धारित किया गया है। अनुपम मिश्र के साथ सकलेन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने किसानों के हितों की रक्षा और उनका विश्वास बहाल करने के लिए तंबाकू कंपनियों को न्यूनतम समर्थन मूल्य पर तंबाकू की खरीद प्रक्रिया तत्काल शुरू करने का निर्देश दिया है। अमरावती स्थित सचिवालय में अधिकारियों और व्यापारियों के साथ तंबाकू खरीद की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि तंबाकू की कीमत 200 रुपए प्रति किलोग्राम से कम नहीं होनी चाहिए। उन्होंने कंपनियों से नीलामी प्रक्रिया में तेजी लाने का निर्देश दिया। उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य में शिक्षकों और गैर शिक्षण कर्मचारियों के लिए नकदी रहित स्वास्थ्य योजना शुरू की है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वाराणसी से मुख्यमंत्री शिक्षक नकदी रहित चिकित्सा योजना का शुभारंभ किया, जिसके तहत 15 लाख से अधिक शिक्षण कर्मचारियों को 5 लाख रुपए तक का चिकित्सा उपचार मिलेगा। और ब्यौरे के साथ हैं हमारे संवाददाता।
3: इस योजना के तहत राज्य भर के शिक्षकों और उनके परिवारों को 5 लाख रुपए तक की कैशलेस चिकित्सा सुविधा मिलेगी। प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा से जुड़े लगभग 15 लाख शिक्षक और गैर शिक्षण कर्मचारी इस योजना से लाभान्वित होंगे। नियमित शिक्षकों के अलावा इस योजना से शिक्षा मित्रों, प्रशिक्षकों, रसोइयों और कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों के पात्र कर्मचारियों को भी लाभ मिलेगा। शिक्षकों और उनके परिवारों को सामाजिक सुरक्षा कवर प्रदान करने के लिए भारतीय स्टेट बैंक साथ एक समझौता ज्ञापन पर भी हस्ताक्षर किए गए हैं। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ने शिक्षकों के स्वास्थ्य और सामाजिक सुरक्षा की रक्षा करने के अपने वायदे को पूरा किया है। उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा विभाग के कर्मचारियों के लिए ये व्यापक सामाजिक सुरक्षा और बीमा कार्यक्रम देश में अपनी तरह की पहली पहल है। इस योजना के तहत 10,000 रुपए से ज्यादा मासिक वेतन पाने वाले संविदा कर्मचारियों को 30 लाख रुपए से 80 लाख रुपए तक का व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा कवर मिलेगा। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
1: भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ने वाली प्रमुख अर्थव्यवस्था बना हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF ने वर्ष 2026 के दौरान इसकी 7% की वृद्धि दर का अनुमान लगाया है। IMF ने यह भी अनुमान जताया है कि अगले वर्ष में भारत की GDP वृद्धि दर कुछ घटकर 6.4% रह सकती है। अमरीका ने ईरान पर फिर हवाई हमले किए हैं। अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर होर्मुज जलडमरू मध्य में वाणिज्यिक जहाजों पर हमला करने का आरोप लगाते हुए कहा है कि अमरीकी हमले जवाबी कार्रवाई में किए गए। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर ईरान ने फिर हमले किए तो अमरीका इसका और कड़ा जवाब देगा। मौसम विभाग ने अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, बिहार, पूर्वी राजस्थान, मध्य प्रदेश और पश्चिम बंगाल तथा हिमालय के निचले इलाकों, सिक्किम और पश्चिम उत्तर प्रदेश में दिन में तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। उत्तराखंड में भी आज इसी तरह के मौसम की संभावना है। इधर राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों में रात से ही बारिश हो रही है। दिन में भी शहर में ऐसा ही मौसम रहने का अनुमान है। मौसम विभाग ने उत्तराखंड के देहरादून, हरिद्वार, उधम सिंह नगर, नैनीताल और चंपावत जिलों में अगले 36 घंटों के दौरान तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया है। हमारी संवाददाता ने बताया कि राज्य में कल रात से ही मूसलाधार बारिश हो रही है।

यह आकाशवाणी का भोपाल केंद्र है। अब आप सुनेंगे स्वराज संस्थान संचालनालय भोपाल का प्रायोजित कार्यक्रम वतन का राग।

0: वतन का राग सुनने वाले सभी श्रोताओं को हमारा नमस्कार। श्रोताओं, हमारा सवाल था कि मंगेई गोमांगो का जन्म कब हुआ था। इसका सही जवाब है 16 जून। और सही जवाब भेजने वाले हमारे इस बार के दो भाग्यशाली श्रोता हैं, दिल्ली से सुब्बलक्ष्मी और लखनऊ से डॉक्टर प्रियदर्शनी चक्रवर्ती। आप दोनों को बहुत बहुत बधाई। हम आपको भेज रहे हैं आजादी के दुर्लभ तरानों पर केंद्रित जन गर्जे श्रृंखला से एक ऑडियो एल्बम और आजादी के रणबांकुरों का एक छाया चित्र।
1: भारतीय सेना के शूर वीरों को समर्पित शौर्य स्मारक भोपाल।
2: शौर्य स्मारक, शहीदों की राष्ट्र सेवा से प्रेरित जीवन यात्रा का रूपायन।
1: जीवन के विभिन्न पड़ावों पर अदम्य साहस से जूझते मातृभूमि की रक्षा के लिए अपने प्राणों का बलिदान करते शूर वीरों की शौर्य गाथा का चित्रांकन।
2: हर शाम 6 बजे से भारतीय जल, थल और वायु सेना पर लघु फिल्मों का प्रदर्शन और भी बहुत कुछ।
1: शौर्य स्मारक भोपाल, समय दोपहर 12 बजे से शाम 7 बजे तक। आप सब परिवार सादर आमंत्रित हैं। ध्यान रहे, बुधवार अवकाश।

भारत की स्वतंत्रता का अमृत वृक्ष केवल उन फूलों से नहीं महका जिनकी सुगंध दूर दूर तक पहुंची, बल्कि उसकी जड़ों में अनगिनत अनाम तपस्वियों का रक्त भी समर्पित है जिससे ये फला फूला। ऐसे ही एक महान क्रांतिकारी थे सीतांशु दत्त रॉय। युगांतर दल के इस निर्भीक सेनानी ने स्वाधीनता को केवल स्वप्न नहीं अपना जीवन व्रत बनाया और इस पुण्य यात्रा में उन्होंने अनगिनत कष्ट सहे, लेकिन उनके मन में जलती क्रांति की ज्वाला कभी मंद नहीं पड़ी। सीतांशु दत्त रॉय का जन्म 1 जुलाई 1907 को बंगाल प्रेसिडेंसी के मैमनसिंह जिले के ढाकी नामक गांव में हुआ था, जो अब बांग्लादेश में पड़ता है। उनके पिता का नाम शिवदत्त रॉय था। ये 20वीं शताब्दी का उषाकाल था। भारत पर अंग्रेजी साम्राज्य का कठोर शासन था और बंगाल की धरती क्रांति की ज्वाला से धधक रही थी। बंग भंग आंदोलन ने लोगों को झकझोर कर जगा दिया था। स्वदेशी आंदोलन जन जन की चेतना बन चुका था। ऐसे वातावरण में सीतांशु दत्त रॉय बड़े हो रहे थे। उनके पिता स्वयं राष्ट्रवादी विचारों से ओतप्रोत व्यक्ति थे, इसलिए सीतांशु दत्त रॉय के भीतर भी स्वाभाविक रूप से राष्ट्र चेतना जागृत होने लगी। ढाका, मैमनसिंह और बारिसाल जैसे जिले गुप्त क्रांति गतिविधियों के सबसे बड़े गढ़ बन चुके थे। क्रांतिकारी दल युगांतर की गतिविधियां लगातार जारी थीं। इसी बीच सीतांशु दत्त रॉय का संपर्क युगांतर के क्रांतिकारियों से हुआ और वो युगांतर के उद्देश्य से बहुत अधिक प्रभावित हुए और इस संगठन के सक्रिय सदस्य के रूप में कार्य करने लगे। उनके भीतर केवल एक संकल्प था, संकल्प भारत की आजादी का।

युगांतर सशस्त्र क्रांति की मशाल लिए आगे बढ़ रहा था। इस दल का उद्देश्य केवल शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन नहीं था, बल्कि ये अखाड़ों के माध्यम से युवाओं को शारीरिक रूप से सशक्त बनाता था। इतना ही नहीं, यहाँ युवाओं को हथियारों का प्रशिक्षण भी दिया जाता था। ये संगठन क्रूर ब्रिटिश अधिकारियों को अपना निशाना बनाता था। उन दिनों अंग्रेजी शासन की खुफिया पुलिस संगठन की हर गतिविधि पर कड़ी नजर रखती थी। क्रांतिकारियों की एक छोटी सी भूल भी उनके आजीवन कारावास का कारण बन सकती थी। लेकिन भारत की स्वाधीनता का स्वप्न देखने वाले क्रांतिकारियों के मन में किसी भी बात का भय नहीं था। सीतांशु दत्त रॉय ऐसे चुनौतीपूर्ण वातावरण में भी निर्भीक होकर क्रांतिकारी गतिविधियों में संलग्न रहा करते थे। वो मैमन सिंह, नेत्रकोना और किशोरगंज के क्षेत्रों में संगठन का विस्तार करने में जुट गए। वो कभी एक स्थान से दूसरे स्थान तक गुप्त संदेश पहुंचाते, कभी क्रांतिकारियों के लिए सुरक्षित ठिकाने की व्यवस्था करते। पुलिस की निगरानी के बीच क्रांतिकारियों तक हथियार पहुंचाना एक कठिन और चुनौतीपूर्ण कार्य था। सीतांशु दत्त रॉय इस काम को भी अत्यंत चतुराई और सतर्कता से अंजाम देते। अत्याचारी अंग्रेज अधिकारियों की वध की योजनाओं में वो इन अधिकारियों की गतिविधियों पर नजर रखकर आवश्यक सूचना दल तक पहुंचाया करते थे। इतना ही नहीं, वो युवाओं से बातें करते, उन्हें युगांतर का उद्देश्य बताकर भारतीय स्वाधीनता संग्राम में शामिल होने के लिए प्रेरित करते, उन्हें दल से जोड़ते। ये सारे काम तलवार की धार पर चलने जैसे थे, लेकिन ये सभी जोखिमपूर्ण दायित्व वो पूरी निष्ठा से निभाने में जुटे रहते। इसी बीच सन 1930 में मास्टर सूर्यसेन के नेतृत्व में चटगांव शस्त्रागार पर हमला हुआ। इस घटना ने अंग्रेजी शासन की नींद उड़ाकर रख दी। ब्रिटिश सरकार ने बंगाल के क्रांतिकारियों पर अभूतपूर्व दमन चक्र चलाया। अंग्रेजों का गुप्तचर विभाग अब और अधिक चौकस और सक्रिय हो गया था। युगांतर के अनेक क्रांतिकारियों पर कड़ी नजर रखी जा रही थी, जिनमें सीतांशु दत्त रॉय का नाम भी शामिल था। बिना मुकदमे के गिरफ्तारी, अनिश्चितकालीन नजरबंदी और यातनाएं अंग्रेजी शासन की नीति बन चुकी थी। पुलिस ने बंगाल क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट यानी BCLA के अंतर्गत सीतांशु दत्त रॉय को गिरफ्तार कर लिया, लेकिन उनके हौसले अब भी बुलंद थे।

बंगाल क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट एक ऐसा काला कानून था जिसके अंतर्गत किसी भी व्यक्ति को बिना न्यायिक प्रक्रिया के लंबे समय तक बंदी बनाया जा सकता था। इसी कानून के तहत सीतांशु दत्त रॉय को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी के बाद उन्हें हिजली नजरबंदी शिविर भेज दिया गया। हिजली केवल एक सामान्य सी जेल नहीं थी, बल्कि यहाँ अंग्रेजों की क्रूरता की पराकाष्ठा थी। हिजली नजरबंदी शिविर की स्थापना सन 1930 में इसी उद्देश्य से की गई थी कि स्वाधीनता संग्राम सेनानियों और क्रांतिकारियों को बिना मुकदमे के यहाँ कैद किया जा सके तथा उन्हें प्रताड़ित किया जा सके। ये वही जेल थी जहाँ निहत थे राजनीतिक बंदियों पर ब्रिटिश प्रहरियों ने गोली चला दी थी और संतोष कुमार मित्रा और तारकेश्वर सेन गुप्ता जैसे क्रांतिकारी शहीद हो गए थे। इसी जेल में अब सीतांशु दत्त रॉय कैद थे। उन्होंने यहाँ असीम शारीरिक यातनाएं सही और अपने साथी क्रांतिकारियों के साहस को निकट से देखा। यहाँ दी गई हर यातना उनके संकल्प को और दृढ़ करती चली गई। इसी दौरान ब्रिटिश सरकार ने उन पर एक और गंभीर आरोप लगाया। मैमन सिंह के अत्याचारी जिला मजिस्ट्रेट ग्राहम पर क्रांतिकारियों ने जानलेवा हमला किया था। इस हमले में सीतांशु दत्त रॉय को प्रमुख षड्यंत्रकारी बताया गया। आरोप लगाया गया कि उन्होंने इस घटना के लिए हथियार उपलब्ध कराए, योजना बनाई तथा हमले के सूत्रधारों के बीच महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन पर मुकदमा चला। नेत्रकोना की विशेष औपनिवेशिक अदालत में उन्हें प्रस्तुत किया गया। अंग्रेज अधिकारी चाहते थे कि सीतांशु दत्त रॉय अपने साथियों के नाम उजागर कर दें। उनसे बार बार पूछताछ हुई, प्रलोभन दिए गए, दबाव भी बनाया गया, लेकिन वो अडिग रहे। उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया। अंततः अदालत ने उन्हें 6 वर्ष कठोर कारावास की सजा सुनाई और उनका मनोबल तोड़ने के लिए अंडमान की सेलुलर जेल भेज दिया। यहाँ की एकांत कोठरी, अल्प भोजन और अमानवीय श्रम के बीच भी उनका संकल्प टूटा नहीं। जब अंडमान की जेल में 24 जुलाई सन 1937 को ऐतिहासिक भूख हड़ताल शुरू हुई तो सीतांशु दत्त रॉय भी इसमें शामिल हुए। कैदियों की मांग थी कि उन्हें राजनीतिक बंदी का दर्जा मिले, अमानवीय व्यवहार बंद हो और उन्हें भारत की मुख्य भूमि में स्थानांतरित कर दिया जाए। इस भूख हड़ताल ने ब्रिटिश हुकूमत को हिलाकर रख दिया। गांधी जी, गुरुदेव रवींद्रनाथ टैगोर तथा अन्य नेताओं ने हस्तक्षेप किया। सरकार झुकी तथा कैदियों की वापसी की प्रक्रिया शुरू हुई। सीतांशु दत्त रॉय को भी भारत वापस लाया गया और 1938 में वो रिहा हुए। रिहा होने के बाद भी वो शांत नहीं बैठे। भारत छोड़ो आंदोलन में युगांतर और अनुशीलन समिति के क्रांतिकारी भूमिगत रहकर इसमें शामिल हुए। सीतांशु दत्त रॉय को सुरक्षा हेतु खतरा मानते हुए पुनः नजरबंद कर दिया गया था। अंततः देश आजाद हुआ और बंटवारे में उनका गृह जिला मैमनसिंह भारत से अलग हुआ और वो पश्चिम बंगाल आ गए। देश की आजादी के बाद किसी भी प्रकार के राजनीतिक लाभ या पद की लालसा से दूर उन्होंने एक गुमनाम और सादगीपूर्ण जीवन व्यतीत किया। नमन ऐसे महान देशभक्त को।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम वतन का राग, मार्गदर्शन शिवशेखर शुक्ल, संकल्पना संतोष कुमार वर्मा और संकल्पना संयोजन अदिति गौड़, प्रस्तुति स्वराज संस्थान संचालनालय संस्कृति विभाग मध्य प्रदेश की। और दोस्तों, अब बारी है आज के सवाल की। हमारा आज का सवाल है कि कार्यक्रम किस व्यक्तित्व पर केंद्रित था। सवाल एक बार फिर सुन ले, कार्यक्रम किस व्यक्तित्व पर केंद्रित था। आपके जवाब 10 दिनों के भीतर हमारे पास पहुंच जाने चाहिए। जवाब भेजने के लिए हमारा ईमेल एड्रेस है watankaraag@gmail.com और radioazadhind@gmail.com। सही जवाब के साथ आप अपना नाम, अपने शहर का नाम और अपना ईमेल एड्रेस अवश्य लिखें।

हम आकाशवाणी के शिवपुरी केंद्र से बोल रहे हैं एफएम 100.2 मेगाहर्ट्ज़ पर। इस समय प्रातः के 9 बजे हैं। लीजिए सुनिए लोक संगीत का कार्यक्रम लोकरंग। लोकरंग कार्यक्रम में सुनिए आवा खरे के गाए कुछ खूबसूरत लोकगीत। लीजिए सुनिए कार्यक्रम का पहला लोकगीत।

अभी आपने सुना आवा खरे के स्वर में ये खूबसूरत देवी गीत। कार्यक्रम लोकरंग इस समय आप आकाशवाणी के शिवपुरी केंद्र से सुन रहे हैं। लीजिए अब सुनिए अगला बन्नी गीत आवा खरे के ही स्वर में।

अभी आपने सुना आवाघरे के स्वर में ये खूबसूरत बन्नी गीत। लोक संगीत का कार्यक्रम लोक रंग इस समय आप आकाशवाणी के शिवपुरी केंद्र से सुन रहे हैं। लीजिए अब सुनिए आवाघरे के ही स्वर में ये खूबसूरत दादर।

कार्यक्रम लोकरंग इस समय आप आकाशवाणी के शिवपुरी केंद्र से सुन रहे हैं। इसमें हम आपको सुनवा रहे हैं विभिन्न कलाकारों के गाए कुछ खूबसूरत लोकगीत। लीजिए अब सुनिए दामोदर शर्मा के स्वर में ये खूबसूरत लोकगीत।

अभी आपने सुना दामोदर शर्मा के स्वर में ये खूबसूरत लोकगीत। कार्यक्रम लोकरंग इस समय आप आकाशवाणी के शिवपुरी केंद्र से सुन रहे हैं। इसमें हम आपको सुनवा रहे हैं विभिन्न कलाकारों के गाए कुछ खूबसूरत लोकगीत। लीजिए सुनिए दामोदर शर्मा के ही स्वर में एक बार फिर खूबसूरत।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम लोक रंग। हम आकाशवाणी के शिवपुरी केंद्र से बोल रहे हैं FM 100.2 मेगा हर्ट्ज पर। इस समय प्रातः के 9:30 हुए हैं। लीजिए सुनिए कार्यक्रम आपकी फरमाइश। कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं का हम अपने कार्यक्रम में स्वागत करते हैं और सुनवाते हैं आप सभी की फरमाइश पर कुछ खूबसूरत गीत। कार्यक्रम का पहला पत्र हमने लिया है लक्ष्मीबाई अनाज मंडी रोड वंदना नगर इंदौर से राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न खर्चे ललिता नारायण खर्चे गणेश कार्तिक खर्चे संजना परी खर्चे और मालती स्वाति प्रयाग चौधरी का। ये सभी सुनना चाहते हैं फिल्म प्रेम रोग का ये गीत सुरेश वाडकर के स्वर में। गीत है संतोष आनंद का और संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का। तो आइए सुनते हैं इन सभी की फरमाइश पर खूबसूरत गीत।

0: कार्यक्रम आपकी फरमाइश इस समय आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के शिवपुरी केंद्र से। कार्यक्रम में अगला गीत हम आपको सुनवाएंगे, लेकिन पहले सुनिए कुछ जरूरी संदेश।
1: जन का रखे ध्यान टीबी मुक्त भारत अभियान, जन का रखे ध्यान टीबी मुक्त भारत अभियान।
2: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हाल।
3: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
2: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
0: कार्यक्रम आपकी फरमाइश इस समय आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के शिवपुरी केंद्र से। कार्यक्रम में अगला पत्र हमने लिया है इन सभी श्रोताओं की पसंद पर। ये सभी लिख रहे हैं महाराणा प्रताप कॉलोनी शिवपुरी से शुभम, सुभी, उमंग, पूजा, साक्षी, गोलू, विपिन, भयू और यशु। ये सभी सुनना चाहते हैं लता मंगेशकर के स्वर में हिना फिल्म का ये गीत। गीतकार हैं रविंद्र जैन और संगीतकार रविंद्र जैन ही।

श्रोताओं, कार्यक्रम आपकी फरमाइश इस समय आप आकाशवाणी के शिवपुरी केंद्र से सुन रहे हैं। कार्यक्रम का अगला पत्र हमने लिया है इन सभी श्रोताओं की फरमाइश पर। ये सभी लिख रही हैं, सुभाषपुरा इंदरगढ़ से रमेश धाकड़, राजा बाबू विक्रम धाकड़, नीरज मेडिकल वाले वीर सिंह धाकड़ और इनका समस्त परिवार। ये सभी सुनना चाहते हैं फिल्म रोटी कपड़ा और मकान का लिया ये गीत लता मंगेशकर के स्वर में। गीतकार हैं वर्मा मलिक और संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल। तो आइए सुनते हैं इन सभी की पसंद पर ये खूबसूरत गीत।

अभी आपने सुना फिल्म राम तेरी गंगा मैली से लिया ये खूबसूरत गीत। स्वर थे लता मंगेशकर और सुरेश वाडकर के, गीत था रविंद्र जैन का और संगीत रविंद्र जैन का। इस गीत को फरमाइश करने वाले हमारे श्रोता थे छत्तीसगढ़ वाटा पारा दतरंगी से द्वारका प्रसाद वर्मा, किशोर कुमार वर्मा, दीपक कुमार वर्मा, जावेंद्र कुमार वर्मा। साथ ही इस गीत को पसंद करने वाले एक और श्रोता थे महादेव घाट अमलेश्वर से डोमन ठाकुर, सुमन ठाकुर, मिथिलेश, तारिणी, सूरज, सुजला, ज्योति, रेयांश ठाकुर। कार्यक्रम आपकी फरमाइश इस समय आप आकाशवाणी के शुभपुरी केंद्र

से सुन रही हैं। लीजिए कार्यक्रम के आखिर में सुनिए गांधी चौक रोपड़ पंजाब से हरदेव मीका वलमिंदर विरक, मीका विरक और जैनेन्द्र विरक का ये फरमाइश किया हुआ पत्र हमने लिया है। ये सभी सुनना चाहते हैं फिल्म लव स्टोरी का ये गीत लता मंगेशकर और अमित कुमार के स्वर में। गीत लिखा है आनंद बख्शी ने और धुन तैयार की है राहुल देव वर्मन ने।

लता मंगेशकर और अमित कुमार के गाए इस गीत के साथ ही कार्यक्रम आपकी फरमाइश अब यहीं संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के शिवपुरी केंद्र से बोल रहे हैं FM 100.2 MHz पर। इस समय प्रातः के 10 बजने को हैं। अगला कार्यक्रम जिले की चिट्ठी थोड़ी देर में भोपाल केंद्र से अनुप्रसारित किया जाएगा। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: शाम 6 बजे आकाशवाणी भोपाल पर।
1: यह आकाशवाणी का भोपाल केंद्र है। अब आप सुनेंगे दतिया जिले की चिट्ठी।
2: आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है दतिया जिले की चिट्ठी। आलेख मनोज गोस्वामी का है, वाचन स्वर है अभिषेक कटियार का।

दतिया जिला इन दिनों राजनीतिक गतिविधियों का केंद्र बना हुआ है। विधानसभा उपचुनाव की तैयारियां पूरे जिले में जोर शोर से चल रही हैं। राजनीतिक दल गांव-गांव और वार्ड वार्ड तक पहुंचकर मतदाताओं को अपने पक्ष में करने का प्रयास कर रहे हैं। वहीं जिला प्रशासन स्वतंत्र निष्पक्ष और शांतिपूर्ण मतदान सुनिश्चित करने के लिए सुरक्षा व्यवस्था, फ्लैग मार्च, मतदान केंद्रों की तैयारियों और निर्वाचन संबंधी व्यवस्थाओं को अंतिम रूप देने में जुटा हुआ है। आपको बता दें कि विधानसभा सीट से कांग्रेस के विधायक राजेंद्र भारती को दिल्ली की विशेष एमपी एमएलए कोर्ट ने 20 साल पुराने बैंक एफडी घोटाले के मामले में 3 साल की सजा सुनाई थी, जिससे उनकी सदस्यता रद्द होने से उपचुनाव कराना जरूरी हुआ। उपचुनाव की अधिसूचना 6 जुलाई को जारी की गई। नामांकन पत्र दाखिल करने की अंतिम तिथि 13 जुलाई है। नामांकन जांच 14 जुलाई तक और नाम वापसी 16 जुलाई तक की जा सकती है। मतदान 30 जुलाई को होगा और 3 अगस्त को मतगणना के साथ ही नतीजे की घोषणा हो सकती है। दतिया विधानसभा सीट पर उपचुनाव के सफल, शांतिपूर्ण और निष्पक्ष संचालन को दृष्टिगत रखते हुए अपर कलेक्टर एवं उप जिला निर्वाचन अधिकारी की अध्यक्षता में जिले के पेट्रोल पंप संचालकों की बैठक बीते दिनों आयोजित की गई। बैठक में कलेक्टर ने भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशों के अनुरूप आदर्श आचार संहिता का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। अब रुख करते हैं बारिश की खबर का। मानसून की बारिश शुरू होने के साथ ही दतिया जिले के किसान खरीफ सीजन की खेती में जुट गए हैं।

जिले में धान, सोयाबीन, उड़द, मूंग और तिल की बुआई का काम तेजी से चल रहा है। कृषि विभाग किसानों को उन्नत बीज, संतुलित उर्वरक उपयोग और आधुनिक कृषि तकनीकों की सलाह दे रहा है। समय पर बारिश से किसानों के चेहरे पर संतोष दिखाई दे रहा है। हालांकि वे अच्छी बारिश के सिलसिले के बने रहने की उम्मीद लगाए हुए हैं। दतिया जिले में 1 जून से अब तक कुल 494 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है, जो पिछले साल इसी अवधि की तुलना में 264 मिलीमीटर कम है। दतिया जिला प्रशासन उपचुनाव की तैयारियों के साथ साथ अलग अलग विभागों के माध्यम से राजस्व, स्वास्थ्य, शिक्षा, पेयजल, स्वच्छता और जन कल्याणकारी योजनाओं की नियमित समीक्षा में भी जुटा हुआ है। ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल आपूर्ति, सड़क मरम्मत, विद्यालयों की व्यवस्थाओं तथा स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के प्रयास लगातार जारी हैं। कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस प्रशासन भी पूरी सतर्कता के साथ काम कर रहा है। बीते मंगलवार को कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी स्वप्निल वानखेड़े और पुलिस अधीक्षक श्री मयूर खंडेलवाल ने संयुक्त रूप से फ्लैग मार्च निकाला। फ्लैग मार्च शहर के माँ पीताम्बरा पीठ मंदिर के सामने एक चौराहे से होते हुए गंज, राजगढ़ मार्ग, टाउन हॉल, बड़ा बाजार, पटवा तिराहा, किला चौक, दारूगर की पुलिया, बिहारी जी मंदिर और तिगैलिया होते हुए प्रमुख मार्गों एवं संवेदनशील क्षेत्रों से होकर गुजरा। इस दौरान पुलिस अधिकारियों ने सुरक्षा व्यवस्थाओं का जायजा लिया तथा निर्वाचन ड्यूटी में तैनात पुलिस एवं प्रशासनिक अधिकारियों को निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। धार्मिक और सांस्कृतिक दृष्टि से भी दतिया की पहचान लगातार मजबूत हो रही है। विश्व प्रसिद्ध माँ पीताम्बरा शक्तिपीठ में प्रतिदिन बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। प्रशासन द्वारा मंदिर क्षेत्र में सुरक्षा, यातायात और स्वच्छता की व्यवस्थाओं पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है, जिससे बाहर से आने वाले श्रद्धालुओं को बेहतर सुविधाएं मिल सकें। जिले में सामाजिक जनजागरूकता संबंधी कार्यक्रम भी लगातार आयोजित किए जा रहे हैं। पौधरोपण अभियान, स्वच्छता अभियान, स्वास्थ्य शिविर, महिला एवं बाल विकास विभाग के कार्यक्रम, युवा गतिविधियां तथा विभिन्न सरकारी योजनाओं के जागरूकता अभियान लोगों तक पहुंच रहे हैं। शिक्षा, पर्यावरण संरक्षण और जल संरक्षण जैसे विषयों पर भी प्रशासन और सामाजिक संस्थाएं सक्रिय भूमिका निभा रही हैं। मध्य प्रदेश पर्यटन बोर्ड द्वारा जिला पुरातत्व, पर्यटन तथा संस्कृति परिषद दतिया एवं स्कूल शिक्षा विभाग के सहयोग से पर्यटन क्विज प्रतियोगिता 2026 का आयोजन किया जा रहा है, जो कि 2 चरणों में आयोजित की जाएगी। प्रतियोगिता के प्रथम चरण में जिले के समस्त शासकीय तथा अशासकीय विद्यालयों द्वारा अपनी टीम का पंजीयन कराया जा सकेगा तथा इस प्रतियोगिता में कक्षा 9वीं से 12वीं तक के विद्यार्थी भाग ले सकते हैं। प्रतियोगिता में पंजीयन के लिए 25 जुलाई तक ऑनलाइन माध्यम से पंजीयन कराया जा सकता है। प्रतियोगिता 7 अगस्त 2026 से सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक आयोजित की जाएगी। दतिया के नागरिकों की अपेक्षाएं आज भी विकास, रोजगार, बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, निर्बाध बिजली, पर्याप्त पेयजल और सुरक्षित वातावरण को लेकर बनी हुई हैं। उपचुनाव के इस दौर में मतदाता केवल राजनीतिक वादों से आगे बढ़कर विकास के ठोस कार्यों को प्राथमिकता दे रहे हैं। आने वाले दिनों में चुनावी गतिविधियां और तेज होंगी, लेकिन इसके साथ साथ खेती, विकास कार्य, प्रशासनिक सक्रियता और सामाजिक कार्यक्रम भी जिले की प्रगति की दिशा तय करेंगे। उम्मीद की जा रही है कि इस लोकतांत्रिक उत्सव के साथ विकास की गति भी निरंतर आगे बढ़ेगी और दतिया नई उपलब्धियों की ओर अग्रसर होगा। दतिया जिले की चिट्ठी समाप्त हुई।

हम आकाशवाणी के शिवपुरी केंद्र से बोल रहे हैं एफएम 100.2 मेगा हर्ट्ज पर। इस समय प्रातः के 10:05 हुए हैं। लीजिए सुनिए कार्यक्रम सुगम संगीत। सुगम संगीत के कार्यक्रम में आज की हमारी कलाकार हैं साधना गोरे।

अभी आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सुगम संगीत। सुगम संगीत के कार्यक्रम में आज की हमारी कलाकार हैं साधना गोरे। लीजिए अब सुनिए साधना गोरे के ही स्वर में एक और खूबसूरत गजल।

0: कार्यक्रम सुगम संगीत इस समय आप आकाशवाणी के शिवपुरी केंद्र से सुन रहे हैं। सुगम संगीत के कार्यक्रम में आज की हमारी कलाकार हैं साधना गोरे। कार्यक्रम में अगली गजल हम आपको सुनवाएंगे, लेकिन पहले सुनिए कुछ जरूरी संदेश।
1: अब गरीबों की जाय बन गई है।
2: अच्छे उपचार के लिए अब नहीं रहेगा कोई लाचार। देश भर में 60 करोड़ से ज्यादा लाभार्थी हैं अब 5 लाख के मुफ्त इलाज के हकदार। अब तक 1.25 लाख करोड़ रुपए से अधिक मूल्य के मुफ्त उपचार के लाभ दिए जा चुके हैं और स्वाभिमान और सेहत की सौगात का ये सिलसिला जारी है।
3: आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड करें और पात्र लाभार्थी घर बैठे अपना आयुष्मान कार्ड बनाएं। अधिक जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।

कार्यक्रम सुगम संगीत इस समय आप आकाशवाणी के शिवपुरी केंद्र से सुन रही हैं। इसमें आज की हमारी कलाकार हैं साधना गोरे। लीजिए अब सुनिए साधना गोरे के ही स्वर में एक और खूबसूरत बारिश का गीत।

साधना गोरे के गाए इस गीत के साथ ही कार्यक्रम सुगम संगीत अब यहीं संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के शुभपुरी केंद्र से बोल रहे हैं, एफएम बैंड 100.2 मेगा हर्ट्ज पर। इस समय प्रातः के 10:30 हुए हैं। लीजिए सुनिए कार्यक्रम आपकी फरमाइश। कार्यक्रम आपकी फरमाइश सुनने वाले सभी श्रोताओं का हम अपने कार्यक्रम में स्वागत करते हैं और सुनवाते हैं आप सभी की पसंद पर कुछ खूबसूरत गीत। कार्यक्रम का पहला पत्र हमने लिया है अमरपुर पेंड्रा छत्तीसगढ़ से, रेखा देवी, श्वेता देवी, सुरुचि देवी और इनके साथियों का। ये सभी सुनना चाहते हैं फिल्म हाथ की सफाई का ये गीत। स्वर हैं लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी के, गीत है गुलशन बावरा का और संगीत कल्याण जी आनंद जी का।

कार्यक्रम आपकी फरमाइश इस समय आप आकाशवाणी के शिवपुरी केंद्र से सुन रहे हैं। लीजिए कार्यक्रम का अगला पत्र हमने लिया है महाराणा प्रताप कॉलोनी से शुभम, सुभि, उमंग, पूजा, साक्षी, गोलू, विपिन, मयू और यशु का। ये सभी सुनना चाहते हैं फिल्म हाथी मेरे साथी का लिया ये गीत किशोर कुमार के स्वर में। गीतकार हैं आनंद बख्शी और संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल।

कार्यक्रम आपकी फरमाइश इस समय आप आकाशवाणी के शिवपुरी केंद्र से सुन रहे हैं। लीजिए अब सुनिए कार्यक्रम का अगला गीत, इसे हमने लिया है फिल्म चोर मचाए शोर से। स्वर हैं लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी के, गीत है इंद्रजीत सिंह तुलसी का और संगीत रविंद्र जैन का। इस गीत की फरमाइश करने वाले हमारे श्रोता हैं सुभाषपुरा इंद्रगढ़ से रमेश धाकड़, राजा बाबू विक्रम धाकड़, नीरज मेडिकल स्टोर वाले वीर सिंह धाकड़ और समस्त परिवारजन।

कार्यक्रम का अगला पत्र हमने लिया है छत्तीसगढ़ भाटापारा दतरंगी से द्वारका प्रसाद वर्मा, किशोर कुमार वर्मा, दीपक कुमार वर्मा और झावेंद्र कुमार वर्मा का। ये सभी सुनना चाहते हैं फिल्म वारिस का ये गीत लता मंगेशकर और सुरेश वाडेकर के स्वर में। गीत है वर्मा मलिक का और संगीत उत्तम जगदीश का।

कार्यक्रम आपकी फरमाइश इस समय आप आकाशवाणी के शिवपुरी केंद्र से सुन रहे हैं। लीजिए कार्यक्रम का आखिरी पत्र हमने लिया है रामनगर रोड शांति नगर इंदौर से नारायण भाऊ खर्चे, खुशी खर्चे, गणेश कार्तिक खर्चे, संजना परी, ललिता, स्वाति प्रयाग और मालती खर्चे का। ये सभी सुनना चाहते हैं फिल्म यादों की बारात का ये गीत, आसा भोसले, किशोर कुमार और साथियों के स्वर में। गीत लिखा है मजरूह सुल्तानपुरी ने और इसे स्वरबद्ध किया है राहुल देव वर्मन ने।

इसके साथ ही कार्यक्रम आपकी फरमाइश अभी यहीं संपन्न होता है। इस समय प्रातः के 11 बजे हैं। आकाशवाणी मध्य प्रदेश के कार्यक्रम थोड़ी ही देर में भोपाल केंद्र से अनुप्रसारित होंगे। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

उम्मीद करते हैं आप इस आवाज को जरूर पहचान गए होंगे और हमारे जो श्रोता नहीं पहचान पाए हैं उन्हें बता दें कि ये गीत अलका याग्निक की आवाज में है। हाल में अलका याग्निक जी को पद्मश्री सम्मान से अलंकृत किया गया। हम सभी के लिए और बॉलीवुड इंडस्ट्री के लिए भी अत्यंत गौरव का क्षण था वो।

लेकिन क्या आप जानते हैं, पिछले कुछ वर्षों से अलका याग्निक की आवाज नए गीतों में हम क्यों नहीं सुन पा रहे हैं? जून 2024 में खुद अलका याग्निक ने सार्वजनिक रूप से बताया कि उन्हें सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस, यानी अचानक सुनाई देना बंद हो जाना, यह एक दुर्लभ श्रवण विकार है जिसमें कान के भीतरी भाग या श्रवण तंत्रिका को नुकसान पहुंचता है, जो वायरल संक्रमण, लंबे समय तक अधिक तेज आवाज के संपर्क में रहना, बढ़ती उम्र, कुछ दवाइयों के दुष्प्रभाव आदि जैसे कारणों से होती है।

0: तो चलिए जुड़ते हैं हमारे पहले कॉलर से और सुनते हैं कि वे क्या कहते हैं इस बारे में। हेलो,
1: नमस्ते।
0: नमस्ते जी, कार्यक्रम में बात आपकी, गीत हमारे।
1: जी मैम, संतोष कुमार राव बात कर रहा था, बिरसिंहपुर पाली उमरिया मध्य प्रदेश से।
0: जी संतोष कुमार जी, स्वागत। और आप हमारे बहुत ही नियमित श्रोता है, कैसे हैं आप?
1: जी बिल्कुल। जी मैम, बहुत बहुत धन्यवाद आपका मैडम जी, क्योंकि आपके कार्यक्रम से लगातार जुड़ा रखते हैं, आपको पता है कि हम आपकी नियमित श्रोता हैं।
0: जी बिल्कुल। तो आज ये कार्यक्रम बात आपकी गीत हमारे, और हमारा आज का विषय है कि कहीं आप तेज आवाज सुनने के आदि तो नहीं है। अक्सर हम देखते हैं कि तेज आवाज में हम टीवी सुनते हैं, रेडियो सुनते हैं, या कहीं डीजे बजता है। तो आप कितने रेंज की आवाज में गीत संगीत को सुनते हैं?
1: जी तेज ध्वनि का हमेशा ही, मतलब अगर देखा जाए तो इसका असर हमारे खास करके मवेशियों में पड़ता है, बच्चों में पड़ता है, और खास करके जो बड़े बुजुर्ग होते हैं उन्हें तेज मतलब आवाज अगर सुनाई देता है तो उनको बहुत ज्यादा समस्याएं आती है, खास करके हार्ट अटैक जैसी प्रॉब्लम्स भी उसमें से उत्पन्न होती है, और कान में सुनने की क्षमताएं भी कम होती है। तो तेज स्पीकर का हमें आविष्कार करना चाहिए, मतलब कि उसे थोड़ा सा एनर्जी दूर करना चाहिए, क्योंकि जो तेज स्पीकर होते हैं हमारे बहुत सारी समस्याओं को भी लेकर उत्पन्न कर देते हैं मैडम जी। खड़ी है
0: जी जी। और आजकल हम देखते हैं कि अक्सर जो नई युवा पीढ़ी है वो हमेशा हेडफोन लगाए रखती है, मोबाइल से अटैच्ड रहती है, और वो न जाने कितनी तेज आवाज में सुनते हैं। तो इस बारे में आप उन्हें क्या संदेश देना चाहते हैं?
1: जी, जो हेडफोन का उपयोग करते हैं खास करके उनके जो सुनने की क्षमता होती है, आजकल हम लोग देखते हैं जैसे कि जिस प्रकार से भी हमने देखा है, अलका जी को देखा है, अलका याग्निक एक मुख्य कलाकार, मतलब अभिनय में जो उनकी आवाज थी
0: जी,
1: बोलने की और गाने में इतना उन्होंने मधुरता लाई है, तो उनकी देख वो सुन भी नहीं सकती हैं और खड़े भी नहीं हो सकते, तो ये जो तेज ध्वनि के कारण ही ये सब कुछ उत्पन्न होते हैं, ये सारी समस्या। तो युवा पीढ़ी जो है खास करके हेडफोन लगा करके बातें करते हैं, गाने भी सुनते हैं और इसे इंजॉय के रूप में लेते हैं, तो ऐसा ना करें, ये हानिकारक है, और इससे बचाव रखेंगे तो अपने शरीर को खुद मेंटेन पाएंगे आप।
0: बिल्कुल हमारे

0: ये जो कार्यक्रम में आरंभ में जो हमने बात कही थी, वही बात आपने इस कॉल में कह दी है कि अलका याग्निक जी बहुत बेहतरीन उदाहरण है इस बात का कि आज विधि की विडंबना देखिए कि जो गीत उन्होंने गाए हैं वो खुद नहीं सुन पाती है, कितनी अफसोस की बात है।
1: जी बिल्कुल मैम, इसीलिए और खास करके हमारी जो युवा मतलब हम जैसे युवा वर्ग की बात करते हैं, हम लोग तो ट्रांजिस्टर पर आपका कार्यक्रम सुनते हैं और जो रेडियो की बातें होती है, रेडियो की ध्वनि बहुत धीमी होती है और जितनी भी सुनी जाए वो कम पड़ जाती है। रेडियो की धुन बहुत प्यारी होती है और रेडियो की वॉल्यूम बहुत तेज नहीं होती है। रेडियो ने बहुत कुछ हमें दिया है और जो कार्यक्रम चलता है बात आपकी गीत हमारे कार्यक्रम, इसके माध्यम से हम सभी युवाओं से भी अपील करना चाहते हैं कि हेडफोन की दूरी बनाए रखें, डीजे पर थोड़ा सा डीजे का वॉल्यूम कम करके अगर डांस कर सकें तो बहुत अच्छा होगा। इससे हमारे जो घर में रहने वाले बड़े बुजुर्ग होते हैं इनमें इनकी देखभाल जरूर करें और इसका ध्यान अवश्य रखें कि घर में बड़े बुजुर्ग भी उपलब्ध होते हैं।
0: जी, वो भी रहते हैं और कई बार ये होता है कि जहाँ डीजे बजता है उससे कितनी दूरी तक जो आवाज़ जाती है उससे भी कितने लोग परेशान हो जाते हैं कई बार, तो हमें भी इस बात का ध्यान रहना चाहिए कि हम ध्वनि प्रदूषण ना फैलाएं।
1: जी बिल्कुल मैम, और मैम बताऊं आपसे कि जैसे पेड़ों में रहने वाले पक्षी होते हैं, खास करके जब रात में डीजे बजता है उसकी रोशनी जाती है तो उनमें भी बहुत ज्यादा असर पड़ता है, वो लोग भी थोड़ा सा उनके अंदर भी थोड़ा सा वो रात में जाग जाते हैं क्योंकि रात में सोने की अवस्था होती है।
0: बिल्कुल बिल्कुल,
1: तो पशुओं में भी असर पड़ता है।
0: बिल्कुल, क्योंकि पशु पक्षी होते हैं उनमें भी श्रवण शक्ति तो आखिर होती ही है, तो कहीं ना कहीं ये चीज उन्हें भी नुकसान पहुँचाती है।
1: जी बिल्कुल मैम।
0: जी धन्यवाद संतोष जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। नमस्कार
1: जी मैम, आपका बहुत बहुत आभार। नमस्कार
0: नमस्कार।

0: हेलो,
1: हाँ नमस्ते दीदी।
0: नमस्ते। कार्यक्रम है बात आपकी, गीत हमारे। स्वागत करते हैं, अपना नाम बताइए।
1: नाम हमारा गिरधारी सेन है, दमोह से बोल रहे हैं।
0: जी गिरधारी जी, स्वागत है। पहली बार फोन लगाया आपने।
1: नहीं हम तो लगाते रहते हैं, लेकिन ये है कि हफ्ता 15 दिन में या पर महीना खाने से हो जाते हैं।
0: बराबर है, बराबर है। कैसे हैं, आपके हाल चाल बताइए।
1: बढ़िया बढ़िया है मैडम।
0: बढ़िया है। तो आज जानते हैं आप, बात आपके गीत हमारे कार्यक्रम में क्या बातचीत होती है, और
1: आज का टॉपिक क्या है?
0: आज का टॉपिक है कि कहीं आप तेज आवाज में गीत संगीत सुनने के आदि तो नहीं हैं, और उसके क्या लाभ है, क्या नुकसान है। लाभ तो कम ही है, क्या नुकसान हो सकते हैं।
1: उसका ये है ना मैडम, कि अगर जैसे अपन पड़ोस में सुन रहे हैं तो डिस्टर्ब होता है, जैसे बच्चे पढ़ाई कर रहते हैं बाजू में तो उनका भी डिस्टर्ब होता है, और जैसे अपन शौकीन हैं अपने
0: जी
1: संगीत के, तो अपने इतने से लोग बजाओ कि अपने तक सीमित रहे, दूसरों तक डिस्टर्ब ना हो।
0: बिल्कुल, बहुत सही कहा आपने। ये बात सही है कि हमारी वजह से दूसरों को परेशानी नहीं होनी चाहिए, है
1: जी जी मैडम,
0: ना।
1: और नमस्ते
0: जी, बहुत बहुत धन्यवाद गिरधारी सिंह जी, आपका नमस्कार।
1: मैडम।

0: हेलो
1: हेलो।
0: जी, कार्यक्रम बात आपकी गीत हमारे।
1: हाँ, मैं ग्राम बालोरा लखा जिला उज्जैन से कन्हैयालाल प्रजापति बोल रहा
0: जी
1: हूँ।
0: कन्हैयालाल जी, स्वागत है आपका। कैसे हैं आप?
1: बस बढ़िया है,
0: बढ़िया है। आज
1: बारिश का
0: कार्यक्रम,
1: आनंद ले रहे हैं।
0: अच्छा बारिश हो रही है, बहुत अच्छी
1: हाँ
0: बात
1: जी,
0: है।
1: हाँ बारिश हो रही है ना अभी, हल्की हल्की बूंदाबांदी।
0: हाँ, वही हम पूछने वाले थे कि झमाझम हो रही है या हल्की फुल्की हो रही है।
1: हाँ हल्की हल्की हो रही है अभी, क्योंकि अभी तो अलर्ट हो रहा है अभी तो, इधर दिल्ली में नहीं, इधर था अभी समाचार में देख के आया।
0: जी। तो कन्हैयालाल जी, आज के कार्यक्रम बात आपकी गीत हमारे, तो हमारे विषय पर हम आपके विचार जानना चाहते हैं कि तेज आवाज में गीत संगीत सुनना, उसके क्या नुकसान है और इससे कैसे बचना चाहिए।
1: क्या वारिस है?
0: तेज आवाज में गीत संगीत
1: हाँ
0: या कोई भी, हम जैसे टीवी भी देखते हैं तेज आवाज में सुनते हैं, रेडियो
1: हाँ
0: है, डीजे गीत संगीत वगैरह इत्यादि जो भी चीज़ें होती है ना।
1: इससे क्या हो कि उसमें ध्वनि प्रदूषण होता है, और कम आवाज करेंगे तो उसमें क्या है कि जिसको दिल का अटैक है तो वो उसमें क्या है कि बहुत मतलब परेशानी आती है, और कभी डेथ भी हो जाती है उसकी।
0: जी।
1: ऐसा ऐसा भी है, हमारे गांव में हुआ है कि जो डीजे बज रहा है तो ना, वहाँ पे क्या लगे हुए थे, ब्याह शादी चल रहा है तो फिर बाद में क्या हुआ कि उसको अटैक की बीमारी थी, तो वो ज्यादा ध्वनि थी, ध्वनि के कारण उसका डेथ हो गई।
0: जी, हम अक्सर समाचार पत्रों में भी ऐसी खबरें पढ़ते हैं कि डीजे के
1: हाँ जी,
0: तेज संगीत के कारण इस तरह के प्रभाव
1: हाँ
0: हुए हैं,
1: ये हानि होती, नुकसान होता है। सही
0: जी
1: बात है,
0: जी जी जी
1: ठीक।
0: जी धन्यवाद कन्हैयालाल जी, आपका शुक्रिया।

0: हेलो।
1: हेलो मैम, नमस्ते जी।
0: नमस्ते जी। पीछे से रेडियो की आवाज़ बहुत तेज़ आ रही है, कृपया उसे कम कर दीजिए।
1: जी जी
0: जी,
1: आज फोन करेगी, सुने हैं क्या बात आपकी गीत हमारे।
0: आज बात आपकी गीत हमारे हैं और हमारा विषय भी यही है कि जो अभी हमने आपको हिदायत दी कि रेडियो की आवाज़ कम कर लीजिए, तो आज विषय भी उसी से संबंधित है कि तेज़ आवाज़ में सुनने के क्या नुकसान हैं।
1: जी
0: पहले अपना नाम बताइए, कहाँ से बात कर
1: जी
0: रहे
1: जी जी जी
0: हैं
1: बोल रहा जी,
0: जी?
1: अम्बेडकर चौक से अग्रवाल खुराई से परमानंद बोल रहा मैम।
0: जी परमानंद जी, स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में।
1: जी तो आवाज से आजकल कान देखो जी, कहीं जैसे स्कूल वगैरह है वहाँ हॉर्न वगैरह ना बजाएं। दूसरी बात जी, आजकल हमने देखा है छोटे बच्चे बच्चे और जो भी रहते हैं वे हेडफोन लगा लेते हैं तो उनके कानों पर असर पड़े। और अभी अभी एक सूचना मिली है कि अलका याग्निक के कान शायद, मतलब ऐसी रिपोर्ट आई है हमने देखा है कि उनके कान बिल्कुल बेकार हो चुके हैं, तो उनसे सीख लें और कम आवाज में अपना काम करें और कम आवाज में आपके रेडियो वगैरह साउंड है आपकी डीजे वगैरह। अपन बारात में जाते हैं तो कितनी धम धम की आवाज आती, दिल धड़कन रोकने की मतलब बहुत
0: जी,
1: चांस होते हैं उससे
0: मतलब हम
1: अगर
0: वहाँ खड़े
1: आपके।
0: रहते हैं तो हमारी भी धड़कन उतनी ही तेजी से चलने लगती है उस आवाज़ को
1: जी जी जी
0: सुनकर।
1: बिल्कुल, उसे
0: जी,
1: घटना दुर्घटना हो चुकी और
0: होती
1: होती
0: भी
1: भी
0: है
1: रहती है।
0: बिल्कुल। और इससे ये होता है कि हमारी सुनने की शक्ति तो कम होती ही होती है, साथ ही साथ हमारे दिल पर भी कितना बुरा असर होता है इसका।
1: बहुत खतरनाक असर पड़ता है डीजे वगैरह से।
0: जी,
1: मगर
0: तो आप तेज आवाज़ में सुनते हैं या कम आवाज़ में सुनते हैं?
1: हम तो रेडियो कम आवाज में सुनते हैं, वही चल रहा था प्रोग्राम।
0: अभी तो हमें सुनाई दे रही थी तेज आवाज।

0: हाँ, एएफएम चल रहा था।
1: हाँ जी हाँ, चलिए कोई
0: हाँ,
1: बात
0: आपका
1: नहीं
0: प्रोग्राम भी सुनते रहते
1: जी,
0: जी।
1: परमानंद जी सुनते रहिए हमारे कार्यक्रम, और अपने कानों का और अपने दिल का ख्याल रखते हुए खुद भी कम आवाज में सुने और दूसरों को भी कम आवाज में सुनने की सलाह दे।
0: धन्यवाद
1: धन्यवाद
0: मैम।
1: जी।

0: हेलो
1: हेलो
0: जी, कार्यक्रम बात आपकी गीत हमारे, स्वागत है आपका।
1: जी, हम ग्राम छात्र तहसील उदयपुरा से भगत जी बैरा की बात कर रहे हैं
0: जी बैरागी जी, स्वागत है, कार्यक्रम है बात आपकी गीत हमारे।
1: जी। बात आपके बारे में। हाँ जी, तो फिर आज को विशेषता
0: आज का विषय है कि तेज आवाज में जब आप सुनते हैं तो उसके क्या नुकसान है और उससे कैसे बचना चाहिए।
1: तेज आवाज में सुनते हैं तो हमें बहरापन हो जाता है,
0: और
1: वो फिर इस चरिमा की संबंधित बीमारी है। जैसे देर में हर एक बात सुनना, देर में हर बात को समझना, सब विषय है।
0: बस हम तो यही के पूछना चाहते हैं कि जो हमारा आज का विषय है उस पर आप
1: हाँ
0: हमारे
1: विषय है,
0: श्रोताओं को क्या कहना चाहेंगे कि जिससे वो इसके
1: जैसे कि
0: नुकसान से
1: हमें,
0: बच सकें।
1: जैसे हमें हेडफोन लगा के गाना नहीं सुनना चाहिए। अधिकतर गाना हमें दूर से सुनना चाहिए। और कोई कोई तो हेडफोन लगा के सो जाते हैं और कान में मोबाइल चलत रही था और भी सो जाते हैं, और एकदम से भी उठाते हैं तो दिमाग की संतुलन खो बैठा था भी।
0: बराबर, बिल्कुल बहुत सही बात
1: इसलिए हमें
0: कही
1: हेडफोन लगा करके गाना नहीं सुनना चाहिए,
0: जी।
1: अधिकतर
0: आजकल
1: दूर से सुनो।
0: बिल्कुल आजकल बच्चों में ये आदत देखी जा रही है कि ईयरफोन लगा लिया और सुनते सुनते नींद लग गई उनकी।
1: हाँ,
0: और
1: गाना सुनते सुनते नींद तो ऐसा मत करो,
0: जी हाँ,
1: मोबाइल
0: और
1: चार्ज पे लगा दो, ते के बाद में सो जाओ।
0: बिल्कुल, और इसके कारण कई बार ऐसा होता है कि उसकी जो गर्म वेव्स, जो हीट निकलती है वो कानों में अंदर हमें नुकसान दे जाती है कई, है
1: और
0: ना।
1: वैसे तो आजकल आदमी गाड़ी भी चला रहा है तो हेडफोन लगा कर चला रहा है,
0: कितनी गलत
1: और जैसे
0: बात
1: कहूँ
0: है।
1: फोन गाड़ी पे कम फोन पे ज्यादा जाते तो एक्सीडेंट इसी समय हो जाते हैं।
0: बिल्कुल सही कहा आपने,
1: जी
0: बहुत जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, नमस्कार।
1: जी नमस्कार।

0: हेलो
1: हेलो
0: जी, कार्यक्रम बात आपकी गीत हमारे।
1: जी,
0: नमस्कार,
1: नमस्कार मैडम जी।
0: बताइए अपना नाम, कहाँ से बात कर रहे हैं?
1: जी मैडम जी, मैं तहसील चंदवा मध्य प्रदेश से देवीदास वाड़ी से बोल रहा हूँ मैडम जी।
0: जी देवीदास जी, कैसे हैं आप?
1: जी बढ़िया हूँ मैडम जी। और अब रिमझिम बातचीत बरसात हो रही है।
0: तो ये जो बरसात की बूंदे हैं,
1: हाँ
0: इसकी आवाज आपके कानों को क्या कहती है, कुछ
1: जी
0: हमें
1: मैडम
0: बताएंगे?
1: जी, अभी पानी आ रहा है, रिमझिम बरसात अच्छी बढ़िया हो रही है और बरसात का मजा ले रहे हैं मैडम जी।
0: ले रहे हैं तो
1: और
0: इसकी
1: बेटे बेटे आपके जो रेडियो से जो गाने आ रहे वो भी सुन रहे हैं।
0: सुन रहे हैं जी। तो ये जो बरसात की
1: जी
0: रिमझिम आवाज है, ये कानों को सुकून दे रही है आपको,
1: हाँ दे रहे ना मैडम जी।
0: दे रही है। और जब यही आवाज बादलों की गरज के रूप में जब आपके सामने आपके कानों में पड़ती है, तब कैसा लगता है आपको?
1: अरे बढ़िया लगता है मैडम जी एकदम। अपने ये बरसात का मौसम मुझे बहुत अच्छा लगता है।
0: अच्छा लगता है, लेकिन
1: हाँ
0: उस गरज से, बादल की गरज से आपको ऐसा नहीं लगता है कि कानों पर कुछ प्रभाव होता है, अच्छा
1: हाँ
0: बुरा?
1: इस समय मैडम जी जो ज्यादा जब एकदम तेज बिजली कड़कती है जब कुछ असर होता है।
0: देवीदास जी, आज हमारा विषय भी यही है कि जब तेज आवाज हम सुनते हैं तो उसके क्या नुकसान हैं।
1: मैडम ज्यादा तेज आवाज आए तो अपने वो सावधानी बरतना चाहिए, थोड़ा बहुत कुछ जो आता है ध्वनि प्रवाह से थोड़ा सावधानी रखना चाहिए। और थोड़ा जो अपने जो कान में जो है थोड़ा बहुत जैसा जो रुई के सहार है थोड़ा बहुत सावधानी वापरना चाहिए मैडम।
0: बिल्कुल। तो जब बादलों की तेज गरज जब होती है, तब भी ये होना चाहिए कि हमें अपने कानों को थोड़ा सा सहारा दे देना चाहिए, हाथ रखकर, ताकि तेज
1: हाँ
0: आवाज प्रभावित न
1: जी
0: करे,
1: जी
0: है
1: मैडम जी,
0: ना? और
1: अपन
0: आपने
1: जितनी
0: बताया
1: सावधानी
0: कि
1: बरतेंगे उतनी।
0: आपने बताया कि आप इसके साथ रेडियो भी सुन रहे हैं, तो कहीं बारिश की आवाज में आपने रेडियो की आवाज तेज तो नहीं कर दी है?
1: नहीं मैडम जी, जो पहले जो रेडियो चलते थे दिन कर के उसमें जो खरखर की आवाज आती थी मैडम जी, जैसे बिजली का आवाज जो कड़कती थी तो उसमें रेडियो की बहुत मतलब एकदम मिट्टी बताता है
0: जी
1: जो बिजली की आवाज वो रेडियो में कड़कती थी। और अभी जो परिवर्तन हुआ है मैडम जी, जो मतलब परिवर्तन जो हुआ है तो बहुत बढ़िया हुआ है। और जो हम अभी जो डीटीएच से सुनते हैं वो मैडम जी
0: मोबाइल पर सुनते हैं आप रेडियो, तो
1: मोबाइल पे
0: ईयरफोन।
1: भी सुनते हो जो डीटीएच मैंने लगा रखा है एक्चुअली
0: तो
1: मैडम।
0: ये बताइए कि जब आप मोबाइल पे रेडियो सुनते हैं, तो उसे ईयरफोन पे हेडफोन लगाकर, ये ब्लूटूथ वाला हेडफोन लगाकर सुनते हैं, या नॉर्मल आवाज में सुनते हैं मोबाइल पर
1: नहीं
0: रेडियो?
1: मैडम जी, मैं मोबाइल से नहीं सुनता मैडम जी, वो जो डीटीएच लगा कर रखा है मैंने। हाँ और जो दो डीजे मैंने बना कर रखा है उसमें सुनता मैडम जी, बहुत मजा आता है और बहुत एकदम साफ सुथरा आता है।
0: साफ सुथरा आता है ना, बिल्कुल। तो ऐसी
1: हाँ
0: ही धीमी आवाज में और सुरक्षित माहौल में हमें अच्छा गीत संगीत सुनना
1: जी
0: चाहिए।
1: मैडम जी,
0: धन्यवाद देवीदास जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात
1: हाँ
0: करके।
1: ओके।

0: हेलो।
1: हेलो मैम,
0: हाँ जी नमस्कार। कार्यक्रम में बात आपकी, गीत हमारे। कौन
1: नमस्ते।
0: बात कर रहे हैं? स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में।
1: हीरू पड़ियार,
0: जी जी बिल्कुल। आप पास जो शोर हो रहा है उससे आपको परेशानी नहीं हो रही है क्या? आपके आसपास

0: बच्चे बात कर रहे हैं, खेल कूद रहे हैं,
1: हाँ
0: तो आपको कुछ परेशानी नहीं हो रही है क्या उनकी आवाजों से, इतनी तेज आवाज से?
1: हाँ थोड़ी कम कम आ रहे आवाज।
0: हाँ, और पीछे से देखो रेडियो की भी आवाज हमें आने लगी, तेज हो गया रेडियो।
1: हाँ
0: तो इसके क्या नुकसान है जब ये तेज आवाज में हम सुनते हैं, तो ये बताइए। तो जब हम बारिश की आवाज के साथ में जब रेडियो आप सुनते हो, तो रेडियो की आवाज आपको बढ़ानी पड़ जाती होगी ना,
1: हाँ मैम,
0: तो फिर ये कानों को नुकसान नहीं देती है आपको क्या?
1: इसे मतलब हम ज्यादा नहीं सुनते हैं इसमें।
0: अच्छा।
1: हाँ
0: और ये जो आसपास गीत संगीत कई बार डीजे में बजता है शादी में पार्टी में, तो उसको उससे कभी आपको कोई परेशानी हुई है?
1: हाँ जी मैम, ज्यादा ये डीजे वगैरह सब चलता है तो इसे ज्यादा अपन के ऐसे धड़क धड़क करता है, तो हम तो दूर ही रहते हैं इससे, मतलब पास पास में नहीं जाते। हाँ
0: और जब बच्चे घर के आंगन के बाहर खेलते हैं और बहुत शोर मचाते हैं, तब आप क्या करते हैं?
1: हाँ वो उनको डांट देते हैं, परेशान
0: डांट देते हैं?
1: करते हैं तो डांट
0: क्यों क्यों डांट देते हैं बस?
1: देते हैं, लड़ देते हैं कि जोर से मत चिल्ला चोट करो, धीरे धीरे खेलो करके।
0: बिल्कुल, ताकि क्या है कि बच्चे जब चिल्ला चिल्ला के खेलते हैं तो उनका गला भी खराब होता है,
1: हाँ पर
0: उनकी
1: वो
0: आवाज,
1: समझते नहीं मैम।
0: हाँ जी, उनकी आवाज भी खराब होती है, और दूसरा जब वो चिल्लाते हैं तो दूसरों को ज्यादा परेशानी होती है, क्योंकि कई बार ये होता है कि घर में हम आराम कर रहे होते हैं या हमारा मूड अच्छा नहीं है, तो हमें चिड़चिड़ाहट होती है।
1: हाँ तो ऐसे कहने जाते मैम, तो फिर उनको माँ बाप अपन को फिर चिल्ला चोट करते, इनके बच्चे उनको नहीं मतलब अक्ल देते।
0: बराबर है, तो
1: हाँ
0: आप
1: ना,
0: बिल्कुल,
1: अपन सही बात बोलते तो उनको बुरा लगता है।
0: बिल्कुल, आज हम इसी विषय पर
1: हाँ
0: बात कर रहे हैं कि तेज आवाज के क्या फायदे या क्या नुकसान हैं। तो बातों बातों में
1: सही।
0: आपने हमें बहुत अच्छी जानकारी दे दी, बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार।

आजकल शादी पार्टी में बजने वाला डीजे का गीत संगीत हमारे कान के पर्दों को अंदर तक हिला देते हैं। कई बार टीवी देखते समय, रेडियो सुनते समय तेज आवाज हमारी श्रवण क्षमता को धीरे धीरे प्रभावित करती है। मॉर्निंग वॉक पर जा रहे, गाड़ी चला रहे हैं तो कानों में ईयरफोन, हेडफोन आजकल आम तौर पर चलन में देखा जा रहा है। भविष्य में कहीं ऐसा ना हो कि आपके घर आंगन में गूंजती किलकारी की खुशी आप महसूस न कर पाए, कहीं ऐसा ना हो कि अपने बच्चों की तरक्की, उनकी मुंह जबानी सुनकर आप अपनी आंखों में खुशियों का पानी न भर पाए, कहीं ऐसा ना हो कि कम सुन पाने या ना सुन पाने की वजह से अपने जीवन की अनमोल खुशी से आप वंचित रह जाएं।

जरा महसूस कीजिए अलका याग्निक जी का वो दर्द कि जब पद्मश्री सम्मान के लिए उनका नाम पुकारा गया और वो खुद सुनकर उस खुशी को महसूस नहीं कर पाई। आज की युवा पीढ़ी से विशेष आग्रह करते हैं कि ईयरफोन हेडफोन का उपयोग कम करें, अपना पसंदीदा गीत संगीत आवश्यक हो उतनी ही रेंज की आवाज में सुने। लाइव कॉन्सर्ट की आज की उनकी खुशी कल के सपनों को धूमिल ना कर दे। जागरूकता के साथ अपनी श्रवण क्षमता को महत्व दीजिए और इस गीत को सुनते हुए अनुमति दीजिए आपकी अपनी रेडियो संगीनी प्रियंका को आज का कार्यक्रम यही समाप्त करने की। नमस्कार।

0: अभी आप सुन रहे थे फोन इन कार्यक्रम बात आपकी गीत हमारे, ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है।
1: कभी हंसाकर, कभी रुलाकर, कभी कहानी बनकर तो कभी कविता बनकर, कभी कोई तराना तो कभी जिंदगी नामा, कभी खबरें हमारी जिंदगी में रंग भरे, मन की बात जन जन की बात, 1936 से आकाशवाणी आपके

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज मेलबर्न में उच्च स्तरीय भारत ऑस्ट्रेलिया सीईओ फोरम और आर्थिक कार्ययोजना कार्यक्रम के दौरान द्विपक्षीय व्यापार को गति देने के लिए एक दूरदर्शी कार्ययोजना की रूपरेखा प्रस्तुत की। प्रधानमंत्री श्री मोदी ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज के साथ बहुप्रतीक्षित तीसरे वार्षिक नेता शिखर सम्मेलन में शामिल हो रहे हैं। दोनों नेताओं के बीच कई महत्वपूर्ण विषयों पर व्यापक चर्चा होने की उम्मीद है। भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता में 11 और 12 तारीख को नागपुर में ब्रिक्स सदस्य देशों के मंत्री और वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक होगी। केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी बैठक के दौरान परिवहन क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनाए जा रहे तरीकों का आदान प्रदान और सहयोग के नए क्षेत्रों पर चर्चा करेंगे। पुलिस महानिदेशक कैलाश मकवाणा ने सेफ क्लिक 2.0 अभियान के समापन समारोह में बताया कि 15 दिवसीय इस अभियान के दौरान साइबर अपराध, नशे के दुष्परिणाम तथा सड़क सुरक्षा को लेकर विभिन्न कार्यक्रम आयोजित कर लोगों को जागरूक किया गया। महाराष्ट्र के हिंगोली जिले में आज सुबह भूकंप के कई झटके महसूस किए गए। रिएक्टर पैमाने पर इसकी तीव्रता 4.6 मापी गई। इलाके में भूकंप से जानमाल के नुकसान की कोई खबर नहीं है। मौसम विभाग ने आज भिंड जिले में अत्यधिक भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। वहीं 9 जिलों में अति भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट और 11 जिलों में भारी बारिश का येलो अलर्ट है। और भारत और इंग्लैंड के बीच 5 T20 क्रिकेट मैचों की श्रृंखला का चौथा मुकाबला आज ब्रिस्टल में भारतीय समय के अनुसार रात 10 बजे से खेला जाएगा। आप सुन रहे थे इस घंटे की

यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। प्रस्तुत है कार्यक्रम आपकी फरमाइश। कार्यक्रम आपकी फरमाइश में हम आपको आपकी पसंद के गीत सुनाते हैं। ये गीत आप हमें पत्रों के माध्यम से लिखकर भेजते हैं। सबसे पहला गीत आप सुनेंगे फिल्म आशिक से। गीत को सुरों से सजाया मुकेश ने। गीतकार हैं शैलेंद्र, संगीतकार हैं शंकर जयकिशन। इस गीत के लिए फरमाइश हमें आई है औरंगाबाद से। श्रोता हैं राजेश साबले पाटिल, शीतल राजेश, राजदीप और राशि राजेश। अगले श्रोता इंदौर से हैं श्रद्धा शर्मा, आयुष शर्मा, पुष्पेंद्र शर्मा, विपिन मिश्रा और आशा शर्मा। सुनते हैं आपकी पसंद का गीत।

0: बहारों का, मैं आशिक हूँ बहारों का।
1: मोहम्मद रफ़ी के स्वर में अगला गीत आप सुनेंगे फिल्म मेला से। ये खूबसूरत गीत लिखा है शकील बदायूं ने, गीत को संगीतबद्ध किया नौशाद ने। इस गीत के लिए फरमाइश हमें आई है सिंहपुर बड़ा से, श्रोता हैं राजेश नेमा, संगीता भावना और प्राची नेमा। अगले श्रोता कनेरा पटियाला से हैं, मुकेश बत्ता, नीलम बत्ता, नितिन, पलक, करण, गीतू, निहारिका और वंश बत्ता। चलिए श्रोताओं सुनते हैं आपका फरमाइशी गीत।

लता मंगेशकर और किशोर कुमार के स्वर में अगला गीत आप सुनेंगे फिल्म अभिलाषा से। गीतकार हैं मजरू, संगीतकार हैं आर डी बर्मन। इस गीत के लिए फरमाइश हमें आई है नेपाल पैलेस सागर से। श्रोता हैं तिलक राणा, मीना राणा, मोनिका नुपुर, ऋषिका और रॉबिन। अगले श्रोता खंडवा ग्राम लोहारी से हैं राजेश कुमार धनजे, राहुल कुमार धनजे, विशाल कुमार, शीला, गायत्री। अगले श्रोता खुर्दी रोड मानपुर से हैं विजय वैद, रानी वैद, महिमा वैद और नीतू। सुनते हैं आपका फरमाइशी गीत।

प्यार हुआ है जब से।

फिल्म शिकारी से अगला गीत आप सुनेंगे मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर के स्वर में। इस गीत के लिए फरमाइश हमें आई है रजावत कॉम्प्लेक्स एमपी शाजापुर से। श्रोता है मनमोहन रजावत, राज, मधु, राशि रक्षित, चितरंजन कमल उमेश, सरोज आरती कमल, रितिका रिचा स्वीटी सागर और ऋषभ रजावत। सुनते हैं आपकी पसंद का गीत।

अगला गीत अनुराधा पौडवाल और मंगल सिंह के स्वर में आप सुनेंगे फिल्म बहार आने तक से। गीत लिखा इंदिवर ने, संगीतकार राजेश रोशन। इस गीत के लिए फरमाइश हमें आई है घंटागढ़ चौक खंडवा से। श्रोता है संजय पंचोलिया, प्रियंका पंचोलिया, गुनगुन, संप्रीत, हेमेंद्र और सन्मति पंचोलिया। अगले श्रोता महादेव घाट अमलेश्वर से हैं, डोमन ठाकुर, सुमन ठाकुर, मिथिलेश, तारनी, सूरज, ज्योति, रियांश और गुड़िया ठाकुर। अगले श्रोता भाटापारा दत्तरेंगी से हैं, द्वारिका प्रसाद वर्मा, किशोर कुमार वर्मा, दीपक कुमार और झावेंद्र कुमार वर्मा।

अलका याग्निक के स्वर में अगला गीत आप सुनेंगे। फिल्म का नाम दिल का रिश्ता। गीत लिखा समीर ने, संगीतकार है नदीम श्रवण। इस गीत के लिए फरमाइश हमें आई है डोगर गांव छत्तीसगढ़ से। श्रोता है राष्ट्रपाल गजबिये, राधिका गजबिये, बेबी अनिष्का और तन्मय गजबिये। इन्हीं के साथ हैं बिलाईगढ़ छत्तीसगढ़ से रोशन देवांगन, कौशल्या देवांगन, हेमलता और डिम्पल देवांगन। अगले श्रोता बनियापारा धमतरी से हैं। रामचंद माखीजा, सविता माखीजा, स्वाति माखीजा, खुशी, शरद और पूजा। सुनते हैं आपकी पसंद का गीत।

अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना। जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना। हर संकट का समाधान है भारतीय सेना। भारत का गौरव है, स्वाभिमान है भारतीय सेना।

0: Cena.
1: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की बुरी बुरी प्रशंसा कर रही है।
2: हो चुनौती कोई भी कैसी भी मुश्किल हर जगह है।

0: निकल पड़े, घटना स्वयं ही घट पड़े। भारतीय सेना।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
2: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
3: सुनिए एनसीईआरटी का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे आकाशवाणी भोपाल पर।

0: लीजिए दोस्तों, एक बार फिर इस नई कड़ी के साथ हाजिर है आपका अपना दोस्त रजनीकांत त्रिवेदी।
1: तो दोस्त मिले?
2: हाँ जी बोलिए।
1: एक बात बताऊं?
2: जी जी।
1: अभी 4-5 दिन पहले मैं सूट पहन के,
0: अच्छा बढ़िया टाई सूट नया और जूते में पॉलिश वगैरह, ऐसा सब बढ़िया टिप टॉप बन के सब्जी बाजार गया।
2: सब्जी बाजार?
0: हाँ, अच्छा। आलू लेना था, बटा लेना था और वगैरह वगैरह, धनिया मिर्ची वगैरह। लेकिन एक बात बताऊं
2: जी,
0: आलू महंगा मिला,
2: अरे
0: भटा महंगा, गोभी महंगी, हरी धनिया मिर्चियां, जितनी भी सब्जी मैंने खरीदी सब महंगी मिली।
2: अरे
0: सब महंगी। हाँ, और जब 2 दिन के बाद सूट मैंने नहीं पहना, मैंने क्या किया, एक पुराना सा मेला कुर्ता था मेरे पास, फटा पैजामा था,
2: क्या बात है,
0: एक रद्दी वाली स्लीपर दी, उसको पहन के मैं सब्जी लेने गया। अरे भैया, आलू सस्ता, भिंडी सस्ती, गोभी सस्ती, ये हमारे आज तक नहीं समझ में आया कि लोग सूट जो पहन के आते हैं उनको महंगा क्यों देते हैं। हाँ यार, हमको महंगा दिया, और जब हम आपका कुर्ता फटा वाला पैजामा वगैरह पहन के गए तो हमको सस्ता दिया यार उन्होंने।
2: सस्ता दिया?
0: हाँ,
2: ये तो कपड़ों का असर लगता है हमको भैया। ऐसा लगता है कि सूट के कारण आपको महंगा दिया।
0: हाँ?
2: और फटे कुर्ते के कारण आपको सस्ता कर दिया।
0: हाँ?
2: औकात देख के।
0: हाँ?
2: अब आप तो एक काम कीजिए,
0: बोलिए,
2: कटोरा लेके चले जाते तो सब्जी फ्री में मिल जाती। एक साहब शौकीन तबीयत के थे, हमेशा अच्छा खाना और अच्छे पहनने पर ज्यादा विश्वास रखते थे, और शौकीन तबीयत के होने के कारण कभी कभार ड्रिंक वगैरह का भी शौक करते थे, और काफी इस तरह के शौक पालते पालते 4 दोस्त और यारों के बीच में काफी प्रसिद्धि पा गए कि साहब फला और अमुक व्यक्ति तो इतने ज्यादा शौकीन है कि इनके सामने खाने पीने की कोई भी वस्तु ला के रख दी जाए और इनकी आंख में पट्टी बांध दी जाए तो ये बिना देखे सिर्फ सूंघ कर ये बता सकते हैं कि ये कौन सा पदार्थ हमारे सामने रखा हुआ है। तो ये तो साहब बहुत अच्छी बात है, एक बार उनकी परीक्षा ली जाती है, आंख में पट्टी बांध दी जाती है, उनके सामने एक कप प्याली ला चाय की रखी जाती है, अब बोला जाता है कि साहब बताइए क्या है, आप फौरन सूंघ के बताते हैं साहब ये चाय है। दूसरे सेकंड में उनके सामने कॉफी का प्याला आ जाता है, बोले साहब ये बताइए ये क्या है, बोले साहब ये कॉफी है। तीसरे सेकंड में उनके पास टमाटर सूप का एक मग आ जाता है, बोले साहब ये बताइए ये क्या है, आप आंख में पट्टी बांधे लगातार सूंघ के बताते जा रहे हैं, बोले साहब ये टमाटर सूप है। उसके बाद एक ड्रिंक का पैक उनके सामने लाया जाता है ग्लास में भर के, बोले साहब ये क्या है, आप फौरन

कोई ऐसा नाम बता देते, बोले साहब ये हेड वाइपर है, ये ब्रोक राइटर है, ये रूम साइटर है, ये जूनिक बॉक्स है। बोले साहब ये तो हर टाइप का ब्रांड पहचानते हैं, एक ग्लास में खाली पानी भर के इनको दे दिया जाता। बोले साहब बताइए ये कौन सा ब्रांड है। अब पानी को जैसे ही सूंघते हैं उसको दोबारा सूंघने की आवश्यकता महसूस करते हैं, उसके बाद ग्लास रख देते हैं और फौरन बोलते हैं साहब ब्रांड जरूर नया है लेकिन मार्केट में ज्यादा दिन चलेगा नहीं। गीत और संगीत के बहुत सारे जोक्स और ऑब्जर्वेशंस आपने सुने होंगे। मैं एक ऐसा म्यूजिकल आइटम प्रस्तुत कर रहा हूँ जिसमें एक अंग्रेज जो कि अंग्रेजी भाषा का ज्ञान रखता था और हमारे देश में काफ़ी समय से रह रहा था तो टूटी फूटी हिंदी भी बोल लेता था, लेकिन कुछ भजनों और गीतों को, क्योंकि हिंदुस्तान की संस्कृति बहुत पुरानी है और इसके लिए वो कई गीतों को पसंद किया और उन गीतों को वो अपनी भाषा में कुछ अंग्रेजी का समावेश करके कुछ हिंदी के शब्दों का चयन करके आप तक पहुंचाया करता और जो उसको पसंद था तो वो लोगों को सुनाया करता और लोग काफ़ी अप्रिशिएट करते। वही कुछ बातें हमने भी सुनी, आपकी प्रस्तुत आपकी नज़र कर रहा हूँ। सबसे पहले अंग्रेज एक भजन प्रस्तुत कर रहा है, मैं आपको वो ओरिजिनल भजन सुनाने जा रहा हूँ, वो भजन कैसा है और उसके बाद उसकी दो लाइनों के बाद वो अंग्रेज अपने अंग्रेजी शब्दों के समावेश के साथ उस भजन को कैसे प्रस्तुत कर रहा है, दोनों बातें एक साथ प्रस्तुत।

और इस सुंदर से भजन को अंग्रेज महोदय ने जिस समय गाना शुरू किया तो अपने शब्दों के समावेश के साथ वो किस तरह गा रहे हैं, देखिए उनका अंदाज कुछ और है और वो उस तरह के भजन को अपने अंदाज में किस तरह सुना रहे हैं, एक बार फिर से

अंग्रेज साहब से जब बोला गया कि आप इस तरह भजन तो हमको आपका बहुत पसंद आया, लेकिन आप कुछ ऐसा कोई गीत सुना सकते हो तो साहब हमें बड़ा मजा आएगा। अंग्रेज साहब ने किसी हिंदी फिल्म के गीत को सुनाने का प्रयास किया, उसमें भी कुछ अपने शब्दों का समावेश किया। तो देखिए, हिंदी फिल्म का किसी हिंदी फिल्म का कोई अच्छा सा गाना जो शायद आ चुका हो या आने वाला हो, आपकी नज़र कर रहे हैं।

अंग्रेज ने इस गीत को कैसे आप सभी के सामने, हम सभी के सामने प्रस्तुत किया, ये अंदाज प्रस्तुत कर रहा हूँ। अंग्रेज इसी गीत को कैसे प्रस्तुत करेगा, अंग्रेज अपने अंदाज में, अपने स्टाइल में।

0: मना है,
1: रे हंसना मना है,
0: हंसना मना है।
1: कोशिश कोई लाख करे कहता रहे कि हंसना मना है, मगर लोग हंसेंगे खिलखिलाएंगे। एक बात आपसे खास तौर पे कहना चाहते हैं हम कि इस कार्यक्रम का नाम है
0: हंसना मना है।
2: माहौल शादी का हमारे पूरे भारतवर्ष में समय समय पर होता आ रहा है और विगत हजारों सैकड़ों हजारों साल से होता आ रहा है ये माहौल शादी का। जब शादी के माहौल की हम एक जब शुरुआत करते हैं, लड़की को देखने का सिलसिला शुरू होता है, लड़का आता है, लड़की को देखता है और फिर सगाई होती है, लगुन भेजी जाती है, फिर शादी की और भी बहुत सारी रस्म पूरी होती हैं, तो इस सब माहौल को देख के बड़ा आनंद आता है। अब विश्वास करिए कि जब कभी भी आप किसी की शादी में जाते हैं मेहमान बनके उसके निमंत्रण पर, तो मुझे पूरा पूरा विश्वास है कि जब आप किसी की शादी में जाते हैं तो आपको अपनी शादी की बात जरूर याद आती होगी। जो कुंवारे हैं उनको तो खैर नहीं आती, क्योंकि वो तो खैर बेचारे सपने देखते रहते कि काश हमारी शादी होती, न जाने कब हमारी शादी होगी। लेकिन जिनकी शादी हो चुकी है उनको दूसरे की शादी देख के अपनी शादी की जरूर कहानी याद आती है। तो कुछ इसी तरह की बात मैं आपको सुना रहा हूं कि मेरी शादी में क्या क्या हुआ, ये मैं आपको सुना रहा हूं, क्योंकि अभी कल ही मैं एक की शादी में गया था। बड़ा बढ़िया खाना पीना बना था, दूल्हे राजा बैठे थे, दुल्हन साहिबा आई, बहुत आनंद आनंद हुआ, गाना बजाना भी हो रहा था, बड़ा अच्छा लग रहा था। तो जो मेरी अपनी शादी हुई है उसमें बहुत ज्यादा परेशानियां हुई हैं, वो परेशानी मैं आप तक पहुंचा रहा हूं, परंतु आप सभी से ये निवेदन है कि आप किसी को बताएं ना कि मेरी शादी में क्या क्या परेशानी हुई है, क्योंकि आप हमारे अपने हैं, आप हमारी आकाशवाणी के हैं, हम आकाशवाणी के हैं, आप हमारी आकाशवाणी के हैं, हम सभी फैमिली मेंबर्स हैं, लेकिन हमारी बात आप किसी को बताइएगा नहीं, है ना। चलिए ठीक है, तो मैं सुना रहा हूं अपनी शादी की कहानी। हमारी बारात चली जबलपुर शहर से, चलती गई चलती गई चलती गई गुजरात पहुंची। जब गुजरात हमारी बारात पहुंची तो हमारे जो पिताजी हैं उन्होंने हमारे ससुर को यानी

सामने वाले ससुर को पत्र के माध्यम से यह सूचना दे दी थी कि मेरा लड़का जो दूल्हा बन के आ रहा है वो कार में नहीं बैठेगा, जीप में नहीं बैठेगा, ना तांगे घोड़े पे बैठेगा, वो सिंगल घोड़े पे जरूर बैठेगा, इसलिए घोड़े की व्यवस्था की जाए। ठीक है साहब, हमारे ससुर साहब बड़े सीधे साधे थोड़ा पहलवान है, उनकी वैसे तो थोड़ा बुद्धि में थोड़ा सा डिस्टर्बेंस है, उनकी बालकनी लोग कहते हैं कि खाली है। तो ठीक है साहब, कहानी आगे हमारी शादी की बढ़ती है। घोड़े का इंतजाम किया गया, वो घोड़ा किसी के घर का नहीं था, सर्कस का घोड़ा था। अब सर्कस का घोड़ा दूल्हे के लिए बुलवाया गया। हम जैसे ही उस घोड़े पे बैठे, बैंड बाजे बजे, तो बैंड जब बजते थे तो वो घोड़ा नाचने लगता था, और जब वो नाचे तो हम गिर पड़े। अब बताइए, दूल्हा अगर घोड़े से गिर जाए तो कितना बुरा लगेगा। हम तो 5 बार गिरे और 5 बार फिर उठ गए, फिर बैठ गए। चलिए ठीक है साहब, कन्या पक्ष के द्वार पे हमारी बारात चली जा रही है, बैंड बाजे बज रहे हैं। तो बैंड बाजे जब बज रहे थे तो स्वागत सत्कार हुआ, कन्या पक्ष वाले स्वागत के लिए खड़े हो गए, कोई फूल माला लिए है, कोई कुछ लिए है, कोई चावल लिए है, कोई आरती लिए है। तो पहले वहाँ का दृश्य जो मुझे याद आ रहा है वो मैं आपको सुना रहा हूँ। ये बैंड बाजे की आवाज़ बड़ी दूर से सुनाई दे रही है।

बारात चली आ रही थी, मेरी बारात चली आ रही थी, मैं तो दूल्हा बना हुआ था, वो किराए के घोड़े पर बैठा था और भगवान को बार बार याद कर रहा था कि हे भगवान ये घोड़ा अब ना नाचे, और अगर ये नाचा तो मैं गिरा और दूल्हा बन के फिर से एक बार गिरूंगा तो कितना बुरा लगेगा। धीरे धीरे धीरे धीरे चली आ रही है बारात, ये कन्या पक्ष के द्वार पे बारात पहुंची। कन्या पक्ष के द्वार पे बारात पहुंची तो लोगों ने फूल मालाओं से हमारा स्वागत किया, कहा आइए साहब आइए, आइए साहब आइए, आपका स्वागत है साहब, आइए आइए, अरे कुर्सियां लाओ भाई, कुर्सियां लाओ, अरे कुर्सियां लगाओ भाई साहब, हैं कुर्सी नहीं आई क्या, तो किसी का टेबल कुर्सी को छोड़ तखत तखत कुछ बुलवा लो भाई, अरे चादर वादर कुछ बोरा वोरा बिछा दो भाई जल्दी, आइए साहब आइए आइए आइए, अरे फूल माला लाओ, हाँ गुलाब जल लाओ, गुलाब जल लाओ, आइए साहब आइए आइए, आइए साहब आइए, गुलाब जल नहीं है, गुलाब जल बिल्कुल नहीं है, तो एक काम करो वो जो गुलाब जल की शीशी जो वो स्टील का जो वो डालने का है ना, गुलाब जल छिड़कने का है, उसमें एक काम करो पानी डाल के ले आओ, आइए साहब आइए, आइए साहब आइए, बहुत अच्छे, पूरी बारात आ गई, अरे दूल्हे राजा आ गए, दूल्हे राजा आ गए, आइए साहब आइए आइए, हाँ अरे बैंड वाले भैया, ओ बैंड बाजे वाले भैया, ओ भाई बैंड बाजे वाले भैया, अरे जरा बंद कर देना भाई, अरे अरे मिलनी का प्रोग्राम होने वाला भाई, ओ बैंड बाजे वाले, अरे बंद करो बंद करो, ये किसने चिल्लाया बंद करो बैंड वाले भैया लोगों को, मेरे ससुर ने, वो जो ससुर हैं हमारे आज भी हैं, जीवित अवस्था में हैं, बहुत सारी उम्र भगवान से वो लेके आए हैं, हाँ, हाँ, हाँ, उन्होंने बहुत जोर से चिल्लाया, पहलवान तो है वो, उन्होंने बड़ी जोर से चिल्लाया, बैंड बाजे वाले बंद कर दिए बजाना, बजाना क्या बंद कर दिए, वो तो घर चले गए, हाँ उन्होंने रुकना पसंद ही नहीं किया, सीधे घर वापस। चलिए ठीक साहब, अब क्या होता है, हम तो दूल्हे बन के खड़े हुए हैं द्वार पे, घोड़े पे बैठे हुए, बड़ा मजा आ रहा था, हमको वैसे थोड़ी सी शर्म भी आ रही थी, क्यों शर्म आ रही थी, इसलिए शर्म आ रही थी कि हम पहली बार दूल्हा बने थे पहली बार दूल्हा बने थे, तो कुछ शर्म भी आ रही थी और खुशी भी हो रही थी। ठीक है साहब, अब क्या होता है, जब कन्या पक्ष के द्वार पे बारात आती है, माहौल बड़ा खुशी का होता है, हैं लोगों के मन, जितने भी कन्या पक्ष वाले हैं, जितने भी वर पक्ष वाले हैं, वो कुछ ना कुछ खुशी के गीत गुनगुनाते जरूर हैं, है ना, तो हमारे यहाँ पर हमारी बारात में भी गुनगुनान का प्रोग्राम हुआ था, लेकिन गुनगुनाने वाला कोई मनुष्य रूप धारण किए हुए नहीं था, वहां पर एक स्पीकर वाला भैया बैठा था, पुराने जमाने का स्पीकर वाला, उसके पास बड़े बड़े रिकॉर्ड थे, बड़ी अच्छी अच्छी पुरानी पुरानी कंपनी में, वो कौन कौन से रिकॉर्ड थे, आपने कभी आकाशवाणी से वो गाने सुने होंगे, बड़े पुराने पुराने गाने सुनाते आकाशवाणी वाले, और हमारे दूरदर्शन वाले भी बड़े प्यारे प्यारे गाने सुनाते भी हैं और दिखाते भी हैं, तो ये तो सुना रहा था कौन, हमारी शादी वाला स्पीकर वाला, पुराने जमाने का ग्रामाफोन था उसके पास, कौन सा ग्रामाफोन, आजकल तो क्या है वो को टेप रिकॉर्डर चल रहे हैं और रिकॉर्ड प्लेयर चलते हैं, सीडी वगैरह चल रही है, बड़ा मॉडर्न जमाना है, हम तो पुराने समय की कहानी आपको सुना रहे हैं, जिस समय ग्रामाफोन चला करते थे, वो उसने क्या किया, स्पीकर वाले भाई ने ग्रामाफोन में चावी दी, जब चावी भरी तब तो वो तैयार हुआ वो चलने के लिए, कौन, ग्रामाफोन, उसने पुराना रिकॉर्ड बजाया, हमने कहा वाह वाह वाह वाह, ऐसा

रिकॉर्ड नहीं बजाना चाहिए, उसको मेरी शादी में जब कन्या पक्ष के द्वार पे बारात आई उस समय स्पीकर वाले भाई को थोड़ी सी बुद्धि का इस्तेमाल अगर वो कर लेता तो कौन सा गीत बजाता, मेरी प्यारी बहनिया बनेगी दुल्हनिया, सच के आएंगे दूल्हे राजा, भैया राजा बजाएंगे बैंड बाजा। लेकिन नहीं, वो बुद्धिहीन था, अखंड बुद्धिहीन था वो। उसने मेरी शादी में जब मैं कन्या पक्ष के द्वार पर खड़ा हूँ, घोड़े पे बैठा हूँ, उस समय स्पीकर वाले भाई ने कितना गलत रिकॉर्ड बजाया ग्रामाफोन में चावी देने के बाद। अरे हाँ, उनके ग्रामाफोन में चावी देने की आवाज से मैं पहले आपको परिचय करा दूं, बड़ा अजीबो गरीब उसमें से साउंड निकलता है, कैसा आवाज, ये ग्रामाफोन में चावी देने की आवाज है, ये आपको हर बार सुनाई देगी। हाँ, चाहे आप आज सुन लो तो कल सुन लो तो, क्योंकि उनका जो ग्रामाफोन था बहुत पुराने जमाने का था, सिकंदर आजम के जमाने का, कुतुबुद्दीन तुगलक, मोहम्मद गौरी शेर शाह सूरी के जमाने का था, शायद मोहन जोदड़ो की खुदाई में उनको मिला था, भगवान जाने कहां से मिला था, जब वो ग्रामाफोन में चावी देते तो ऐसी आवाजें आई। ठीक है साहब, अब हम खड़े हैं, अब देखिए कौन सा गलत रिकॉर्ड बजा रहा है, संपूर्ण गलत रिकॉर्ड, कौन सा।

मर गई मैं कि मिट गई मैं कि आया आया अटरिया पे कोई चोर आया आया। बताइए हम दूल्हा बन के खड़े हैं द्वार पे घोड़े पे बैठे हैं, स्पीकर वाले भैया क्या बोलते हैं, आया आया अटरिया पे कोई चोर। बात गलत है ना? ठीक है साहब, हमारे ससुर साहब आ गए, भगवान उनका भला करे, थोड़ी सी बुद्धि उनकी कम है, पहलवान है। तो वैसे पहलवान खराब नहीं होते, बहुत अच्छे होते हैं, बहुत समझदार होते, बड़े ज्ञानी होते हैं, है प्रभु भक्त होते हैं, लेकिन हमारे ससुर थे थोड़ा सा अनोखा ही स्वभाव था उनका। वो हमारे पास आए, हमसे बोलते हैं, हाँ दूल्हे राजा, हे दूल्हे राजा अब आप आ गए हैं, हैं दूल्हे राजा अब आप नीचे घोड़ी से, हे दूल्हा, अरे हे दूल्हा, अबे हे दूल्हा नीचे उतर। तो हम उतरने की जगह गिर पड़े। तो लोगों ने कहा, कन्या पक्ष वाले बोलते अरे दूल्हा गिर गया दूल्हा गिर गया। तो हम खड़े होकर बोलते, हमने कहा किसने कहा गिर गया, ये तो हमारी स्टाइल है, हम ऐसे ही उतरते हैं। चलो साहब, कन्या को बुलाया गया, यानी मेरी धर्मपत्नी जो अब हो चुकी है, उस समय तो होने वाली थी, मेरी धर्मपत्नी को बुलाया गया। उनके हाथ में एक फूल माला, एक हाथ में मेरे फूल माला, मैंने उनको माला पहनाई, उन्होंने मुझे माला पहनाई। उस समय स्पीकर वाले भैया को बहुत अच्छा गीत बजाना चाहिए था, लेकिन नहीं, वो बुद्धिहीन था, अखंड बुद्धिहीन स्पीकर वाला था। अरे हाँ, एक बात बताना भूल गया मैं, जो हमारे मित्र वर्ग हैं जो मेरी शादी में मेरे साथ गए थे मेहमान बन के, उन सभी ने मुझसे बोल दिया था कि दूल्हे राजा इतना याद रखना, जिस समय तुम्हारी धर्मपत्नी पहली बार तुम्हारे सामने आए माल्यार्पण के लिए जयमाल के लिए, उस समय अपनी धर्मपत्नी का चेहरा देखना नहीं। तुमने क्यों भाई, वो तो मेरी पत्नी होने वाली है, मैं क्यों चेहरा ना देखूं? कहता नहीं नहीं मत देखा, उस समय नहीं देखते भाई, बड़ा बुरा लगता है, बाद में तो जीवन भर देखना है। हमने चलो भाई आपकी बात मान लूंगा, आंखें अपनी बंद कर लूंगा, नहीं देखूंगा। वहां पर हुआ उल्टा, मेरी जो धर्मपत्नी थी उनकी जो सहेलियां थी उन्होंने कुछ मेरी वाइफ से कुछ और अजीब सी बात कही। क्या कहा? सुनो दुल्हन, जब तुम्हारी शादी हो रही है ना, वो तो जब तुम माला पहनाने अपने दूल्हे राजा के पास जाओगी ना, तो जब माला पहनाओगी ना, तो उस समय अपने पति का चेहरा देख लेना। हाँ, अगर एंड बैंड मोटर स्टैंड हो तो माला नहीं पहनाना। हाँ, नहीं तो एक बार माला पहना दी ना, तो समझ जाओ गई भैंस पानी में। ठीक है साहब, उन्होंने मुझे माला पहनाई, मैंने उनको माला पहनाई, जयमाल हो गया, बड़ी खुशी का माहौल था, बहुत आनंद आ रहा था। उस समय स्पीकर वाले भैया को कुछ आशीर्वाद स्वरूप कोई बढ़िया सा गाना बजाते था, लेकिन नहीं, उसने नहीं बजाया, उसने अपने मन का किया। जब मेरी वाइफ ने मुझे देखा, होने वाली वाइफ ने जब मुझे देखा, उस समय कोई पुराने जमाने के ग्रामाफोन में चाबी देने के बाद कौन सा रिकॉर्ड बजाता है, वो आए आए

0: बोलते हैं, एक फेरा हुआ, दूसरा हुआ, तीसरा हुआ, तो जो हमारे पूजा कराने वाले श्रीमान जी आए थे, उन्होंने थोड़ा सा, मालूम नहीं क्या बात है, थोड़ा लालच उनमें जरा ज्यादा आ गई थी, क्या इत्तफाक था भगवान जाने। वैसे लालच आना नहीं चाहिए, लेकिन न जाने कौन थे वो, मुझे कुछ अजीब से लगे जो मेरी शादी करा रहे थे। वो श्लोक बोलते जा रहे हैं और कुछ अनोखी अनोखी चीजें की डिमांड भी कर रहे हैं। देखिए उनका श्लोक बोलने का तरीका और वो क्या क्या मांग रहे हैं, जरा ध्यान पूर्वक सुनेंगे, बड़ा मजा आएगा। ओम लड़का लड़की के नाना नानी काका काकी मासा मासी भाई भाभी सबको बुलाओ स्वाहा। अब सब होती है विदाई। दूसरे दिन विदाई का मार्मिक बड़ा दृश्य होता है। विदा हो रही थी, सभी लोग रो रहे थे, कुछ लोग मजबूरी में रो रहे थे। मजबूरी में रो इसलिए रहे थे कि नहीं रोएंगे तो रिश्तेदारी में गड़बड़ी हो जाएगी, इसलिए लोग संतरे के छिलके आंखों में मार के रो रहे हैं, कुछ लोग पिपरमेंट लगा के रो रहे थे। चलिए साहब, जब पूरी जनता रो रही थी उस समय कन्या का छोटा भाई यानी मेरी धर्म पत्नी का भाई, मेरा साला हुआ वो, है ना, तो मेरा साला मेरे ससुर के पास यानी वो स्वयं अपने पिता के पास जाकर बोलता है,
1: कहले बाऊजी अपनी दीदी बहुत रो रही है, बाऊजी बहुत रो रही है बाऊजी, वो जो जीजा जी जबलपुर से जो गोली पे बैठ के दूल्हा बन के आए हैं ना बाऊजी, ये तो बहुत हंस रहे हैं बाऊजी, अपनी दीदी रो रही है और जो जीजा जी हंस रहे हैं, ऐसा क्यों है बाऊजी।
0: तो मेरे ससुर ने, उस लड़के के पिता ने कितनी बात बढ़िया कही, कहा बेटा तुम्हारी बहन इसलिए रो रही है कि आज उसको आखिरी दिन रोना है बेटा, और तुम्हारा बहनोई जीजा जो जबलपुर से आया है वो इसलिए हंस रहा है कि बाकी जिंदगी उसको रोना है बेटा। कन्या की विदा हुई, दुल्हन साहिबा यानी हमारी धर्मपत्नी को हम विदा करा के जबलपुर ला रहे थे। उस समय स्पीकर वाले भैया को कोई बहुत अच्छा गीत बजाना चाहिए, लेकिन नहीं, वो जो स्पीकर वाला था वो आकाशवाणी से संबंधित नहीं था, उसने पूरी तरह गलत रिकॉर्ड बजाया विदा के समय। कौन सा रिकॉर्ड बजाया देखिए।

0: अभी आप सुन रहे थे संग्रहालय से, के अंतर्गत धारावाहिक हंसना मना है की 8वीं कड़ी। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है।
1: कभी हंसाकर, कभी रुलाकर, कभी कहानी बनकर तो कभी कविता बनकर, कभी कोई तराना तो कभी जिंदगी नामा, कभी खबरें हमारी जिंदगी में रंग भरे, मन की बात, जन जन की बात।
0: आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण। सुनिए इस घंटे की खास खबरें।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बानीज ने रक्षा और सुरक्षा सहयोग पर संयुक्त घोषणा पत्र जारी किया। इसमें दोनों नेताओं ने भारत ऑस्ट्रेलिया समुद्री सुरक्षा सहयोग

0: मैप के माध्यम से समुद्री सहयोग को और मजबूत करने पर सहमति व्यक्त की। प्रधानमंत्री श्री मोदी ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बानीज के साथ बहुप्रतीक्षित तीसरे वार्षिक नेता शिखर सम्मेलन में शामिल हो रहे हैं। दोनों नेताओं के बीच कई महत्वपूर्ण विषयों पर व्यापक चर्चा होने की उम्मीद है। भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता में 11 और 12 तारीख को नागपुर में ब्रिक्स सदस्य देशों के मंत्री और वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक होगी। केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी बैठक के दौरान परिवहन क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनाए जा रहे तरीकों का आदान प्रदान और सहयोग के नए क्षेत्रों पर चर्चा करेंगे। पुलिस महानिदेशक कैलाश मकवाणा ने सेफ क्लिक 2.0 अभियान के समापन समारोह में कल भोपाल में बताया कि 15 दिवसीय इस अभियान के दौरान साइबर अपराध, नशे के दुष्परिणाम और सड़क सुरक्षा को लेकर विभिन्न कार्यक्रम आयोजित कर लोगों को जागरूक किया गया। महाराष्ट्र हिंगोली जिले में आज भूकंप के कई झटके महसूस किए गए। रिक्टर पैमाने पर भूकंप की तीव्रता 4.6 मापी गई। इलाके में भूकंप से जानमाल के नुकसान की कोई खबर नहीं है। मौसम विभाग ने आज भिंड जिले में अत्यधिक भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। वहीं 9 जिलों में अति भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट और 11 जिलों में भारी बारिश का येलो अलर्ट है। और भारत इंग्लैंड के बीच 5 T20 क्रिकेट मैच श्रृंखला का चौथा मुकाबला आज ब्रिस्टल में रात 10 बजे से खेला जाएगा। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।
1: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। दिन के 1 बजे हैं। प्रस्तुत है आकाशवाणी के जबलपुर केंद्र की प्रस्तुति महिला कार्यक्रम।

बहनों नमस्कार। कार्यक्रम महिला सभा की आज की कड़ी में आपके साथ हूं मैं, आपकी रेडियो सखी सुधा मिश्रा। कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है आप सबका। बहनों अब तो बारिश की फुहारों ने गर्मी की तपिश से बहुत राहत दे दी है। वर्षा ऋतु का स्वागत तो बहनों हमारे कवियों लेखकों ने अपनी विशिष्ट शैली अपने विशिष्ट अंदाज में खूब किया है। हमने अपने स्कूली दिनों में भी बहुत कविताएं पढ़ी हैं, सुनी हैं, लेख पढ़े हैं, आलेख पढ़े हैं। मतलब ये बहनों कि वर्षा ऋतु की महत्ता इसकी खूबसूरती से तो हम भली भांति परिचित हैं। बारिश के पानी में कागज की कश्ती, कागज की नाव खूब बनाई खेली होगी आपने भी। पैदल चलते हुए वर्षा के पानी में पैरों से छपाक छपाक करते अटखेलियां करते हुए ही पहले का बचपन बड़ा हुआ करता था। तो आप अपने बचपन की यादों में खो ना जाएं, इसलिए पहले हम आपको लिए चलते हैं इस खूबसूरत बारिश के गीत की तरफ और आपको सुनवाते हैं।

बहनों, अभी हम बात कर रहे थे बारिश के मौसम की खूबसूरती की, लेकिन इस ऋतु में अगर हमने थोड़ी असावधानी रखी बहनों, तो हमें परेशानी हो सकती है। और आपका यह प्रफुल्लित मन गुस्से, परेशानी और चिड़चिड़ाहट से भर सकता है। तो इसलिए बहनों, अपने कार्यक्रम में हम आपको समय समय पर उपयोगी जानकारियां देते रहते हैं, जिससे आप बिना परेशान हुए, बिना ज्यादा किसी तरह की परेशानी में आए, आप हर मौसम का आनंद ले सकें। तो अब बारिश की ही बात लें। इस समय बहनों, हमें अपने खाने पीने में विशेष एहतियात की जरूरत होती है। वातावरण में नमी की वजह से चीजों में कीड़े जल्दी लगते हैं, खाद्य पदार्थ जल्दी खराब होने लगते हैं। तो हमें करना बस इतना है कि भोजन कम बनाना है, जितनी आवश्यकता हो बस उतना ही भोजन बनाएं। भूख से थोड़ा अगर हम कम खाएंगे तो स्वास्थ्य संबंधी कई परेशानियों से भी हम खुद को बचाकर रख सकेंगे। पीने के पानी में भी सावधानी बहुत जरूरी है बहनों। दूषित जल बिल्कुल भी ना पिएं, पानी

0: का पात्र भी बिल्कुल साफ सुथरा रखें, फिल्टर पानी ही पिएं। अगर फिल्टर की सुविधा न हो तो पानी को उबाल कर ठंडा करें और छान कर उसका सेवन करें। निश्चित रूप से आप कई बीमारियों से बची रह सकेंगी। अपने घर और आसपास पानी न जमा होने दें ताकि मच्छर न बढ़ें और डेंगू और मलेरिया जैसी बीमारियों से हम अपने आप को बचा कर रख सकें। बहनों, इस समय वाहन चलाते समय भी विशेष रूप से हमें ध्यान देना है। अगर आप गाड़ी चला रही हैं तो अपनी गति नियंत्रित रखें, हेडलाइट का उपयोग करें और पर्याप्त दूरी भी बनाकर रखें। गीले हाथों से घर के किसी भी स्विच या विद्युत उपकरण को न छुएं। अगर आप कहीं रास्ते में हो बहनों और बारिश होने लगे और बिजली चमकने लगे ज्यादा, तो ध्यान रखें कि खुले मैदान, विद्युत खंभे, ऊंचे पेड़ के नीचे आप न खड़े हों। यहाँ इन जगहों से खड़े होने से आप बचें। अगर भीग गई हो पानी में तो जल्दी से जल्दी सूखे कपड़े पहने, क्योंकि इस समय त्वचा संबंधी भी तमाम परेशानियां हो जाती हैं। तो बहनों, बस हमें थोड़ा सा अपनी दैनिक दिनचर्या में अगर हम थोड़ा सा परिवर्तन लाएंगे, अपने घर को थोड़ा और ज्यादा सूखा और साफ सुथरा रखने की कोशिश करेंगे, तो निश्चित रूप से हम इस मौसम का पूरा आनंद ले सकेंगे। क्योंकि बहनों, वर्षा केवल ऋतु नहीं, प्रकृति का वह मधुर संगीत है जो सूखी धरती में भी नए जीवन का संचार कर देता है। तो थोड़ी सी सावधानी से हम भी इस ऋतु के नवजीवन के संदेश को आत्मसात कर सकते हैं। और अब हम आपको सुनवाते हैं आज की अपनी भेंटवार्ता। आज की हमारी भेंटवार्ता का विषय है बहनों, बच्चों को दांत निकलते समय होने वाली समस्याएं और निदान। इस विषय पर डॉक्टर अश्विन कुमार त्रिवेदी से बातचीत की है हमारी साथी आशा पारे ने।
1: सेहत की बात कार्यक्रम में आज का विषय है बच्चों को दांत निकलते समय होने वाली समस्याएं और निदान। बहनों, हम सब जानते हैं कि बच्चों में दांत निकलने की जो शुरुआत होती है वो ऐसा समय होता है जब बच्चा अपनी तकलीफ किसी से नहीं कह सकता, बल्कि उसकी सारी तकलीफें हमें ही समझनी होती है। तो आज इसी विषय पर विस्तार से चर्चा करने के लिए हमारे बीच हैं डॉक्टर अश्विनी कुमार त्रिवेदी, वरिष्ठ दंत चिकित्सक। और डॉक्टर साहब से हम इस बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो आपका इस स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है।
2: नमस्कार।
1: नमस्कार डॉक्टर साहब, बच्चों में किस उम्र से दांत निकलने की शुरुआत हो जाती है?
2: बच्चों में 6 माह का जब बच्चा होता है तब दांत निकलते हैं, और ये जो दांत हैं, नीचे के जो दांत रहते हैं नीचे के जबड़े में, वो सामने के दांत निकलना चालू होते हैं, और 2.5 वर्ष तक की उम्र में ये दूध के दांत निकलते हैं। पहले इन्हें दूध के दांत कहा जाता है
1: जी।
2: मिल्क टीथ भी कहते हैं इनको, हम अपनी डेंटिस्ट्री की भाषा में डेसिडुअस टीथ कहते हैं। 2.5 साल के पश्चात जब बच्चा 6 साल का होता है तब उसके परमानेंट टीथ, जो कि जीवन भर उसके साथ देते हैं, वो निकलना चालू होते हैं। और ये दूध के दांत जो है उस समय से निकल मुंह के अंदर से बाहर निकल जाते हैं
1: जी। डॉक्टर साहब, ये देखा गया है कि जब बच्चों में दांत निकलने की शुरुआत होती है तो बच्चे कुछ चिड़चिड़े हो जाते हैं, उनका रोना भी बढ़ जाता है, तो क्या उनको कोई तकलीफ होती है इस
2: हाँ,
1: समय में?
2: बच्चों के जब दांत निकलते हैं तो बच्चों में जो मेनली जो देखा गया है कि दस्त लगने की प्रॉब्लम, जिसे हम डायरिया कहते हैं
1: जी,
2: उल्टियाँ होती हैं बच्चों को, सर्दी जुकाम होता है, हल्का सा फीवरिश भी बच्चों को आता है, बुखार भी रहता है, और बच्चे चिड़चिड़े हो जाते हैं
1: जी। तो उस समय में हमको क्या करना चाहिए?
2: उस समय पे जैसे कि ग्राइप बॉटल वगैरह है, कैल्शियम की सिरप है
1: जी,
2: ये देना चाहिए। और बच्चा अगर फीवर में है तो पैरासिटामोल के ड्रॉप्स देना चाहिए। बेटर ये रहेगा कि बच्चों के जो डॉक्टर रहते हैं उनसे कंसल्ट कर लिया जाए उस समय, तो वो क्योंकि हम लोग क्या है कि बच्चे जो बहुत छोटे बच्चे रहते हैं उनके जो ड्रॉप्स रहते हैं, डोजेज रहते हैं, वो उनको बहुत अच्छे से मालूम रहते हैं
1: जी।
2: तो बच्चों के डॉक्टरों से परामर्श करना चाहिए।
1: अच्छा, जैसा कि हम जानते हैं कि 4 माह के बाद बच्चे को हम कुछ आहार ऊपरी भी देना शुरू कर देते हैं, तो क्या उस समय में भी कुछ खान पान का विशेष ध्यान रखें, या जैसे माँ फीडिंग कराती है तो माँ अपने खान पान में कुछ परिवर्तन करे?
2: नहीं, माँ को तो पौष्टिक आहार लेना ही चाहिए। जब माँ पौष्टिक आहार लेगी तो स्वाभाविक है कि जो मिल्क है माँ का वो बच्चे के शरीर में जाएगा, तो वो भी उसके लिए ताकतवर साबित होगा।
1: कभी कभी डॉक्टर साहब, जो दांत निकलते हैं बच्चे के, वो टेढ़े मेढ़े से निकलने लगते हैं, तो क्या इस बारे में हम कुछ सावधानी पहले से ले सकते हैं?
2: देखिए, दूध के दांत जो है जब बच्चा अंगूठा पीता है तो ये जो जब तालू है ऊपर का, ये थोड़ा सा बढ़ जाता है आगे, परंतु अगर बच्चा 2.5 साल तक की उम्र में दांत पीता है, अंगूठा पीता है, तो उसमें जबड़ा जो है नॉर्मल अपने समय पे

0: ग्रोइंग स्टेज में एडजस्ट हो जाता है। अगर 2.5 साल के बाद भी बच्चा अंगूठा पी रहा है तो फिर इसके दांतों में जबड़ा जो है इसके बाहर आने के चांसेस रहते हैं। तो कोशिश ये रहना चाहिए कि 2.5-3 साल की उम्र में बच्चा अंगूठा पीना छोड़ दे। अब इसके लिए उपाय है कि जैसे कि कोई कड़वी गोली लगा दिया जाए या मिर्च लगा दी जाए या हाथ में ऐसा टेप बांध दिया जाए कि बच्चे जो है अंगूठा नहीं पी सके। टेढ़े मेढ़े की बात है तो ये जो टेढ़े मेढ़े दांत हैं ये परमानेंट टीथ में होते हैं, दूध के दांतों में इसका कोई खास फर्क नहीं पड़ता है। मेनली टेढ़े मेढ़े दांतों में परमानेंट टीथ में दांत टेढ़े मेढ़े हो जाते हैं।
1: जी, कभी कभी बच्चों में दांत देर से निकलते हैं तो माता पिता को चिंता होने लगती है, तो बच्चों में दांत समय पर निकले इसके लिए क्या उपाय किए जा सकते हैं?
0: इसके लिए तो वही बताया मैंने आपको, कैल्शियम जो सिरप है ये देना चाहिए बच्चों को।
1: किस उम्र से?
0: 5-4 महीने से दे सकते हैं अपन, और ये तो 6-10 साल तक देना उचित रहता है। अच्छा, एक कंटिन्यूएशन में नहीं देना चाहिए, 1-2 महीने दिया फिर कुछ 2-4 महीने का इंटरवल कर दिया फिर दिया, इस तरीके से इंटरवल के में देना चाहिए।
1: तो जैसे आपने कहा कि ग्राइप वाटर दे सकते हैं बच्चों को, तो क्या ग्राइप वाटर के साथ में कैल्शियम सिरप
0: दे सकते हैं? ड्रॉप्स दे सकते हैं।
1: तो ऐसे मतलब पूर्व में यही उपाय अगर हम अपना लें तो बच्चों के दांत सुंदर और सही ढंग से निकल सकते हैं।
0: हाँ, इसमें एक चीज जरूर बताना चाहूंगा कि जब बच्चों के दूध के दांत आ जाते हैं मुंह के अंदर तो बच्चे जैसे कि बॉटल फीड करते हैं तो एक चीज का खास ध्यान रखना चाहिए रात के समय पे, खासकर कि जब बच्चे रात को रोते हैं और बॉटल से फीड करा दिया जाता है उसके बाद एक सादी बॉटल रखना चाहिए पानी की, बाद में उसको लगा देना चाहिए। नहीं तो क्या है, दांतों की जो दूध की लेयर है वो दांतों में बच्चों के जम जाती है और एक रैम्पेट केरीज होती है, उससे बच्चों के पूरे दांत जो है कीड़े खा जाते हैं। तो अगर पानी की बॉटल लगा देंगे तो वो जो दूध की लेयर जम गई है दांतों में वो धुल जाएगी और वो पेट में चला जाएगा पानी, तो उससे दांत क्लीन हो जाएंगे। क्योंकि बच्चे बार बार तो ब्रश करा नहीं सकते, आप कुल्ला उनको करा नहीं सकते, तो पानी एक ऐसा सब्सटेंस है जो कि मुंह को बिल्कुल क्लीन रखता है और कोई भी बैक्टीरिया को ग्रो होने नहीं देता है।
1: ये तो सचमुच बहुत उपयोगी जानकारी है जिसका अक्सर माएं ध्यान नहीं रख पाती, क्योंकि रात में नींद में रहते हैं तो बच्चे को बस दूध की बोतल लगाई और उसके बाद में मुंह धोने का ध्यान नहीं रहता,
0: लगा देना चाहिए।
1: तो पानी की बोतल लगाना बहुत जरूरी है। बहुत अच्छी जानकारी दी डॉक्टर साहब आपने। क्या इसके अलावा और कोई सावधानी जो ली जा सकती है?
0: और कोशिश ये है करना चाहिए कि जैसे कि 2.5-3 साल की उम्र में बच्चों को पेस्ट और ब्रश करने की आदत डालना चाहिए।
1: जी,
0: कभी कभी बच्चे पेस्ट खा जाते हैं तो कुछ भी ऐसे पेस्टेस हैं जो बच्चों के लिए खास आते हैं उनको कराना चाहिए। बच्चे अगर पेस्ट नहीं कर रहे हैं तो कपड़े से कम ये है कि गीला पानी का लेके और दांतों में अच्छे से मसूड़ों फेर के, जीभ में फेर के वो पूरा जो लेयर जम जाती है खाने की दांत और मसूड़ों में और जीभ में वो उसको धो दिया जाए तो ज्यादा अच्छा रहता है।
1: ये माँ की जिम्मेदारी है,
0: मुंह को साफ रखना है बच्चे के।
1: बिल्कुल, तो बहुत ही उपयोगी जानकारी है डॉक्टर साहब, और हमारी जो भी श्रोता बहन है वो बहुत ध्यान से इस भेंटवार्ता को सुन रही है और इन सब बातों का अगर वो ध्यान रखेंगी तो बच्चों को जो दांतों से संबंधित परेशानियां होती है उनसे बचा जा सकता है, क्योंकि बच्चों को जो भी परेशानियां होती है वो पूरे परिवार के लिए परेशानी का सबब होती है। डॉक्टर साहब आपने बहुत ही उपयोगी जानकारी हमारी बहनों को दी, इसके अलावा और कोई संदेश जो आप बहनों को देना चाहेंगे?
0: अगर जैसे दूध के दांत है अगर कीड़े वगैरह लग गए उन बच्चों में, क्योंकि बच्चों की क्या है तकलीफ बहुत ज्यादा होती है, बच्चे खाना पीना छोड़ देते हैं, तो मेरी यही सलाह है कि अगर कीड़े लग गए हैं तो उसको समय रहते तकलीफ होने से पहले उन दांतों को फिलिंग भरवा दिया जाए जिससे कि उनको खाने पीने में कोई तकलीफ नहीं हो। क्योंकि जो दाढ़े हैं वो 11.5 से 12.5 साल की उम्र में निकलती हैं दूध की जो दाढ़े हैं, सामने के दांत तो 6 साल से निकलना चालू हो जाते हैं जैसे मैंने बताया आपको। दाढ़ों को बचाना जरूरी रहता है क्योंकि दाढ़े अगर अच्छी रहेंगी तो बच्चा कोई भी चीज़ अच्छे से चबा लेगा, अच्छे से च्यू कर लेगा। कोशिश ये करना चाहिए जो चॉकलेट्स वगैरह हैं जो ज्यादा चिपकती हैं दांतों में जिससे कि कैविटी होने के ज्यादा चांसेस रहते हैं उनको नहीं दी जाए। च्यू चबाने से मुंह की एक्सरसाइज भी होती है, प्लस जो अन्य के कण दांतों के बीच में फंसे रहते हैं ट्विस्ट होके धुल जाते हैं और एक क्लीनिंग प्रोसेस होती है, तो ये आदत डालना चाहिए बच्चों को। और ये जरूर सिखाना चाहिए कि चबाने के बाद में उसको फेंक दिया जाए, बाहर थूक दिया जाए, अंदर नहीं ले उसको शरीर के, वो ज्यादा अच्छा रहेगा।
1: बिल्कुल, तो मुंह साफ रहेगा तो सारी बीमारियों से बचा जा सकता है। डॉक्टर साहब एक चीज़ और देखिए, जैसे आपने मसूड़े मजबूत होने वाली बात कही है तो कई बार बच्चों को कुछ हार्ड चीज़ चबाने के लिए मन करता है, उस समय में बच्चों के दांतों में कुछ ऐसा उनको कुछ ऐसा महसूस होता है कि कुछ हार्ड चीज़ चबाई जाए, तो माताएं अक्सर प्लास्टिक की कुछ चीज़ें दे देती हैं उनको चबाने के लिए, तो उससे कोई नुकसान?
0: नहीं, देखिए क्या है कि जैसे 4 माह का जब बच्चा रहता है, 5 माह का तब जो उसके बिल्कुल दांत निकलना चालू होते हैं तो उस समय बच्चों में मसूड़ों में इचिंग होती है। इचिंग होने से क्या रहता है कि उनको दबाव पड़ता है मसूड़ों में, उनको लगता है कि मैं कोई चीज कड़ी दबाऊं। तो जैसे कि लकड़ी की पहले क्या वो आती थी मुठिया बोलते हैं,

0: आजकल टीथर वगैरह जैसे आते हैं
1: जी
0: फाइबर में, उसके रहते हैं क्या बोलते हैं प्लास्टिक्स
1: नर्म
0: के,
1: वाले
0: उसके
1: प्लास्टिक
0: वो
1: के जी
0: तो वो दे देना चाहिए, जिससे कि बच्चे उसको मसूड़ों से, दोनों मसूड़ों के बीच में दबाए तो उससे क्या प्रेशर से वो जो दूध के दांत है वो धीरे धीरे ऊपर आएंगे और जो
1: जी
0: बच्चों के मसूड़ों में इरिटेशन हो रहा है,
1: जी
0: जो तकलीफ हो रही है वो कम हो जाएगी।
1: जी बिल्कुल। तो डॉक्टर साहब आपने बहुत ही उपयोगी जानकारी हमारी बहनों को दी और निश्चय ही इस जानकारी से वो लाभान्वित हुई हैं। आप हमारे स्टूडियो में आए और इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
2: बहनों अभी आपने ये भेंट वार्ता सुनी, विषय था बच्चों को दांत निकलते समय होने वाली समस्याएं और निदान। जानकारी दे रहे थे डॉक्टर अश्विन कुमार त्रिवेदी और इनसे बात

मैनू अपना घर होना हर किसी का सपना होता है। एक ऐसा घर जहाँ सुरक्षा हो, सम्मान हो और बेहतर भविष्य की उम्मीद हो। तो बहनों, इसी सपने को साकार करने के उद्देश्य से भारत सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना की शुरुआत की है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर, निम्न आय वर्ग और जरूरतमंद परिवारों को पक्का और सुरक्षित आवास उपलब्ध कराना है, जिससे कि देश के प्रत्येक पात्र परिवार के पास रहने के लिए सम्मानजनक घर हो। बहनों, यह योजना ग्रामीण और शहरी दोनों ही पात्र परिवारों के लिए है। गांव में संचालित इस योजना के तहत परिवार को पक्के मकान बनाने के लिए आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जाती है। मकान के साथ साथ शौचालय निर्माण, स्वच्छ ऊर्जा और दूसरी जरूरी सुविधाओं को भी बढ़ावा दिया जाता है। वहीं शहरी योजना में वे परिवार लाभ ले सकते हैं जो पहली बार अपना घर बनाना या खरीदना चाहते हैं। जो भी पात्र लाभार्थी होंगे, उन्हें उनकी श्रेणी के अनुसार सहायता दी जाती है। गृह ऋण पर ब्याज में भी राहत प्रदान की जाती है। तो बहनों, इतनी सुविधा अगर हमें शासन की तरफ से मिल रही है तो क्यों कोई भी बेघर रहे। तो बहनों, अगर आपकी पहचान में भी ऐसे लोग हों जो शासन की इस योजना से लाभान्वित हो सकते हैं, तो उन्हें जरूर बताएं। अपना घर का सपना हर किसी का साकार हो, इसी उम्मीद के साथ हम आज अपनी चर्चा यहीं संपन्न करते हैं। अगले कार्यक्रम में नई जानकारियों, रोचक चर्चा के साथ फिर करेंगे आपसे मुलाकात। आज बस इतना ही। अनुमति दें अपनी सखी सुधा मिश्रा को।

0: महिलाएं अभी सुन रही थीं अपना मनपसंद महिला कार्यक्रम। आज का ये कार्यक्रम आकाशवाणी जबलपुर की प्रस्तुति था। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण है।
1: एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।

आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।

0: सुनिए NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे आकाशवाणी भोपाल पर।
1: आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण। दिन के 1:30 हुए हैं। प्रस्तुत है आकाशवाणी जबलपुर की प्रस्तुति कार्यक्रम लोक संगीत। लोक संगीत के आज के इस कार्यक्रम में आप सुनेंगे इंदुबाला मिश्रा के गाए लोकगीत। तो लीजिए कार्यक्रम के आरंभ में सुनिए इंदुबाला के स्वर में ये लोक।

इंदुबाला मिश्रा के गायी इस कजरी के साथ ही लोक संगीत का ये कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है। आज का ये कार्यक्रम आकाशवाणी के जबलपुर केंद्र की प्रस्तुति था। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है, प्रस्तुत है आकाशवाणी जबलपुर की प्रस्तुति कार्यक्रम सुगम संगीत। सुगम संगीत के अंतर्गत आज आप सुनेंगे शुभ्रा बैनर्जी के गाए गीत और भजन। तो लीजिए कार्यक्रम के आरंभ में सुनिए शुभ्रा बैनर्जी के स्वर में ये भजन।

शुभ्रा बैनर्जी के गाए इस भजन के साथ ही सुगम संगीत का ये कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के जबलपुर केंद्र की प्रस्तुति था। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। श्रोताओं, एक सूचना सुनिए। पुलिस आयुक्त नगरीय पुलिस भोपाल द्वारा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के अंतर्गत जन सुरक्षा एवं कानून व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से आदेश जारी किया गया है। सभी नागरिकों से अपील की जाती है कि फेसबुक, व्हाट्सएप, एक्स, ट्विटर, इंस्टाग्राम, यूट्यूब तथा अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का उपयोग पूरी जिम्मेदारी और सावधानी के साथ करें। किसी भी प्रकार की भ्रामक अफवाह फैलाने वाली धार्मिक, सामाजिक, जातीय अथवा सांप्रदायिक भावनाओं को भड़काने वाली पोस्ट, फोटो, वीडियो, ऑडियो या संदेश का प्रसारण, साझा, लाइक, कमेंट या फॉरवर्ड ना करें। किसी भी अपुष्ट या भ्रामक जानकारी को बिना सत्यापन के प्रसारित करना कानून व्यवस्था के लिए गंभीर चुनौती बन सकता है। सोशल मीडिया पर ऐसी किसी भी सामग्री का प्रचार प्रसार जिससे समाज में वैमनस्य, तनाव, भय या अशांति फैलने की संभावना हो, पूर्णतः प्रतिबंधित है। यदि किसी ग्रुप के एडमिन को इस प्रकार की सामग्री प्राप्त होती है तो उसे तत्काल हटाने एवं संबंधित सदस्य को ऐसा करने से रोकने की जिम्मेदारी भी होगी। इसके अतिरिक्त किसी भी व्यक्ति या समुदाय के विरुद्ध घृणा, हिंसा या भेदभाव फैलाने वाले संदेशों का प्रसारण नहीं किया जाएगा। अफवाहों, फर्जी समाचार

विचारों अथवा तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर प्रस्तुत करने वाली सामग्रियों को लाइक, शेयर या फॉरवर्ड करने से भी बचें। नागरिकों से अपेक्षा ये है कि वे केवल प्रमाणित एवं विश्वसनीय स्रोतों से प्राप्त जानकारी पर ही विश्वास करें और किसी भी संदिग्ध सूचना की जानकारी तत्काल पुलिस अथवा संबंधित प्रशासनिक अधिकारियों को दें। पुलिस आयुक्त द्वारा जारी यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू किया गया है। आदेश का उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 तथा अन्य प्रासंगिक विविध प्रावधानों के अंतर्गत आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जाएगी। भोपाल पुलिस सभी नागरिकों से शांति, सौहार्द एवं सामाजिक सद्भाव बनाए रखने तथा जिम्मेदार नागरिक होने का परिचय देने की अपील करता है। सूचना समाप्त हुई। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। प्रस्तुत है फिल्म संगीत। कुणाल गांजावाला और सुनिधि चौहान की आवाजों में लीजिए सुनिए फिल्म भागम भाग का ये गीत। गीत समीर का है और संगीत है प्रीतम का।

सईद कादरी का लिखा अनु मलिक के संगीत से सजा हुआ गीत सुनिए आमिर जमाल की आवाज में। फिल्म का नाम है मर्डर।

0: इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत यहीं समाप्त होता है। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। थोड़ी ही देर में प्रादेशिक समाचार होंगे।
1: आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार।

0: नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बानीज के बीच तीसरा भारत ऑस्ट्रेलिया वार्षिक शिखर सम्मेलन हुआ। दोनों देशों ने ऊर्जा सुरक्षा, व्यापार और रक्षा सहयोग पर अहम समझौते किए। भारत को ऑस्ट्रेलिया से दीर्घकालिक यूरेनियम आपूर्ति का रास्ता साफ हुआ, जिससे स्वच्छ ऊर्जा लक्ष्यों को मजबूती मिलेगी। दोनों देशों ने आर्थिक सहयोग समझौते और द्विपक्षीय निवेश संधि को जल्द अंतिम रूप देने पर सहमति जताई है। इसके अलावा रक्षा क्षेत्र में समुद्री सुरक्षा सहयोग रोडमैप और डिफेंस इनोवेशन कॉरिडोर की भी शुरुआत की गई है।
1: हमारे मैरिटाइम सिक्योरिटी कोलैबोरेशन रोडमैप से इंडो पैसिफिक में हमारे साझा प्रयासों को नई ताकत मिलेगी। हम शिप बिल्डिंग, शिप रिपेयर और मेंटेनेंस में भी मिलकर आगे बढ़ेंगे। फ्रेंड्स, आज हमने कई क्षेत्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर भी विस्तार पूर्वक चर्चा की।
0: मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने आज शाजापुर जिले की कालापीपल तहसील का दौरा किया। उन्होंने यहां किसान सम्मेलन में शिरकत की। एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत उन्होंने वृक्षारोपण अभियान का शुभारम्भ किया। इस अभियान के तहत 4 लाख पौधे लगाने का संकल्प लिया गया। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज पुणे मुंबई घाट में रेलवे बहाली कार्य की समीक्षा की। यहां भूस्खलन से रेलवे लाइन को भारी नुकसान हुआ था। मध्य और पश्चिमी रेलवे की टीमें मिलकर यहां काम कर रही हैं। एक लाइन बहाल कर दी गई है और अब ट्रेनें 2 इंजनों के साथ चलाई जाएंगी। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के निरीक्षण दौरे पर प्रदेश में आए हुए हैं। कल देर रात में मंदसौर जिले के करोट स्थित रुपरा सर्किट हाउस पहुंचे, जहां जनप्रतिनिधियों और प्रशासनिक अधिकारियों ने उनका स्वागत किया। इस दौरान स्थानीय लोगों ने सड़क दुर्घटनाओं और हाईवे के कारण खेतों में पानी भरने की समस्या पर ध्यान देने की अपील की। करीब 1,10,000 करोड़ रुपए की लागत से बन रहे इस एक्सप्रेसवे का करीब 244 किलोमीटर हिस्सा प्रदेश से होकर गुजरेगा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज चित्रकूट में कामतगिरी पर्वत की परिक्रमा की। उन्होंने भगवान कामतानाथ की पूजा अर्चना की। करीब 5 किलोमीटर की परिक्रमा उन्होंने पैदल पूरी की। रास्ते में श्रद्धालुओं ने उन पर पुष्प वर्षा की। परिक्रमा 2 घंटे 10 मिनट में पूरी हुई। इसके बाद मुख्यमंत्री बांदा रवाना हो गए, जहां वे विकास कार्यों का लोकार्पण करेंगे। और अब बात मौसम की। प्रदेश में मानसून पूरी तरह सक्रिय है। प्रदेश भर में लगातार बारिश का दौर जारी है। मौसम विभाग ने आज भिंड जिले के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। वहीं मुरैना, ग्वालियर, दतिया सहित 9 जिलों में ऑरेंज अलर्ट है। भोपाल, इंदौर, जबलपुर सहित कई जिलों में भी बारिश की संभावना है। इस साल अब तक प्रदेश में सामान्य से 10% अधिक बारिश हुई है। भारत और इंग्लैंड के बीच 5 T20 मैचों की श्रृंखला का चौथा मुकाबला आज ब्रिस्टल में खेला जाएगा। ये मैच भारतीय समय के अनुसार रात 10 बजे से शुरू होगा। श्रृंखला में इंग्लैंड फिलहाल 2-0 से आगे है। भारत को श्रृंखला में बने रहने के लिए मैच जीतना बेहद जरूरी है। तीसरे मैच में भारत को 125 रन से हार का सामना करना पड़ा था। अब कुछ समाचार संक्षेप में। नीमच कलेक्टर ने कल जिले के मालखेड़ा और जावी गांव में जैविक खेती कर रहे किसानों के खेतों का निरीक्षण कर प्राकृतिक खेती की व्यवस्थाओं का अवलोकन किया। जल जनित बीमारियों से बचाव के उद्देश्य से आगरमालवा जिले के ग्राम थड़ौदा के प्राथमिक विद्यालय और आंगनवाड़ी केंद्र पर बच्चों को स्वास्थ्य संबंधी जानकारी दी गई।

शिवपुरी के शासकीय माध्यमिक विद्यालय में कल स्वास्थ्य विभाग ने टीकाकरण सुरक्षा का कवच विषय पर एक विशेष जागरूकता सत्र आयोजित किया। झाबुआ कलेक्टर ने कल जिले के विभिन्न विद्यालयों का औचक निरीक्षण कर शैक्षणिक गतिविधियों, मध्यान्ह भोजन और आधारभूत सुविधाओं की समीक्षा की। भिंड में मध्यप्रदेश पर्यटन क्विज प्रतियोगिता 2026 का जिला स्तरीय आयोजन 7 अगस्त को किया जाएगा। राजगढ़ के सभी पेयजल स्रोतों को प्रदूषित होने से बचाने के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन सुनिए शाम 7:10 पर।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। भारत और ऑस्ट्रेलिया ने यूरेनियम आपूर्ति और महत्वपूर्ण खनिज गलियारे पर ऐतिहासिक समझौतों पर हस्ताक्षर किए। साइबर प्रौद्योगिकी और आपूर्ति श्रृंखलाओं पर ऑस्ट्रेलिया भारत साझेदारी की शुरुआत हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज के बीच मेलबर्न में वार्षिक शिखर वार्ता। श्री मोदी ने कहा, द्विपक्षीय संबंध गहरे आपसी विश्वास पर आधारित विस्तृत युग में प्रवेश कर चुके हैं। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने भुवनेश्वर में खुले समुद्र के मत्स्य संसाधनों के सतत उपयोग के लिए राष्ट्रीय मिशन का अनावरण किया। मॉनसून पूरे देश में सक्रिय, लगातार बारिश से राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में जनजीवन प्रभावित। उत्तराखंड राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंतर्गत वयस्कों के लिए निर्धारित साक्षरता मानकों को प्राप्त कर पूर्णतः साक्षर राज्य बना। और वियतनाम में होने वाले पिकलबॉल विश्व कप 2026 के लिए भारतीय दल की घोषणा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज विक्टोरिया के गवर्नमेंट हाउस में आयोजित तीसरे भारत ऑस्ट्रेलिया वार्षिक शिखर सम्मेलन में शामिल हुए। बैठक के बाद प्रधानमंत्री मोदी और प्रधानमंत्री अल्बनीज ने संयुक्त वक्तव्य दिया। हमारे संवाददाता ने बताया है कि दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय संबंधों में आए परिवर्तनकारी बदलाव का स्वागत किया और क्षेत्रीय स्थिरता, ऊर्जा सुरक्षा तथा प्रौद्योगिकी नवाचार के लिए व्यापक रूपरेखाओं को अंतिम रूप दिया।
1: यह महत्वपूर्ण शिखर सम्मेलन एक ऐतिहासिक परिवर्तन को दर्शाता है, जिसमें भारत और ऑस्ट्रेलिया मिलकर हिंद प्रशांत क्षेत्र के लिए एक मजबूत ढांचा तैयार कर रहे हैं। पारंपरिक व्यापार से हाईटेक डिफेंस कॉरिडोर की ओर बढ़ने, महत्वाकांक्षी सीका समझौते में तेजी लाने और ऐतिहासिक परमाणु समझौते के अंतर्गत लंबे समय के लिए यूरेनियम निर्यात शुरू करने जैसी पहलों से दोनों देशों के बीच आपसी भरोसा को अभूतपूर्व स्तर पर पहुंचाया गया है। जहां ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री अल्बनीज ने कहा कि 10 लाख लोगों का भारतीय प्रवासी समुदाय इस साझेदारी की असली धड़कन है, वहीं प्रधानमंत्री मोदी ने दोनों देशों के विकास की गति को क्रिकेट की तरह बताया।
2: क्रिकेट भारत और ऑस्ट्रेलिया के रिश्तों की अपनी डिप्लोमेटिक लैंग्वेज है, इसलिए हमारी मीटिंग भी क्रिकेट जैसी लगती है। एजेंडा वनडे जैसा फोकस है, डिसीजन ट्वीट एंट्री जितने तेज है और पार्टनरशिप टेस्ट मैच जितनी लंबी और गहरी।
1: मेलबर्न से सुहास राम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से जया भारती।
0: प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत ऑस्ट्रेलिया साझेदारी भविष्य के लिए निर्मित एक सुदृढ़ और स्थायी संबंध है। संवाददाताओं को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि दोनों देशों के संबंध गहरे पारस्परिक विश्वास के आधार पर एक नए युग में प्रवेश कर चुके हैं। शिखर वार्ता की प्रमुख उपलब्धियों में आर्थिक और व्यापारिक सहयोग को नई गति देना शामिल रहा। प्रधानमंत्री मोदी ने बताया कि दोनों देशों ने यूरेनियम आपूर्ति और महत्वपूर्ण खनिज गलियारे पर ऐतिहासिक समझौतों पर हस्ताक्षर किए।
2: पीएम सूर्यघर योजना को सपोर्ट करने के लिए हमने मिलकर गुजरात में रूफटॉप सोलर ट्रेनिंग एकेडमी बनाई है। यह एकेडमी अनेक महिलाओं और युवाओं की कैपेसिटी बिल्डिंग में योगदान देगी। न्यूक्लियर एनर्जी के क्षेत्र में आज हमने एक महत्वपूर्ण समझौता किया है। इससे ऑस्ट्रेलिया से भारत को यूरेनियम सप्लाई का मार्ग खुलेगा और हमारे क्लीन एनर्जी के उद्देश्यों को नई ताकत मिलेगी।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि रणनीतिक प्रौद्योगिकी और संसाधन सुरक्षा के क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण प्रगति हुई है। इसके अंतर्गत

0: ऑस्ट्रेलिया भारत साइबर क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज और सप्लाई चेन साझेदारी को क्रियान्वित किया गया और महत्वपूर्ण खनिज कॉरिडोर की स्थापना की गई।
1: हमने सीका पर तेजी से काम करने का निर्णय लिया है, जो दोनों देशों के लिए बैलेंस एम्बिशियस। हम बायलेटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी पर भी तेजी से आगे बढ़ेंगे। हमारी रिन्यूएबल एनर्जी पार्टनरशिप, क्लीन एनर्जी और क्लाइमेट एक्शन में हमारे प्रयासों को साकार रूप दे रही है। इसके तहत हम इन्वेस्टमेंट, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर और इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री कोलैबोरेशन पर विशेष बल दे रहे हैं।
0: हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति और स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए दोनों नेताओं ने रक्षा और सुरक्षा सहयोग पर ऐतिहासिक संयुक्त घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए। वार्षिक रक्षा मंत्रियों के संवाद को संस्थागत रूप दिया गया तथा समुद्री सुरक्षा सहयोग रोडमैप का शुभारंभ हुआ।
1: हमारे मैरिटाइम सिक्योरिटी कोलैबोरेशन रोडमैप से इंडो पैसिफिक में हमारे साझा प्रयासों को नई ताकत मिलेगी। हम शिप बिल्डिंग, शिप रिपेयर और मेंटेनेंस में भी मिलकर आगे बढ़ेंगे। फ्रेंड्स, आज हमने कई क्षेत्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर भी विस्तार पूर्वक चर्चा की।
0: शिक्षा के क्षेत्र में भी सहयोग पर अभूतपूर्व प्रगति हुई है। इसके तहत ऑस्ट्रेलियाई विश्वविद्यालयों के नए शाखा परिसर बंगलुरु और गुरुग्राम में स्थापित किए जाएंगे। प्रधानमंत्री अल्बनीज ने भी इस भविष्य उन्मुख साझेदारी को और मजबूत बनाने की बात कही।
2: We share a focus on deepening and diversifying the relationship between our countries.
3: हम दोनों देशों के बीच संबंध को गहरा और विविध बनाने पर ध्यान दे रहे हैं, जिससे हम लगातार मजबूत होते रहे। आज हमने हर पहलू पर चर्चा की। नए और अहम समझौतों के माध्यम से हम रक्षा सुरक्षा, शिक्षा, विज्ञान और तकनीक तथा ऊर्जा सुरक्षा और जरूरी खनिजों के क्षेत्रों में अपने संबंधों का विस्तार कर रहे हैं।
2: एंड क्रिटिकल मिनरल्स।
0: इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री अल्बनीज ने भारत ऑस्ट्रेलिया मुख्य कार्यकारी अधिकारी मंच और आर्थिक कार्य योजना कार्यक्रम को संबोधित किया। ऑस्ट्रेलिया सुपर के 500 मिलियन ऑस्ट्रेलियाई डॉलर के निवेश का भारत ने स्वागत किया है। मेलबर्न में कंपनी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी पॉल श्रोडर ने इसकी घोषणा की। ऑस्ट्रेलिया भारत बिजनेस काउंसिल के प्रमुख सदस्य विश्व विश्वनाथन ने मेक विद इंडिया पहल के बढ़ते असर पर जोर दिया। ये समूह रणनीतिक कॉरपोरेट पार्टनरशिप को बढ़ावा देकर ऑस्ट्रेलिया में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मेक इन इंडिया दृष्टिकोण को लागू करने का काम कर रहा है। भारत की अध्यक्षता में आज नागपुर में ब्रिक्स 2026 के तहत तीसरे ब्रिक्स परिवहन मंत्रियों की बैठक हुई। कार्यकारी समूह की इस बैठक के बाद मीडिया से बातचीत में केंद्रीय परिवहन सचिव वी उमाशंकर ने कहा कि वरिष्ठ अधिकारियों ने गतिशीलता, शहरी बुनियादी ढांचा और सतत विकास जैसे मुख्य मुद्दों पर चर्चा की। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIRF और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध है। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने भुवनेश्वर में खुले समुद्र के मत्स्य संसाधनों के सतत उपयोग के लिए राष्ट्रीय मिशन का अनावरण किया है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
4: भारत ने आज गहरे समुद्र में मछली पकड़ने के संसाधनों के टिकाऊ इस्तेमाल के लिए एक अहम राष्ट्रीय पहल शुरू करके अपनी समुद्री विकास में एक बड़ा मुकाम हासिल किया। उड़ीसा के एक दिन के दौरे पर आए उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने दूर के समुद्रों में काम करने वाली भारतीय झंडे वाली मछली पकड़ने वाली नावों के लिए अनुमति पत्र जारी करने की राष्ट्रीय प्रक्रिया की शुरुआत की। इससे जिम्मेदारी से गहरे समुद्र में मछली पकड़ने और समुद्री संसाधनों को संरक्षण के लिए एक मजबूत ढांचा तैयार होगा। उन्होंने उड़ीसा डीप सी फिशिंग मिशन डॉक्यूमेंट भी जारी किया, जो राज्य में गहरे समुद्र में मछली पकड़ने को, इकोसिस्टम को मजबूत करने और ब्लू इकोनॉमी समुद्री अर्थव्यवस्था को बढ़ाने के लिए एक रणनीतिक योजना है। उपराष्ट्रपति ने युवा भारतीयों से मछली पालन को वैश्विक मौके वाला एक आधुनिक विज्ञान आधारित पेशे के तौर पर अपनाने का आग्रह किया।
5: May this historic initiative bring prosperity to every coastal family and contribute significantly to the realization of Viksit Bharat by 2047.
4: Prakash Das, Akashvani Samachar, Bhubaneswar.
0: गृह मंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में सीमावर्ती जिलों के पुलिस अधीक्षकों के सम्मेलन की अध्यक्षता करेंगे। सम्मेलन का उद्देश्य संवेदनशील सीमावर्ती क्षेत्रों की वर्तमान सुरक्षा स्थिति

की समीक्षा करना तथा कानून प्रवर्तन व्यवस्था को और अधिक प्रभावी बनाने के उपायों की पहचान कर देश की सीमा सुरक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ करना है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा शनिवार को हिमाचल प्रदेश के केलोंग में इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च

0: सरकार ने अब तक देश भर में किसानों को 9,404 करोड़ रुपए मूल्य की लगभग 22 लाख कृषि मशीनें वितरित करने में सहायता प्रदान की है। ये मिशन वर्ष 2014-15 में कृषि मशीनीकरण को बढ़ावा देने के लिए शुरू किया गया था। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज पुणे मुंबई घाट में रेलवे लाइन की मरम्मत के काम की समीक्षा की। भूस्खलन भीषण था और रेलवे लाइन के साथ साथ आसपास के क्षेत्रों को भी भारी नुकसान हुआ था। मध्य रेलवे और पश्चिमी रेलवे की टीमें समन्वय से काम कर रही हैं। नीति आयोग ने उभरते क्षेत्रों के लिए महत्वपूर्ण खनिजों की आवश्यकता पर हितधारकों के साथ परामर्श बैठक आयोजित की। इस बैठक में सरकार, अनुसंधान संस्थानों, शिक्षाविदों और उद्योग जगत के विशेषज्ञों ने हिस्सा लिया। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 और उल्लास नए भारत साक्षरता कार्यक्रम के तहत निर्धारित वयस्क साक्षरता मानकों को हासिल करने के बाद उत्तराखंड देश का छठा पूर्णतः साक्षर राज्य बन गया है। शिक्षा मंत्रालय के अधीन विद्यालय शिक्षा एवं साक्षरता विभाग द्वारा निर्धारित मानकों की पूर्ति के बाद राज्यपाल ने 8 जुलाई 2026 को इस घोषणा को मंजूरी दी। दक्षिण पश्चिम मॉनसून पूरे देश में सक्रिय हो गया है। राजस्थान, हरियाणा, पंजाब और उत्तरी अरब सागर के शेष हिस्सों में भी ये आगे बढ़ चुका है। आकाशवाणी समाचार से विशेष बातचीत में मौसम विभाग के वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर नरेश कुमार ने बताया कि पिछले कुछ दिनों से दिल्ली, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में मध्यम से तेज बारिश जारी है। दिल्ली वासियों की सुबह मूसलाधार बारिश और आंधी के साथ शुरू हुई। बारिश के कारण कई स्थानों पर जलभराव हो गया, जिससे यातायात बुरी तरह प्रभावित हुआ। मौसम विभाग ने हरियाणा सहित राष्ट्रीय राजधानी में तेज बारिश का रेड अलर्ट जारी किया था।
1: अगर हम आने वाले दिनों की बात करें, सबसे पहले NCR दिल्ली की बात करें, तो NCR दिल्ली के लिए आज के लिए भी हमारा रेड अलर्ट, हम अनुमान लगा रहे हैं कि जहां आज मॉडरेट टू हैवी रेनफॉल एक्टिविटी हो सकती है, इसके अलावा कल ये रेनफॉल एक्टिविटी कम हो जाएगी, परसों हल्का फुल्का रेनफॉल होने का अनुमान। वेस्ट उत्तर प्रदेश के लिए आज के लिए हमारा रेड अलर्ट है, वहाँ हम एक्सट्रीमली हैवी रेनफॉल अनुमान लगा रहे हैं।
0: मौसम विभाग ने उत्तराखंड के कई जगहों पर मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है।
2: राजधानी देहरादून सहित प्रदेश के अधिकांश जिलों में रुक रुक कर बारिश का दौर जारी है। बारिश और भूस्खलन से पर्वतीय जिलों के कुछ राष्ट्रीय मार्गों, राज्य राजमार्गों और ग्रामीण क्षेत्रों के संपर्क मार्गों पर यातायात प्रभावित हुआ है। बंद सड़कों को खोलने के प्रयास किए जा रहे हैं। आपदा प्रबंधन व पुनर्वास सचिव विनोद कुमार सुमन ने संबंधित विभागों को किसी भी संभावित आपदा से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए 24 घंटे सतर्कता बरतने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने प्रदेशवासियों से मौसम विभाग द्वारा जारी चेतावनियों का गंभीरता से पालन करने की भी अपील की है। साक्षी सिंह, आकाशवाणी समाचार, देहरादून।
0: केरल के अधिकांश हिस्सों में आज बारिश की तीव्रता कम हो गई है। उत्तरी केरल के 5 जिलों में आज येलो अलर्ट जारी किया गया है। ये जिले कल रेड अलर्ट और ऑरेंज अलर्ट पर थे। वायनाड में 5 से 15 मिलीमीटर तक मध्यम बारिश दर्ज की गई। यहां मंगलवार को भूस्खलन हुआ था। भारतीय पिकलबॉल संघ ने 2026 पिकलबॉल विश्व कप के लिए भारतीय दल की घोषणा कर दी है। ये दल एक प्रतिस्पर्धी चयन प्रक्रिया के बाद चुना गया है। 30 अगस्त से 6 सितंबर तक वियतनाम के दानांग में आयोजित होने वाले पिकलबॉल विश्व कप में पेशेवर वर्ग में देश का प्रतिनिधित्व करेगा। अंतर्राष्ट्रीय पिकलबॉल जगत में एक जाना पहचाना नाम हर्ष मेहता दल की कप्तानी करेंगे। भारत और इंग्लैंड के बीच 5 मैचों की T20 श्रृंखला का चौथा मुकाबला आज रात 10 बजे से ब्रिस्टल के काउंटी ग्राउंड में खेला जाएगा। आज दोपहर के सत्र में घरेलू शेयर बाजार के प्रमुख सूचकांक लगभग 0.7% की बढ़त के साथ कारोबार कर रहे थे। नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार सेंसेक्स 565 अंक चढ़कर 77,069 पर और निफ्टी 168 अंक बढ़कर 24,050 पर पहुंच गया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत और ऑस्ट्रेलिया ने यूरेनियम आपूर्ति और महत्वपूर्ण खनिज गलियारे पर ऐतिहासिक समझौतों पर हस्ताक्षर किए। साइबर प्रौद्योगिकी और आपूर्ति श्रृंखलाओं पर ऑस्ट्रेलिया भारत साझेदारी की शुरुआत हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज के बीच मेलबर्न में वार्षिक शिखर वार्ता। श्री मोदी ने कहा, द्विपक्षीय संबंध गहरे आपसी विश्वास पर आधारित विस्तृत युग में प्रवेश कर चुके हैं। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन ने भुवनेश्वर में खुले समुद्र के मत्स्य संसाधन

के सतत उपयोग के लिए राष्ट्रीय मिशन का अनावरण किया। मॉनसून पूरे देश में सक्रिय, लगातार बारिश से राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में जनजीवन प्रभावित। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। दिन के 2:30 हुए हैं। प्रस्तुत है आपकी पसंद के गीतों से सजा कार्यक्रम आपकी फरमाइश। कार्यक्रम का पहला गीत सुनिए आप सभी श्रोताओं की पसंद पर, फिल्म जुर्म से। आवाजें हैं साधना सरगम और कुमार सानू की। गीत लिखा है इंदिवर ने और इसे संगीतबद्ध किया है राजेश रोशन ने। और फरमाइश भेजी है आप सभी श्रोताओं ने बेलाताल दमोह मध्य प्रदेश से रवि खरे, सुनील खरे, बबीता, रजनी, आदित्य और अनुश्री खरे ने। साथ ही इसी गीत को सुनना चाह है कवर कॉलोनी बड़वाह से प्रवीण श्रीमाली, मीना श्रीमाली, आदित्य अदिति, शिवानी श्रीमाली और मीनू राज श्रीमाली ने। तो लीजिए सुनिए अपनी पसंद पर फिल्म जुर्म का ये गीत।

घंटाघर चौक खंडवा से संजय पंचोलिया, प्रियंका पंचोलिया, गुनगुन, संप्रीत, हेमेंद्र और सन्मति पंचोलिया। नेपाल पैलेस सागर से तिलक राणा, मीना राणा, मोनिका नुपुर, ऋषिका और रॉबिन। आप सभी ने सुनना चाहा है फिल्म थोड़ी सी बेवफाई का गीत, जिसे आवाज़ें दी हैं लता मंगेशकर और किशोर कुमार ने। गीत लिखा है गुलजार ने और इसे संगीत से सजाया है खयाम ने। लीजिए सुनिए।

आकाशवाणी मध्य प्रदेश से इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आपकी फरमाइश। लीजिए अब सुनिए फिल्म हसीना मान जाएगी का गीत मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर की आवाज़ों में। बोल अख्तर रुमानी के हैं और संगीत है कल्याण जी आनंद जी का। पसंद आप सभी श्रोताओं की। राजावत कॉम्प्लेक्स नई सड़क मध्य प्रदेश शाजापुर से मनमोहन राजावत, राज मधु, राशि रक्षित, चितरंजन, कमलेश उमेश, सरोज आरती रेखा, रितिका रिचा, स्वीटी सागर रिया और ऋषभ राजावत की। तो लीजिए सुनिए अपनी पसंद पर फिल्म हसीना मान जाएगी का ये गीत।

छत्रपति संभाजी नगर से राजेश सावले पाटिल, राजदीप राजेश, राशि राजेश और शीतल राजेश, गौतम नगर जिला नांदेड़ से प्रभाकर जोंधले, आरती जोंधले। आप सभी ने सुनना चाहा है फिल्म धनवान का गीत लता मंगेशकर और सुरेश वाडकर की आवाजों में। गीत लिखा है साहिर ने और इसे संगीत से सजाया है हृदयनाथ मंगेशकर ने। लीजिए सुनिए।

कार्यक्रम आपकी फरमाइश का अंतिम गीत जिसे हमने लिया है आप सभी की फरमाइश पर फिल्म कन्यादान से। नक्श लैलपुरी का लिखा ये गीत जिसे संगीत से सजाया है खयाम ने और आवाज़ है लता मंगेशकर की। पसंद आप सभी श्रोताओं की। महादेव घाट अमलेश्वर से डोमन ठाकुर, सुमन ठाकुर, मिथिलेश ठाकुर, तारिणी ठाकुर, सूरज, ज्योति, रियांश और गुड़िया ठाकुर की।

0: इस गीत के साथ ही कार्यक्रम आपकी फरमाइश यहीं समाप्त होता है। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है, सुनिए इस घंटे की खास खबरें।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी एल्बानीज के बीच तीसरा भारत ऑस्ट्रेलिया वार्षिक शिखर सम्मेलन हुआ।

दोनों देशों ने ऊर्जा सुरक्षा व्यापार और रक्षा सहयोग पर अहम समझौते किए। भारत को ऑस्ट्रेलिया से दीर्घकालिक यूरेनियम आपूर्ति का रास्ता साफ हुआ। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने आज शाजापुर जिले की कालापीपल तहसील का दौरा किया। उन्होंने यहां किसान सम्मेलन में शिरकत की। एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत उन्होंने वृक्षारोपण अभियान का शुभारंभ किया। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज पुणे मुंबई घाट में रेलवे बहाली कार्य की समीक्षा की। यहां भूस्खलन से रेलवे लाइन को भारी नुकसान हुआ था। मध्य और पश्चिमी रेलवे की टीमें मिलकर यहाँ काम कर रही है। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे के निरीक्षण दौरे पर प्रदेश में आए हैं। कल देर रात वे मंदसौर जिले की करोट स्थित रूपरा सर्किट हाउस पहुंचे, जहां जनप्रतिनिधियों और प्रशासनिक अधिकारियों ने उनका स्वागत किया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज चित्रकूट में कामतगिरी पर्वत की परिक्रमा की। उन्होंने भगवान कामतानाथ की पूजा अर्चना की। करीब 5 किलोमीटर की परिक्रमा उन्होंने पैदल पूरी की। रास्ते में श्रद्धालुओं ने उन पर पुष्प वर्षा की। केंद्र सरकार ने कृषि अंतरीकरण उपमिशन के तहत किसानों को बड़ी मदद की है। अब तक देश भर में किसानों को लगभग 22 लाख कृषि मशीनें दी गई हैं। इनकी कीमत करीब 9,404 करोड़ रुपए है। मौसम विभाग ने आज भिंड जिले के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। वहीं मुरैना, ग्वालियर, दतिया सहित 9 जिलों में ऑरेंज अलर्ट है। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।

ये आकाशवाणी भोपाल है। मीडियम वेव पर हमारी ये प्रसारण सभा समाप्त करने से पहले श्रोताओं, हम आपको बता दें हमारी सांध्यकालीन प्रसारण सभा में प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा। युवा श्रोता सुनेंगे अपना कार्यक्रम युववाणी शाम 5:02 पर। आज का ये कार्यक्रम आकाशवाणी के जबलपुर केंद्र की प्रस्तुति है। NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम सुनिएगा शाम 6:00। आकाशवाणी भोपाल की प्रस्तुति कार्यक्रम ग्राम लक्ष्मी आप सुनेंगे शाम 7:21 पर। आज इसके अंतर्गत सुनिएगा कृषि में महिला उद्यमिता के विकास, इस विषय पर डॉक्टर अपर्णा जायसवाल से की गई भेंटवार्ता। समय याद रखिएगा शाम 7:21। रात 8:00 आप सुनेंगे सुर्खियों में। फिल्म संगीत का आनंद लीजिएगा रात 8:15 पर और रात 9:30 पर। कार्यक्रम आपकी फरमाइश आप सुनेंगे रात 10:00 और रात 10:30 पर सुनिएगा शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम राग रजनी। आज इसके अंतर्गत आप सुनेंगे वसंत रानाडे का राग कमोद में वायलिन वादन। ये थी जानकारी हमारी सांध्यकालीन सभा में प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की। मीडियम वेव 188.32 अर्थात 1593 किलोहर्ट्ज पर, साथ ही DTH के ऑडियो चैनल, न्यूज ऑन AIR एप्लीकेशन और वेव OTT ऐप पर हम आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से बोल रहे हैं। दिन के 3:02:22 हुए हैं। मीडियम वेव पर हमारी ये प्रसारण सभा यहीं समाप्त होती है। शाम 5:00 अपने विविध कार्यक्रमों के साथ मीडियम वेव पर हम पुनः उपस्थित होंगे। तब तक प्रसारण DTH पर जा

0: शुभ संध्या, नमस्कार। मीडियम वेव 188.32 मीटर्स यानी 1593 किलोहर्ट्ज़, साथ ही डीटीएच के ऑडियो चैनल वेव्स ओटीटी और न्यूज ऑन एआईआर एप्लीकेशन पर ये आकाशवाणी भोपाल है। 5 बजे हैं, हमारी सांध्यकालीन सभा अब आरंभ होती है। थोड़ी देर में आप सुनेंगे आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है, लीजिए सुनिए इस घंटे की खास खबरें।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि 21वीं सदी का भारत एक विकसित राष्ट्र बनने के लक्ष्य की ओर अग्रसर रहा है। देश की आकांक्षाओं का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि आज का भारत जो अधिक विकास और अधिक उपलब्धियां हासिल करने में विश्वास रखता है। सेना प्रमुख जनरल धीरज सेठ ने आज पुंछ जिले की अग्रिम सीमा चौकियों का दौरा किया और मौजूदा सुरक्षा स्थिति तथा सैन्य तैयारियों की समीक्षा की। पदभार ग्रहण करने के बाद सेना प्रमुख का पुंछ के अग्रिम क्षेत्रों का यह पहला दौरा है। सरकार ने सोशल मीडिया पर उस दावे का खंडन किया है जिसमें भारत आ रहे एक एलपीजी टैंकर पर ईरान की मिसाइल हमले की बात कही गई है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने इस दावे को झूठा बताते हुए कहा कि पिछले साल कैमरून के झंडे वाले एलपीजी टैंकर एमवी फाल्कन में हुए विस्फोट के बाद लगी आग से संबंधित है। उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल से वल्लभ भवन में यूनिसेफ इंडिया के प्रतिनिधिमंडल ने सौजन्य भेंट की। बैठक में शिशु और मातृ मृत्यु दर में कमी, एनीमिया नियंत्रण, कुपोषण, बाल विवाह की रोकथाम और उच्च जोखिम गर्भावस्था के प्रभावी प्रबंधन सहित विभिन्न विषयों पर चर्चा की गई। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज पुणे मुंबई घाट में रेलवे बहाली कार्य की समीक्षा की। यहां भूस्खलन से रेलवे लाइन को भारी नुकसान हुआ था। मध्य और पश्चिमी रेलवे की टीमें मिलकर यहां काम कर रही हैं और भारत इंग्लैंड के बीच 5 T20 मैचों की श्रृंखला का 4वां मुकाबला आज ब्रिस्टल में खेला जाएगा। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण। अब युवा श्रोताओं के लिए हम प्रस्तुत करने जा रहे हैं उनका दैनिक कार्यक्रम युववाणी। ये कार्यक्रम हमारे जबलपुर केंद्र का योगदान है।

0: नमस्कार दोस्तों, अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं, सफर में हैं, ऑफिस से लौट रहे हैं या बस यूं ही रेडियो सुन रहे हैं, तो अगले कुछ मिनट हमारे साथ जरूर बिताइए। मैं हूं अनमोल द्विवेदी
1: और मैं हूं आद्या नायक और आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का अपना युवा कार्यक्रम युववाणी, जहां हर बार होती है नई सोच, नए विषयों पर बातचीत और ढेर सारी प्रेरणा।
0: लेकिन कार्यक्रम शुरू करने से पहले आज आपके लिए हैं दो मजेदार सवाल। देखते हैं किनके जवाब आपको पहले से पता हैं या नहीं।
1: हमारा आज का पहला सवाल है, भारत में यदि किसी के साथ ऑनलाइन ठगी या साइबर अपराध हो जाए तो शिकायत दर्ज कराने के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर क्या है?
0: और दूसरा सवाल है, भारत के किस महान नेता को पूरे देश में प्यार से बाबूजी कहा जाता था?
1: अगर आपको जवाब पता है तो बहुत बढ़िया,
0: और अगर नहीं पता तो चिंता की कोई बात नहीं, इन दोनों सवालों के सही जवाब हम आपको कार्यक्रम के आखिर में बताएंगे।
1: तो चलिए दोस्तों, सुनते हैं कार्यक्रम का पहला गीत, जिसे हमने लिया है फिल्म टू स्टेट से और जिसे आवाज दी है अरिजीत सिंह और चिन्मय श्रीपदा ने।

0: अच्छा आद्या, एक सवाल पूछूं?
1: हाँ अनमोल, लेकिन पहले ये बताओ कि सवाल आसान है या गूगल करना पड़ेगा?
0: अरे गूगल वाला नहीं है, दिमाग वाला है। अगर किसी युवा को उसका मोबाइल और बटुआ दोनों एक साथ खो जाए तो पहले वो क्या ढूंढेगा?
1: आजकल तो मोबाइल, क्योंकि बटुए में पैसे होंगे लेकिन मोबाइल में पूरी दुनिया ही रहती है।
0: बिल्कुल, दोस्त, परिवार, फोटो, यूपीआई, नोट्स। आज का युवा सुबह अलार्म से कम मोबाइल के नोटिफिकेशन से ज्यादा उठता है।
1: और रात को तो बस 5 मिनट और कहते कहते पता ही नहीं चलता कि कब एक घंटा निकल जाता है।
0: हाँ, और रील्स देखने बैठो तो पहले खाना ठंडा होता है, फिर माँ की आवाज गर्म हो जाती है।
1: मजाक अपनी जगह अनमोल, लेकिन डिजिटल दुनिया ने हमारी जिंदगी सच में आसान बना दी है। ऑनलाइन पढ़ाई, नई भाषा सीखना, जॉब के लिए आवेदन, यहाँ तक कि घर बैठे बैठे अपना छोटा सा बिजनेस स्टार्ट करना, सब कुछ बस एक क्लिक दूर है।
0: सही कहा, आज का युवा सिर्फ कंटेंट देख नहीं रहा है, कंटेंट बना भी रहा है। सिर्फ नौकरी नहीं ढूंढ रहा, रोजगार भी पैदा कर रहा है।
1: लेकिन जहां इतनी रोशनी होती है, वहां थोड़ा अंधेरा भी होता है।
0: बिल्कुल, डिजिटल दुनिया

0: में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो आपकी मेहनत की कमाई पर बस एक क्लिक की दूरी पर नजर लगाए बैठे रहते हैं।
1: इसीलिए अगर कोई मैसेज आए, कंग्रेचुलेशंस, आपने करोड़ों रुपए जीत लिए हैं, तो सबसे पहले अपने आप से पूछिए, मैंने आखिर किया क्या था?
0: हाँ, बिना टिकट खरीदे अगर लॉटरी लग रही है तो समझ जाइए कहीं ना कहीं कहानी में विलन जरूर है।
1: और ओटीपी, उसका मतलब ही समझ लीजिए, ओनली तुम पढ़ोगे, किसी और को नहीं बताएंगे।
0: अरे वाह, ये फुल फॉर्म तो साइबर पुलिस को भी पसंद आ जाएगा।
1: पासवर्ड ऐसा रखिए जो दूसरों के लिए पहेली हो, लेकिन खुद के लिए याद रखना आसान हो।
0: मेरे हिसाब से डिजिटल दुनिया बिल्कुल समुद्र जैसी है, जिसे तैरना आता है उसे नए रास्ते मिलते हैं, और जो बिना कुछ सोचे कूद पड़ता है उसे लहरें सबक सिखाती हैं।
1: वाह अनमोल, क्या बात कही है। दोस्तों, डिजिटल दुनिया से दोस्ती कीजिए, लेकिन आंखें खोलकर।
0: सीखिए, बढ़िए, सपने पूरे कीजिए, और सबसे जरूरी, ऑनलाइन जितने एक्टिव रहिए उतने ही सतर्क भी रहिए।
1: क्योंकि स्मार्टफोन तो सबके पास है, लेकिन स्मार्ट यूजर बनना हमारे अपने हाथों में ही है।
0: तो साथियों, इसी के साथ सुनते हैं नेक्स्ट सॉन्ग, जिसे लिया गया है फिल्म बर्फी से और जिसे आवाज दी है निखिल पॉल जॉर्ज, श्रेया घोषाल और प्रीतम ने।

0: आद्या, कभी-कभी ना इतिहास की किताबों में कुछ ऐसे नाम मिल जाते हैं जिन्हें पढ़ते ही लगता है, यार इनके बारे में पहले क्यों नहीं पढ़ा था।
1: बिल्कुल अनमोल। और आज जिस व्यक्तित्व की हम बात करने जा रहे हैं, वो ऐसे ही है, एक ऐसा नाम जिसने संघर्ष को अपनी ताकत बनाया और सेवा को अपना जीवन।
0: जी हाँ दोस्तों, आज के हमारे प्रेरक व्यक्तित्व हैं बाबू जगजीवन राम, जिन्हें पूरा देश प्यार से बाबूजी कहता था।
1: वैसे अनमोल, बाबूजी सुनते ही सबसे पहले क्या याद आता है?
0: घर वाले बाबूजी जो कहते हैं, पंखा बंद कर दो, बिजली का बिल कौन भरेगा?
1: लेकिन हमारे आज के बाबूजी सिर्फ एक परिवार के नहीं, पूरे देश के प्रेरणा स्रोत हैं।
0: हाँ, उनका जन्म 5 अप्रैल 1908 को बिहार के भोजपुर जिले के चंदवा गांव में हुआ था। बचपन आसान नहीं था, समाज में भेदभाव था, मुश्किलें थी, लेकिन उनके हौसले उनसे कहीं बड़े थे।
1: कहते हैं कि मुश्किल रास्ते अक्सर मजबूत इंसान बनाते हैं। बाबू जगजीवन राम ने भी चुनौतियों को रुकावट नहीं, सीढ़ी बना लिया था।
0: उन्हें पढ़ने का इतना शौक था कि परिस्थितियां चाहे जैसी हो, उन्होंने शिक्षा का साथ कभी नहीं छोड़ा।
1: और यही शिक्षा आगे चलकर उनकी सबसे बड़ी ताकत बनी। उन्होंने सिर्फ अपनी जिंदगी ही नहीं बदली, बल्कि लाखों लोगों के लिए उम्मीद की नई राह भी बनाई।
0: आजादी की लड़ाई हो या भारत का निर्माण, हर जगह उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही।
1: उन्होंने कृषि, रेल और रक्षा जैसे कई बड़े मंत्रालयों की जिम्मेदारी संभाली और हर जिम्मेदारी को पूरी ईमानदारी से निभाया।
0: सन 1971 के भारत पाक युद्ध के समय वे भारत के रक्षा मंत्री थे। उस दौर में भारत ने ऐतिहासिक विजय हासिल की, जो देश के इतिहास का एक गौरवशाली अध्याय था।
1: लेकिन मुझे उनकी सबसे ज्यादा अच्छी बात क्या लगती है पता है अनमोल? कि कभी उन्होंने ये नहीं कहा कि परिस्थितियां खराब हैं, इसीलिए मैं कुछ नहीं कर सकता। उन्होंने हमेशा कहा कि परिस्थितियां जैसी भी हों, काम नहीं रुकना चाहिए।
0: सच है, जिंदगी हमें कहाँ से शुरू करनी है ये हमेशा हमारे हाथ में नहीं होता, लेकिन कहाँ तक पहुँचना है ये काफी हद तक हमारे फैसलों पर निर्भर करता है।
1: तो दोस्तों, अगर कभी लगे कि रास्ता कठिन है, तो बाबू जगजीवन राम का जीवन याद कीजिए। संघर्ष, मेहनत, शिक्षा और सेवा, इन्हीं चार शब्दों में उनकी पूरी जिंदगी समाई हुई है।
0: और शायद यही वजह है कि इतने वर्षों बाद भी लोग उन्हें सिर्फ एक नेता के रूप में नहीं, बल्कि एक प्रेरणा के रूप में याद करते हैं।
1: बाबू जगजीवन राम जी को हमारी विनम्र श्रद्धांजलि। तो चलिए सुनते हैं अगला गीत, जिसे हमने लिया है फिल्म जब तक है जान से और जिसे आवाज दी है राघव माथुर और शिल्पा राव ने।

0: आद्या, एक बात बताओ, आजकल सबसे ज्यादा भरोसा लोग किस पर करते हैं? दोस्त पर या पासवर्ड पर?
1: पासवर्ड पर तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि आधे लोगों का पासवर्ड आज भी 12345 या password@123 ही होता है।
0: लेकिन सच कहूं, आज हमारी जेब में सिर्फ मोबाइल नहीं होता, पूरा बैंक भी होता है, पहचान भी होती है, और कभी-कभी हमारी आधी जिंदगी भी।
1: बिल्कुल अनमोल, यूपीआई, नेट बैंकिंग, ईमेल, सोशल मीडिया, सब कुछ उसी छोटे से फोन में रहता है, इसीलिए उसकी सुरक्षा भी उतनी ही जरूरी है।
0: हाँ, वैसे तुम्हारे पास भी ऐसे मैसेजेज आते होंगे ना कि आपकी केवाईसी आज रात 12 बजे बंद हो जाएगी। ऐसे मैसेज पढ़कर लगता है इन लोगों को हमारी बैंक से ज्यादा हमारी चिंता है।
1: यही तो उनकी चाल होती है, वो हमें डराते हैं या फिर लालच देते हैं ताकि हम बिना सोचे समझे क्लिक कर दें।
0: तो क्या करें, मोबाइल चलाना छोड़ दें?
1: अरे नहीं, मोबाइल क्यों छोड़े, बस थोड़ी समझदारी रखिए। जैसे ओटीपी किसी को ना बताना, अननोन लिंक पर जल्दबाजी में क्लिक ना करना, और पासवर्ड ऐसा रखना जिसे गेस करना आसान ना हो।
0: अच्छा, और मैं एक आदत तो हमेशा अपनाता हूँ, कोई भी मैसेज पढ़कर अगर बहुत ज्यादा खुशी हो या बहुत ज्यादा डर लगे तो तुरंत विश्वास नहीं करता। पहले सोचता हूँ, फिर जांचता हूँ, उसके बाद ही कोई कदम उठाता हूँ।
1: वाह अनमोल, यानी पहले वेरीफाई फिर ट्रस्ट, ये रूल तो सबको याद रखना चाहिए।
0: और अगर कभी गलती से ऑनलाइन फ्रॉड हो भी जाए तो शर्माने की जरूरत नहीं है। अक्सर लोग सोचते हैं लोग क्या कहेंगे, लेकिन जितनी जल्दी शिकायत करेंगे उतनी जल्दी मदद मिलने की संभावना और बढ़ जाती है।
1: मुझे लगता है कि आज साइबर सिक्योरिटी भी हेलमेट जैसी हो गई है। पहले लोग कहते थे इतनी सी दूरी है, हेलमेट की क्या जरूरत है, लेकिन आज वही बात कुछ लोग इंटरनेट पे भी कहते हैं, अरे मेरे साथ थोड़ी होगा।
0: और जब तक समझ आता है तब तक नुकसान हो चुका होता है, इसलिए हेलमेट सड़क पर जरूरी है और साइबर सिक्योरिटी डिजिटल दुनिया में।
1: तो दोस्तों, मोबाइल स्मार्ट है, एप्स भी स्मार्ट है, अब बारी हमारी है स्मार्ट।

सुरक्षित रहिए, सजग रहिए और डिजिटल दुनिया का आनंद लीजिए पूरे आत्मविश्वास के साथ। तो साथियों, इसी के साथ कार्यक्रम में जोड़ते हैं ये गीत, जिसे लिया गया है फिल्म डॉन से और जिसे आवाज दी है आशा भोसले ने।

0: दोस्तों, देखते ही देखते आज का युववाणी अपने अंतिम पड़ाव पर आ पहुंचा है।
1: और अब समय है कार्यक्रम की शुरुआत में पूछे गए उन दो सवालों के जवाब देने का।
0: तो साथियों, आज का पहला सवाल था, साइबर अपराध की शिकायत दर्ज करने के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर क्या है? तो दोस्तों, जिसका सही जवाब है 1930।
1: और हमारा दूसरा सवाल था कि भारत के किस महान नेता को पूरे देश में प्यार से बाबूजी कहा जाता था, जिसका सही उत्तर है बाबू जगजीवन राम।
0: तो दोस्तों, अब हमें दीजिए अनुमति, अगले अंक में मिलेंगे कुछ नए विचारों, नई जानकारी और ढेर सारे सकारात्मक ऊर्जा के साथ।
1: तब तक मुस्कुराते रहिए, सीखते रहिए और डिजिटल दुनिया में स्मार्ट ही नहीं, सुरक्षित भी रहिए। अनुमति दीजिए अपनी रेडियो दोस्त आद्या नायक
0: और आपके रेडियो साथी अनमोल द्विवेदी को।
1: नमस्कार।
0: नमस्कार।

0: ये आकाशवाणी का शिवपुरी केंद्र है।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन, कहानी नहीं बदली स्टाइल गया है बदल, जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल। डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
0: खुशखबरी, जी हां, आकाशवाणी शिवपुरी हुई अब हाईटेक। जी हां, आप अब हमें सुन सकते हैं अपने एंड्रॉइड और आईफोन दोनों प्लेटफॉर्म पर एक साथ कहीं भी, प्रसारण के समय जब जी चाहे तब सुनिएगा। प्ले स्टोर से न्यूज ऑन एआईआर ऐप को

डाउनलोड करें और रेडियो ऑप्शन में जाएं, मध्य प्रदेश में आकाशवाणी शिवपुरी यानी कि AIR शिवपुरी को सिलेक्ट करें और सुने अपने एंड्रॉइड पर पूरी दुनिया में जब चाहें उस वक्त।

0: देश के कोने कोने तक पहुंचाने के लिए अपनी बात कीजिए विज्ञापन आकाशवाणी के साथ। लॉग ऑन कीजिए csuair.org.in।
1: दूरदर्शन की डायरेक्ट टू होम सेवा
2: डीडी डायरेक्ट,
1: निशुल्क, न केबल का झंझट, न बार बार हर महीने भुगतान की समस्या।
2: डायरेक्ट टू होम सेवा बिल्कुल मुफ्त है।
1: स्पष्ट आवाज, सुंदर तस्वीर,
2: साथ में आकाशवाणी के 10 लोकप्रिय चैनल।
1: आज ही करें कनेक्ट
2: दूरदर्शन की डीटीएस सेवा डीडी डायरेक्ट।

0: देश के कोने कोने तक पहुंचाने के लिए अपनी बात कीजिए विज्ञापन आकाशवाणी के साथ। लॉग ऑन कीजिए csuair.org.in।
1: दूरदर्शन की डायरेक्ट टू होम सेवा
2: डीडी डायरेक्ट,
1: निशुल्क, न केबल का झंझट, न बार बार हर महीने भुगतान की समस्या।
2: डायरेक्ट टू होम सेवा बिल्कुल मुफ्त है।
3: तो इस कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ मैं सुनीता सिंह, और भेजती हूँ आप तक प्यार भरा नमस्कार। श्रोताओं, सुहानी सी शाम है, धुला धुला सा आसमान है, धुली धुली सी फिजा है, भीगी भीगी सी ये शाम मुस्कुरा रही है, और इन पलों में हमारा और आपका साथ संगीत के स्वरों की तरह गुनगुना उठा है। फिल्मी गीतों का ये कार्यक्रम है। वैसे ये दोस्तों, फिल्मी गीतों ने इंसान के हर भाव, हर एहसास को शब्द दिए हैं। मोहब्बत के भी कितने रंग हैं इन गीतों में, कितनी तस्वीरें हैं मोहब्बत की इन गीतों में। यहाँ मोहब्बत कभी पुकार है, कभी आराधना है, कभी पहली नजर का जादू, तो कभी मीठा सा इंतजार। हर गीत दिल की इसी अनकही भाषा का एक नया पन्ना खोलता है। तो आज की शाम इन्हीं कोमल भावनाओं और सुरीले एहसासों के साथ आइए शुरू करते हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम। पुकार इंतजार से ही जन्म लेती है। मन की देहरी पर कोई आहट वर्षों तक दीपक बनकर जलती रहती है। जब प्रेम का नाम होठों तक नहीं आ पाता, तब आंखें ही कहा करती हैं। यही मौन पुकार किसी दिन हवा के कंधों पर बैठकर

आजा नचले। इस फिल्म का गीत आप सुन रहे हैं, आवाज राहत फतेह अली खां की है। गीत लिखा है जयदीप सहनी ने और संगीत सलीम सुलेमान का है।

श्रोताओं, जब मन कहीं पहुंचकर ठहर जाता है तब संसार की सारी राहें उसी ओर मुड़ जाती हैं। ये लगन पाने की नहीं, खुद को खो देने की है। यहां मोहब्बत ख्वाहिश नहीं, इबादत हो जाए।

अमजद इस्लाम, अमजद का लिखा ये गीत है पाप, फिल्म का नाम है, आवाज़ राहत फ़तेह अली ख़ान की और संगीत शानी का।

मोहब्बत में आंखें जुबान से कहीं अधिक बोलती हैं, उनमें शरारत भी होती है, अपनापन भी होता है और अनकहे वादों की चमक भी। एक पल की नजर कभी कभी उम्र भर की मुस्कान बन जाती है। मोहब्बत का सबसे खूबसूरत परिचय शायद आंखों से ही हो।

मोहब्बत में इंतजार एक बेहद खूबसूरत सा एहसास है जो आने वाले पलों के लिए कितने सपने संजोता है, कितने गीत रचता है, कितने मौसमों की महक अपने भीतर समेट लेता है। इरशाद कामिल का लिखा गीत आप सुन रहे हैं, संगीत प्रीतम का है, आवाज उस्ताद राशिद खान की, फिल्म का नाम जब वी मेट।

0: ये आकाशवाणी का शिवपुरी केंद्र है।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन, कहानी नहीं बदली स्टाइल गया है बदल, जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
2: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
0: खुशखबरी, जी हां, आकाशवाणी शिवपुरी हुई अब हाईटेक। जी हां, आप अब हमें सुन सकते हैं अपने एंड्रॉइड और आईफोन दोनों प्लेटफॉर्म पर एक साथ कहीं भी। प्रसारण के समय जब जी चाहे तब सुनिएगा। प्ले स्टोर से न्यूज ऑन AIR ऐप को डाउनलोड करें और रेडियो ऑप्शन में जाएं, मध्य प्रदेश में आकाशवाणी शिवपुरी यानी कि AIR शिवपुरी को सिलेक्ट करें और सुने अपने एंड्रॉइड पर पूरी दुनिया में जब चाहें उस वक्त।

0: देश के कोने कोने तक पहुंचाने के लिए अपनी बात कीजिए विज्ञापन आकाशवाणी के साथ। लॉग ऑन कीजिए csuair.org.in।
1: दूरदर्शन की डायरेक्ट टू होम सेवा
2: डीडी डायरेक्ट,
1: निशुल्क, न केबल का झंझट, न बार बार हर महीने भुगतान की समस्या।
2: डायरेक्ट टू होम सेवा बिल्कुल मुफ्त है।
1: स्पष्ट आवाज, सुंदर तस्वीर,
2: साथ में आकाशवाणी के 10 लोकप्रिय चैनल।
1: आज ही करें कनेक्ट
2: दूरदर्शन की डीटीएस सेवा डीडी डायरेक्ट।

0: अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए लीजिए आकाशवाणी का सहयोग और दीजिए उसे बुलंदियों के पंख।
1: आपका बिजनेस लोकल है या राष्ट्रीय, आकाशवाणी देती है उपभोक्ताओं तक पहुंचने का हर विकल्प।
0: और अब तो आप घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे कर सकते हैं आकाशवाणी के किसी भी केंद्र के लिए विज्ञापनों की बुकिंग।
1: आकाशवाणी के विभिन्न चैनलों पर विज्ञापन देना सुलभ और सस्ता।
0: बुकिंग है तो संपर्क करें 8700001-4242 पर।
1: 8700001-4242।
2: एक जमाने से का

0: इस वक्त आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण। समय है इस घंटे की खास खबरों का।
1: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने नई दिल्ली में बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट एसपी कॉन्फ्रेंस 2026 में जमीनी सीमाओं से सटे लगभग 119 जिलों के पुलिस अधीक्षकों को संबोधित किया। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी आज रतलाम पहुंचे। यहां से गुजर रहे दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का निरीक्षण किया। इस दौरान रतलाम कलेक्टर मीशा सिंह ने उन्हें एक्सप्रेसवे के निर्माण कार्यों की जानकारी दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि 21वीं सदी का भारत एक विकसित राष्ट्र बनने के लक्ष्य की ओर बढ़ रहा है। देश की आकांक्षाओं का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि आज का भारत जो अधिक विकास और अधिक उपलब्धियां हासिल करने में विश्वास रखता है। सेना प्रमुख जनरल धीरज सेठ ने आज पुंछ जिले की अग्रिम सीमा चौकियों का दौरा किया और मौजूदा सुरक्षा स्थिति तथा सैन्य तैयारियों की समीक्षा की। पदभार ग्रहण करने के बाद सेना प्रमुख का पुंछ के अग्रिम क्षेत्रों का ये पहला दौरा है। उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल से वल्लभ भवन में यूनिसेफ इंडिया के प्रतिनिधिमंडल ने सौजन्य भेंट की। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज पुणे मुंबई घाट में रेलवे बहाली कार्य की समीक्षा की। यहां भूस्खलन से रेलवे लाइन को भारी नुकसान हुआ था। मध्य और पश्चिमी रेलवे की टीमें मिलकर यहां काम कर रही हैं और भारत इंग्लैंड के बीच 5 T20 मैचों की श्रृंखला का चौथा मुकाबला आज ब्रिस्टल में खेला जाएगा। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।

0: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। लीजिए अब प्रस्तुत है एनसीईआरटी का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि 21वीं सदी का भारत एक विकसित राष्ट्र बनने के लक्ष्य की ओर अग्रसर है। प्रधानमंत्री ने कहा कि आज का भारत अधिक विकास और उपलब्धियां हासिल करने में विश्वास रखता है। ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न में आज प्रवासी भारतीय समुदाय के कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने कहा कि उनकी वर्ष 2014 की यात्रा 28 वर्ष बाद किसी भारतीय प्रधानमंत्री की ऑस्ट्रेलिया यात्रा थी।
2: मैं जब साल 2014 में ऑस्ट्रेलिया आया था तो 28 साल के बाद भारत का कोई पीएम यहाँ पहुँचा था। तब मैंने कहा था कि अब आपको 28 साल इंतजार नहीं करना पड़ेगा। पिछले 12 वर्षों में मैं तीसरी बार यहाँ आया हूँ, यानी इस बार हैट्रिक लगी है। ये दिखाता है कि भारत और ऑस्ट्रेलिया के रिश्ते किस ऊंचाई पर है।
1: इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज के बीच आज मेलबर्न में तीसरी ऑस्ट्रेलिया भारत वार्षिक शिखर वार्ता हुई। इस दौरान दोनों नेताओं ने प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता में द्विपक्षीय संबंधों को और सशक्त बनाने पर चर्चा की। शिखर सम्मेलन के समापन के बाद विक्टोरिया के गवर्नमेंट हाउस में संयुक्त वक्तव्य जारी किया गया। संवाददाताओं को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि दोनों देशों ने यूरेनियम आपूर्ति और महत्वपूर्ण खनिज गलियारे से जुड़े ऐतिहासिक समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं। प्रधानमंत्री एंथनी एल्बनीज ने कहा कि इस भविष्य उन्मुख भारत ऑस्ट्रेलिया साझेदारी का सबसे मजबूत आधार दोनों देशों के बीच सेतु का कार्य करने वाला जीवंत भारतीय प्रवासी समुदाय है। विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने कहा है कि भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच संबंध गतिशील हैं और तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। आज मेलबर्न में श्री मिश्री ने कहा कि व्यापार, रक्षा और ऊर्जा सहित अनेक क्षेत्रों में दोनों देशों की द्विपक्षीय साझेदारी लगातार सुदृढ़ हुई है। गुजरात सरकार ने आज गांधीनगर के महात्मा मंदिर में विकसित भारत डेटा सेंटर नीति 2026-29 का शुभारंभ किया। इस नीति का उद्देश्य 8 गीगावाट क्षमता का लक्ष्य निर्धारित करते हुए गुजरात को भारत के अग्रणी डेटा सेंटर और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस केंद्र के रूप में स्थापित करना है। इस नीति का उद्देश्य राज्य में 6,00,000 करोड़ रुपए के निवेश और अधिक रोजगार सृजित करना है। सेना प्रमुख जनरल धीरज सेठ ने आज जम्मू कश्मीर में पुंछ जिले की अग्रिम सीमा चौकियों का दौरा किया। सेना प्रमुख ने मौजूदा सुरक्षा स्थिति का जायजा लिया और सैन्य तैयारियों की समीक्षा की। पदभार ग्रहण करने के बाद सेना प्रमुख का पुंछ के अग्रिम क्षेत्रों का ये पहला दौरा है। सेना प्रमुख ने नगरोटा स्थित व्हाइट नाइट कोर मुख्यालय में वरिष्ठ कमांडरों से जम्मू क्षेत्र की सुरक्षा स्थिति और सैन्य तैयारियों की जानकारी ली। सरकार ने सोशल मीडिया पर उस दावे का खंडन किया है जिसमें भारत आ रहे एक एलपीजी टैंकर पर ईरान के मिसाइल हमले की बात कही गई है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने इस दावे को झूठा बताते हुए कहा है कि साझा की जा रही तस्वीर पिछले साल यमन के अदन तट के पास कैमरून के झंडे वाले एलपीजी टैंकर एमवी फाल्कन में विस्फोट के बाद लगी आग से संबंधित है। ईरान ने अमेरिका पर आज बुशहर परमाणु ऊर्जा संयंत्र के पास हवाई हमला करने का आरोप लगाया। ईरान की सरकारी समाचार एजेंसी ने बताया है कि ये कार्रवाई उस पर हमले समाप्त करने की अमेरिकी सेना की घोषणा के कुछ घंटों बाद हुई। अमेरिकी केंद्रीय कमान ने इसकी पुष्टि नहीं की है। अमेरिका ने आज सुबह ईरान पर फिर हवाई हमले किए। ईरान ने भी खाड़ी क्षेत्र में अमेरिका के सहयोगी देशों को निशाना बनाकर जवाबी कार्रवाई की। इन हमलों से पश्चिम एशिया में युद्ध समाप्त करने का अंतरिम समझौता खतरे में पड़ गया है। ईरान के स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार अमरीकी हवाई हमलों से 2 दिन में 14 लोग मारे गए हैं और 78 घायल हुए हैं। दक्षिण पश्चिम मॉनसून आज पूरे देश में सक्रिय हो गया है। मॉनसून राजस्थान, हरियाणा, पंजाब और उत्तरी अरब सागर के शेष हिस्सों में भी आगे बढ़ चुका है। विभाग ने हरियाणा सहित राष्ट्रीय राजधानी में तेज बारिश के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। भारत और इंग्लैंड के बीच चौथा T20 मैच आज रात 10 बजे से ब्रिस्टल में खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय अनुजा कुमार। Prime Minister Narendra Modi today outlined a powerful roadmap for a future-ready and developed India driven by the mantra, Grow More, Achieve More. Addressing the Indian diaspora in Melbourne, Mr. Modi highlighted India's economic and technological progress.
2: 21वीं सदी का भारत आज विकसित होने के लक्ष्य पर काम कर रहा है। ये वो भारत है जो कहता है ग्रो मोर एचीव मोर। हम 140 करोड़ एस्पिरेशन से भरे राष्ट्र है। हम अधीर है, बेसब्र है। हम दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती इकोनॉमी है।
3: While crediting the Indian community for strengthening bilateral partnership, Mr. Modi asserted that ties between India and Australia have reached great heights. Mr. Modi highlighted the cultural roots, mini India hubs and emotional bonds across borders. Speaking on the occasion, Australian Prime Minister Anthony Albanese said the enthusiasm at the event reflected the strength of the Australia-India partnership and the growing warmth in bilateral relations. Later, briefing media in Melbourne,

0: आकाशवाणी समाचार सेवा प्रभाग की प्रस्तुति विश्लेषण।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के कार्यक्रम विश्लेषण के नए अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं जया भारती। पश्चिम एशिया में एक बार फिर तनाव बढ़ गया है। हाल ही में अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध विराम पर सहमति बनी थी, लेकिन अब हालात फिर से बिगड़ते दिखाई दे रहे हैं। क्षेत्र में बढ़ते तनाव और अंतर्राष्ट्रीय समुद्री मार्गों से गुजरने वाले व्यापारिक जहाजों पर हुए हालिया हमलों ने पूरी दुनिया की चिंता बढ़ा दी है। भारत ने भी इन घटनाओं पर गहरी चिंता व्यक्त करते हुए सभी पक्षों से संयम बरतने, तनाव कम करने और बातचीत के जरिए समाधान निकालने की अपील की है। इस बीच विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर 5 जुलाई से 10 जुलाई तक कतर, बहरीन, कुवैत और ओमान की यात्रा पर है। इस यात्रा के दौरान वे इन देशों के शीर्ष नेतृत्व से मुलाकात कर द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत बनाने के साथ साथ क्षेत्र के मौजूदा हालात पर भी चर्चा करेंगे। आज के विश्लेषण में हम समझेंगे कि खाड़ी क्षेत्र भारत के लिए इतना महत्वपूर्ण क्यों है, इस क्षेत्र में बढ़ते तनाव का भारत और दुनिया पर क्या असर पड़ सकता है और भारत अपने रणनीतिक, आर्थिक और ऊर्जा हितों को सुरक्षित रखने के लिए खाड़ी देशों के साथ अपने संबंधों को किस तरह मजबूत कर रहा है। श्रोताओं, अमेरिका और ईरान के बीच एक बार फिर बढ़ते तनाव का असर अब समुद्री व्यापार और ऊर्जा आपूर्ति पर भी दिखाई देने की पूरी संभावना है। संयुक्त राष्ट्र महासचिव अंतोनियो गुतरश ने चेतावनी दी है कि अगर यह तनाव और बढ़ता है तो इसका असर केवल पश्चिम एशिया तक सीमित नहीं रहेगा, इससे क्षेत्रीय शांति, वैश्विक अर्थव्यवस्था और अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा पर भी गंभीर प्रभाव पड़ सकता है। ऐसे में ये समझना जरूरी है कि आखिर खाड़ी क्षेत्र में बढ़ते तनाव का दुनिया पर क्या असर पड़ रहा है और भारत के लिए यह स्थिति क्यों महत्वपूर्ण है। आइए सुनते हैं ये रिपोर्ट। पश्चिमी एशिया में बढ़ते तनाव के बीच हॉर्मुज जल डमरू मध्य से गुजरने वाले कई व्यापारिक जहाजों पर हमलों की खबरें सामने आई हैं। इन घटनाओं के बाद संयुक्त राष्ट्र और अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन ने गहरी चिंता व्यक्त की है और सभी पक्षों से संयम बरतने तथा तनाव कम करने की अपील की है। अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन के अनुसार इस मार्ग से सामान्य समय में लगभग 130 जहाज प्रतिदिन गुजरते थे, लेकिन हाल के तनाव के कारण आवाजाही प्रभावित हुई है और करीब 6000 नाविक सैकड़ों जहाजों पर फंसे हुए हैं। दरअसल हॉर्मुज जल डमरू मध्य दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण समुद्री मार्गों में से एक है। ये फारस की खाड़ी को खुले समुद्र से जोड़ता है। दुनिया के समुद्री रास्ते से होने वाले तेल व्यापार का लगभग 1/4 और लिक्विफाइड नेचुरल गैस यानी एलएनजी का लगभग 5वां हिस्सा इसी रास्ते से गुजरता है। खाड़ी के कई देशों जैसे कतर, कुवैत, बहरीन और इराक के लिए यही मुख्य समुद्री मार्ग है। ऐसे में यदि इस मार्ग पर आवाजाही प्रभावित होती है तो इसका असर दुनिया भर में तेल और गैस की आपूर्ति पर पड़ता है। संयुक्त राष्ट्र के आर्थिक आयोग ने भी आशंका जताई है कि यदि तनाव जारी रहता है तो ऊर्जा की कीमतों में उतार चढ़ाव बढ़ सकता है और आपूर्ति प्रभावित हो सकती है। भारत के लिए भी ये स्थिति बेहद महत्वपूर्ण है। भारत अपनी ऊर्जा जरूरतों का बड़ा हिस्सा खाड़ी क्षेत्र से प्राप्त करता है। कच्चे तेल और एलएनजी की आपूर्ति का एक बड़ा भाग इसी समुद्री मार्ग से होकर भारत पहुंचता है। ऐसे में इस क्षेत्र में अस्थिरता का असर ऊर्जा आपूर्ति, परिवहन लागत और देश के आर्थिक हितों पर पड़ सकता है। इसके अलावा खाड़ी देशों में बड़ी संख्या में भारतीय नागरिक रहते हैं और काम करते हैं। ऐसे में क्षेत्र में शांति और स्थिरता भारत के लिए केवल ऊर्जा सुरक्षा का ही नहीं बल्कि अपने नागरिकों और व्यापक आर्थिक हितों की सुरक्षा का भी विषय है। ऐसे समय में जब खाड़ी क्षेत्र में तनाव बढ़ रहा है, भारत केवल हालात पर नजर नहीं रख रहा बल्कि अपने रणनीतिक, आर्थिक और ऊर्जा हितों को सुरक्षित रखने के लिए लगातार सक्रिय कूटनीतिक प्रयास भी कर रहा है। इसी दिशा में विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर कतर, बहरीन, कुवैत और ओमान की यात्रा पर हैं। आखिर इस यात्रा का महत्व क्या है और इससे भारत के हितों को किस तरह मजबूती मिलेगी, जानने के लिए सुनते हैं ये रिपोर्ट। खाड़ी क्षेत्र भारत की विदेश नीति का महत्वपूर्ण हिस्सा है। भारत और गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल यानी GCC के देशों के बीच व्यापार और निवेश भी लगातार बढ़ रहा है। ऐसे में क्षेत्र में शांति और स्थिरता भारत के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। इसी पृष्ठभूमि में विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर 5 से 10 जुलाई तक कतर, बहरीन, कुवैत और ओमान की यात्रा पर हैं। इस यात्रा का उद्देश्य इन देशों के साथ द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत बनाना है। इसके साथ ही क्षेत्र के मौजूदा हालात और आपसी हितों से जुड़े मुद्दों पर भी चर्चा की जा रही है। डॉक्टर एस जयशंकर की ये यात्रा केवल कूटनीतिक मुलाकातों तक सीमित नहीं है बल्कि भारत के प्रमुख राष्ट्रीय हितों से भी जुड़ी है। कतर भारत का प्रमुख LNG साझेदार है, इसलिए वहाँ ऊर्जा सुरक्षा और क्षेत्र के हालात पर विशेष चर्चा हुई। बहरीन में बातचीत का केंद्र समुद्री सुरक्षा, खाड़ी क्षेत्र के महत्वपूर्ण व्यापारिक मार्गों की सुरक्षा और डिजिटल क्षेत्र में सहयोग रहा। विदेश मंत्री ने वहाँ रह रहे भारतीय समुदाय से भी मुलाकात की और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में बहरीन की भूमिका की सराहना की। कुवैत में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अपने समकक्ष शेख जर्रा जाबेर अल अहमद अल सभा के साथ द्विपक्षीय वार्ता की। दोनों नेताओं ने खाड़ी क्षेत्र में मौजूदा तनाव और उसके क्षेत्रीय तथा वैश्विक प्रभावों पर चर्चा की। कुवैत में भारतीय समुदाय के हितों और खाद्य सुरक्षा के साथ साथ रक्षा सहयोग भी चर्चा का प्रमुख विषय रहा। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कुवैत के रक्षा मंत्री के साथ रक्षा उद्योग में सहयोग बढ़ाया।

0: करने और समुद्री सुरक्षा को मजबूत करने पर विस्तार से बातचीत की। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर खाड़ी देशों की यात्रा के अंतिम चरण में ओमान पहुंचे, जहां उन्होंने विदेश मंत्री सैयद बद्र अल बुसैदी के साथ व्यापक वार्ता की। दोनों नेताओं ने भारत ओमान रणनीतिक साझेदारी की समीक्षा की और द्विपक्षीय संबंधों को आगे बढ़ाने पर चर्चा की। बैठक में भारत ओमान व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते यानी CEPA को प्रभावी ढंग से लागू करने, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पिछले वर्ष ओमान यात्रा के दौरान लिए गए निर्णयों की प्रगति की समीक्षा करने और क्षेत्रीय तथा वैश्विक घटनाक्रमों पर भी विशेष ध्यान दिया जा रहा है। विशेषज्ञों का मानना है कि भारत आज केवल ऊर्जा आयात तक सीमित सोच नहीं रखता, वो खाड़ी देशों के साथ रक्षा, समुद्री सुरक्षा, व्यापार, निवेश, डिजिटल प्रौद्योगिकी, खाद्य सुरक्षा और नई तकनीक जैसे क्षेत्रों में भी सहयोग बढ़ा रहा है। यही व्यापक साझेदारी भारत को बदलते वैश्विक हालात में अपने आर्थिक और रणनीतिक हितों की बेहतर सुरक्षा करने में मदद करती है। समाचार कक्ष से मैं सरफिरोजी।
1: श्रोताओं, बदलते क्षेत्रीय हालात के बीच भारत की सक्रिय कूटनीति और खाड़ी देशों के संबंधों का महत्व लगातार बढ़ रहा है। ऐसे समय में विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर की यह यात्रा भारत की ऊर्जा सुरक्षा, समुद्री हितों और व्यापक रणनीतिक साझेदारी को किस तरह नई मजबूती देती है, इन्हीं पहलुओं पर आकाशवाणी ने पूर्व राजदूत अनिल वाधवा से विशेष बातचीत की। आइए सुनते हैं कि उन्होंने क्या कहा।
2: भारत की आर्थिक वृद्धि और विकास की महत्वाकांक्षाएं किफायती और निर्बाध ऊर्जा आपूर्ति से जुड़ी हुई हैं। पश्चिम एशिया की मौजूदा स्थिति एक तात्कालिक चुनौती होने के साथ साथ एक दीर्घकालिक रणनीति परीक्षा भी है। दुनिया के कच्चे तेल और लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस का एक बड़ा हिस्सा हॉर्मुज जलडमरू मध्य से होकर गुजरता है। ऐसे में इस मार्ग में किसी भी तरह का व्यवधान, चाहे वह कुछ समय के लिए ही क्यों न हो, कुछ ही घंटों में वैश्विक ऊर्जा बाजार को प्रभावित कर सकता है। भारत के लिए घटनाक्रम विशेष महत्व रखते हैं, क्योंकि भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा ऊर्जा उपभोक्ता और सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। भारत अपनी कच्चे तेल की आवश्यकता का लगभग 80% आयात करता है और प्राकृतिक गैस की जरूरत का आधे से अधिक हिस्सा भी आयात के माध्यम से पूरा करता है। इनमें से एक बड़ा हिस्सा खाड़ी क्षेत्र से आता है। सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, कुवैत और कतर भारत के सबसे विश्वसनीय ऊर्जा साझेदारों में शामिल है।
3: India's most dependable energy suppliers.
1: श्रोताओं, बदलते वैश्विक हालात में भारत की प्राथमिकता शांति और स्थिरता को बढ़ावा देने के साथ साथ अपनी ऊर्जा सुरक्षा, समुद्री हितों और आर्थिक साझेदारियों को मजबूत बनाए रखना है। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर की कतर, बहरीन, कुवैत और ओमान की यह यात्रा इसी व्यापक रणनीति का हिस्सा है, जो भारत की सक्रिय कूटनीति और अपने राष्ट्रीय हितों की सुरक्षा के प्रति उसकी प्रतिबद्धता को दर्शाती है। इसी के साथ आज के विश्लेषण में बस इतना ही। नमस्कार। इस कार्यक्रम को तैयार किया था हमारे सहयोगी अनिकेत ने, तकनीकी सहयोग दिया है अरुणदीप सिंह ने।

0: सूच्यां सम्मिलितम्। प्रवृष्टावत कृत्स्ने हि देशे व्याप्ता दिल्ल्यां विगतरात्रिकालात् अश्रांत वृष्ट्या सामान्य जनजीवनम् अत्यन्तं बाधितम्। अपि च भारत इंग्लैंडयोः मध्ये पञ्च क्रीडात्मिकायाः चतुर्थी अन्ताराष्ट्रिय प्रतिस्पर्धा अद्य रात्रौ तावत् दशवादने क्रीडिष्यते। अथ वार्ताः विशदीकृत्य। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी प्रावोचत् यत् एकविंशतिशताब्द्याः भारतं विकसित भारतं भवितुं संकल्पबद्धो वर्तते। तेनोदीरितं यत् साम्प्रतं भारतं तादृशः देशः यः अधिकविकासे विश्वसिति।
1: 21वीं सदी का भारत आज विकसित होने के लक्ष्य पर काम कर रहा है। ये वो भारत है जो कहता है ग्रो मोर अचीव मोर। हम 140 करोड़ एस्पिरेशन से भरे राष्ट्र है। हम अधीर है, बेसब्र है। हम दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती इकोनॉमी है।
0: विगत द्वादश वर्षेषु स्वस्य तृतीयं ऑस्ट्रेलिया भ्रमणं हैट्रिक इति विज्ञापयता तेन प्रतिपादितं यत् एषः प्रवासः भारत ऑस्ट्रेलिया संबंधानां ऊर्ध्वगामितां सूचयति। अत्रावसरे ऑस्ट्रेलिया देशस्य प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज इत्यसावपि तत्र उपस्थितः आसीत्। तेन तत्रत्यं जन उत्साहं दृष्ट्वा एषा सहभागिता दृढतरा इत्युक्तम्। अस्मात् पुरा उभयोः देशयोः नेतृभ्याम् मेलबर्न नगरे तृतीये भारत ऑस्ट्रेलिया वार्षिक शिखर सम्मेलने भागं गृहीत्वा शिष्ट मण्डलस्तरीया द्विपाक्षिकी वार्ता विहिता। हिन्द प्रशांत क्षेत्रे शान्तिं स्थिरतां च स्थापयितुं द्वाभ्यां नेतृभ्याम् रक्षा सुरक्षा सहयोग संयुक्त घोषणापत्रे हस्ताक्षरं विहितम्।
1: हमारे मैरिटाइम सिक्योरिटी कोलैबोरेशन रोडमैप से इंडो पैसिफिक में हमारे साझा प्रयासों को नई ताकत मिलेगी। हम शिप बिल्डिंग, शिप रिपेयर और मेंटेनेंस में भी मिलकर आगे बढ़ेंगे। फ्रेंड्स, आज हमने कई क्षेत्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर भी विस्तार पूर्वक चर्चा की।
0: वार्ताहरान् सम्बोधयन् प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी न्यगादीत् यत् भारत ऑस्ट्रेलिया देशाभ्याम् परमाणु ऊर्जा क्षेत्रे कश्चन ऐतिहासिकः सहयोगः साधितः। अनेन ऑस्ट्रेलिया देशात् भारताय यूरेनियम् इत्यस्य आपूर्तिः सुलभा भविष्यति। अयं संयोगः भारतस्य स्वच्छोर्जा लक्ष्याय नवीनां गतिं प्रदास्यति। अनेनैव सह साइबर क्रिटिकल टेक्नोलॉजी एवं सप्लाई चेन प्रणाल्याः संचालनेन सहैव एकात्म महत्वपूर्ण खनिज वीथि निर्माणेन सामरिक औद्योगिकी सुरक्षा क्षेत्रम् अनवरतम् समेधते।
1: आज हमने एक महत्वपूर्ण समझौता किया है। इससे ऑस्ट्रेलिया से भारत को यूरेनियम सप्लाई का मार्ग खुलेगा और हमारे क्लीन एनर्जी के उद्देश्यों को नई ताकत मिलेगी। क्रिटिकल मिनरल्स में हमारा सहयोग हमारी स्ट्रेटेजिक सिक्योरिटी और क्लीन एनर्जी ट्रांजिशन के लिए महत्वपूर्ण है।
0: अद्य प्रातः तावत् उभौ प्रधानमन्त्रिणौ भारत ऑस्ट्रेलिया सीईओ फोरम इत्यस्मिन् भागं गृहीतवन्तौ। उपराष्ट्रपतिना सीपी राधाकृष्णन इत्यनेन अद्य भुवनेश्वरे ओडिशा कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालयस्य प्रांगणे भारतस्य उच्च समुद्र मत्स्यपालन संपदः शाश्वत उपयोगाय एकस्य ऐतिहासिक राष्ट्रीय अभियानस्य विधिवत शुभारंभः अकारि। अत्रावसरे ब्लू इकोनॉमी इति समुद्राधारितार्थव्यवस्था इत्येतत् राष्ट्रीय समृद्धेः एकं दूरगामी परिवर्तनकारी इंजन इति वर्णयन् उपराष्ट्रपतिः देशस्य यूनां प्रति आह्वानं कृतवान्। तैः विकसित भारतस्य आधारशिलात्वेन आधुनिकाः प्रौद्योगिकी संचालिताः मत्स्यपालन सामुद्रिक वृत्तयः पूर्णोत्साहेन अंगीकरणीयाः। संस्कृत वार्तायाः संस्करणमिदं इदानीम् आकाशवाणीतः प्रसार्यते। सममेव अयं कार्यक्रमः आकाशवाण्याः अन्तर्जालपटले www.newsonair.gov.in इत्यत्र अथ न्यूज ऑन एआईआर चलदूरभाषीय तन्त्रांशे अपि समुपलब्धो भविष्यति। उत्तराखंड राज्यम राष्ट्रीय शिक्षा नीति विंशतेः उल्लास इति नूतन भारत साक्षरता कार्यक्रमस्यान्तर्गतं निर्धारितान् वयस्क साक्षरता मानदण्डान् सम्प्राप्य देशस्य षष्ठं पूर्ण साक्षर

कार्यक्रम के सभी सुनने वालों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। मैं सुनीता सिंह। स्वीकार कीजिए मेरा प्यार भरा नमस्कार। श्रोताओ, फिल्म संगीत के इस कार्यक्रम में आज है यादों की रिमझिम फुहारें। जी हाँ, और वजह है आज की तारीख 9 जुलाई। 9 जुलाई सुप्रसिद्ध फिल्म अभिनेता संजीव कुमार का जन्मदिन है। तो आज फिल्म संगीत के इस कार्यक्रम में हम उन्हें याद करेंगे और उनकी फिल्मों के गीत सुनेंगे। श्रोताओं, कुछ कलाकार पर्दे पर अभिनय नहीं करते हैं, वो जीवन को जीते हैं। उनके चेहरे पर भाव नहीं आते, भावनाएं उतर आती हैं। वो कभी हंसाते हैं, कभी रुलाते हैं, कभी सोचने पर मजबूर कर देते हैं। एक ऐसे ही अद्भुत कलाकार थे संजीव कुमार। 9 जुलाई 1938 को उनका जन्म हुआ था।

उन्होंने सिद्ध किया था कि अभिनय उम्र का नहीं प्रतिभा का मोहताज होता है। युवा होते हुए भी उन्होंने पिता, वृद्ध, प्रेमी, पुलिस अधिकारी, किसान, कवि, साधारण इंसान, हर चरित्र को इतनी सहजता से निभाया कि वो सभी किरदार आज भी हमें अपने से लगते हैं। आज के इस विशेष फिल्म संगीत के कार्यक्रम में हम उन्हीं की यादों को उनके गीतों के माध्यम से सहेजेंगे। उनकी फिल्में जिनमें उनका अभिनय आज भी हमें दिखाई देता है और हम उसके मुरीद होते हैं, तो आइए फिल्म संगीत के इस कार्यक्रम में अभिनय के इस शिखर पुरुष को याद करें।

श्रोताओं, संजीव कुमार का मूल नाम हरी भाई जरीवाला था। मूल रूप से वो गुजराती थे। गुजरात के सूरत शहर में उनका जन्म हुआ था और बचपन से ही अभिनय में उनकी गहरी रुचि थी। शुरू में वो रंगमंच से जुड़े, आगे चलकर फिल्मालया के अभिनय स्कूल में वो शामिल हुए और इसी दौर में सन 1960 में फिल्मालया बैनर की एक फिल्म बन रही थी, हम हिंदुस्तानी। इस फिल्म में एक छोटी सी भूमिका उनको मिली और उन्होंने अपने अभिनय से ऐसी छाप छोड़ी कि फिर आगे जो फिल्में थी उनका एक सिलसिला ही निकल पड़ा और कभी मुड़कर उन्होंने पीछे नहीं देखा। फिल्म खिलौना संजीव कुमार की अभिनय क्षमता को एक नई पहचान दे गई थी। मानसिक संघर्ष से जूझते पात्र को उन्होंने इतनी सच्चाई से और इस संवेदनशीलता के साथ निभाया था कि दर्शक भावुक उठे और इस फिल्म में उनके अभिनय की बहुत चर्चा हुई। तो आइए अब आगे बढ़ते हैं और आपको सुनवाते हैं सीता और गीता फिल्म का गीत। ये भी एक बहुत खूबसूरत फिल्म थी जिसने मनोरंजन की दुनिया में एक नया इतिहास रच दिया था। सीता और गीता

0: में संजीव कुमार का जो सहज विनोदी और सधा हुआ अभिनय था, और हेमा मालिनी के साथ उनकी जो जोड़ी थी वो बहुत पसंद की गई थी। तो आइए सुनते हैं इसी फिल्म का गीत।
1: अरे अरे ए,

श्रोताओ, संजीव कुमार एक वर्सेटाइल अभिनेता थे। गंभीर भूमिकाओं में जब दर्शक उन्हें देखते तो उनके साथ वो भावनाओं में डूब जाते, कभी आंखें भीग जाती। जब वो हल्के फुल्के रोल करते या कॉमेडी करते तो हंसते हंसते लोटपोट हो जाते देखने वाले। रोमांटिक फिल्मों में भी वो उतने ही अच्छे थे और चुलबुले किरदार भी उतनी ही सहजता से निभाते थे। आइए सुनते हैं मंजली फिल्म का ये गीत।

श्रोताओं, अद्भुत कलाकार थे संजीव कुमार। नया दिन नई रात ये एक ऐसी फिल्म थी जिसमें उन्होंने 9 किरदार निभाए थे। फिल्म कोशिश में मूक बधिर एक व्यक्ति की उन्होंने भूमिका निभाई थी जिसे कभी भुलाया नहीं जा सकता है। और फिल्म शोले के ठाकुर को भला कोई कैसे

भूल सकता है। ऐसी ही उनकी एक कालजयी फिल्म थी आंधी। गुलजार के निर्देशन में ये फिल्म बनी थी। संजीव कुमार और सुचित्रा सेन की संवेदनशील अदाकारी ने इस फिल्म को अमर बना दिया। इस फिल्म के लिए संजीव कुमार को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का फिल्मफेयर पुरस्कार दिया गया था।

0: सुनो आरती, ये जो फूलों की बेलें नजर आती हैं ना, दरअसल ये बेलें नहीं है, अरबी में आयतें लिखी हैं। इसे दिन के वक्त देखना चाहिए, बिल्कुल साफ नजर आती है। दिन के वक्त ये सारा पानी से भरा रहता है। दिन के वक्त जब ये फुहारे,
1: क्यों कर रहे हो? कहां आ पाऊंगी मैं दिन में?
0: ये जो चांद है ना, इसे रात में देखना, ये दिन में नहीं निकलता।
1: ये तो रोज निकलता होगा।
0: हाँ, लेकिन बीच में अमावस आ जाती है। वैसे तो अमावस 15 दिन की होती है, लेकिन इस बार बहुत लंबी थी।
1: 9 बरस लंबी थी ना।
2: अद्भुत अभिनेता थे संजीव कुमार। संजीदा भूमिका में वो दिल की गहराइयों में उतर जाते थे और हास्य अभिनय में भी उनका कोई सानी नहीं था। फिल्म अंगूर में दोहरी भूमिका निभाते हुए उन्होंने बिना किसी बनावटीपन के दर्शकों को हंसा हंसा कर लोटपोट कर दिया था। श्रोताओं, संजीव कुमार को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2 बार प्रदान किया गया, फिल्म दस्तक और कोशिश के लिए। फिल्मफेयर ने उन्हें 2 बार सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार प्रदान किया था, एक तो फिल्म आंधी थी और दूसरी अर्जुन पंडित, और इसके साथ ही फिल्मफेयर का सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता का पुरस्कार भी उन्हें प्राप्त हुआ था फिल्म शिकार के लिए। फिल्म मौसम में भी संजीव कुमार ने भावनाओं को

संजीव कुमार ने लगभग 150 से अधिक फिल्मों में अभिनय किया और हर भूमिका को एक अलग पहचान दी। सत्यजीत रे से लेकर गुलजार और हृषिकेश मुखर्जी जैसे निर्देशकों ने उनकी प्रतिभा का भरपूर उपयोग किया। वे उन बिरले कलाकारों में से एक थे जिन्होंने नायक की परिभाषा को ही बदल दिया था। 6 नवंबर 1985 को वो इस दुनिया से विदा हुए, लेकिन उनकी अदायगी आज भी भारतीय सिनेमा की अमूल्य धरोहर है। चलते चलते हम यही कहेंगे कि कुछ कलाकार समय के साथ पुराने नहीं पड़ते, बल्कि समय उन्हें और मूल्यवान बना देता है। संजीव कुमार भी ऐसे ही कलाकार थे जिनकी मुस्कान, संवाद अदायगी और भावपूर्ण अभिनय आज भी उतने ही जीवंत हैं जितने अपने दौर में थे। तो आज फिल्म संगीत के इस कार्यक्रम में उनके जन्मदिन पर हमने उन्हें याद किया। उम्मीद है आज का ये कार्यक्रम आपको पसंद आया होगा। अब इस कार्यक्रम से इजाजत दें अपनी दोस्त सुनीता सिंह को। नमस्कार।

0: आप सुन रहे थे फिल्म संगीत का कार्यक्रम। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। हमारा अगला प्रसारण बस कुछ ही पलों बाद।
1: नमस्कार, मैं राजीव वर्मा स्वच्छता ही सेवा अभियान से जुड़ा हुआ हूं और आप सभी से गुजारिश करता हूं, प्रार्थना करता हूं कि आप भी इससे जुड़ें और अपने कार्यालय, घर, कॉलोनी, मोहल्लों को स्वच्छ रखें। धन्यवाद। जय हिंद।
2: अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना। जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना। हर संकट का समाधान है भारतीय सेना। भारत का गौरव है, स्वाभिमान है भारतीय सेना।
3: ये आकाशवाणी का शिवपुरी केंद्र है।
4: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
5: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

0: देश के कोने कोने तक पहुंचाने के लिए अपनी बात कीजिए विज्ञापन आकाशवाणी के साथ। लॉग ऑन कीजिए csuair.org.in।
1: खुशखबरी, जी हां, आकाशवाणी शिवपुरी हुई अब हाईटेक। जी हां, आप अब हमें सुन सकते हैं अपने एंड्रॉइड और आईफोन दोनों प्लेटफॉर्म पर एक साथ कहीं भी। प्रसारण के समय जब जी चाहे तब सुनिएगा। प्ले स्टोर से न्यूज ऑन एआईआर ऐप को डाउनलोड करें और रेडियो ऑप्शन में जाएं। मध्य प्रदेश में आकाशवाणी शिवपुरी यानी कि एआईआर शिवपुरी को सिलेक्ट करें और सुने अपने एंड्रॉइड पर पूरी दुनिया में जब चाहें उस वक्त।

0: दूरदर्शन की डायरेक्ट टू होम सेवा
1: डीडी डायरेक्ट
0: निशुल्क न केबल का झंझट न बार बार हर महीने भुगतान की समस्या
1: डायरेक्ट टू होम सेवा बिल्कुल मुफ्त है
0: स्पष्ट आवाज सुंदर तस्वीर
1: साथ में आकाशवाणी के 10 लोकप्रिय चैनल
0: आज ही करें कनेक्ट
1: दूरदर्शन की डीटीएस सेवा डीडी डायरेक्ट
2: अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए लीजिए आकाशवाणी का सहयोग और दीजिए उसे बुलंदियों के पंख
3: आपका बिजनेस लोकल है या राष्ट्रीय आकाशवाणी देती है उपभोक्ताओं तक पहुंचने का हर विकल्प
2: और अब तो आप घर दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे कर सकते हैं आकाशवाणी के किसी भी केंद्र के लिए विज्ञापनों की बुकिंग
3: आकाशवाणी के विभिन्न चैनलों पर विज्ञापन देना सुलभ और सस्ता
2: बुकिंग है तो संपर्क करें 8700001 4242 पर
3: 8700001 4242

0: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन, कहानी नहीं बदली स्टाइल गया है बदल, जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सरफिरोजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि 21वीं सदी का भारत विकसित राष्ट्र बनने के लक्ष्य की ओर अग्रसर है। प्रधानमंत्री ने कहा कि आज का भारत अधिक विकास और उपलब्धियां हासिल करने में विश्वास रखता है। ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न में आज प्रवासी भारतीय समुदाय के कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने कहा कि उनकी वर्ष 2014 की यात्रा 28 वर्ष बाद किसी भी भारतीय प्रधानमंत्री की पहली ऑस्ट्रेलिया यात्रा थी।
1: मैं जब साल 2014 में ऑस्ट्रेलिया आया था तो 28 साल के बाद भारत का कोई पीएम यहाँ पहुंचा था। तब मैंने कहा था कि अब आपको 28 साल इंतजार नहीं करना पड़ेगा। पिछले 12 वर्षों में मैं तीसरी बार यहाँ आया हूँ, यानी इस बार हैट्रिक लगी है। ये दिखाता है कि भारत और ऑस्ट्रेलिया के रिश्ते किस ऊंचाई पर है।
0: इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज के बीच आज मेलबर्न में तीसरी ऑस्ट्रेलिया भारत वार्षिक शिखर वार्ता हुई। इस दौरान दोनों नेताओं ने प्रतिनिधि मंडल स्तर की वार्ता में द्विपक्षीय संबंधों को और सशक्त बनाने पर चर्चा की। शिखर सम्मेलन के समापन के बाद विक्टोरिया के गवर्नमेंट हाउस में संयुक्त वक्तव्य जारी किया गया। श्री मोदी ने कहा कि दोनों देशों ने यूरेनियम आपूर्ति और महत्वपूर्ण खनिज गलियारे से जुड़े ऐतिहासिक समझौतों पर हस्ताक्षर किए। प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज ने कहा कि इस भविष्य उन्मुख भारत ऑस्ट्रेलिया साझेदारी का सबसे मजबूत आधार दोनों देशों के बीच सेतु का कार्य

0: करने वाला जीवंत भारतीय प्रवासी समुदाय है। विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने कहा है कि भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच संबंध गतिशील हैं और तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। आज मेलबर्न में श्री मिश्री ने कहा कि व्यापार, रक्षा और ऊर्जा सहित अनेक क्षेत्रों में दोनों देशों की द्विपक्षीय साझेदारी लगातार सुदृढ़ हुई है। भारतीय गुणवत्ता परिषद ने आज नई दिल्ली में राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम NSIC के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। इस समझौते का उद्देश्य देश भर में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों MSME के लिए गुणवत्ता और बाजार पहुंच को मजबूत करने के लिए सहयोगात्मक प्रणाली स्थापित करना है। गुजरात सरकार ने आज गांधीनगर के महात्मा मंदिर में विकसित भारत डेटा सेंटर नीति 2026-29 का शुभारंभ किया। इस नीति का उद्देश्य 8 गीगावाट क्षमता का लक्ष्य निर्धारित करते हुए गुजरात को भारत के अग्रणी डेटा सेंटर और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस केंद्र के रूप में स्थापित करना है। इस नीति का उद्देश्य राज्य में 6 लाख करोड़ रुपये के निवेश और अधिक रोजगार सृजित करना है। ब्रिक्स महिला मंत्रियों की बैठक आज कोच्चि में संपन्न हुई। केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने समापन सत्र को संबोधित करते हुए कहा कि ब्रिक्स सदस्य देशों के सामने महिलाओं के विकास से जुड़े कई मुद्दे हैं। उन्होंने कहा कि ये साझा चिंताएं ब्रिक्स महिला मंत्रियों के मंच जैसे प्लेटफॉर्म के महत्व को दर्शाती हैं। ये सदस्य देशों के बीच संवाद और सहयोग को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ईरान ने अमेरिका पर आज बुशहर परमाणु ऊर्जा संयंत्र के पास हवाई हमला करने का आरोप लगाया। ईरान की सरकारी समाचार एजेंसी ने बताया कि ये कार्रवाई उस पर हमले समाप्त करने की अमेरिकी सेना की घोषणा के कुछ घंटों बाद हुई। अमेरिकी केंद्रीय कमान ने इसकी पुष्टि नहीं की है। अमेरिका ने आज सुबह ईरान पर फिर हवाई हमले किए। ईरान ने भी खाड़ी क्षेत्र में अमेरिका के सहयोगी देशों को निशाना बनाकर जवाबी कार्रवाई की। दक्षिण पश्चिम मॉनसून आज पूरे देश में सक्रिय हो गया है। मॉनसून राजस्थान, हरियाणा, पंजाब और उत्तरी अरब सागर के शेष हिस्सों में भी आगे बढ़ चुका है। विभाग ने हरियाणा सहित राष्ट्रीय राजधानी में तेज बारिश के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। फीफा फुटबॉल विश्व कप के क्वार्टर फाइनल मुकाबले आज से शुरू हो रहे हैं। पहले मुकाबले में आज रात 1:30 बजे फ्रांस का सामना मोरक्को से होगा और भारत और इंग्लैंड के बीच चौथी T20 मैच आज रात 10 बजे से ब्रिस्टल में खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है, प्रस्तुत है कार्यक्रम विवरण। पहले सुनिए आज के शेष कार्यक्रमों के विषय में। आज शाम 7:21 पर आकाशवाणी भोपाल से हमारी ग्रामीण बहनें सुनेंगी कार्यक्रम ग्राम लक्ष्मी। इसमें आज होगी डॉक्टर अपर्णा जायसवाल के साथ की गई भेंटवार्ता, कृषि में महिला उद्यमिता के विकास कार्य। आकाशवाणी मध्य प्रदेश के प्रसारण के अंतर्गत रात 8 बजे सुनिए कार्यक्रम सुर्खियों में। फिल्म संगीत का आनंद लीजिएगा रात 8:15 पर और रात 9:30 बजे। रात 10 बजे होगा फरमाइशी फिल्म संगीत का कार्यक्रम आपकी फरमाइश और राग रजनी कार्यक्रम में रात 10:30 बजे आप सुनेंगे वसंत राणा डे का वायलिन वादन राग कामोद।

ये था एक संक्षिप्त सा परिचय आज शाम प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का, और अब जानकारी कल के कुछ प्रमुख कार्यक्रमों की। आकाशवाणी भोपाल के प्रसारण के अंतर्गत सुबह 7:20 पर सुनिएगा कार्यक्रम नमस्कार भोपाल। सुरमई सवेरा फिल्म संगीत पर आधारित ये कार्यक्रम होगा सुबह 8:30। 9:15 पर सुनी जा सकती है गांधी चर्चा। फिल्म संगीत का आनंद लीजिएगा 9:30 पर। जिले की चिट्ठी सुनिए सुबह 10:00। दस बजकर 5 पर बहनों के लिए कार्यक्रम होगा महिला संसार। इसमें कल सुनिए सजीव

फोन इन कार्यक्रम आओ सखी बात करें। रागमाला शास्त्रीय संगीत के इस कार्यक्रम में सुबह 10:30 बजे आप सुनेंगे अम्बरीश कालेदे का गिटार वादन राग शुद्ध सारंग। ग्राम सभा कार्यक्रम में कल आप सुनेंगे फरमाइशी फिल्म संगीत का निर्धारित क्रम आपकी पाती आपके फिल्मी गीत। प्रसारण का समय रहेगा 7:21। आकाशवाणी मध्य प्रदेश के प्रसारण के अंतर्गत सुबह 11 बजे सुनिए फोन इन कार्यक्रम, फोन करें गीत सुने। आपकी फरमाइश का प्रसारण समय है दिन में 12 बजे और 2:30। संग्रहालय से ये कार्यक्रम होगा 2:30-12 बजे। इसमें कल सुनिए धारावाहिक हंसना मना है की 9वीं कड़ी। दिन में 1 बजे सुनिए महिला सभा, प्रस्तुति आकाशवाणी छतरपुर की होगी। लोक संगीत का कार्यक्रम होगा 1:30 पर और 1:45 पर आप सुनेंगे सुगम संगीत का कार्यक्रम। ये दोनों कार्यक्रम हमारे छतरपुर केंद्र का योगदान होंगे। फिल्म संगीत का प्रसारण समय है दिन में 2 बजे, शाम 5:33, शाम 6:30 बजे, रात 8:15 और 9:45। शाम 5:02 पर युवा श्रोताओं के लिए कार्यक्रम युववाणी का प्रसारण होगा, प्रस्तुति आकाशवाणी छतरपुर की होगी। एनसीईआरटी का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग आप सुनेंगे शाम 6 बजे। सुर्खियों में ये कार्यक्रम होगा कल रात 8 बजे। कल रात 9:30 आप सुनेंगे कार्यक्रम खेल जगत, इसमें सुनिए मोहम्मद शोएब की वार्ता, फीफा वर्ल्ड कप फुटबॉल टूर्नामेंट में टीमों की स्थिति एवं संभावनाएं। आपकी फरमाइश प्रसारण समय कल रात 10 बजे और राग रजनी कार्यक्रम में रात 10:30 बजे सुनिएगा अम्बरीश कालेले का गिटार वादन राग गावती। कार्यक्रम विवरण समाप्त हुआ।

0: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। 7:10 होने वाले हैं। थोड़ी देर में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार।
1: आकाशवाणी का साकार हुआ सपना, जन जन सब गाएं मिल मधुर गा

0: पहुंचाएं हम जन जन तक, सपनों को दें हम आकार।
1: आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार।

नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। सबसे पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न में प्रवासी भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए कहा, 21वीं सदी का भारत विकसित राष्ट्र बनने के लक्ष्य की ओर बढ़ रहा है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने भुवनेश्वर में हाईसीज मत्स्य दोहन के राष्ट्रीय कार्यक्रम का शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने शाजापुर जिले के किसान सम्मेलन में शिरकत की और एक पेड़ माँ के नाम अभियान के तहत वृक्षारोपण अभियान का शुभारंभ किया। और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने रतलाम पहुंचकर दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के निर्माण कार्यों का निरीक्षण किया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न में प्रवासी भारतीय समुदाय के कार्यक्रम को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि 21वीं सदी का भारत विकसित राष्ट्र बनने के लक्ष्य की ओर बढ़ रहा है। श्री मोदी ने कहा कि बीते 12 वर्षों में यह उनकी तीसरी ऑस्ट्रेलिया यात्रा है। प्रधानमंत्री ने भारत ऑस्ट्रेलिया के

0: अच्छा खेल और सांस्कृतिक जुड़ाव का भी जिक्र किया।
1: क्रिकेट भारत और ऑस्ट्रेलिया के रिश्तों की अपनी डिप्लोमेटिक लैंग्वेज है, इसलिए हमारी मीटिंग भी क्रिकेट जैसी लगती है। एजेंडा वनडे जैसा फोकस है, डिसीजन टी ट्वेंटी जितने तेज है और पार्टनरशिप टेस्ट मैच जितनी लंबी और गहरी। आने वाले वर्षों में दोनों देशों में ओलंपिक्स और कॉमनवेल्थ गेम्स जैसे बड़े स्पोर्टिंग इवेंट्स आयोजित किए जाएंगे, इससे हमारा खेल सहयोग तो बढ़ेगा ही, स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश की भी अनेक संभावनाएं बनेगी।
0: इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बानीज के बीच तीसरा भारत ऑस्ट्रेलिया वार्षिक शिखर सम्मेलन हुआ। दोनों देशों ने ऊर्जा, व्यापार, सुरक्षा और रक्षा सहयोग पर अहम समझौते किए। भारत को ऑस्ट्रेलिया से दीर्घकालिक यूरेनियम आपूर्ति का रास्ता साफ हुआ, जिससे स्वच्छ ऊर्जा लक्ष्यों को मजबूती मिलेगी। दोनों देशों ने आर्थिक सहयोग समझौते और द्विपक्षीय निवेश संधि को जल्द अंतिम रूप देने पर सहमति जताई। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने आज भुवनेश्वर में हाई सीज मत्स्य दोहन के राष्ट्रीय कार्यक्रम का शुभारंभ किया। उन्होंने ओडिशा डीप सी फिशिंग मिशन दस्तावेज भी लॉन्च किया। उपराष्ट्रपति ने देश भर के 10 फिश फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन और मछुआरों को लेटर ऑफ ऑथराइजेशन सौंपे। उन्होंने कहा कि यह पहल भारत की समुद्री यात्रा में नए अध्याय की शुरूआत है। इससे मछुआरे गहरे समुद्र के संसाधनों का सतत उपयोग कर सकेंगे। भारत आज दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मछली उत्पादक देश है। उन्होंने युवाओं से मत्स्य पालन को आधुनिक व्यवसाय के रूप में अपनाने की अपील की। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने आज शाजापुर जिले की कालापीपल तहसील में आयोजित किसान सम्मेलन में शिरकत की। एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत उन्होंने वृक्षारोपण अभियान का शुभारंभ किया। इस अभियान के तहत 4 लाख पौधे लगाने का संकल्प लिया गया। इस मौके पर डॉ. यादव ने कहा कि राज्य सरकार समान नागरिक संहिता लागू करने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रही है।
2: एक देश, एक विधान, एक प्रधान, एक राष्ट्रगान। मुझे गर्व है, इसी महीने कोशिश करेंगे विधानसभा में एक समान कानून मध्य प्रदेश में लग के रहेगा। मध्य प्रदेश में
0: प्रदेश में दतिया विधानसभा उप निर्वाचन के लिए नियुक्त सामान्य प्रेक्षक विजय भारती और पुलिस प्रेक्षक के त्यागराजन ने मतदान केंद्रों का निरीक्षण किया। उन्होंने बिजली, पानी और शौचालय जैसी सुविधाओं का जायजा लिया। प्रेक्षकों ने पॉलिटेक्निक कॉलेज में बने स्ट्रांग रूम और गणना कक्ष का भी निरीक्षण किया। इसी दौरान दतिया में फ्लाइंग स्क्वाड और स्टैटिक सर्विलांस टीम को सी विजिल और ईएसएमएस ऐप का प्रशिक्षण दिया गया। इस ऐप के जरिए आचार संहिता उल्लंघन की शिकायतों का निपटारा 100 मिनट के भीतर किया जाएगा। उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल ने आज यूनिसेफ इंडिया के प्रतिनिधिमंडल ने बल्लभ भवन में मुलाकात की। बैठक में शिशु और मातृ मृत्यु दर घटाने, एनीमिया नियंत्रण और बाल विवाह रोकथाम पर चर्चा हुई। उप मुख्यमंत्री श्री शुक्ल ने कहा कि इन चुनौतियों से निपटने के लिए सभी विभागों में समन्वय जरूरी है। उन्होंने यूनिसेफ से मास्टर ट्रेनर्स की क्षमता निर्माण में सहयोग का आग्रह किया। यूनिसेफ प्रतिनिधि जैस्पर मिलर ने राज्य सरकार के सुमन रोडमैप और मदर एंड न्यूबॉर्न चाइल्ड केयर यूनिट्स की पहल की प्रशंसा की। समाचारों में वक्त है ब्रेक का।
3: ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और Facebook साथ ही X प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर अथवा न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं।
0: ब्रेक के बाद समाचारों में आपका एक बार फिर स्वागत है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने आज सुबह रतलाम पहुंचकर दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का निरीक्षण किया। रतलाम कलेक्टर मीशा सिंह ने उन्हें निर्माण कार्यों की जानकारी दी। श्री गडकरी ने पैचवर्क का काम जल्द पूरा करने के निर्देश दिए। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का करीब 244 किलोमीटर का हिस्सा प्रदेश से होकर गुजरता है। ये राज्य के मालवा क्षेत्र के 3 प्रमुख पश्चिमी जिलों रतलाम, मंदसौर, झाबुआ को सीधे देश की राष्ट्रीय राजधानी और वित्तीय राजधानी से जोड़ता है। प्रदेश के जेल विभाग में करीब 10 साल बाद पदोन्नति की प्रक्रिया शुरू हुई है। जेल मुख्यालय ने विभिन्न संवर्गों में पात्र अधिकारियों और कर्मचारियों के पदोन्नति आदेश जारी किए हैं। इनमें सहायक ग्रेड 1, स्टेनो टाइपिस्ट, लेखपाल और उप अधीक्षक जैसे पद शामिल हैं। जनसंपर्क अधिकारी राजेश ताहिमा ने बताया कि आने वाले समय में अन्य प्राप्त पात्र कर्मचारियों के आदेश भी चरणबद्ध रूप से जारी होंगे।

पश्चिम मध्य रेलवे के जबलपुर मंडल में कल विशेष टिकट जांच अभियान चलाया गया। यह अभियान स्पेशल रेलवे मजिस्ट्रेट वेद प्रकाश सगर के नेतृत्व में हुआ। गोंडवाना एक्सप्रेस, महानगरी एक्सप्रेस सहित कई प्रमुख ट्रेनों में सघन जांच की गई। बिना टिकट और अनियमित यात्रा करने वाले 66 यात्रियों के खिलाफ कार्रवाई की गई। रेलवे ने जुर्माने के रूप में करीब 61,000 रूपये वसूले। भोपाल कलेक्टर प्रियंक मिश्रा ने जिले में शिक्षा व्यवस्था सुधारने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने सेंट्रलाइज्ड एजुकेशन मॉनिटरिंग सिस्टम के तहत कंट्रोल कमांड रूम बनाने को कहा है। कलेक्टर ने आज संदीपनी विद्यालय में समग्र शिक्षा अभियान की समीक्षा की। उमरिया जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग 43 पर आज सुबह एक बड़ा हादसा हुआ। एक तेज रफ्तार कार खड़ी ट्रक से जा टकराई। हादसे में एक ही परिवार के 4 लोगों की मौत हो गई, जबकि एक युवती गंभीर रूप से घायल है। परिवार अनूपपुर से चित्रकूट जा रहा था। घायल युवती को इलाज के लिए जबलपुर रेफर किया गया है। और अब बात मौसम की। प्रदेश में मॉनसून पूरी तरह सक्रिय है। प्रदेश भर में लगातार बारिश का दौर जारी है। मौसम विभाग ने भिंड जिले के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। वहीं मुरैना, ग्वालियर, दतिया सहित 9 जिलों में ऑरेंज अलर्ट है। इस साल अब तक प्रदेश में सामान्य से 10% अधिक बारिश हो चुकी है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। भारत और इंग्लैंड के बीच 5 टी20 मैचों की श्रृंखला का चौथा मुकाबला आज ब्रिस्टल में खेला जाएगा। ये मैच भारतीय समय के अनुसार रात 10 बजे से शुरू होगा। सिंगरौली कलेक्टर की पहल पर अदानी फाउंडेशन बधौरा ने महिलाओं को स्वरोजगार के बेहतर अवसर उपलब्ध कराने के उद्देश्य से सिलाई मशीनें दी हैं, जिससे वे आत्मनिर्भर बन सकेंगी। गुना कलेक्टर की अध्यक्षता में आज कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में राजस्व अधिकारियों की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड वितरण केंद्र बैतूल द्वारा 10 जुलाई को संपर्क अभियान के तहत कोलगांव में शिविर आयोजित किया जाएगा। देवास के शासकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालय में आज मानसिक स्वास्थ्य जागरूकता प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। सीहोर जिले में लगातार बारिश के बीच कई निचले इलाकों वाले गांवों में किसानों की फसल पर जलभराव का संकट खड़ा हो गया है। इन गांवों में सोयाबीन की फसल पूरी तरह जलमग्न हो गई। शिवपुरी जिले में कलेक्टर अर्पित वर्मा ने आज कोलारस में मृदा परीक्षण केंद्र और एसडीओ कृषि कार्यालय का औचक निरीक्षण किया। अशोकनगर जिले में आगामी समय में विभिन्न सामाजिक, राजनैतिक, धार्मिक इत्यादि कार्यक्रमों के दौरान शांति बनाए रखने के उद्देश्य से कलेक्टर ने प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए हैं। खंडवा जिले की बोरगांव चौकी पुलिस ने गौवंश तस्करी के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आगर मालवा कलेक्टर ने आज जिले के भ्रमण के दौरान ग्राम कवराखेड़ी में किसान प्रकाश सांगे के खेत में तरबूज के बाद लगाई गई लौकी की फसल का निरीक्षण किया। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन कल सुबह 7:10 पर। नमस्कार।

0: पंछी बोले पते की बात, जंगल धरती की सौगात, आओ मिलकर पेड़ लगाएं, धरती की खुशियां लौटाएं।
1: जो होंगे जंगल तो आएंगे बादल, बरसेगा पानी, धरती की चुनर हो जाएगी धानी, और पंछी छेड़ेंगे सुरीली।

0: जय जवान जय किसान।
1: चौपाल में बैठे और चौपाल कार्यक्रम सुनने वाले सभी बहन भैया को रेणु राजा की राम राम। और आज हमारे संग बैठी हैं गीता बहन। सो गीता बहन आपको भी भाई राम राम।
2: राम राम रेणु बहन। और चौपाल में बैठे सगे भैया बहन के लाने भी गीता बहन की राम राम। और बताओ रेणु बहन का हाल चाल है, क्या चल रहा है?
1: देखो बहन अपन आजकल भैया देखो बढ़िया बरसात हो रही है,

0: तो अपना खेती किसानी की तैयारी में लगे हैं।
1: बिल्कुल सही कह रहे हैं कि बरसात,
0: तो जवाब को ध्यान रखें कि जब खेत में नमी हो जाए पर्याप्त तभी बोनी करें।
1: बिल्कुल सही
0: है ना। और प्रमाणित जो बीज ले,
1: प्रमाणित बीज लेना चाहिए, बाकी अंकुरण क्षमता को भी जांच लेना चाहिए, और तभी बीज उपचारित करके भी बोना चाहिए। और ये सब ही अपन को काम
0: छोटी मोटी बात को
1: ध्यान रखना चाहिए। अपन ने खाद बीज को इंतजाम तो कर ही लो है, तो टाइम पे भाई बोनी हो जाएगी। और ये बात को भी ध्यान रखना चाहिए भैया कि जितेक बोनी करनी है उतेक ही अपन बीज उपचारित करें।
0: बिल्कुल।
1: और देखो खेती बाड़ी की बात कर रहे हैं, सिंगे अपन देख रहे हैं कि अपन भैया बहुत मतलब व्यस्त हो रहा है, एक तो बोनी करना है, दूसरा मोड़ा मोड़ी इनके स्कूल शुरू हो गए हैं।
0: बिल्कुल।
1: तो बिना भी ये ध्यान रखना है कि भैया छोटे छोटे मोड़ा मोड़ी जो पहली बार स्कूल जावे वाले हैं, बिना कौन से स्कूल में दाखिला करवाए जी पहले से तय करके रखो तो कोई परेशानी नहीं आएगी।
0: बिल्कुल।
1: तो अपन अगर समय को महत्व समझें तो सभी काम समय पर अपन पूरे कर सकते हैं।
0: बिल्कुल।
1: और देखो अपन देख रहे हैं कि जो भैया हैं, किसान भैया बहने हैं, बिनके लाने मुलक से हितकारी योजनाएं जो है शासन द्वारा चलाई जा रही हैं।
0: बिल्कुल।
1: जिनको लाभ लेके अगर वो चाहें तो अभी जीवन की दिशा दशा दो ही बदल सकते हैं।
0: बिल्कुल बहन। और हम सोच रहे हैं गीता बहन के पहले अपन जो जरूरी संदेश सुन ले,
1: हाँ,
0: बात करें
1: कर ले। बिल्कुल।
2: पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।
3: अच्छे उपचार के लिए अब नहीं रहेगा कोई लाचार। देश भर में 60 करोड़ से ज्यादा लाभार्थी हैं। अब 5 लाख के मुफ्त इलाज के हकदार। अब तक 1.25 लाख करोड़ रुपए से अधिक मूल्य के मुफ्त उपचार के लाभ दिए जा चुके हैं। और स्वाभिमान और सेहत की सौगात का ये सिलसिला जारी है।
4: आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड करें और पात्र लाभार्थी घर बैठे अपना आयुष्मान कार्ड बनाएं। अधिक जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
0: राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन की।
1: हाँ ना, जिसे कहा है कि योजना जो चलाई है किसान भैया बहन के लाने, तो ये योजना के माध्यम से जाको जो उद्देश्य है वो यही है कि अपने किसान वाणी का जो रकबा है, खेती किसानी का जो रकबा है वो बढ़े। राष्ट्रीय शुरू कर और ये योजना या जो मिशन को अपन राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के नाम से जाना थे। तो जो अपन जानते हैं कि अपने देश के माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपने किसान भैया बहन के लाने मुलक सी ऐसी योजनाएं बनाई है जो लाभ लेके अपन तरक्की कर सकते हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा खाद्य मिशन भारत सरकार द्वारा 2007 में शुरू की गई एक प्रमुख कृषि विकास योजना है, जिसको मुख्य देश देश में चावल गेहूं दलहन और मोटे अनाज को उत्पादन बढ़ा के अपने किसान भैया बहन की आय को बढ़ाना है और सिंगे देश की खाद्य सुरक्षा को सुनिश्चित करना है। भारत की लगभग 1.2 अरब आबादी को 2/3 हिस्से को रियायती दरन पे अनाज उपलब्ध हो, जो इनकी मंशा है।
0: बिल्कुल
1: है ना। किसान भैया बहनों को उन्नत तकनीकों और उत्तम बीजन के माध्यम से खाद्यान्नों की प्रति हेक्टर उपज को बढ़ाना है।
0: बिल्कुल बहन।
1: और जय के सिंह मट्टी के स्वास्थ्य में सुधार करना है।
0: हाँ।
1: जिसे एकीकृत पोषक तत्व और कीट प्रबंधन अपना के मिट्टी की खोई हुई उर्वरा शक्ति को वापस ला जा सकते हैं।
0: बिल्कुल।
1: और जैके सिंह आयात पे निर्भरता को कम भी करना है।
0: हाँ।
1: ताकि दालें और तिलन के उत्पादन में जो देश है अपा वो आत्मनिर्भर बन सके।
0: और बहन देख जा मैं जो भी है बात श्री अन्न है बाको लाने अपन को,
1: बिल्कुल
0: ज्यादा मन पर ध्यान देने उनसे ज्यादा से ज्यादा
1: रकबा बढ़ाने
0: हैं और उत्पादन ज्यादा मिले।
1: बिल्कुल सही। तो बहन जी योजना के तहत राज्य सरकारों के माध्यम से कछु सहायता भी दी जाते हैं।
0: बिल्कुल।
1: जैसे कि बीज वितरण करना है, तकनीकी प्रशिक्षण लेना है, या अपन को कोनी मशीन खरीदना है, जाके लाने सब्सिडी भी दी जाते हैं।
0: बिल्कुल।
1: तो जिन सभी को लाभ लेवे के लाने अपने जो किसान भैया बहन है वो जाके जो आधिकारिक वेबसाइट है वहाँ पे जाके आवेदन कर सकते हैं।
0: बिल्कुल बहन।
1: तो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन से जुड़ के आप जाके उद्देश्य को सार्थक बनाने में आप सहयोग जरूर करें।
0: बिल्कुल बहन। और देखो हम जैसी बात कर रहे थे कि देखो आजकल पानी बरस रहा हो।
1: बिल्कुल।
0: पानी बरस रहा हो तो भैया देखो बरसात में तमाम समस्याएं भी होती।
1: बिल्कुल सही कह रहे हैं।
0: मच्छर मक्खी है, कीड़ा मकोड़ा जो भी पनपत है,

0: अपन बात कर रहे थे कि बरसात के मौसम में मच्छरों से कैसे बचाव करें।
1: हाँ, मच्छरों से भी, और अपन रेणु में देखते हैं कि गर्मी पड़ी और गर्मी के बाद फिर बरसात।
0: हाँ,
1: तो मुलक से ऐसे नए नए तरीके के कीड़ा मकोड़ा देखने में आते हैं।
0: हाँ,
1: गर्मी से बाहर आ जाते हैं और इतने छोटे छोटे बारीक होते हैं कि अगर अपन तनिक भी लापरवाही करें तो खावे पीवे के सिंगे अपने भीतर चले जाते हैं।
0: बिल्कुल, बिल्कुल।
1: और अपन को बीमार कर देते हैं।
0: हाँ,
1: तो सबसे ध्यान देने वाली बात तो बहन ये है कि बरसात के मौसम में सभी कछु ढाक के रखें,
0: साफ सफाई को ध्यान रखें।
1: हाँ, और खावे पीवे की चीजन को विशेष

0: तो अपने पशुअन को भी अपन को मच्छरों से बचाव
1: बिल्कुल
0: करने
1: बिल्कुल
0: हैं
1: सही
0: और
1: कह रहे
0: अपना
1: हैं।
0: भी बचाव करने हैं। तो जाके लाने देखो बहन, मच्छरदानी को उपयोग कर सकते हैं, पूरी आस्तीन के कपड़ा पहरो
1: बिल्कुल
0: है। और देखो आजकल तमाम तरह की ऐसी अगरबत्तियों के कागज मांगा जान लगे जलावे बारे, और सुबह पुराने में तो नीम की पत्तियां
1: नीम
0: तो
1: की
0: धुआं
1: पत्तियों
0: करते
1: को बिल्कुल सही कह
0: हैं
1: रहे हैं।
0: गांव में, तो अपन वही करता है।
1: और सबसे बड़ी बात तो ये है कि मच्छर मक्खी पनपे ही नहीं, जाके
0: हाँ
1: लाने मुलक जरूरी है कि जो पानी को जल भराव है वो नहीं हो,
0: बिल्कुल,
1: है
0: अगर
1: ना,
0: अपने
1: बाकी निकासी
0: आसपास,
1: अच्छी हो,
0: हाँ अपने आसपास गड्ढा है
1: तो
0: कहूँ
1: भाई मट्टी से भर
0: तो,
1: दो,
0: हाँ मट्टी
1: मिट्टी
0: से
1: से
0: भर
1: भर
0: दो,
1: दो,
0: हाँ
1: मट्टी का तेल जल भाव डाल दो।
0: जो अपने गाड़ियन को जो तेल निकला नहीं, ट्रैक्टर ट्रैक्टर को भाई डाल
1: हाँ,
0: सकते हैं।
1: ताकि वो जो लार्वा
0: हाँ
1: वगैरह है मच्छर का
0: हाँ
1: वो पैदा नहीं हो,
0: और
1: वो
0: छत पे देखो, देखा थे अपना घैलियाँ
1: टायर
0: मटका
1: वायर
0: टायर
1: पड़े
0: डब्बा डब्बी भरी डरी रह छत। सो जो
1: हैं।
0: बात को ध्यान रखें, छत पे जो कछुजे हुए फालतू के सामान उन्हें हटा दें, छत अपनी साफ सुथरी रखें, नहीं तो का है कि उनमें मच्छर पनपते हैं तो फिर बड़ी
1: और
0: दिक्कत होते हैं।
1: बिल्कुल, और देखो बरसात के मौसम में मुलक सी अप्रिय घटनाएं भी घट जाते हैं, कैसे कि छोटे छोटे गड्ढे कभी कभी बड़ा रूप ले लेते हैं आसपास, कोनो यदि कोनो को मकान को निर्माण हो रहा है,
0: हाँ
1: जहाँ आपने खेती किसानी के लाने में कुछ ऐसे घेरो गड्ढो खोद रखो है खाद खट्टी करवे के लाने, तो भाई ध्यान रखें कैसे कि किते की बेर बच्चे या बड़े अनजाने में गड्ढे में गिर जाते हैं और दुखद घटना घट जाते हैं,
0: बिल्कुल बहन,
1: या रास्ते में आप और उनको पता है कि भैया गड्ढा है तो देखभाल के निकले, और जितने हो सके बरसात में अपनी सुरक्षा को पक्को इंतजाम करें। पर किसान भैया खेतन में जाते हैं तो लंबे वाले जो जूता आते हैं वो पहन के जाएं,
0: हाँ
1: रात में अगर निकलते हैं किताब तो अंधेरों करें, मतलब उजाला करके जाना चाहिए, अंधेरे में नहीं
0: और
1: जाना
0: कोशिश जो
1: चाहिए,
0: ही करें
1: टॉर्च
0: कि अंधेरे
1: लगाना
0: में खेतन
1: चाहिए
0: में ना जाना है,
1: बिल्कुल,
0: मेरे
1: कैसे
0: खेतन में
1: कि
0: अपनों काम कर लिए
1: सांप
0: बहन।
1: बिच्छू ये
0: हाँ
1: सारी चीजें जो है बरसात में बहुत ही ज्यादा देखने में आते हैं, और कछो भी जूता वूता पहने फटकार के पहने और
0: हाँ
1: ऐसी अंधेरा करके नहीं रखें, कैसे कि अंधेरे में पता नहीं लगा कब पेड़ आ जाता है अपन, तो
0: हाँ तो
1: जैसा कई
0: बहन
1: बातन को अगर अपन
0: अपनों
1: ध्यान
0: ध्यान
1: रखते
0: रखने,
1: हैं।
0: और अब चौपाल से अपन विदा लेते हैं,
1: हाँ
0: तो अभी बहन रेणु राजा
1: और गीता
0: गीता
1: हन
0: कुरु
1: कंजवा,
0: आज्ञा,
1: राम राम, जय
0: जय
1: जवान
0: जवान
1: जय
0: जय
1: किसान।
0: किसान।

0: इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार।
1: क्या कर रहा है?
2: इधर इधर इधर हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का।
1: पुतला बोल रहा
2: है? पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं?
1: मतलब
2: देख बेटा, तू जो ये अंधाधुन रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है, और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था, पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी, माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। पहली वाली बात कहा,
1: परंतु सब यही डाले हैं।
2: सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं, खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं।
1: सच है?
2: रे बेटे, एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं।
1: ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूँगा।
3: माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती।
4: किसानवाणी कार्यक्रम सुनने वाले सगे भैया बहन का एक बार फिर से गीता बहन और
5: रेणु राजा की
4: राम राम। देखो बहन, अपन बात कर रहे थे भाई किसान भैया से खेती बाड़ी की, और बिनकी लाने चलाई वाली मुलक सी शासकीय योजनाओं की। तो ये शासकीय योजनाओं में चलाई गई है बिनके लाभ किलाने क्रेडिट कार्ड
5: योजना। हाँ, किसान क्रेडिट कार्ड। हाँ,
4: तो ये एक बहुत ही अच्छी योजना है। कैसे कि भैया जाके माध्यम से जो अपने किसान भैया हैं, वो अपन मुलक से काम आसानी से कर सकते हैं।
5: बिल्कुल बहन, देखो जाए किसान क्रेडिट कार्ड को केसीसी स्वीकृत है।
4: हाँ,
5: और जो भारत सरकार यानी कि नाबार्ड और भारतीय रिजर्व बैंक RBI द्वारा किसानन को खेती की जरूरतन के आसान और सस्तो लोन देवे को एक विशेष योजना है।
4: बिल्कुल, क्रेडिट कार्ड योजना के तहत जो किसान भैया का जो काम करत है ना बिनके

0: यानी जी लोन दो जाते हैं
1: बिल्कुल
0: और बहुत ही कम से कम ब्याज में दो जाते हैं।
1: जाके तहत किसान उनको एक निश्चित ऋण सीमा दी जाता है, जैसे वे बीज खाद कीटनाशक ये सब सामान खरीद वे के लाने और जो भी किसानी खेती के जो काम है उनके लाने वे जब चाहे तब रुपया पैसा निकाल सकते हैं।
0: और जहाँ पता है बहन 50,000 से 3 लाख रुपये तक अपन ले सकते हैं लोन।
1: अच्छा।
0: और जो हमें एक बात बहुत ही अच्छी है कि अगर किसान भैया लोन जो है समय से पहले ही अगर चुकता कर देते हैं तो आपको नवीनीकरण दोबारा भी करा सकते हैं और जो ब्याज है वो भी कम लगाते
1: हैं। बिल्कुल सही कह रही बहन आप। और जहाँ में सब्सिडी भी मिलते हैं और जहाँ में बिना गारंटी के लोन मिलते है
0: सही
1: जो आपने बताई। और का देखो
0: और जैके सिंगे वो पे बीमा को फसल को भी बीमा करा सकते हैं।
1: हाँ।
0: यानी एक बंत दो काज
1: बिल्कुल। और जाके अलावा बहन देखो एक जाकी विशेषता जो है कि जाको उपयोग केवल खेती तक सीमित नहीं है बल्कि जो पशुपालन डेयरी मत्स्य पालन जैसे
0: कामल के लाने भी जुड़े हुए जो व्यवसाय हैं
1: करो जा सकते हैं। हाँ। और जहाँ मैं आप बता रही थी कि जो बीमा जो कवर करो जा तो वो भी व्यक्तिगत दुर्घटना अगर किसानन के संग होते भगवान करे के कोगो संगे कछु ना हो अगर हो जाते है तो वह दुर्घटना को इंजाम में बीमा मिलाते है।
0: और जो किसान क्रेडिट कार्ड होते हैं बाकी अवधि जो है वो 5 साल तक रहते हैं। 5 साल के बाद आपको बाको नवीनीकरण कराना पड़ता है।
1: अच्छा अच्छा। और देखो आजकल किसान क्रेडिट कार्ड में एटीएम कार्ड भी दिया जाते है जैसे कहा है कि पैसा की निकासी बहुत आसानी से हो जाती है।
0: चाहे तब आप जो है किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से एटीएम के माध्यम से निकाल सकते हैं और अपनी जरूरत को पूरा कर सकते हैं।
1: हाँ, तो जाके लाने भैया हमारे किसान भैया आवेदन कर सकते हैं जहाँ में खेती करने वाले सभी किसान व्यक्तिगत या संयुक्त रूप से बटाईदार और किराएदार किसान जाके लाने पात्र हैं। और जाके लाने आप अपने नजदीकी व्यावसायिक बैंक क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक या सहकारी बैंक में संपर्क कर सकते हैं। जाके लाने आवेदन ऑनलाइन कर सकते हैं या फिर बैंक में जाके आप
0: संपर्क कर सकते हैं।
1: हाँ। हाँ। तो जो तो बहुत बढ़िया चीज है बहन।
0: हाँ। और किसान भैया के लाभ के लाने तो अब हर किसान को किसान क्रेडिट कार्ड जरूर लेना चाहिए।
1: बिल्कुल बिल्कुल।
0: और देखो अपन आज बात कर रहे हैं खेती किसानी की किसान क्रेडिट कार्ड की तो अब अपन देखो ये बात कर रहे हैं कि जो पे किसान भैया हैं वो खेती बाड़ी कर रहे हैं और वही के सिंगे पालते हैं पशु।
1: बिल्कुल।
0: पर जो बात आ रहा है कछु भैया के पास 2-3 पशु होते हैं उनके पास मुलक होते हैं और कछु कछु भैया तो पशु पालन को ही अपमुख्य व्यवसाय भी बना लेते हैं।
1: बिल्कुल बहन।
0: अब ऐसे भैया जो पशु पालन को ही अपमुख्य व्यवसाय बना रहे हैं तो इनको उद्देश्य होते हैं कि वैसे वो दुग्ध की डेयरी लगाए या उत्पाद बेचे इनके पशुधन को बढ़ाए तो जाके लाने इनको मुलक सी बात इनको ध्यान रखना पड़ा।
1: बिल्कुल।
0: सबसे पहले तो ये है कि वो स्वस्थ और जो है अच्छी नस्ल के पशु उनको खरीदें।
1: हाँ।
0: इनके रख रखाव की अच्छी व्यवस्था करें पशु आहार की व्यवस्था करें मौसमी बीमारियों से बचाव के लाने जरूरी टीकाकरण कराएं।
1: तो बहन जय के लाना ऐसी एक जो हम आपको एक भेंट वार्ता सुनवा रहे हैं
0: क्या होते हैं बहन की कछु पशु पालकन की शिकायत रहती समस्या रहते है कि इनके पशु पालक जो पशु है इनके बछड़े बछड़े नहीं हो रहे अब इन्हें कृत्रिम गर्भाधान कराना है अब का करें जाके लाने तो चाहिए के लाने हम सोच रहे हैं कि आज हम बिना एक पूर्व प्रसारित ऐसी भेंट वार्ता सुनवाते थे जी को लाभ वो जरूर लेंगे।
1: बिल्कुल बहन
0: जी को विषय है पशुपालन
1: पशुओं में कृत्रिम गर्भाधान क्यों और कैसे। वार्ताकार हैं श्री बालकृष्ण शर्मा और इनसे बता रहे हैं भैया डॉक्टर समर्थ अग्रवाल। तो किसान बहन भैया रो सुनत है जो भेंट वार्ता।
2: किसान श्रोताओं नमस्कार। इस कार्यक्रम में जो भेंटवार्ताएं होती हैं उससे मार्ग भी प्रशस्त होता है और हम अपना आर्थिक धनोपार्जन ज्यादा कर सकते हैं। हालांकि किसान का मुख्य कार्य खेती और करना है लेकिन अगर हम एक ही तरह के व्यवसाय पर जुड़े रहेंगे तो स्वाभाविक है हमारी आमदनी थोड़ी सी कम होगी। इसके लिए आवश्यकता है कि साइंटिस्ट है चाहे वो एग्रीकल्चर से संबंधित हो पशु विज्ञान से संबंधित हो वो जो नित नई खोजें कर रहे हैं उनके द्वारा बताए गए नए मार्गों पर अगर हम चलेंगे तो हम अच्छा व्यवसाय कर सकते हैं और अच्छी इनकम प्राप्त कर सकते हैं। तो किसानों के लिए खेती के साथ एक जो समानांतर व्यवसाय के तौर पर है और जो खेती का ही बिल्कुल पैरलर है वो है पशुओं का व्यवसाय यानी कि पशुओं से दुग्ध उत्पादन जो होता है उसे हम बेचकर लाभ ले सकते हैं। पशुओं में कई तरह की समस्याएं आती हैं कई बार वो बीमार होते हैं और कई बार बच्चे नहीं हो पाते यानी कि गाय और भैंस नहीं हो पाते हैं तो फिर बड़ी समस्या होती है लेकिन विज्ञान ने नई खोजें की हैं। आज एआई का युग है, यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का युग है, तो इस बदलती हुई विज्ञान की तकनीक में अगर हम कुछ नए विज्ञान के साधन इस्तेमाल में लाते हैं तो स्वाभाविक हम अच्छी खेती कर सकते हैं। तो पशुओं में कृत्रिम गर्भाधान क्यों और कैसे, इस विषय पर बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ डॉक्टर बालकृष्ण शर्मा।

0: उनका स्वागत करते हैं। डॉक्टर साहब नमस्ते।
1: नमस्कार
0: डॉक्टर साहब, पहले तो ये बताएं कि वर्तमान में आप कहाँ पर पदस्थ हैं?
1: मैं अभी वर्तमान में ABFO ट्रेनिंग सेंटर शिवपुरी में पदस्थ हूँ, BAS के पद पर, पशु चिकित्सा सहायक सलग के पद पर शिवपुरी में पदस्थ।
0: आज प्राकृतिक रूप से जो गर्भ गाय में और भैंस में होता था उसकी कहीं समस्या आ गई है या कुछ नई टेक्नोलॉजी आ गई जिसे हम कृत्रिम गर्भाधान यानी कि आर्टिफिशियल प्रेगनेंसी की ओर जानवरों पर आ रहे हैं?
1: जैसे कि बताना चाहूंगा, जैसे प्राकृतिक गर्भाधान होता था उसमें वो भी सही है, लेकिन अभी क्या है उसमें क्या, अपनी जो देसी गाय है अपन प्राकृतिक कराते तो देसी पशु पैदा होते हैं उनसे, उनका जो दुग्ध उत्पादन है वो बहुत कम होता है। और जब कभी किसान भाव अपने पास गाय वैसे बहुत है लेकिन वो देसी है, खिलाफ उनको उतना ही रहे, लेकिन जब अपन क्रॉस ब्रीड या AI कराएंगे तो अच्छी नस्ल के सांड्स का ब्रीड प्राप्त करके जब AI कराएंगे तो उनकी जो संतति पैदा होंगी, जो गाय बढ़िया जो पैदा होंगी, उनका दुग्ध उत्पादन बहुत अधिक होगा जो अपनी देसी गायों में नहीं होता था। इसलिए पशुपालक को आर्थिक लाभ होगा क्योंकि खाना उसको उतना ही खिलाना है, पशु को आहार उतना ही देना है, लेकिन दुग्ध उत्पादन उतना नहीं मिलेगा तो उसको उतनी आर्थिक फायदा नहीं होगा। लेकिन जब जो क्रॉस ब्रीड या अच्छी देसी नस्ल की से अपन AI कराएंगे, अच्छे पशु पैदा होंगे तो उसको आर्थिक लाभ बहुत अधिक होगा, जैसे किसान भाई की आय बढ़ेगी।
0: क्या कृत्रिम गर्भाधान इस तरह का होता है जिसमें हमें मेल जानवर की जरूरत ही नहीं है?
1: अभी पहले जो AI होती थी उसमें क्या होता था कि दोनों तरीके की होता था। जब जनरली आप करोगे कोई भी AI करेंगे या नॉर्मल नेचुरल जो प्राकृतिक गर्भाधान है तो जो सीमेन होता है, जो वीर होता है, उसमें दोनों तरीके के शुक्राणु होते हैं। जो 50% में होगा कि मेल यानी नर पशु पैदा होंगे और 50% मादा पशु पैदा होते थे। लेकिन अभी जो है नई पॉलिसी है इसमें क्या है कि 90% फीमेल पशु यानी मादा पशु पैदा होते हैं। इससे क्या फायदा है कि अपने को जो नर पशु उनकी संख्या कम हो जाती है। अपन जैसा जानते हैं कि आज के परिपक्ष में जो किसान भाई हैं, अब जो पहले तो बैलों से खेती होती थी, आजकल कृषि के क्षेत्र में बैलों का आज नर का उपयोग लगभग बंद हो गया है, इस क्षेत्र में इनकी संख्या बहुत बढ़ रही है। तो अगर अपने सेक्सोटेड सीमेन जिसको बोलते हैं जिसमें सिर्फ मादा 90% मादा पैदा होती है वो बहुत अच्छा है आज के परिपक्ष में, उससे दुग्ध उत्पादन तो बढ़िया है, लेकिन जो नर पशु उनकी संख्या थोड़ी कम हो रही है और जिससे आवारा पशु की संख्या भी कम हो रही है।
0: मैं क्यों चाहूंगा कि मेरे यहाँ नर पशु पैदा हो?
1: जी आप नहीं चाहेंगे, इसीलिए तो नहीं, इसीलिए सरकार ने पॉलिसी लाई है कि नर पशु नहीं हो, मादा पशु ही ज्यादा पैदा।
0: लेकिन एक समस्या ये भी है कि अगर नर पशु नहीं होंगे तो आपको भविष्य में सीमन भी नहीं मिलेगा।
1: ये आपकी बात सही है, थोड़ा उसमें फर्क, लेकिन जो अपन मैं जो बता रहा हूँ, जिसकी बात कर रहा हूँ, सेक्स सॉर्टेड सीमेन, जिसमें क्या है कि बच्चिया जो पैदा हो रही है ऐसा नहीं है कि 100% ही बच्चिया पैदा होंगी, 10% इसमें नर पैदा होंगे। साथ में ही गवर्नमेंट इस पॉलिसी को पूरी तरह नहीं अपनाया है। जो गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट है, वो अभी इसमें भी है कि प्राकृतिक गर्भाधान जो है उस पर भी ध्यान दे रही है, उसमें भी अच्छे ब्रीड के सांड है वो किसानों को दे रही है, तो उसके साथ में नेचुरल सर्विस भी करवा सकते हैं और ये आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन भी करवा सकते हैं। तो ऐसा आप नहीं कह सकते कि पूरा ये खत्म हो जाएगा, उसकी संख्या बनी रहेगी, नर भी रहेंगे, लेकिन ज्यादा नर होने से जैसा आप देख रहे हो कि आजकल बड़े ज्यादा पशु पैदा हो रहे हैं, नर तो रोडों पे घूम रहे हैं, एक्सीडेंट हो रहा है, वो खुद किसान क्योंकि उसको खिला रहा है उसको कुछ फायदा उससे नहीं मिल रहा है क्योंकि कृषि से अब उनका नर का यूज करना बंद कर दिया है, तो उससे किसान को खिलाता है फायदा होता नहीं है तो वो उसको रोड पे छोड़ देता है।
0: अब बात आती है कैसे, ये कैसे पॉसिबल है, क्या सरकार के द्वारा मान्यता प्राप्त है और इसकी संभावना कहाँ पर है, क्या शिवपुरी में है या मध्य प्रदेश के हर छोटे छोटे कस्बे में है?
1: जी ये सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त है, जो मध्य प्रदेश है वो जो भारत है उसका दूसरा राज्य है जहाँ पे सेक्स सॉर्टेड सीमेन को व्यापक रूप से यूज किया जा रहा है। 2021 में भोपाल में लैब भदभदा पे लैब स्थापित की गई है, इसमें अपन खुद का यहाँ पे सीमेन सेक्स सॉर्टेड सीमेन प्रोड्यूस कर रहे हैं और उस सीमेन को मध्य प्रदेश के हर जिले में हर गांव में उपयोग किया जा रहा है। आप निकटतम पशु चिकित्सक से संपर्क करके अपने पशु की जो सेक्स सॉर्टेड सीमेन से AI करवा सकते हैं। शुरुआत में इसमें क्या था कि इसकी जो कीमत थी वो थोड़ा ज्यादा थी, 400-500 रुपए थी, अब गवर्नमेंट पे सब्सिडी भी दे रही है, अब इसका 100 रुपए प्रति डोज आप अपने पशु को करवा सकते हैं और 90% बचिया प्राप्त कर सकते हैं।
0: ये प्रक्रिया कितनी देर की रहती है या कितने दिनों की रहती है?
1: ये प्रक्रिया में जैसे आप कहें नेचुरल सर्विस की तरह है, बस इसमें अपने को ये देखना है, जब नेचुरल सर्विस होती थी तो अपन अपने पशु जब गर्मी में आता था तो अपन उसको सांड के पास लेके जाते थे, बस इसमें अब क्या है कि आपका जब पशु गर्मी में आएगा तो आपको उसको सांड के पास लेके नहीं जाना, निकटतम पशु चिकित्सक या गवर्नमेंट जो मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट है, भारत सरकार है, उसने मैत्री गौसेवक बनाए हर पंचायत पे, उनका काम सिर्फ यही है आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, तो उनसे संपर्क करके आप अपने पशु का नॉर्मल कृत्रिम गर्भाधान यानी जो नॉर्मल गर्भाधान है बच्ची ब्रीड से वो भी करवा सकते हैं, और अगर आप चाहते हैं कि आपको सिर्फ बछिया ही चाहिए, 90% बछिया जिससे होती है, तो आप सेक्स सॉर्टेड सीमेन से अपने पशु की AI करा सकते हैं।
0: आप जो SSS सेक्स सॉर्टेड सीमेन की बात कर रहे हैं, इसे क्या हाथों के माध्यम से उसके गर्भ में पहुंचाया जाता है या मशीनों के माध्यम से पहुंचाया जाता है या किसी जानवर के माध्यम से पहुंचाया जाता है?
1: जी इस बारे में आपको बताना चाहूँ, जैसे कृत्रिम गर्भाधान आसान भाषा में आपको समझाना चाहूँ मैं, कृत्रिम गर्भाधान और सेक्स सॉर्टेड सीमेन को, तो जैसे कोई भी उच्च नस्ल का जो सांड है को अपन ले लेंगे और उसका सीमेन कलेक्ट करके कृत्रिम साधनों के माध्यम से, जैसे कृत्रिम साधन की बात करें तो इसमें आर्टिफिशियल गन AI गन जिसको बोलते हैं, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन गन होती है, उसमें जो सीमेन की स्ट्रो है उसको रख करके पशु के सर्विक्स में सीमेन को छोड़ा जाता है, जब पशु गर्मी में रहे तभी छोड़ा, ऐसा नहीं है कि किसी भी टाइम पर आप पशु की AI करवा सकते, जब आपका पशु गर्मी में आएगा तभी आपकी उसकी AI करा। गर्मी में भी जैसे मान के चलिए आपका पशु सुबह गर्मी में आया, गर्मी के लक्षण पशु में 24 घंटे तक रहते हैं, तो अगर सुबह गर्मी में आया है तो

0: आपको उसकी शाम को याई करानी है। अगर पशु आपका शाम को गर्मी में आया है तो उसकी याई आपको सुबह करवानी, जिससे आपको अच्छे चांस सक्सेसफुल हो जाएंगे कि आपके पशु है जो गर्भधारण उसका हो जाएगा, संभव हो जाएगा।
1: इसकी कोई फीस वगैरह भी निर्धारित है?
0: जी, इसकी फीस निर्धारित है। जैसे मैंने बताया कि सेक्स ऑर्डर सीमेन का जो चार्ज है, पहले 450 रुपए, अब गवर्नमेंट ने इसको 100 रुपए कर दिया
1: प्रति डोज। एक जानवर में गर्भधारण की संभावना के लिए कितने डोज दिए जाते हैं?
0: सिर्फ एक डोज ही अपने को देना जी। अगर सही हीट में है और अच्छा वीर है, जो डालने वाला है, जो एआई कार्यकर्ता है यानी मैत्री जो गौसेवक है, वो ट्रेंड है यानी उसे अच्छे से एआई करना आती है, तो बहुत आसानी से सिंपल तरीके से वो एआई कर देगा और इसमें चांस है कि वो सक्सेसफुल हो जाए।
1: और अगर खुदा ना खास्ता न हो तो अगले माह या कुछ दिनों बाद जब वो पुनः गर्मी पे आया तब दोबारा से प्रोसेस की जा सकती
0: जी। इसमें ऐसा होता है कि मान के चलो अगर सही से सक्सेसफुल अगर आपका आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन जो कृत्रिम गर्भाधान है नहीं हुआ है, तो गाय की ये साइकिल होती है कि वो 21 से 22 दिन के बाद फिर से गर्मी में आ जाएगी और आप फिर से उसकी एआई करवाएं।
1: ये शिवपुरी के लगभग हर वेटनरी हॉस्पिटल में ये सुविधा है?
0: हर वेटनरी हॉस्पिटल में सुविधा है, और जैसा मैंने बताया था, भारत सरकार ने प्रत्येक पंचायत में, हर जिले की पंचायत में कृत्रिम जो मैत्री गौसेवक है उनको बनाया है। उनका यही काम है कि उनको कृत्रिम गर्भाधान और आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन और टीकाकरण के लिए मुख्य रूप से बनाया है, वो ये काम करते हैं।
1: यानी उनके पास सामान स्टोर के तौर पर है?
0: जी, उनको जो जब एआई होती है ट्रेनिंग हम देते हैं, उसके बाद उनको पूरा सामान हम देते हैं, साथ में जब उनको सीमेन जो लेना होता है वो अपने निकटतम पशु चिकित्सक से संपर्क करके वहां से लेके और एआई कर सकते।
1: तो उसको रखने के लिए कोई प्रॉपर व्यवस्था होती होगी?
0: जी,
1: खुले में किसी भी
0: नहीं, ऐसा नहीं रख सकते उसको। जैसे अस्पताल में रखा जाता है लिक्विड नाइट्रोजन बोलते हैं जिसको, LN2 बोलते हैं
1: जी।
0: इसको जो सीमेन को जो स्टोर करते हैं बहुत लो टेम्परेचर पर करते हैं, क्योंकि इसको अपने को बहुत लंबे समय तक रखना होता है,
1: ठंडा रखते हैं,
0: बहुत ठंडा रखना पड़ता है। इसका टेम्परेचर आप देखोगे तो -196°C होता है, यानी बहुत ज्यादा ठंडा, बर्फ तो कुछ नहीं है यानी बहुत बहुत अधिक ठंडे पे इसको रखते हैं। इसको फिर जब अपन एआई करते हैं तब अपने उस कंटेनर से निकाल लेते हैं और पानी में जो रहता है पानी में डालते हैं 30 सेकंड के लिए 37°C पर, तो उसके अंदर जो स्पर्म होते हैं जो हिमरत हो गए मतलब उनका बर्फ के रूप में जम गए हैं, वो नेचुरल अपनी कंडीशन में आ जाते हैं, एक्टिव हो जाते हैं, फिर अपन उससे एआई करते हैं और सक्सेस एआई उससे हो जाए।
1: इस तरह की प्रक्रिया के बाद गर्भधारण ग्रहण करना किसी जानवर का और एक सामान्य प्रक्रिया में गर्भधारण करना किसी जानवर का, एआई के माध्यम से जब गर्भधारण हमारा जानवर करता है और सामान्य रूप से करता है, तो इन दोनों में जानवर की आगे कुछ देखरेख कुछ अलग तरह की होती है?
0: नहीं, देखरेख दोनों में अलग करने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन जैसे ही आपको लगता है कि पशु का जैसे आपने एआई करा लिया, कृत्रिम गर्भाधान जैसे करा लिया या आपने प्राकृतिक गर्भाधान करा लिया, उसके 3 महीने के बाद उसको आपको प्रेगनेंसी डायग्नोसिस बोलते हैं, मतलब बच्चे को चेक कराना है कि आपका पशु गर्भित हुआ है कि नहीं है, और उसके बाद अगर वो गर्भित हो गया है तो आप उसके लिए खुराक जैसे पशु ब्यावन पशु की जो देखभाल करनी है उस तरीके से उसकी सेम देखभाल करनी, अलग से ऐसा नहीं है कि अगर ये अपने कृत्रिम गर्भाधान कराया है तो उसकी अलग से देखभाल करनी है, प्राकृतिक कराया तो अलग से।
1: जैसे इंसान के लिए कि भाई अगर कोई बीमार है तो उसके लिए बेड रेस्ट है, तो उस जानवर को पूरी तरह से घर में रखना है, बाहर नहीं निकलने देना है, इस तरह की सावधानी का कोई अलग से हमें ध्यान नहीं रखना?
0: नहीं, इस तरह का कोई प्रावधान नहीं है। आपको जो प्राकृतिक गर्भाधान है उसी तरीके से आप नेचुरल जो आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन है उसके पशु को भी ऐसे ही रख सकते हैं,
1: और बाद में जैसे अगर वो कंफर्म हो जाता है तो फिर उसकी डाइट जैसे धीरे धीरे इंसानों में बढ़ाई जाती है कि हाँ। अगर कोई प्रेग्नेंट लेडीज है तो उसको भाई हाँ। बच्चे के हिसाब से खुराक दी जाती है, तो जानवर को भी उसी बच्चे के हिसाब से खुराक?
0: हाँ, वो ध्यान देना जरूरी है, वो तो आप प्राकृतिक कराओगे तब भी देना पड़ेगा, पशु प्रेग्नेंट है उसके अच्छा दुग्ध उत्पादन उसको अगले आपको लेना है, जब वो ब्याएगी तो उसकी खुराक का ध्यान तो आपको रखने का, बच्चे का जो पेट में बच्चा है उसकी अच्छे से ग्रोथ हो उसके लिए आपको विशेष ध्यान रखने।
1: इस प्रक्रिया के बाद उत्पन्न हुए बच्चा और उस बच्चे का भविष्य में एआई के द्वारा किया गया पुनः कृत्रिम गर्भाधान, उसके पश्चात जो संतति पैदा होगी तो क्वालिटी और ज्यादा इंप्रूव हो जाएगी?
0: हाँ, जिस बारे में अगर बताना चाहूँ, जैसे मान के चलिए आपने शुरुआत में आपके पास नॉन डिस्क्रिप्ट ब्रीड है, जो मतलब ऐसी ब्रीड है जो इसका दुग्ध उत्पादन बहुत कम है, तो आपने पहली बार उसकी एआई करा दी, तो जो नया बच्चा पैदा होगा उसमें दोनों तरीके के लक्षण, 50% देसी जो गाय है आपके उसके लक्षण आएंगे, और जिससे ब्रीड से आपने एआई करवाई है 50% लक्षण उसके आएंगे। लेकिन जब दूसरी बार आप उसकी फिर से कराओगे तो यानी इसके जो देसी वाले थे उसके लक्षण अगले में हो जाएंगे, और नया आप जो कराओगे फिर जिस क्रॉस ब्रीड से आप कराओगे तो फिर लक्षण और बढ़ते चले जाएंगे।
1: धीरे धीरे 2 या 3 पीढ़ी के पश्चात ये परसेंटेज 100 में बदल सकता है?
0: ये 6 से 7 पीढ़ी के बाद 90% तक, 98-97% तक ये चला जाता है। लेकिन अपने को बहुत ज्यादा ऐसे देसी ब्रीड है का अगर पढ़ना चाहते हैं, मतलब जो इंडिजिनस ब्रीड है तो आप ऐसा कर सकते हैं, लेकिन आप बाहर की ब्रीड है जैसे जर्सी है, HF है, इनसे आप कराएंगे तो क्या होगा, जब प्योर की तरफ ये चली जाएंगी तो इनकी जैसे अपन जानते हैं कि ठंडे देशों की गायें होती हैं, अब यहाँ पे उनको आप एकदम प्योर की तरफ ले जाएंगे तो यहाँ उनका थोड़ा सर्वाइव करना मुश्किल होगा, बीमार जल्दी हो सकती है।
1: दक्षिण भारत में एक गाय है जिसका साइज बहुत कम हो, वो गाय के बारे में बताया जाता है कि उसका दूध बहुत महंगा बिकता है, दूध ज्यादा तो नहीं होता लेकिन उसकी रेट बहुत ज्यादा है क्योंकि वो बहुत ज्यादा मेडिकेटेड दूध है, तो उस तरह की संतति से उसके मेल वर्जन से अगर यहाँ दुग्ध उत्पादन के लिए काम किया जाए तो क्या वो संभावना है?
0: ये ऐसी भ्रांति है, ऐसा दूध उत्पादन में बहुत बड़ा अंतर नहीं आता। जैसे देसी ब्रीड है उनका बताते हैं कि अपन A2 मिल्क है वो थोड़ा अच्छा होता है जो बाहर की क्रॉस ब्रीड होती है, लेकिन जो देसी ब्रीड उनका दूध लगभग जैसे गिर की बात कर रहे हो, गिर का दूध अच्छा होता है, ये दक्षिण भारत की नहीं है, पूरे इंडिया में इस टाइम पे है जो गिरी ब्रीड आप जो कह रहे हैं, इसका दुग्ध

0: अच्छा होता है ए टू ब्रीड, जो जिनको हम पुपन बोलते हैं, जैसे अपनी जो देसी गाय है इंडिजिनस के सर पे जो पीठ की तरफ जो कुबड़ जैसा होता है, तो अपन मानते हैं कि इससे सूर्य की किरणों को जैसे अवशोषित करके ए टू मिल्क, अच्छा मिल्क जो उसमें क्वालिटी होती है वो सभी देसी गाय में अपने को होती है। ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ उसी गिर गाय में।
1: अभी जितनी हमारी बातचीत हुई, ये बातचीत गाय के लिए हो रही है कि भैंस के लिए भी ये प्रक्रिया है?
0: ये दोनों में लागू है, लेकिन जब आपने दूध की बात करी तो गाय की अपन बात कर रहे हैं ए टू ए वन मिल्क की। ये जो सेक्स सॉर्टेड सीमेन या कृत्रिम गर्भाधान जिसकी अपन बात कर रहे हैं दोनों के लिए है, दोनों में ये चल रहा है। भैंसों में भी पड़िया प्राप्त कर सकते हैं, 90% पड़िया मुर्रा जो सीमेन है भी एमपी में अवेलेबल है मध्य प्रदेश में, उससे आप 90% पड़िया प्राप्त कर सकते हैं, पड़े बहुत कम हो जाएंगे, 10% पड़े ही पैदा।
1: बातचीत तो हुई, कई सारी बातें हमने जानी, किसी विशेष बिंदु पर आप बताना चाहें कि इन बातों का ध्यान रखना चाहिए, ये इस तरह से पॉसिबल है?
0: इसमें दो तीन चीजों का मैं आपको बताना चाहिए, विशेष ध्यान रखना चाहिए पशुपालक भाई को अगर सक्सेसफुल मतलब अच्छा कृत्रिम गर्भाधान का वो फायदा लेना चाहते हैं। एक तो ये है कि उनमें पशुपालक का कोई कंट्रोल नहीं है कि सीमेन कैसा है, गवर्नमेंट की तरफ से ही आएगा, लेकिन अपन जैसे पशुपालक इसको हीट को पहचानना बहुत जरूरी है। हीट को अगर वो अच्छे से टाइम पे पहचान लेंगे तो उनकी एआई में बहुत अच्छा फायदा हो जाएगा, क्योंकि अगर हीट अपन को सही से नहीं पहचान पाए टाइम पे, अगर उसकी अपन एआई नहीं करा पाए तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि टाइम पे एआई नहीं कराएंगे तो एआई सक्सेसफुल नहीं होगी। और पशुपालक भाई को हीट के लक्षण भी पहचानना आना चाहिए, जैसे गाय है, गाय तो बहुत अच्छे लक्षण दिखाती है हीट के, लेकिन भैंस क्या है जनरली साइलेंट हीट में आती है, वो अपने लक्षण नहीं दिखाती है। गाय में क्या लक्षण आएंगे वो भी पशुपालक भाई को आना चाहिए, जैसे जब गाय गर्मी में आएगी तो उसके जो योनि मार्ग से है पारदर्शी पदार्थ निकलता है, गाय बार बार रमाती है, बार बार पेशाब करती है, जब उसको गर्मी में आएगी तो शुरुआती गर्मी में वो अन्य पशु के ऊपर चढ़ती है, लेकिन जैसे ही गर्मी के लक्षण बढ़ते जाएंगे अन्य पशु को अपने ऊपर चढ़ने देगी, इसे स्टैंडिंग हीट कहते हैं। ये सबसे अच्छा लक्षण है, इसलिए बोलते हैं कि जब एआई के लक्षण धीरे धीरे बढ़ते जाते हैं हीट के लक्षण, तो सुबह अगर पशु गर्मी में आया तो अपन उसकी शाम को एआई कराते हैं, शाम को आया है तो सुबह कराते हैं, कि जैसे ओवुलेशन सही टाइम पे हो और अपने जो शुक्राणु जो वीर्य डाला इसमें जो शुक्राणु है उनका अंडाणु से सही से निषेचन हो और सक्सेसफुल कृत्रिम गर्भाधान हो सके।
1: तो डॉक्टर कृष्ण शर्मा जी, आप हमारे किसान भाइयों के बीच में आए, और किसानों को पशुओं में कृत्रिम गर्भाधान क्यों और कैसे, इस एक विषय पर आपने जानकारी दी, उसमें साथ ही साथ आपने SSS यानी कि सेक्स सॉर्टेड सीमन इस बारे में
0: लिंग वर्गीकृत वीर जी
1: इसके बारे में ही बताया कि पशु अगर इस तरह से अपने जानवर को गर्भ की ओर ले जाते हैं तो संभावनाएं बहुत अच्छी होती है, रिजल्ट अच्छे होते हैं और दूध की उत्पादन क्षमता बढ़ती है, और किसानों का पशुओं से सिर्फ यही सबसे पहला और लाभ है कि उन्हें दुग्ध ज्यादा मिलता है, और उसके संग सपोर्टिंग पदार्थ यानी कि गौमूत्र और गोबर वो भी आज बहुत कीमती हो चुका है, क्योंकि उससे कई तरह की दवाएं बन रही हैं और कई तरह के फसलों पर छिड़कने के घन जीवामृत और ये सारे पदार्थ बन रहे हैं, तो वो भी कीमती है, वो वेस्ट मटेरियल नहीं है। आप किसानों के साथ रहे, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।
0: नमस्कार।
2: मेरो अभी अपन सुन रहे थे ये पूर्व प्रसारित भेंट वार्ता, जिसका विषय है तो पशुओं में कृत्रिम गर्भाधान क्यों और कैसे। वार्ताकार भैया थे डॉक्टर बाल किशन जी शर्मा, और जिनसे बात कर रहे थे भैया डॉक्टर समर्थ अग्रवाल।
3: बिल्कुल बहन, आप सही कह रही हैं, और इनसे जो जो इन्हें बातचीत करी तो जैसे जैसे उनके हमारे किसान मन में इन्हें लाभ जरूर होगा।
2: बिल्कुल बिल्कुल हा? जरूर लाभ लेंगे, हम उम्मीद करते हैं कि मेरे मुलक सी जो जवारे में शंकाएं समस्याएं थी वो दूर हो गई होंगी।
3: बिल्कुल बहन,
2: और जाके बारे में जानकारी भी मिल गई विस्तार से, तो उम्मीद करते हैं कि आगे वाले समय में वो जी बातचीत को लाभ जरूर लेंगे।
3: बिल्कुल बहन, तो बहन देखो अब हम सोच रहे हैं कि अपने किसान बहन बहन को मनोरंजन करवा।
2: बिल्कुल बिल्कुल,
3: तो अब सुनाते हैं अपन एक जो लोकगीत।
2: हाँ।

देखो बहन, आपने लोकगीत तो बहुत ही अच्छा सुनवा दो। अपन देख भी रहे हैं कि अब शिक्षा को नव सत्र शुरू होगा हुआ है, और हमारा तो हमारे सके भैया बहन से यही कहना है कि देखो इतने अच्छे लोकगीत है जिनमें यही संदेश है कि हम अपने बिटियन को पढ़ाएंगे तो भावी माँ को पढ़ाएंगे, और जब भावी माँ पढ़ेगी तो क्या होगा, सबकी भाग विधाता बनेगी। पढ़वे लिखवे से बाकी सोच अच्छी होगी, अच्छे बुरे के बारे को ज्ञान हो, घर

0: परिवार को अच्छे चलाएगी
1: हाँ।
0: और एक सिंगे दो परिवार को नाम भी रोशन करेगी। तो भैरो अपने मुड़ा मुड़ियन को जो स्कूल छोड़ चुके हैं कौन कारण से
1: हाँ।
0: इन्हें दोबारा जरूर दाखिला दिलाएं
1: हाँ।
0: और जो नए बच्चे नए मुड़ा मुड़ी हैं जिनकी शुरुआत हो रही है बिने भी आप नजदीक के स्कूल में जरूर भेजें। देखो शासन ने अपनी मदद किराने कितने अच्छे काम करे हैं कि छोटे छोटे जगह पे जो है इतने सारे स्कूल जो है खुल रहे हैं। गाँव गाँव में स्कूल खोले गए हैं अपनी सुविधा के लाने और मुलक सी योजनाएं बनाई हैं जिनके माध्यम से मुड़ा मुड़ी स्कूल में जाए मध्याह्न भोजन है जा बिना छात्रवृत्ति दी जा रही है साइकिल दी जा रही है आगे पढ़े वाली मुड़ा मुड़ी को स्कूटी भी दी जा रही है
1: हाँ।
0: तो जब इतने प्रयास शासन द्वारा करे जा रहे हैं कि अपने देश को भविष्य सुंदर बने
1: हाँ।
0: एक भावी माँ पढ़ी लिखी हुए
1: हाँ।
0: तो अपन क्यों पीछे हटे
1: एक
0: सारी योजनाएं चल रही है इनको लाभ जरूर लें
1: हाँ।
0: को बहाना नहीं बनाए। और जयके सिंह अब बेरा हो चलिए रेणुबेन चलवे की किसानवाणी से तो आज के किसानवाणी कार्यक्रम से चलवे की आज्ञा दे अपनी गीता बहन
1: और रेणु राजा को
0: राम राम जय जवान जय किसान।
2: इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार।
3: हमने फसल बीमा योजना को अधिक प्रभावी बनाया उसके दायरे में ज्यादा किसानों को लाए
4: नहीं।

0: आज ही प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से जुड़ें और फसल नुकसान से होने वाली आर्थिक हानि से निश्चिंत हो जाएं, ताकि प्राकृतिक और स्थानीय आपदा पर भी फसल नुकसान होने पर आप उसकी सही कीमत पाएं। प्रधानमंत्री फसल बीमा से जुड़ने के लिए आज ही नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में जाएं, क्योंकि
1: सुरक्षित फसल, निश्चिंत किसान, फसल बीमा सबका समाधान।
0: कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।

0: Γεωργιώμη. ये आकाशवाणी है, प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में। इसके अंतर्गत सुनिए भारत ऑस्ट्रेलिया रणनीतिक साझेदारी, व्यापार, प्रौद्योगिकी और निवेश के क्षेत्र में बढ़ते सहयोग पर चर्चा। इसमें भाग ले रही हैं पूर्व राजदूत अशोक सज्जनहार। कार्यक्रम का संचालन कर रही हैं आकाशवाणी संवाददाता दीक्षा सक्सेना।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने 3 देशों के दौरे पर हैं। इस दौरे के दौरान प्रधानमंत्री ने कल अपनी इंडोनेशिया की यात्रा खत्म करी और कल ही वो मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया पहुंच गए। ऑस्ट्रेलिया में उन्होंने आज ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी एल्बनीज के साथ कई अहम मुद्दों पर बातचीत की। इस बारे में और बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं अम्बेसडर अशोक सज्जनहार। अम्बेसडर सज्जनहार, आकाशवाणी समाचार में आपका बहुत बहुत स्वागत है।
2: बहुत धन्यवाद
1: अम्बेसडर सज्जनहार। बाकी और पहलुओं पे जाने से पहले सबसे पहले मैं आपसे ये समझना चाहूंगी कि अभी जो जियोपॉलिटिकल टेंशन्स चल रही हैं, उसके बीच जैसे ऑस्ट्रेलिया और भारत ने ऊर्जा सुरक्षा के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को फिर से दोहराने के बारे में बात की है, तो मौजूदा समय में यानी कि जब हम पश्चिम एशिया में फिर से तनाव देख रहे हैं, तो ये एनर्जी सिक्योरिटी कितनी महत्वपूर्ण है?
2: जी, बहुत धन्यवाद इस प्रश्न के लिए। बहुत ही महत्वपूर्ण है। हमने देखा है, जैसे दीक्षा आपने बताया, जियोपॉलिटिकल टेंशन चल रही है पूरे विश्व में। बहुत ही उथल पुथल की स्थिति है, बहुत ही अनिश्चितता की स्थिति है। और हमने देखा है, अभी जब से ये फरवरी में युद्ध शुरू हुआ है, तो तब से वहां पर जो फ्रीडम ऑफ नेविगेशन है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में, वो वहां से खत्म हो गया है। और जो क्योंकि पूरे विश्व में करीब 20% जो तेल आता है, खुरदरा तेल आता है, क्रूड ऑयल आता है, चाहे वो फिर गैस आती हो LPG, LNG या फिर और भी उसके जो डेरिवेटिव प्रोडक्ट्स हैं, जिसे कहा जाए फर्टिलाइजर, उर्वरक है, जो कि बहुत ही आवश्यक है फूड सिक्योरिटी के लिए, अलग अलग देशों के लिए, भिन्न देशों के लिए, परंतु पूरे विश्व के लिए। उसके अलावा और जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में हम कहते हैं सल्फर की जरूरत होती है, हीलियम की जरूरत होती है, तो ऐसे बहुत सारे डेरिवेटिव पदार्थ हैं जो कि जब तेल को रिफाइन किया जाता है तो वो निकलते हैं, तो वो सभी पदार्थ आना बाहर बंद हो गए, और जिससे कि पूरे विश्व को बहुत ही मुश्किल का सामना करना पड़ा फरवरी से लेकर अभी तक, जब तक इसके ऊपर दस्तखत नहीं हुए, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। और फिर हम कल से देख रहे हैं फिर से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद हो गया है। तो इसलिए एनर्जी सिक्योरिटी बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा बनकर उभरा है सभी देशों के लिए। ऐसे देशों के लिए यकीनन भारत जैसे देश हैं जो कि हम करीब 90% अपनी ऊर्जा बाहर से हम इंपोर्ट करते हैं, ये बहुत अच्छी बात है जो दोनों, भारत ने और ऑस्ट्रेलिया ने, इसके ऊपर एक समझौता किया है। अब जो एनर्जी के बारे में अगर बातचीत की जाए आदान प्रदान में, तो हम ऑस्ट्रेलिया से बहुत मात्रा में कोयला खरीदते हैं, तो हमारे यहाँ पर जो भी इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन होता है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन होता है, हालांकि हमारे यहाँ से काफी हद तक हम एनर्जी ट्रांजिशन की तरफ जा रहे हैं और रिन्यूएबल्स की तरफ हम जा रहे हैं, जो हमारी कमिटमेंट्स हैं पेरिस अकॉर्ड में, जो 2030 तक हम कितना रिन्यूएबल्स में हम प्रोडक्शन करेंगे, उससे कहीं ज्यादा हमने ऑलरेडी कर दिया है। हमने अपना जो लक्ष्य था वो पूरा कर लिया, परंतु फिर भी ऑस्ट्रेलिया से चाहे कोयला हो चाहे LPG हो, काफी मात्रा में हमारे यहाँ आता है, और हमारे यहाँ पर ये सब रिफाइन होकर जो रिफाइंड प्रोडक्ट्स हैं वो ऑस्ट्रेलिया को हम फिर से भेजते हैं। हमारा सबसे ज्यादा मात्रा में जो एक्सपोर्ट है, निर्यात है ऑस्ट्रेलिया को, वो इन्हीं का है, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स का है। तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है दोनों देशों के बीच के सहयोग का।
1: तो आगे बढ़ने से पहले, ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री के साथ ज्वाइंट प्रेस मीट के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए भारत को ऑस्ट्रेलिया यूरेनियम के निर्यात को आसान बनाने के लिए एक समझौते पर भी हस्ताक्षर करने के बारे में बातचीत की है। आगे बढ़ने से पहले आइए सुनते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या कहा।
3: न्यूक्लियर एनर्जी के क्षेत्र में आज हमने एक महत्वपूर्ण समझौता किया है। इससे ऑस्ट्रेलिया से भारत को यूरेनियम सप्लाई का मार्ग खुलेगा और हमारे क्लीन एनर्जी के उद्देश्यों को नई ताकत मिलेगी। क्रिटिकल मिनरल्स में हमारा सहयोग हमारी स्ट्रेटेजिक सिक्योरिटी और क्लीन एनर्जी ट्रांजिशन के लिए महत्वपूर्ण है।
1: अम्बेसडर सज्जनहार, जैसे कि हमने भी प्रधानमंत्री को सुना, ऑस्ट्रेलिया और भारत ने ऑस्ट्रेलिया भारत परमाणु सहयोग समझौते 2015 के तहत विशेष रूप से शांतिपूर्ण उद्देश्यों और अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी IAEA के सुरक्षा मानकों के दायरे में भारत को ऑस्ट्रेलिया यूरेनियम के निर्यात को संभव बनाने के लिए जरूरी प्रशासनिक व्यवस्थाओं को अंतिम रूप दिया है। ये आपके नजरिए में, ये आपके समझ से कितना महत्वपूर्ण है?
2: मेरे विचार से ये बहुत ही एक महत्वपूर्ण कदम है दोनों देशों ने उठाया है। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है, जो ये फॉसिल फ्यूल से हम नहीं करेंगे, ये हम न्यूक्लियर एनर्जी प्रोडक्शन में इस यूरेनियम का प्रयोग करेंगे। और हमने जो मात्रा रखी है वो जो हम 100 गीगावाट इलेक्ट्रिसिटी 2047 तक हम न्यूक्लियर एनर्जी प्रोड्यूस करेंगे। अभी तक अगर हम देखें तो मेरे विचार से अभी तक हमारा 8-9 गीगावाट हम प्रोड्यूस करते हैं, तो मतलब हमारे पास और बहुत ज्यादा ऐसा संभव ये कर सकते हैं जो इसको मात्रा को हम और आगे बढ़ाएं। दूसरी बात, ये हमारा समझौता जो हुआ था वो हुआ था 2014-2015 में, जबकि टोनी एबट थे वहां के प्रधानमंत्री। अब 12 साल गुजर गए हैं परंतु अभी तक वहां से कोई हमारे पास यूरेनियम ओर नहीं आ पाया है। तीसरी बात, जो ऑस्ट्रेलिया विश्व में सबसे बड़ा जो रिजर्व्स हैं यूरेनियम के, वो ऑस्ट्रेलिया के पास हैं, और इसीलिए ऑस्ट्रेलिया उनको माइन करे, उनको बाहर देशों को, उसको एक्सप्लॉयट करे बाहर देशों को और एक्सपोर्ट करे, निर्यात करे, तो ये दोनों के लिए फायदा होगा। और चौथी बात इसमें ही देखें, ये क्लाइमेट चेंज के लिए भी बहुत अच्छा होगा, तो इसीलिए हम सिविलियन यूजेस के लिए, ऊर्जा को पैदा करने के लिए, ऊर्जा को जनरेट करने के लिए हम यूरेनियम का प्रयोग करेंगे, इस्तेमाल करेंगे। तो ये इतने सालों बाद हो रहा है, तो मेरे विचार से ये भी एक विन विन प्रोपोजिशन है, क्योंकि इससे भारत को तो फायदा होगा ही, क्योंकि हम रिन्यूएबल एनर्जी के क्षेत्र में और आगे बढ़ पाएंगे, परंतु इससे ऑस्ट्रेलिया को भी बहुत फायदा होगा, क्योंकि उसका अपना वो तो एक जो कमोडिटीज हैं उसको वो माइनिंग में, क्योंकि उसका क्षेत्रफल इतना ज्यादा

0: बहुत ज्यादा वहां पर मिनरल्स हैं और यूरेनियम उसमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण मिनरल है, तो उसका वो निर्यात कर पाएगा तो उसको भी इसका फायदा मिलेगा। तो ये दोनों देशों के लिए बड़ी अच्छी बात है जो हमने ये ऑपरेशनलाइजेशन किया है उस अग्रीमेंट का, जो कि बहुत पहले 10 साल से ऊपर हो गए जो हमने इसके बारे में अपना निर्णय लिया था, दोनों देशों ने निर्णय लिया था।
1: अम्बेसडर सज्जनार, अभी तो हमने ऊर्जा क्षेत्र की बात करी, आगे बढ़ते हुए मैं आपसे बिजनेस पार्टनरशिप के बारे में बात करना चाहूंगी, इकोनॉमिक पार्टनरशिप के बारे में। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑस्ट्रेलिया भारत सीईओ फोरम और इकोनॉमिक रोडमैप बिजनेस इवेंट को भी संबोधित किया था ऑस्ट्रेलिया में। उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के निवेशकों को भारत में लंबे समय तक निवेश के अवसरों का लाभ उठाने के लिए आमंत्रित किया है। आपके विचार में, आपकी समझ से कौन से क्षेत्र हैं जिनमें दोनों देश मिलकर आगे काम कर सकते हैं?
0: बहुत से ऐसे क्षेत्र हैं। देखिए, एक तो जो नई तकनीक है, चाहे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो, चाहे रोबोटिक्स हो, ये वाले क्षेत्र हैं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्षेत्र बनकर उभरे हैं जिनमें हम अपना सहयोग बढ़ा सकते हैं। देखिए, हमको ये ध्यान रखना है, जो अभी तक हालांकि दोनों देशों के बीच में राजनीतिक संबंध बड़े अच्छे हैं, परंतु अगर इकोनॉमी और ट्रेड को देखा जाए तो इतने ज्यादा अच्छे संबंध नहीं है। जैसे मैंने बताया, अभी तक हमारे यहाँ से पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स वगैरह, ऐसी टेक्सटाइल्स, ऐसी चीजें हम निर्यात करते हैं और वहां से हम आयात करते हैं कोयला और LPG वगैरह, इस प्रकार के कमोडिटीज हम वहां से आयात करते हैं। परंतु अभी हमने कुछ साल पहले 2022 में हमने एक बायलैटरल अग्रीमेंट, इंटरिम जिसे मैं कहूंगा, ट्रेड अग्रीमेंट की थी, फुल फ्लेज्ड फ्री ट्रेड अग्रीमेंट नहीं थी, परंतु एक पहला कदम था उसकी तरफ, जिसको हम कहते हैं ECTA, इकोनॉमिक कोऑपरेशन ट्रेड अग्रीमेंट, और उसका फायदा भी बहुत हुआ है। तो इसमें अगर देखा जाए, जो अगर भारत के जो निर्यात है पूरे विश्व में पिछले 4 साल में, अगर मैं कहूं जो करीब 40% ज्यादा बढ़ा है, तो मेरे विचार से ऑस्ट्रेलिया में हमारा जो निर्यात है वो करीब 200% बढ़ा है, और वो इसी की बनिस्बत जो ECTA से हमारा जो फायदा हुआ है, दोनों देशों को फायदा हुआ है। ऑस्ट्रेलिया का भी जो निर्यात है भारत को काफी मात्रा में बढ़ा है, परंतु हमारे लिए ज्यादा फायदा हुआ है क्योंकि अब 1 जनवरी 2026 से 100% जो भारत के पदार्थ हैं जो ऑस्ट्रेलिया जाते हैं वो सारे ड्यूटी फ्री हो गए हैं, तो हमारे लिए बहुत ही सहूलियत बनी है। और इसमें हम देख रहे हैं, अब हमने ECTA को रिप्लेस करके SICA की तरफ हम अग्रसर हो रहे हैं, इसके बारे में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा। इसमें कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक कोऑपरेशन अग्रीमेंट, जिसमें कि केवल ट्रेड इन गुड्स नहीं रहेगा, इन्वेस्टमेंट रहेगा, ट्रेड इन सर्विसेज रहेगा, और ये सब क्षेत्र जब मिलेंगे तो हमारे दोनों देशों के बीच का सहयोग है वो बहुत बढ़ेगा। और इसी में अगर देखा जाए तो वहां की जो ऑस्ट्रेलिया सुपर, जो उनकी इन्वेस्टमेंट आर्म है, पेंशन फंड्स की इन्वेस्टमेंट आर्म है, उन्होंने आज उसी सीईओ फोरम में अनाउंस किया दीक्षा, जो ऑस्ट्रेलिया 500 मिलियन ऑस्ट्रेलियन US डॉलर, मतलब करीब $350 मिलियन US डॉलर, वो भारत में निवेश करेगा इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में। इससे पहले अगर देखा जाए पिछले 5 सालों में उन्होंने तो करीब 2.8 बिलियन ऑस्ट्रेलियन यूएस डॉलर इन्वेस्ट किए हैं, और उनको ये विश्वास है जो भारत की अर्थव्यवस्था बड़ी तेजी से आगे बढ़ रही है। तो इसीलिए मैं समझता हूं जो आह्वान था प्रधानमंत्री मोदी का, जो भी ऑस्ट्रेलिया की बिजनेस कम्युनिटी था, वो बड़ी पॉजिटिवली रिसीव हुआ है।
1: आगे बढ़ने से पहले अम्बेसडर सज्जनार, आइए सुनते हैं कि आज साइन किए गए MOU के बारे में ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज ने जॉइंट प्रेस मीट में क्या कहा।
2: With new landmark agreements, we are expanding our relationship across defence and security, education, science and technology, and energy security and critical minerals. Prime Minister Modi and I have released a joint declaration on defence and security cooperation to deepen our practical partnership. Australia values India as a top-tier security partner, and the declaration reflects our shared commitment to a peaceful, stable and prosperous Indo-Pacific region.
1: चलते चलते एम्बेसडर सज्जनहार, आपसे बहुत ही संक्षेप में समझना चाहूंगी कि आज ऑस्ट्रेलिया और भारत के प्रधानमंत्री, दोनों ही प्रधानमंत्रियों ने एक ऑस्ट्रेलिया इंडिया कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स होने के नाते एक कॉमन विजन फॉर फ्री ओपन एंड प्रॉस्पेरस इंडो पैसिफिक की भी बात की, उस पे जोर दिया। तो जितने भी MOU जितने भी आज समझौते हुए हैं उसमें मैरिटाइम सिक्योरिटी कोलैबोरेशन रोडमैप यानी कि MSCR को भी देखा गया है, तो आप इसको हमारे श्रोताओं के लिए और बेहतर तरीके से समझा सकते हैं।
0: अभी जो आपने प्रश्न किया है बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि भारत और ऑस्ट्रेलिया की जो मित्रता है, भारत और ऑस्ट्रेलिया का जो सहयोग है, वो केवल द्विपक्षीय मामलों के लिए महत्वपूर्ण नहीं है, परंतु वो पूरे क्षेत्रीय, इस पूरे इंडो पैसिफिक में जिसे हम कहते हैं इंडियन ओशन और पैसिफिक ओशन, इन दोनों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और पूरे विश्व में अगर हम कहें, जो ये स्थायी होना चाहिए, स्थिरता होनी चाहिए, शांति होनी चाहिए, विकास होना चाहिए, उन सब के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि हम देख रहे हैं, सबसे पहले हमने शुरुआत की थी जियोपॉलिटिकल टेंशंस की, यहां पर भी हम देख रहे हैं जो बहुत अनिश्चितता बनकर आ रही है इस क्षेत्र की, जो डेमोक्रेसीज हैं, जो ये सभी डेमोक्रेसीज को मिलके ये निश्चित करना होगा जो ये क्षेत्र जो है ये फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक रहे, मैरिटाइम सिक्योरिटी यहां पर बनी रहे, रूल ऑफ लॉ, इंटरनेशनल लॉ के आधार पर यहाँ पर जो काम होता है वो सब होता रहे। और इसीलिए हमने देखा है, जो आपने कहा, जो मैरिटाइम सिक्योरिटी, मैरिटाइम डोमेन अवेयरनेस हो, उसमें ब्लू इकोनॉमी का कैसे फायदा लिया जाए।
1: जी एम्बेसडर सज्जनार, आने वाले दिनों में हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यात्रा पे अपनी नजर बनाए रखेंगे और उस पे चर्चा करते रहेंगे। इस पूरे विषय पे अपने विचार हमारे साथ साझा करिए, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद।
3: अभी आप सुन रहे थे भारत ऑस्ट्रेलिया रणनीतिक साझेदारी, व्यापार, प्रौद्योगिकी और निवेश के क्षेत्र में बढ़ते सहयोग पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे पूर्व राजदूत अशोक सज्जनहार। कार्यक्रम का संचालन कर रही थी आकाशवाणी संवाददाता दीक्षा सक्सेना।
4: सुर्खियों में
5: आप सुन रहे थे कार्यक्रम सुर्खियों में, ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण है। समय है फिल्म संगीत के कार्यक्रम का। श्रोताओं नमस्कार, बारिश का उत्सव है, गुनगुनाते हुए हम और आप हैं, और इस गुनगुनाहट में स्वागत है आपका। मैं हूं आपकी दोस्त सुनीता सिंह। श्रोताओं, बारिश के दिन बादल ओढ़े हुए जागते हैं, सफेद उजालों वाली सुबहें होती हैं और काले घने मेघों को ओढ़ी रात होती है, जहां जिंदगी भीगे मन आंगन में सपने बोती है। आसमान के प्यार से धुल गया है धरती का सारा इंतजार। कितना खूबसूरत सा मौसम है बारिश, जैसे जमीन से आसमान का एक रिश्ता बंधा हुआ है। बारिश का ये मौसम जैसे कोई जादू है। ये रिमझिम रात भर बादलों का वृत्तांत कहती हैं और जमीन चुपचाप सुनती है, भीगती है। सुबह सवेरे हमारी खिड़की की कांच पर इन बूंदों की कविताएं मिलती हैं और दिन जैसे कोई गीत हो जाता है। धुली हुई हवाएं हैं, धुली हुई फिजाएं हैं और चारों ओर हरियाली है। ये हरियाली नहीं, आसमान के नाम धरती के प्रेम पत्र हैं और ये प्रेम ही जीवन है।

बारिश एक मौसम जहां प्रेम है, स्वर है, संगीत है। बारिश एक मौसम जिसमें सब हरा होता है, धरती का आंचल, किसानों के सपने और हमारे मन। इस हरा होने से ही जीवन भरा है। बारिश एक ऐसा मौसम जो बाहर बरसता है और हमारे भीतर उतरता है। बारिश एक मौसम जिसे हम देख तो सकते ही हैं, छू भी सकते हैं, सहेज भी सकते हैं। तो इस बरस बारिशें जमा कीजिएगा। फिलहाल आपके साथ मिलकर गुनगुनाते हैं इस सुहाने से मौसम को, बरखा बहार को।

मैंने बोई थी बारिशें पिछले बरस, मैंने बोई थी बारिशें पिछले बरस, बादलों के दरख्त मेरे आंगन में फूलने लगे हैं।

ये बूंदें जो हथेलियों को सहलाकर भिगो देती हैं, जैसे मन को कोई बीती हुई याद सहला जाती है। धरती के आंगन में जब बजता है जल तरंग, एक टीस मीठी सी गुनगुनाती है।

श्रोताओं, ये उमड़ते घुमड़ते बादल जैसे ढोल बजाते हों कि हाँ, शुभ दिन आ गए। ये धरती जैसे दुल्हन है इन दिनों, हवाएं शहनाई बजाती हैं कि नए सपनों का शुभारंभ है ये, कि जैसे ये उत्सव है धरती और आसमान के अटूट बंधन का।

श्रोताओं, यूं मौसम कोई बेआवाज नहीं होता, लेकिन बारिश के स्वर बहुत मुखर हैं। गरजते बादल, रिमझिम फुहारें, दादुर, मोर, पपीहे के स्वर, ऐसा लगता है जैसे ये सब मिलकर मल्हारी वृंदगान रच रहे हों। इन घटाओं से एक अजीब सा रिश्ता है मन का। ये काली घटाएं कभी संदेशवाहक हो जाती हैं, ये मेघ दूत बन जाते हैं और बेकल मन का हाल कह सुनाते हैं। एक साझे आसमान पर दूर दूर जीती दो निगाहें क्या क्या लिखती हैं, क्या क्या पढ़ती हैं।

श्रोताओं, बारिश एक संबंध है जमीन का आसमान से, बारिश एक संबंध है जीव का जीवन से, बारिश एक संबंध है मन का दूसरे मन से। इस संबंध को गुनगुनाते रहना ही इसे जिंदा रखना है। तो इस बरस आइए, बारिश को खूब जिएं, इसे गुनगुनाएं, उसे छुएं, इसे सहेजें, हम जमा करें बारिशें, हम बारिशें बोएं कि बादलों के दरख्त फूलते रहें, धरती के आंगन में जीवन हमेशा खिलता रहे, महकता रहे। इसी वादे के साथ अब इजाजत दें अपनी दोस्त सुनीता सिंह को। नमस्कार।

0: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी। फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

0: सदी हो तुम, या यूं कहें वक्त की रफ्तार। कच्ची यादों से उम्मीदों के चिराग जगमगाने तक, यूं ही चलते चलते अचानक कुछ याद आ जाने तक, हर कदम पर रहे हो साथ साथ। मनोरंजन, समाज और इतिहास तुम्हारी जुबान से ही तो सुना है हमने। सदा बहार हो तुम, बेमिसाल हो तुम, देश की आवाज हो तुम।
1: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। 8:45 होने वाले हैं, कुछ ही पलों में समाचार होंगे, कृपया प्रतीक्षा करें।
2: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। भारत और ऑस्ट्रेलिया ने शांतिपूर्ण और स्थिर हिंद प्रशांत क्षेत्र के लिए रक्षा और सुरक्षा सहयोग पर संयुक्त घोषणा पत्र को स्वीकार किया। ऑस्ट्रेलिया से यूरेनियम की आपूर्ति के लिए भी समझौता हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत अधिक विकास अधिक उपलब्धि के मंत्र के साथ दुनिया की शीर्ष 3 अर्थव्यवस्थाओं में से एक बनना चाहता है। मेलबर्न में भारतीय समुदाय को संबोधित किया। राष्ट्रीय महिला आयोग ने IVF केंद्रों को नियंत्रित करने वाले नियमों और कानूनों की समीक्षा के लिए उच्च स्तरीय विशेषज्ञ समिति का गठन किया। सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के घरेलू उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए उनमें इस्तेमाल होने वाले मुख्य पुर्जों पर मूल सीमा शुल्क में छूट दी। ईरान ने अमरीका पर बुशहर परमाणु ऊर्जा संयंत्र के पास हवाई हमला करने का आरोप लगाया। जवाब में बहरीन, कुवैत और कतर में अमरीकी ठिकानों पर हमले किए। और फीफा विश्व कप के पहले क्वार्टर फाइनल में आज रात फ्रांस का मुकाबला मोरक्को से। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी एल्बनीज के बीच आज मेलबर्न में तीसरी ऑस्ट्रेलिया भारत वार्षिक शिखर वार्ता हुई। इस दौरान दोनों नेताओं ने प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता में द्विपक्षीय संबंधों को और सशक्त बनाने पर चर्चा की। दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय संबंधों में आए परिवर्तनकारी महत्वपूर्ण बदलाव का स्वागत करते हुए क्षेत्रीय स्थिरता, ऊर्जा सुरक्षा और प्रौद्योगिकी नवाचार के लिए व्यापक सहयोग ढांचे को अंतिम रूप दिया। हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति और स्थिरता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से दोनों देशों ने रक्षा और सुरक्षा सहयोग पर ऐतिहासिक संयुक्त घोषणा पत्र को स्वीकार किया। वार्षिक रक्षा मंत्रियों के संवाद को संस्थागत स्वरूप प्रदान किया तथा समुद्री सुरक्षा सहयोग का प्रारूप जारी किया।
3: हमारे मैरिटाइम सिक्योरिटी कोलैबोरेशन रोडमैप से इंडो पैसिफिक में हमारे साझा प्रयासों को नई ताकत मिलेगी। हम शिप बिल्डिंग, शिप रिपेयर और मेंटेनेंस में भी मिलकर आगे बढ़ेंगे। फ्रेंड्स, आज हमने कई क्षेत्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर भी विस्तार पूर्वक चर्चा की।
2: प्रधानमंत्री मोदी ने बताया कि दोनों देशों ने यूरेनियम आपूर्ति और महत्वपूर्ण खनिज गलियारे पर ऐतिहासिक समझौतों पर हस्ताक्षर किए।
3: पीएम सूर्यघर योजना को सपोर्ट करने के लिए हमने मिलकर गुजरात में रूपटॉप सोलर ट्रेनिंग एकेडमी बनाई है। ये एकेडमी अनेक महिलाओं और युवाओं की कैपेसिटी बिल्डिंग में योगदान देगी। न्यूक्लियर एनर्जी के क्षेत्र में आज हमने एक महत्वपूर्ण समझौता किया है। इससे

0: ऑस्ट्रेलिया से भारत को यूरेनियम सप्लाई का मार्ग खुलेगा और हमारे क्लीन एनर्जी के उद्देश्यों को नई ताकत मिलेगी।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि रणनीतिक प्रौद्योगिकी और संसाधन सुरक्षा के क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण प्रगति हुई है। इसके अंतर्गत ऑस्ट्रेलिया भारत साइबर महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकी तथा आपूर्ति श्रृंखला साझेदारी को कार्यान्वित किया गया है। बाद में प्रधानमंत्री मोदी ने ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न में मेलबर्न मीट्स मोदी कार्यक्रम में कहा कि भारत ऑस्ट्रेलिया गठबंधन नई ऊंचाइयों पर पहुंच गया है। 12 वर्षों में ऑस्ट्रेलिया की अपनी तीसरी यात्रा में प्रधानमंत्री ने 10 लाख से अधिक प्रवासी भारतीयों को द्विपक्षीय मित्रता का आधार स्तंभ बताया। श्री मोदी ने कहा कि 21वीं सदी का भारत एक विकसित राष्ट्र बनने के लक्ष्य की ओर बढ़ रहा है।
0: 21वीं सदी का भारत आज विकसित होने के लक्ष्य पर काम कर रहा है। ये वो भारत है जो कहता है ग्रो मोर अचीव मोर। हम 140 करोड़ एस्पिरेशन से भरे राष्ट्र है। हम अधीर है, बेसब्र है। हम दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती इकोनॉमी है, लेकिन हम जल्द से जल्द दुनिया की टॉप 3 इकोनॉमी बनना चाहते हैं।
1: श्री मोदी ने कहा कि भारत में चिप से लेकर जहाजों तक के विनिर्माण का तंत्र विकसित किया जा रहा है।
0: आज चिप से लेकर शिप तक मैन्युफैक्चरिंग का भारत में एक नया इकोसिस्टम डेवलप किया जा रहा है। भारत के बड़े सपनों, बड़ी एस्पिरेशंस की नींव है पीपल फर्स्ट, यानी नागरिक देवो भव का मंत्र। ये आज के भारत की गवर्नेंस का मूल मंत्र बन गया है।
1: इस अवसर पर ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज ने कहा कि इस आयोजन की ऊर्जा स्पष्ट रूप से महसूस की जा सकती है। एक रिपोर्ट।
2: भारत ऑस्ट्रेलिया के रिश्ते सामान्य कूटनीति से कहीं आगे बढ़ चुके हैं। ये मार्बल स्टेडियम में गूंजती तालियां और लोगों के उत्साह से बयां होता है। प्रधानमंत्री मोदी का एक महत्वाकांक्षी और विकसित भारत का दृष्टिकोण, जिसमें वैश्विक विनिर्माण में कामयाबी से लेकर ऑपरेशन ब्रह्मा के अंतर्गत अहम मानवीय मदद तक शामिल है, साबित करता है कि भारत मानवता के हित में लगातार काम कर रहा है। प्रधानमंत्री अल्बनीज ने ऑस्ट्रेलिया में भारतीय समुदाय को दोनों देशों के बीच महत्वपूर्ण सेतु बताया। इससे ये साफ होता है कि भारतीय समुदाय दोनों देशों की व्यवस्था और रणनीतिक रक्षा गलियारे को मजबूती दे रहा है, जिससे हमारा साझा भविष्य सुरक्षित और समृद्ध बना रहे और हम आपसी भरोसे से जुड़े रहें। मेलबर्न से सुहास राम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से शक्ति सिंह।
1: विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने आज कहा कि तीसरा वार्षिक भारत ऑस्ट्रेलिया शिखर सम्मेलन ऊर्जा सुरक्षा के क्षेत्र में भारत के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। विदेश सचिव ने संवाददाता सम्मेलन में कहा कि शिखर सम्मेलन में भारत को ऑस्ट्रेलिया से यूरेनियम की दीर्घकालिक आपूर्ति सुनिश्चित करने को अंतिम रूप दिया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ऑस्ट्रेलिया की बेहद सफल राजकीय यात्रा का कल समापन हो रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने कल ऑस्ट्रेलिया के विपक्ष के नेता एंगस टेलर से मुलाकात करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज के साथ प्रतिष्ठित मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड का दौरा करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री न्यूजीलैंड के लिए रवाना होंगे। न्यूजीलैंड में प्रवासी भारतीय समुदाय के आर्थिक योगदान पर आधारित एक रिपोर्ट आज ऑकलैंड में जारी की गई। हमारी संवाददाता ने बताया है कि इस अवसर पर न्यूजीलैंड के राजस्व और जलवायु परिवर्तन मंत्री तथा न्यूजीलैंड में भारत के उच्चायुक्त सहित कई गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे।
3: ऑकलैंड में वाइटाकरे इंडियन एसोसिएशन द्वारा आयोजित एक समारोह में न्यूजीलैंड में बसे भारतीय समुदाय के आर्थिक योगदान पर आधारित एक रिपोर्ट जारी की गई। इस रिपोर्ट में न्यूजीलैंड की अर्थव्यवस्था में भारतीय समुदाय की बढ़ती भागीदारी और उसके व्यापक आर्थिक प्रभाव का आकलन किया गया है। रिपोर्ट में बताया गया है कि भारतीय समुदाय उद्यमिता, सूचना प्रौद्योगिकी, स्वास्थ्य, शिक्षा, आतिथ्य, खुदरा व्यापार तथा अन्य क्षेत्रों में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। रिपोर्ट के प्रमुख निष्कर्ष प्रस्तुत करते हुए इन्फोमेट्रिक्स के मुख्य कार्यकारी अधिकारी ब्रेड ऑल्सन ने कहा कि भारतीय समुदाय न्यूजीलैंड के सबसे तेजी से आगे बढ़ने वाले समुदायों में से एक है। मंजू मीना, आकाशवाणी समाचार, ऑकलैंड।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
1: निक्षय मित्र इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
2: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। राष्ट्रीय महिला आयोग ने IVF केंद्रों को नियंत्रित करने वाले नियमों और कानूनों की समीक्षा के लिए उच्च स्तरीय विशेषज्ञ समिति का गठन किया है। इस समिति का गठन सहायक प्रजनन प्रौद्योगिकी ART क्षेत्र में अनियमितताओं के कारण किया गया। ये समिति IVF क्लिनिक, ART केंद्रों और गैमीट बैंकों को नियंत्रित करने वाले नियामक ढांचे और संबंधित कानूनों की व्यापक समीक्षा करेगी। इसमें महिलाओं के प्रजनन अधिकारों, गरिमा और सुरक्षा की रक्षा पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। दिल्ली उच्च न्यायालय की पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति आशा मेनन इस विशेषज्ञ समिति की अध्यक्षता करेंगी। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन ने आज कहा कि वर्ष 2047 तक भारत को एक विकसित राष्ट्र बदलने के लिए बुनियादी विज्ञान में मजबूत आधार होना अत्यंत आवश्यक है। भुवनेश्वर में राष्ट्रीय विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्थान के 15वें दीक्षांत समारोह को संबोधित करते हुए उन्होंने ये बात कही। एक रिपोर्ट।
3: उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन ने कहा कि वैज्ञानिक क्षमता विकसित भारत की आधारशिला है। नाइजर के 15वें दीक्षांत समारोह को संबोधित करते हुए उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था बनाने, राष्ट्रीय सुरक्षा को मजबूत करने और टिकाऊ विकास सुनिश्चित करने के लिए बुनियादी विज्ञान में मजबूत नींव का होना बहुत जरूरी है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि ये ऐसे युवा शोधकर्ताओं को तैयार कर रहा है जो जलवायु परिवर्तन, सार्वजनिक स्वास्थ्य आपात स्थितियों, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और क्वांटम टेक्नोलॉजी जैसे उभरती वैश्विक चुनौतियों का सामना करने में सक्षम है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
2: महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने आज राज्य में समान नागरिक संहिता UCC लागू करने के लिए रूपरेखा तैयार करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय की पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति रंजना देसाई की अध्यक्षता में 7-सदस्यीय समिति के गठन की घोषणा की। प्रस्तावित कानून में धर्म की परवाह किए बिना विवाह, तलाक, विरासत, उत्तराधिकार और गोद लेने जैसे मामलों को शामिल किए जाने की उम्मीद है। उन्होंने कहा कि समिति राज्य सरकार को अपनी सिफारिशें सौंपने से पहले प्रस्तावित कानून के कानूनी, संवैधानिक और सामाजिक पहलुओं की जांच करेगी। सरकार ने स्मार्टफोन, लैपटॉप, पहनने योग्य स्मार्ट उपकरणों और स्मार्ट टीवी जैसे इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के निर्माण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से डिस्प्ले असेंबली, लिथियम आयन सेल और इंडक्टर कॉइल मॉड्यूल के निर्माण में उपयोग होने वाले सामान पर मूल सीमा शुल्क में छूट देने का फैसला किया है। ईरान ने अमेरिका पर आज बुशहर परमाणु ऊर्जा संयंत्र के पास हवाई हमला करने का आरोप लगाया। ईरान की सरकारी समाचार एजेंसी ने बताया कि ये कार्रवाई उस पर हमले समाप्त करने की अमेरिकी सेना की घोषणा के कुछ घंटों बाद हुई। अमेरिकी केंद्रीय कमान ने इसकी पुष्टि नहीं की है। अमेरिका ने आज सुबह ईरान पर फिर हवाई हमले किए। ईरान ने भी खाड़ी क्षेत्र में अमेरिका के सहयोगी देशों को निशाना बनाकर जवाबी कार्रवाई की। ईरानी मिसाइलों ने कुवैत और कतर को निशाना बनाया। इन हमलों से पश्चिम एशिया में युद्ध समाप्त करने का अंतरिम समझौता खतरे में पड़ गया है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं।
4: ये आकाशवाणी है। मौसम विभाग ने बताया है कि दक्षिण पश्चिम मानसून ने पूरे देश को अपनी चपेट में ले लिया है। उत्तराखंड में कल तेज वर्षा और कुछ स्थानों पर मूसलाधार वर्षा की चेतावनी जारी की है। अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई क्षेत्रों, सिक्किम तथा उत्तर प्रदेश के कुछ भागों में शुक्रवार को तेज वर्षा होगी। फीफा फुटबॉल विश्व कप के क्वार्टर फाइनल मुकाबले आज से शुरू हो रहे हैं। पहले मुकाबले में आज रात 1:30 बजे बोस्टन में फ्रांस का सामना मोरक्को से होगा। वहीं दूसरे क्वार्टर फाइनल मुकाबले में कल देर रात स्पेन और बेल्जियम आमने सामने होंगे। भारत और इंग्लैंड के बीच चौथा T20 मैच आज रात 10 बजे से ब्रिस्टल में खेला जाएगा।

0: मैचों की श्रृंखला में 2-0 से पीछे भारतीय टीम को सीरीज ड्रॉ कराने के लिए हर हाल में आज का मैच जीतना होगा। विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट में चेक गणराज्य की कैरोलिना मुखोवा ने महिला सिंगल्स के फाइनल में प्रवेश कर लिया है। कैरोलिना ने सेमीफाइनल में अमेरिका की कोको गॉफ को हराया। दूसरे सेमीफाइनल में मार्टा कोच्यूक का मुकाबला लिंडा नोस्कोवा से होगा। पुरुष सिंगल्स के सेमीफाइनल मुकाबले कल खेले जाएंगे। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत और ऑस्ट्रेलिया ने स्वतंत्र और मुक्त हिंद प्रशांत क्षेत्र के लिए रक्षा और सुरक्षा सहयोग पर संयुक्त घोषणा पत्र स्वीकार किया। ऑस्ट्रेलिया से यूरेनियम की आपूर्ति के लिए भी समझौता हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत अधिक विकास अधिक उपलब्धि के मंत्र के साथ दुनिया की शीर्ष 3 अर्थव्यवस्थाओं में शामिल होने का इच्छुक। मेलबर्न में भारतीय समुदाय को संबोधित किया। राष्ट्रीय महिला आयोग ने आईवीएफ केंद्रों को नियंत्रित करने वाले नियमों और कानूनों की समीक्षा के लिए उच्च स्तरीय विशेषज्ञ समिति का गठन किया। सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के घरेलू उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए उनमें इस्तेमाल होने वाले मुख्य पुर्जों पर मूल सीमा शुल्क में छूट दी। ईरान ने अमरीका पर बुशहर परमाणु ऊर्जा संयंत्र के पास हवाई हमला करने का आरोप लगाया। जवाब में बहरीन, कुवैत और कतर में अमरीकी ठिकानों पर हमले किए। और फीफा विश्व कप के पहले क्वार्टर फाइनल में आज रात फ्रांस का मुकाबला मोरक्को से। इसके साथ ही समाचार संध्या का यंग समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी। आई एम अनुजा कुमार विद न्यूज एट 9। The headlines. India and Australia adopt a joint declaration on defense and security cooperation to ensure free and open Indo-Pacific. Also ink deal for supply of uranium from Australia. Prime Minister Narendra Modi says India aspires to be one of world's top three economies, driven by motto of grow more, achieve more, addresses Indian diaspora in Melbourne. National Commission for Women forms a high-level expert committee to review regulatory framework and laws governing IVF clinics. Government waives basic customs duty on key components used in electronic devices to promote their domestic production. Iran accuses US of conducting airstrike near Bushehr nuclear power plant, attacks US bases in Bahrain, Kuwait and Qatar. And in FIFA World Cup, France to face Morocco in the first quarterfinal at Boston in US tonight. And now the news in detail. India and Australia today adopted a new joint declaration on defense and security cooperation and a maritime security collaboration roadmap to promote a free, open and inclusive Indo-Pacific. The deal was signed following delegation-level talks between Prime Minister Narendra Modi and his Australian counterpart Anthony Albanese during the third Australia-India Annual Leaders Summit in Melbourne. In a joint press statement after the talks, Prime Minister Modi said the Indo-Pacific is not just a meeting point of two oceans, but showcases the shared aspirations of like-minded democracies like India and Australia.
2: हमारे मैरिटाइम सिक्योरिटी कोलैबोरेशन रोडमैप से इंडो पैसिफिक में हमारे साझा प्रयासों को नई ताकत मिलेगी। हम शिप बिल्डिंग, शिप रिपेयर और मेंटेनेंस में भी मिलकर आगे बढ़ेंगे। फ्रेंड, आज हमने कई क्षेत्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर भी विस्तार पूर्वक चर्चा की।
1: Later, briefing the media, Foreign Secretary Vikram Misri said both sides finalized the administrative arrangement for a long-term supply of Australian uranium to India. The agreement is expected to strengthen India's clean energy program and support its net zero goals.
3: The two countries have similar aspirations and a shared approach to ensure a free, open and prosperous Indo-Pacific region. One of the key outcomes today, adoption of the Joint Declaration on Defense and Security Cooperation, as well as an India-Australia Maritime Security Collaboration Roadmap. We also have the administrative arrangement for enabling the supply of uranium from Australia to India.
1: The Foreign Secretary

0: Norway will play against England, while defending champions Argentina will clash with Switzerland on Sunday morning. In Wimbledon tennis, Karolina Muchová of Czech Republic has reached women's singles final. 10th seed Muchová defeated 7th seed American player Coco Gauff in the first semi-final of the women's singles this evening. Later in the second semi-final, Ukraine's Marta Kocyuk will take on Czech player Linda Noskova. And in men's cricket, India will face England in the 4T20 International of the 5-match series at the County Ground in Bristol tonight. The match will begin at 10 p.m. Indian Standard Time. The Indian team trailed the series 0-2, making this a must-win game to stay alive. And now, before we end the bulletin, the headlines once again. India and Australia adopt a joint declaration on defence and security cooperation to ensure free and open Indo-Pacific. Also ink deal for supply of uranium from Australia. Prime Minister Narendra Modi says India aspires to be one of the world's top three economies, driven by the motto of Grow More, Achieve More, addresses Indian diaspora in Melbourne. National Commission for Women forms a high-level expert committee to review regulatory framework and laws governing IVF clinics. Government waives basic customs duty on key components used in electronic devices to promote their domestic production. Iran accuses US of conducting airstrike near Bushehr nuclear power plant, attacks US bases in Bahrain, Kuwait and Qatar. And in FIFA World Cup, France to face Morocco in the first quarterfinal at Boston in US tonight. That is all in the news at 9. Good night.
1: Ada. ये आकाशवाणी है, खबरों के साथ मैं शमीम अहमद। भारत और ऑस्ट्रेलिया ने आजाद और खुले भारत बहरुल काहिल को यकीनी बनाने के सिलसिले में दिफा और सिक्योरिटी तावुन के एक मुश्तरका ऐलानिए पर दस्तखत किए हैं। ऑस्ट्रेलिया से यूरेनियम की सप्लाई के लिए भी एक समझौता किया गया है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत ज्यादा तरक्की करो, ज्यादा हुसूलयाबी करो के नज़्बुल ऐन से मुतासिर होकर दुनिया की तीन आला तरीन मईशतों में से एक बनने की ख्वाहिश रखता है। उन्होंने मेलबर्न में भारतीय बिरादरी से भी खिताब किया। ख्वातीन के कौमी कमीशन ने आला सतह की माहिरीन की एक कमेटी तश्कील दी है, जो IVF क्लिनिक के जवाबित से मुतालिक फ्रेमवर्क और उनके सिलसिले में कवानीन का जायजा लेगी। हुकूमत ने इलेक्ट्रॉनिक आलात में इस्तेमाल होने वाली अहम अशिया पर बुनियादी कस्टम ड्यूटी खत्म कर दी है, ताकि मुल्क में उनकी मैन्युफैक्चरिंग को फरोग दिया जा सके। ईरान ने अमेरिका पर इल्जाम लगाया है कि उसने बुशहर न्यूक्लियाई बिजली के प्लांट के नजदीक फजाई हमला किया। उसने बहरीन, कुवैत और कतर में अमरीकी बेसिस पर हमले किए। और फीफा आलमी कप में अमरीका के बोस्टन में आज रात पहले क्वार्टर फाइनल में फ्रांस और मराकश आमने सामने होंगे। वजीर आजम नरेंद्र मोदी और ऑस्ट्रेलिया के उनके हम मनसब ने मेलबर्न में आज तीसरी ऑस्ट्रेलिया भारत सालाना लीडर समिट में शिरकत की, जिसके दौरान दोनों लीडरों ने वफ्द की सतह की बातचीत की, जिसका मकसद बाहमी ताल्लुकात को मजबूत करना था। भारत बहरुल काहिल में अमनो इस्तेहकाम कायम करने की गरज से दोनों लीडरों ने दिफा और सिक्योरिटी तावुन के सिलसिले में संगे मील की हैसियत रखने वाले एक मुश्तरका ऐलानिए पर दस्तखत किए। नीज सालाना वज़राए दिफा के मुज़ाकरात की बुनियाद रखी और समुद्री सरहद की सिक्योरिटी में शराकत दारी के मुत्तहिदा लाहे अमल का इफ्तिताह किया। वजीर आजम मोदी ने भारत और ऑस्ट्रेलिया को दरख्शां जमहूरियत और अहम तरीन समुद्री ताकत करार दिया।
2: हमारे मैरिटाइम सिक्योरिटी कोलैबोरेशन रोडमैप से इंडो पैसिफिक में हमारे साझा प्रयासों को नई ताकत मिलेगी। हम शिप बिल्डिंग, शिप रिपेयर और मेंटेनेंस में भी मिलकर आगे बढ़ेंगे। फ्रेंड, आज हमने कई क्षेत्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर भी विस्तार पूर्वक चर्चा की।
1: मुज़ाकरात के बाद एक मुश्तरका प्रेस बयान में वजीर आजम मोदी ने कहा कि दोनों मुल्कों ने न्यूक्लियाई तवानाई के शोबे में एक अहम माहदे पर दस्तखत किए हैं, जिसकी रूह से ऑस्ट्रेलिया भारत को यूरेनियम सप्लाई कर सकेगा। उन्होंने साइबर, अहम तरीन टेक्नोलॉजी और सप्लाई चेन्स के सिलसिले में ऑस्ट्रेलिया भारत शराकत दारी और एक मखसूस अहम तरीन मिनरल्स कॉरिडोर को शुरू करने का भी ऐलान किया।
2: आज हमने एक महत्वपूर्ण समझौता किया है, इससे ऑस्ट्रेलिया से भारत को यूरेनियम सप्लाई

0: का मार्ग खुलेगा और हमारे क्लीन एनर्जी के उद्देश्यों को नई ताकत मिलेगी। क्रिटिकल मिनरल्स में हमारा सहयोग हमारी स्ट्रेटेजिक सिक्योरिटी और क्लीन एनर्जी ट्रांजिशन के लिए महत्वपूर्ण है।
1: बाद में आज वजीर आजम मोदी ने कहा कि भारत ज्यादा तरक्की करो ज्यादा हुसूलियाबी करो के नजबुल ऐन से मुतासिर होकर दुनिया की आला तरीन तीन मईशतों में से एक बनने की ख्वाहिश रखता है। मेलबर्न में भारतीय बिरादरी से खिताब करते हुए जनाब मोदी ने भारत की इख्तिसादी और तकनीकी पेशरफ्त को उजागर किया।
0: 21वीं सदी का भारत आज विकसित होने के लक्ष्य पर काम कर रहा है। ये वो भारत है जो कहता है ग्रो मोर एचीव मोर। हम 140 करोड़ एस्पिरेशन से भरे राष्ट्र है। हम अधीर है, बेसब्र है। हम दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती इकोनॉमी है, लेकिन हम जल्द से जल्द दुनिया की टॉप 3 इकोनॉमी बनना चाहते हैं।
1: बाहमी शराकतदारी के लिए भारतीय बिरादरी को क्रेडिट देते हुए जनाब मोदी ने साफ लफ्जों में कहा कि भारत और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान ताल्लुकात आला तरीन बुलंदियों तक पहुंच चुके हैं। मैन्युफैक्चरिंग के एक ऐसे इकोसिस्टम का जिक्र करते हुए जो चिप्स से शिप्स तक फैला हुआ है, उन्होंने कहा कि मेक इन इंडिया इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोबाइल और अदवियात साजी के तमाम शुबों में एक आलमी ब्रांड है। कलीदी नौयत की सिक्योरिटी और इख्तिरात की तरफ तवज्जो करते हुए वजीर आजम ने भारत के अपने घरेलू दिफाई प्लेटफॉर्म्स पर आलमी भरोसेमंदी को उजागर किया। उन्होंने बिलखसूस ऑपरेशन सिंदूर के तहत इंसदाद दहशतगर्दी के मुतय्यन शुदा निशानों का जिक्र किया।
0: भारत के डिफेंस प्लेटफॉर्म की कैपेबिलिटी और क्रेडिबिलिटी दुनिया देख रही है। आपने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान डेमो तो देख ही लिया होगा, धमाके आतंकियों के अड्डों पर हो रहे थे और गुंज पूरी दुनिया में सुनाई दे रही थी।
1: इस मौके पर खिताब करते हुए ऑस्ट्रेलिया के वजीर आजम एंथनी अल्बनीज ने भारतीय बिरादरी को कसीर सकाफती पावर हाउस कहकर उसकी सताइश की जो ऑस्ट्रेलिया की खुशहाली को आगे बढ़ाने में मुआविन है। उन्होंने भारतीय बिरादरी को एक कतई लिविंग ब्रिज कहकर उसकी तहसीन की। ये ऐसा पुल है जो कभी न रुकने वाली शराकतदारी की बुनियाद फराहम करता है। पेश है एक रिपोर्ट।
2: मार्वल स्टेडियम के अंदरून तहसीन सताइश के बुलंद नारे एक बुनियादी हकीकत की बाजगश थे कि भारत ऑस्ट्रेलिया के ताल्लुकात उमूमी सफारतकारी से बहुत ज्यादा बुलंदी इख्तियार कर चुके हैं। वजीर आजम मोदी का ऑपरेशन ब्रह्मा के तहत एक उमंगों भरे तरक्की याफ्ता भारत जो आलमगीर मैन्युफैक्चरिंग फतूहात से आगे बढ़कर इंतहाई अहम नौयत की इंसानियत नवाजी पर मबनी इकदाम का तस्वुर है, यह साबित करता है कि एक मजबूत भारत पूरी इंसानियत की खिदमत अंजाम देता है। जैसा कि वजीर आजम अल्बानीज ने जोश व खरोश से भरपूर इस बिरादरी को कतई तौर पर खलीज को पाटने वाला लिविंग ब्रिज कहकर एजाज से नवाजा, जिससे ये बिल्कुल वाजह है कि भारतीय बिरादरी दोनों मुल्कों के इकतसादी इंजनों और कलीदी दिफाई राहदारियों को सरगर्म तौर पर ताउन दे रही है। मेलबर्न से सुहास राम की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मैं मोहम्मद अम्मार।
1: मेलबर्न में मीडिया से बातचीत करते हुए खारजा सेक्रेटरी विक्रम मिश्री ने कहा कि भारत और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान ताल्लुकात हमजहत नौयत के और तेजी से पेशरफ्त कर रहे हैं। ब्रिक्स मुल्कों की ख्वातीन वज़रा की मीटिंग आज कोची में ख़त्म हो गई। ख्वातीन और बच्चों की नशोनुमा की मरकजी वजीर अन्नपूर्णा देवी ने इख्तितामी इजलास से खिताब करते हुए कहा कि ब्रिक्स ममालिक में ख्वातीन की नशोनुमा से मुतालिक कई मुश्तरक मसाइल पाए जाते हैं। उन्होंने कहा कि ये मुश्तरक मसाइल ब्रिक्स ख्वातीन वज़रा ट्रैक जैसे प्लेटफॉर्म की इंतहाई अहमियत को उजागर करते हैं ताकि मेम्बर मुल्कों के दरमियान मुज़ाकरात को आगे बढ़ाया जाए और तआवुन को मुस्तहकम किया जाए। पेश है एक रिपोर्ट।
3: ब्रिक्स खवातीन उजरा की मीटिंग कोची में इख्तिताम पजीर हुई, जिसमें पहली मरतबा खवातीन उजरा के प्लेटफॉर्म की जानिब से एक मुश्तरका ऐलामिया मंजूर किया गया। ये ब्रिक्स रुकन ममालिक के दरमियान खवातीन की क्यादत में तरक्की के फरोग के लिए बाहमी ताउन को मजबूत बनाने की सिमत एक अहम संग मील है। 6 जुलाई से शुरू हुई 4 रोजा मीटिंग में ब्रिक्स खवातीन वर्किंग ग्रुप का इजलास और ब्रिक्स खवातीन उजरा का इजलास शामिल था। मीटिंग में भारत की जानिब से पेश किए गए ब्रिक्स डिजिटल खजीना और ब्रिक्स डिजिटल सलाहियत साजी के रहनुमा उसूलों की तजावीज का खैर मकदम किया गया। इसके अलावा इस अज़्म का इरादा किया गया कि ख्वातीन की क़यादत में तरक्की

0: मैच में आज रात ब्रिस्टल के काउंटी ग्राउंड में भारत का मुकाबला इंग्लैंड से होगा। भारतीय वक्त के मुताबिक मैच रात 10 बजे शुरू होगा। भारतीय टीम सीरीज में 0-2 से पीछे है। गेम में अपने आप को बरकरार रखने के लिए इस मैच में जीत हासिल करनी जरूरी है। और आखिर में बुलेटिन की खास खास खबरें एक बार फिर। भारत और ऑस्ट्रेलिया ने आजाद और खुले भारत बहरुल काहिल को यकीनी बनाने के सिलसिले में दिफा और सिक्योरिटी तआवुन के एक मुश्तरका ऐलानिए पर दस्तखत किए हैं। ऑस्ट्रेलिया से यूरेनियम की सप्लाई के लिए भी एक समझौता किया गया है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत ज्यादा तरक्की करो ज्यादा हुसूलियाबी करो के नज़्बुल ऐन से मुतासर होकर दुनिया की 3 आला तरीन मईशतों में से एक बनने की ख्वाहिश रखता है। उन्होंने मेलबर्न में भारतीय बिरादरी से भी खिताब किया। ख्वातीन के कौमी कमीशन ने आला सतह की माहिरीन की एक कमेटी तश्कील दी है जो IVF क्लिनिक के जवाबिस से मुतालिक फ्रेमवर्क और उनके सिलसिले में कवानीन का जायजा लेगी। इसी के साथ खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।
1: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। लीजिए प्रस्तुत है फिल्म संगीत का कार्यक्रम। फिल्म संगीत के इस कार्यक्रम में अपने सभी सुनने वालों का बहुत बहुत स्वागत करती हूं। मैं सुनीता सिंह, स्वीकार कीजिए मेरा प्यार भरा नमस्कार। श्रोताओं, सिनेमा का रुपहला पर्दा समय का वो उजाला है जहां प्रकाश और छाया मिलकर जीवन का महाकाव्य रचते हैं। इस विराट कैनवस पर कुछ कलाकार रंग भरते हैं, कुछ कथाएं लिखते हैं और कुछ ऐसे बिरले सर्जक होते हैं जो हर फ्रेम को कविता बना देते हैं, जिनकी दृष्टि कैमरे की आंख से आगे जाकर मनुष्य के मन को पढ़ती है, जिनकी फिल्मों में संगीत बोलता है, सन्नाटा गाता है और संवेदनाएं आकार लेती हैं। ऐसे ही अप्रतिम सिने शिल्पी थे गुरुदत्त, अभिनेता, निर्देशक, निर्माता और कला के अद्वितीय साधक। उन्होंने फिल्मों को केवल मनोरंजन का माध्यम नहीं रहने दिया, बल्कि उन्हें मानवीय संवेदनाओं, सौंदर्य और विचारों का शाश्वत दस्तावेज बना दिया। आज उनके जन्मदिन पर आइए उनके सृजन संसार में प्रवेश करते हैं और सुनते हैं उनकी फिल्मों के कुछ गीत।

श्रोताओं, 9 जुलाई 1925 को जन्मे गुरुदत्त का जीवन संघर्षों की धूप में तपकर निखरा। कोलकाता से मुंबई तक का उनका सफर केवल सफलता की कहानी नहीं है, बल्कि कला के प्रति अदम्य समर्पण का इतिहास है। नृत्य से आरंभ हुई उनकी साधना बहुत जल्द अभिनय और निर्देशन तक पहुंची और फिल्मबाजी ने भारतीय सिनेमा को एक ऐसे निर्देशक से परिचित कराया जिसकी दृष्टि समय से बहुत आगे की थी।

श्रोताओं, गुरुदत्त कैमरे के नहीं भावनाओं के निर्देशक थे। प्रकाश और छाया का उनका प्रयोग आज भी विश्व भर के फिल्म विद्यार्थियों के लिए अध्ययन का विषय है। उनका हर फ्रेम किसी चित्रकार की तूलिका का स्पर्श लिए दिखाई देता है और हर दृश्य कविता की तरह मन में उतर जाता है। अभिनेता के रूप में गुरुदत्त ने कभी अभिनय का प्रदर्शन नहीं किया, उन्होंने पात्रों को आत्मसात किया। उनकी आंखों की खामोशी कई बार लंबे संवादों से कहीं अधिक प्रभाव छोड़ जाती थी। फिल्मी दुनिया में उन्होंने फिल्मों का निर्माण किया, निर्देशन किया, अभिनय किया और कई बार अबरार अलवी के साथ फिल्में लिखी भी। जो भी काम उन्होंने किया वो बेमिसाल रहा।

श्रोताओं, एक निर्माता के रूप में गुरुदत्त जोखिम उठाने से कभी भी हिचकिचाए नहीं। वो नई प्रतिभाओं पर विश्वास करते थे, श्रेष्ठ लेखन, संगीत और अभिनय को हमेशा प्राथमिकता देते थे। उनकी फिल्मों में लोकप्रियता और गुणवत्ता का अद्भुत संतुलन दिखाई देता है। मिस्टर एंड मिसेस 55 इसी दृष्टि का एक अच्छा उदाहरण है।

श्रोताओं, गुरुदत्त के सृजन संसार में अगर हम प्रवेश करते हैं तो आर पार मिस्टर एंड मिसेस 55, काला बाजार, चौदवी का चांद, साहब बीबी और गुलाम, भरोसा, सुहागन, जाल, बाजी बाज, सौतेला भाई, ऐसी कई फिल्में हमें नजर आती हैं। लेकिन दो फिल्मों के जिक्र के बगैर उनके सृजन की बात पूरी नहीं हो सकती है, और वो फिल्में हैं प्यासा और कागज के फूल। प्यासा केवल एक फिल्म नहीं, भारतीय सिनेमा की आत्मा मानी जाती है। 1957 में प्रदर्शित इस कृति ने समाज संवेदनाओं और एक कलाकार की पीड़ा को जिस गहराई से अभिव्यक्त किया, उसने विश्व सिनेमा को भी चकित कर दिया। आज अनेक अंतर्राष्ट्रीय समीक्षक और फिल्म संस्थान इसे विश्व की सर्वश्रेष्ठ फिल्मों में स्थान देते हैं।

प्यासा की तरह ही अनमोल कृति है कागज के फूल। कागज के फूल उस कलाकार की कहानी है जो अपनी ही रचना के भीतर अकेला पड़ जाता है। अपने समय में ये फिल्म व्यावसायिक सफलता नहीं पा सकी थी, लेकिन समय ने इसके मूल्य को पहचाना। आज इसे विश्व सिनेमा की क्लासिक फिल्मों में गिना जाता है। इसकी सिनेमाटोग्राफी और प्रकाश छाया का प्रयोग आज भी फिल्म निर्माण की पाठ्यपुस्तकों में पढ़ाया जाता है।

श्रोताओं, गुरुदत्त का विश्वास था कि सिनेमा तभी महान बनता है जब हर कलाकार को अपनी प्रतिभा के साथ खिलने का अवसर मिले। एक निर्माता के रूप में उन्होंने अनेक नई प्रतिभाओं को मंच दिया और ऐसी फिल्मों का निर्माण किया जो लोकप्रिय होने के साथ साथ कलात्मक भी थीं। उनकी इसी दृष्टि ने भारतीय सिनेमा को नई ऊंचाइयां दीं।

श्रोताओं, गुरुदत्त की कालजयी फिल्मों में से एक फिल्म और थी साहेब बीवी और गुलाम। ये फिल्म भारतीय सिनेमा की अमूल्य धरोहर है। इस फिल्म को फिल्मफेयर अवार्ड्स में व्यापक सम्मान मिला और इसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी बहुत सराहा गया। गुरुदत्त स्वयं अपने जीवन काल में जितने सम्मान के अधिकारी थे, उससे कहीं अधिक सम्मान उनकी कृतियों को समय ने दिया। और सच तो यह है कि यही किसी सच्चे कलाकार की सबसे बड़ी उपलब्धि होती है।

श्रोताओं, गुरुदत्त केवल एक नाम नहीं, भारतीय सिनेमा की संवेदना है। उन्हें मरणोपरांत वो प्रतिष्ठा मिली जो बिरले कलाकारों के हिस्से आती है। उनकी फिल्मों को विश्व के प्रदनी की तरह उतर जाती है।

0: सपनों को दें हम आकार।
1: इस वक्त आप हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश के साथ। लीजिए अब सुनिए फरमाइशी फिल्म संगीत का कार्यक्रम आपकी फरमाइश।

फरमाइशी फिल्म संगीत के इस कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ मैं सुनीता सिंह। स्वीकार कीजिए मेरा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, ढलती हुई रात है और हम और आप साथ हैं। जी हाँ, और हमारे साथ हैं आपके बहुत सारे खत। इन खतों में हैं आपकी पसंद, आपकी फरमाइश। इन फरमाइशों के साथ आधे घंटे का एक सफर हम सजाने जा रहे हैं, क्योंकि ये कार्यक्रम है आपकी फरमाइश। तो आइए कार्यक्रम का पहला गीत आपको सुनवाते हैं। फिल्म का नाम है खानदान, आवाज लता मंगेशकर की है, बोल नक्श लालपुरी के हैं और धुन खयाम की। सुनने के ख्वाहिशमंद हैं भाटापारा दतरेंगी से द्वारिका प्रसाद वर्मा, किशोर कुमार वर्मा, दीपक कुमार वर्मा और झावेंद्र कुमार वर्मा। पेंड्रा छत्तीसगढ़ से दीपक कुमार, रोशन कुमार, बंशीलाल, रेखा देवी, श्वेता देवी, दिशा और लवी श्रीवास्तव। भिलाई छत्तीसगढ़ से इसी गीत को पसंद करते हैं मुकेश शर्मा, सरिता शर्मा, गौरव शर्मा और गरिमा शर्मा। राजकोट से मधुसूदन भट्ट, आरती, पूजा, जैस्मिन और प्रयागराज भट्ट। और प्रमिलागंज आलोट जिला रतलाम से ये चिट्ठी आई है। लिखने वाले हमारे श्रोता हैं बलवंत कुमार वर्मा, राजूबाई, माया वर्मा, शोभा वर्मा, राहुल, ज्योति और अतुल। तो आप सबकी फरमाइश पर आइए सुनते हैं लता मंगेशकर की आवाज में खानदान फिल्म का ये गीत।

श्रोताओं, अगले गीत से पहले एक सूचना सुनिए। पुलिस आयुक्त नगरीय पुलिस भोपाल द्वारा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के अंतर्गत जन सुरक्षा एवं कानून व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से आदेश जारी किया गया है। सभी नागरिकों से अपील की जाती है कि फेसबुक, व्हाट्सएप, एक्स, इंस्टाग्राम, यूट्यूब तथा अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का उपयोग पूरी जिम्मेदारी और सावधानी के साथ करें। किसी भी प्रकार की भ्रामक अफवाह फैलाने वाली, धार्मिक, सामाजिक, जातीय अथवा सांप्रदायिक भावनाओं को भड़काने वाली पोस्ट, फोटो, वीडियो, ऑडियो या संदेश का प्रसारण, साझा, लाइक, कमेंट अथवा फॉरवर्ड न करें। किसी भी अपुष्ट या भ्रामक जानकारी को बिना सत्यापन के प्रसारित करना कानून व्यवस्था के लिए गंभीर चुनौती बन सकता है। सोशल मीडिया पर ऐसी किसी भी सामग्री का प्रचार प्रसार जिससे समाज में वैमनस्य, तनाव, भय या अशांति फैलने की संभावना हो, पूर्णतः प्रतिबंधित है। यदि किसी ग्रुप के एडमिन को इस प्रकार की सामग्री प्राप्त होती है तो उसे तत्काल हटाने और संबंधित सदस्य को ऐसा करने से रोकने की जिम्मेदारी उसकी होगी। इसके अतिरिक्त किसी भी व्यक्ति या समुदाय के विरुद्ध घृणा, हिंसा या भेदभाव फैलाने वाले संदेशों का प्रसारण नहीं किया जाएगा। अफवाहों, फर्जी समाचारों अथवा तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर प्रस्तुत करने वाली सामग्री को लाइक, शेयर या फॉरवर्ड करने से भी बचें। नागरिकों से अपेक्षा है कि वो केवल प्रामाणिक तथा विश्वसनीय स्रोतों से प्राप्त जानकारी पर ही विश्वास करें और किसी भी संदिग्ध सूचना की जानकारी तत्काल पुलिस अथवा संबंधित प्रशासनिक अधिकारियों को दें। पुलिस आयुक्त द्वारा जारी ये संदेश तत्काल प्रभाव से लागू किया गया है। आदेश का उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 तथा अन्य प्रासंगिक विविध प्रावधानों के अंतर्गत आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। भोपाल पुलिस सभी नागरिकों से शांति, सौहार्द तथा सामाजिक सद्भाव बनाए रखने तथा जिम्मेदार नागरिक होने का परिचय देने की अपील करती है। सूचना समाप्त हुई और अब आपकी फरमाइश कार्यक्रम में आइए बढ़ते हैं आगे। कार्यक्रम का अगला गीत आपको सुनवाते हैं। फिल्म का नाम है चंबल की कसम। आवाजें लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की हैं। गीतकार हैं साहिर लुधियानवी और संगीतकार हैं खयाम। अनुरोध आप सबका है। कंवर कॉलोनी बड़वाह से प्रवीण श्रीमाली, मीना श्रीमाली, आदित्य, अदिति, शिवानी और मीनू राज श्रीमाली। महादेव घाट अमलेश्वर से डोमन ठाकुर, सुमन ठाकुर, मिथिलेश ठाकुर, तारिणी ठाकुर, सूरज, ज्योति, रियांश, गुड़िया और इनके परिवार के सभी सदस्य। ये खताया है ग्राम आमा खोडरा, पोस्ट रेंगाखार, जिला कबीरधाम से। लिखने वाले हमारे श्रोता हैं देवी सिंह नेताम, राजेंद्र, कृष्णा, चंद्रदीप, संदीपा, दक्ष, प्रिया नेताम। लच्छनपुर से रामजी साहू, जीवनलाल रजक, निम्मी, शिवम, सतीश, मुकेश। और मोटक्का माफी जिला खंडवा से जगन्नाथ पटेल, कमला पटेल, अंतिम, ज्योति, ललित, मनीषा, शुभम, देवी किशन, भावना, कनिका, आदित्य, मानस पटेल और मन पटेल।

हसरतों से भरे दिल रोक लेना चाहते हैं वक्त को, लेकिन वक्त भला कब रुका है रोके से। वक्त चलता है, सपने पलते हैं और जिंदगी जिंदगी को बुलाती है अपने घर। आइए एक ऐसा ही गीत आपको सुनवाते हैं सुदर्शन फाकिर का लिखा हुआ, जयदेव ने इसे संगीतबद्ध किया है। फिल्म का नाम है दूरियां और आवाजें भूपेंद्र और अनुराधा पौडवाल की हैं। पसंद आप सबकी है। सौगा धमतरी से फनेश कुमार चंदन, सावित्री देवी चंदन, मोहित और गजेंद्र। नागर कोहरा से झग्गर राम साहू, जामुन देवी साहू, राजू और लल्ला साहू। चार मीनार चौक गंडई पंडरिया से दरियाना मल, पार्वती मोटवानी, राजेश रेशम, मुकेश भावना, सोमेश और यशराज। खंडवा से संजय पंचोलिया, प्रियंका पंचोलिया, गुनगुन संप्रीत, हेमंत और सन्मति पंचोलिया। और तिलदा छत्तीसगढ़ से इसी गीत को पसंद करते हैं प्रदीप कुमार चंद्र, सीमा रानी, प्रिया ओशीम और सोमेन कुमार चंद्र।

जिंदगी की आमद जिंदगी में और जैसे वक्त को पर लग जाते हैं, जहां मुलाकातें हैं, बातें हैं, साथ हैं, सपने हैं, लेकिन मन है कि भरता ही नहीं। जमी चांद सी है, बातें फूलों सी, जिंदगी कोई गीत मोहब्बत का। एक ऐसा ही गीत अब आपको सुनवाते हैं, आवाज तलत अजीज की है, उमराव जान फिल्म का नाम है, शहरयार इसके लिखने वाले हैं और धुन खय्याम की। पसंद आप सबकी है। मुंगेली से उत्तरा कुमार दिवाकर, परमेश्वरी योगिता, नितिन और वंशिका। आदर्श नगर मलोट पंजाब से राज शर्मा, मीना, योगेश और सौरभ शर्मा। सिंहपुर बड़ा से राजेश नेमा, संगीता, भावना और प्राची। और ये खत है धरसीमा से छेदूलाल यादव, सीता, अर्चना, अरुणा, अनुराधा, अल्पना का। और दुर्गापारा संतोषी नगर रायपुर से छन्नूलाल यादव, अनुराग, अभिषेक, अलका, अनामिका, बलदाऊ, रानू, खुशी, प्रवीण साहू और सीएल यादव का।

श्रोताओं, आपकी फरमाइश पर ये थे कुछ फिल्मी गीत। यूं ही चिट्ठियां लिखते रहिए, अपनी फरमाइशें हम तक भेजते रहिए और हम आप तक भेजते रहेंगे आपकी पसंद के नगमे। अब इस कार्यक्रम से इजाजत दें, अपनी दोस्त सुनीता सिंह को नमस्कार।

ये था फरमाइशी फिल्म संगीत का कार्यक्रम आपकी फरमाइश। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण राग रजनी। इस कार्यक्रम में लीजिए आज सुनिए वसंत रानाडे का वायलिन पर बजाया राग कामोद। तबले पर संगत की है पंडित रामस्वरूप।

0: राग रजनी शास्त्रीय संगीत के इस कार्यक्रम में आज आप सुन रहे थे वसंत रानाडे का वायलिन पर बजाया राग कामोद। तबले पर संगत की थी पंडित रामस्वरूप रतौनिया ने। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है, 11 बजने वाले हैं, कुछ ही पलों में समाचार होंगे, कृपया प्रतीक्षा करें।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रशांत कुमार। भारत और ऑस्ट्रेलिया ने स्वतंत्र और मुक्त हिंद प्रशांत क्षेत्र के लिए रक्षा और सुरक्षा सहयोग पर संयुक्त घोषणा पत्र को स्वीकार किया। ऑस्ट्रेलिया से यूरेनियम की आपूर्ति के लिए भी समझौता हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी एल्बनीज के साथ आज मेलबर्न में तीसरी ऑस्ट्रेलिया भारत वार्षिक शिखर वार्ता हुई। इस दौरान दोनों नेताओं ने प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता में द्विपक्षीय संबंधों को और सशक्त बनाने पर चर्चा की। दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय में आए परिवर्तनकारी महत्वपूर्ण बदलाव का स्वागत करते हुए क्षेत्रीय स्थिरता, ऊर्जा सुरक्षा और प्रौद्योगिकी नवाचार के लिए व्यापक सहयोग ढांचे को अंतिम रूप दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बताया कि दोनों देशों ने यूरेनियम आपूर्ति और महत्वपूर्ण खनिज गलियारे पर ऐतिहासिक समझौते पर हस्ताक्षर किए।
2: पीएम सूर्यघर योजना को सपोर्ट करने के लिए हमने मिलकर गुजरात में रूफटॉप सोलर ट्रेनिंग एकेडमी बनाई है। यह एकेडमी अनेक महिलाओं और युवाओं की कैपेसिटी बिल्डिंग में योगदान देगी। न्यूक्लियर एनर्जी के क्षेत्र में आज हमने एक महत्वपूर्ण समझौता किया है। इससे ऑस्ट्रेलिया से भारत को यूरेनियम सप्लाई का मार्ग खुलेगा और हमारे क्लीन एनर्जी के उद्देश्यों को नई ताकत मिलेगी।
1: बाद में प्रधानमंत्री मोदी ने आज ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न में मेलबर्न मीट्स मोदी कार्यक्रम में कहा कि भारत ऑस्ट्रेलिया गठबंधन नई ऊंचाइयों पर पहुंच गया है। 12 वर्षों में ऑस्ट्रेलिया की अपनी तीसरी यात्रा में प्रधानमंत्री ने 10 लाख से अधिक प्रवासी भारतीयों को द्विपक्षीय मित्रता का आधार स्तंभ बताया। श्री मोदी ने कहा है कि 21वीं सदी का भारत एक विकसित राष्ट्र बनने के लक्ष्य की ओर बढ़ रहा है। विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने आज कहा कि तीसरा वार्षिक भारत ऑस्ट्रेलिया शिखर सम्मेलन ऊर्जा सुरक्षा के क्षेत्र में भारत के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ऑस्ट्रेलिया की बेहद सफल राजकीय यात्रा का समापन हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल ऑस्ट्रेलिया के विपक्ष के नेता एंगस टिलर से मुलाकात करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी एल्बनीज के साथ प्रतिष्ठित मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड MCG का भी दौरा करेंगे। दोनों नेता इस अवसर पर ऐतिहासिक भारत ऑस्ट्रेलिया खेल सहयोग रोडमैप का अनावरण भी करेंगे। भारतीय जनता पार्टी ने पश्चिम बंगाल में होने वाले राज्यसभा उपचुनाव के लिए सुखेंदु शेखर रॉय, सुष्मिता देव और प्रकाश चिक बराइक को अपना उम्मीदवार घोषित किया है। इन तीनों सीटों के लिए 24 जुलाई को मतदान होगा। ये तीनों नेता हाल ही में अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए। केंद्र सरकार जल्द ही फ्लेक्स फ्यूल वाहनों के लिए E85 ईंधन शुरू करने की योजना बना रही है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि इसकी कीमत E20 पेट्रोल से लगभग 20 रुपए प्रति लीटर कम होगी। एक निजी समाचार चैनल को दिए साक्षात्कार में श्री पुरी ने कहा कि इस पहल का उद्देश्य उपभोक्ताओं को आर्थिक राहत देना और सरकार के एथेनॉल मिश्रण कार्यक्रम को बढ़ावा देना है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने आज राज्य में समान नागरिक संहिता UCC लागू करने के लिए रूपरेखा तैयार करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति रंजना देसाई की अध्यक्षता में 7 सदस्यीय समिति के गठन की घोषणा की। ईरान ने अमेरिका पर आज बुशहर परमाणु ऊर्जा संयंत्र के पास हवाई हमला करने का आरोप लगाया। ईरान की सरकारी समाचार एजेंसी ने बताया कि ये कार्रवाई उस पर हमले समाप्त करने की अमेरिकी सेना की घोषणा के कुछ घंटों बाद हुई। अमेरिकी केंद्रीय कमान ने इसकी पुष्टि नहीं की है। विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स में लिंडा नोस्कोवा ने फाइनल में जगह बना ली है। सेमीफाइनल में आज नोस्कोवा ने मार्ता कोस्तियू को 6-4, 6-4 से हराया। महिला सिंगल्स का फाइनल मुकाबला 11 जुलाई को लिंडा नोस्कोवा और कैरोलिना मुचोवा के बीच खेला जाएगा। वहीं पुरुष सिंगल्स के पहले सेमीफाइनल में कल आर्थर फेरी का मुकाबला अलेक्जेंडर ज्वेरेव से और मौजूदा चैंपियन यानिक सिनर का सामना नोवाक जोकोविच से होगा। भारत और इंग्लैंड के बीच चौथा T20 क्रिकेट मुकाबला ब्रिस्टल में जारी है। ताजा समाचार मिलने तक भारत ने 13 ओवर में 3 विकेट पर 94 रन

0: concerned laws governing IVF clinics, ART centers, and gamete banks, with a focus on protecting the reproductive rights, dignity, and safety of women. Former judge of the Delhi High Court, Justice Asha Menon, will chair the expert committee. And that is the end of this news bulletin.
1: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। रात के 11:10 हुए हैं। हमारी ये सभा अब संपन्न होती है। कल सुबह 5:53 पर अपनी प्रातःकालीन सभा के कार्यक्रमों के साथ हम आपकी सेवा में पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हमें अनुमति दें। शुभरात्रि। जय हिंद।

जिंदगी की भागदौड़ में सबसे ज्यादा अगर कुछ बेचैन रहता है तो वो रहता है हमारा मन। कभी बीते कल की चिंता, कभी आने वाले कल का डर, और इन्हीं के बीच आज की खुशियां कहीं खो सी जाती हैं। ऐसे समय में सबसे ज्यादा जरूरी होता है अपने मन को धैर्य और विश्वास का सहारा देना।

दोस्तों चलते चलते बस यही कहेंगे कि सपने पूरे करने के लिए बड़ा होना जरूरी नहीं बल्कि बड़ी सोच का होना जरूरी है। दिल छोटा हो सकता है लेकिन अगर उसमें हौसले, उम्मीद और कुछ नया करने का जुनून हो तो वही दिल दुनिया की सबसे ऊंची उड़ान भर सकता है।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार बल। भारत और ऑस्ट्रेलिया ने स्वतंत्र और मुक्त हिंद प्रशांत क्षेत्र के लिए रक्षा और सुरक्षा सहयोग पर संयुक्त घोषणा पत्र को स्वीकार किया है। ऑस्ट्रेलिया से यूरेनियम की आपूर्ति के लिए भी समझौता हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज के बीच कल मेलबर्न में तीसरी ऑस्ट्रेलिया भारत वार्षिक शिखर वार्ता हुई। इस दौरान दोनों नेताओं ने प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता की, द्विपक्षीय संबंधों को और सशक्त बनाने पर चर्चा की। दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय संबंधों में आए परिवर्तनकारी महत्वपूर्ण बदलाव का स्वागत करते हुए क्षेत्रीय स्थिरता, ऊर्जा सुरक्षा और प्रौद्योगिकी नवाचार के लिए व्यापक सहयोग ढांचे को अंतिम रूप दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बताया कि दोनों देशों ने यूरेनियम आपूर्ति और महत्वपूर्ण खनिज गलियारे पर ऐतिहासिक समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं।
1: पीएम सूर्यघर योजना को सपोर्ट करने के लिए हमने मिलकर गुजरात में रूफटॉप सोलर ट्रेनिंग एकेडमी बनाई है। ये एकेडमी अनेक महिलाओं और युवाओं की कैपेसिटी बिल्डिंग में योगदान देगी। न्यूक्लियर एनर्जी के क्षेत्र में हमने एक महत्वपूर्ण समझौता किया है। इससे ऑस्ट्रेलिया से भारत को यूरेनियम सप्लाई का मार्ग खुलेगा और हमारे क्लीन एनर्जी के उद्देश्यों को नई ताकत मिलेगी।
0: प्रधानमंत्री मोदी ने मेलबर्न में मेलबर्न मीट्स मोदी कार्यक्रम में कहा कि भारत ऑस्ट्रेलिया गठबंधन नई ऊंचाइयों पर पहुंच गया है। 12 वर्षों में ऑस्ट्रेलिया की अपनी तीसरी यात्रा में प्रधानमंत्री ने 10 लाख से अधिक प्रवासी भारतीयों को द्विपक्षीय मित्रता का आधार स्तंभ बताया। प्रधानमंत्री मोदी की ऑस्ट्रेलिया की सफल राजकीय यात्रा का समापन हो रहा है। प्रधानमंत्री मोदी आज ऑस्ट्रेलिया के विपक्ष के नेता एंगस टेलर से मुलाकात करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज के साथ प्रतिष्ठित मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड का भी दौरा करेंगे। दोनों नेता इस अवसर पर ऐतिहासिक भारत ऑस्ट्रेलिया खेल सहयोग रोडमैप का अनावरण भी करेंगे। आधुनिक कूटनीति की नींव रखने वाली सभ्यतागत समानता का एक और गहरा प्रमाण देते हुए सांस्कृतिक रूप से महत्वपूर्ण तीन प्राचीन कलाकृतियां ऑस्ट्रेलिया भारत को लौटाने जा रहा है। संस्कृति मंत्रालय ने बताया कि इन कलाकृतियों में देवी भद्रकाली का एक कांस्य त्रिशूल, नंदी की एक भव्य ग्रेनाइट प्रतिमा और 6 सिर वाले कार्तिकेय की बेसाल्ट पत्थर की एक मूर्ति शामिल है। भारतीय जनता पार्टी ने पश्चिम बंगाल में होने वाले राज्यसभा उपचुनाव के लिए सुखेंदु शेखर रॉय, सुष्मिता देव और प्रकाश चिक बराइक को अपना उम्मीदवार घोषित किया है।

तीनों सीटों के लिए 24 जुलाई को मतदान होगा। ये तीनों नेता हाल ही में अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए हैं। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने राज्य में एक समान नागरिक संहिता यूसीसी लागू करने के लिए रूपरेखा तैयार करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय की पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति रंजना देसाई की अध्यक्षता में 7 सदस्यीय समिति के गठन की घोषणा की है। विदेश मंत्री डॉ. सुब्रमण्यम जयशंकर कुवैत की यात्रा पूरी करने के बाद ओमान पहुंच गए हैं। ओमान के विदेश मंत्रालय के महानिदेशक शेख अहमद अल मस्करी ने उनका स्वागत किया। डॉक्टर जयशंकर कतर, बहरीन, कुवैत, ओमान, न्यूयॉर्क और ब्रसेल्स की 11 दिन की यात्रा पर हैं। फ्रांस फीफा फुटबॉल विश्व कप के सेमीफाइनल में पहुंचने वाली पहली टीम बन गई है। बोस्टन में खेले गए पहले क्वार्टर फाइनल मुकाबले में फ्रांस ने मोरक्को को 2-0 से हराया। वहीं दूसरे क्वार्टर फाइनल मुकाबले में देर रात 12:30 बजे स्पेन का मुकाबला बेल्जियम से होगा। ब्रिस्टल में चौथे T20 क्रिकेट मुकाबले में इंग्लैंड ने भारत को 9 विकेट से हराया। भारत के 159 रन के लक्ष्य को इंग्लैंड ने 37 गेंद रहते हासिल कर लिया। इंग्लैंड के कप्तान हैरी ब्रुक को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। 5 मैचों की श्रृंखला में इंग्लैंड ने 3-0 की अजेय बढ़त बना ली है। और अगर बात करें मौसम की, तो मौसम विभाग ने बताया कि दक्षिण पश्चिम मानसून ने पूरे देश में सक्रिय हो चुका है। उत्तराखंड में कुछ स्थानों पर आज तेज वर्षा का अनुमान है। अगले 4 दिन तक दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश में तेज वर्षा की संभावना है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

सुबह के 5:10 और 55 सेकंड हुए हैं। आकाशवाणी के FM गोल्ड चैनल पर आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम भोर सुहानी। एक बार फिर से मैं अर्चना बिसारिया आपका इस कार्यक्रम में स्वागत करती हूँ, तो कीजिए स्वीकार मेरा प्यार भरा नमस्कार। कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं मेरे सनम फिल्म के इस गीत के साथ, जिसे आवाज दी है मोहम्मद रफी ने।

श्रोताओं, कार्यक्रम भोर सुहानी में अब हम आपको सुनवा रहे हैं आशा भोसले का गाया फिल्म कश्मीर की कली का ये गीत।